0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है, और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की है। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूं। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम या टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब ये स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है, उतना ही पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है, तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है, और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्द ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
1: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AESM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि ये फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है, जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: एक कथा हमें याद आ गई, कहो तो सुनाए, जरा जोर से बोलो ना। वृंदावन के पास एक लड़की का जन्म हुआ, उसका नाम लक्ष्मी था। गरीब घराने में जन्म हुआ, बचपन से ही बड़ी गरीब थी। माताजी मर गईं बचपन में ही, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। ब्रज की बात है, वृंदावन से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर की बात है। अब जो दूसरी मां आई सौतेली मां, वो बड़ी खतरनाक थी, रोज डांट लगावे, कम भोजन देवे। गांव में एक बार भागवत हुई, लक्ष्मी की आयु 8 साल की थी, वो भागवत सुनने गई। वहां पंडित जी ने भागवत में सुनाया कि यदि कोई भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, नाता जोड़ ले, तो भगवान निभाते हैं। उसने सोचा कि हम भगवान से क्या नाता बनाएं, तो एक छोटे से बाल मुकुंद जी लेके आई। गांव के लोग वृंदावन जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, बातें बताते थे, बांके बिहारी ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, पूर्णमासी को भगवान ऐसे लग रहे थे। तो गांव की माताएं जाती थी तो बताती थी, पर ये जा नहीं पाती थी क्योंकि सौतेली माँ बहुत खतरनाक थी, बहुत गाली बकती। लेकिन इसको वृंदावन से ना प्यार हो गया, बांके बिहारी से प्रेम हो गया। इसने छोटे से बाल मुकुंद जी घर पे रख लिए और उनको ना अपने भाई के रूप में देखने लगी। भैया हैं हमारे, भैया हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बना लिया। बहुत दिनों तक रोज सोवे तो ठाकुर जी को सुलावे, जो कुछ खावे सो चुपके से ठाकुर जी को भोग लगा देवे, ताकि घर के माता जी को, जो सौतेली माँ है, उसको पता ना लग जाए, नहीं तो वो गाली बकेगी, पूजा नहीं करने देगी। भगवान की कृपा, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, कभी वृंदावन जा तो नहीं पाई, लेकिन पिता ने जब देखा कि उम्र बड़ी हो गई, बेटी का विवाह करना है, भगवान की कृपा से उसकी शादी वृंदावन में ही तय हो गई। आहा, वृंदावन में तय हुई। अब तो ये इतनी खुश, ठाकुर जी को लेकर रोवे अकेले, प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है। माताजी तो बचपन में मर गई, भाई कोई हमारा है नहीं, सौतेली मां प्रेम नहीं करती, पिता हमारी तरफ ठीक से देखता तक नहीं, पर आपने बहुत कृपा की, हमारा विवाह अपनी नगरी में तय करवा दिया। ठाकुर सच बतावे, हमने 8 साल पहले कथा में सुना था कि तुम संबंध निभाते हो, आज हमने देख लिया तुम सच में निभाते हो। आंखों में आंसू लेकर रोने लगी, झरझर नैनों से नीर बहने लगे लक्ष्मी बिटिया के। धीरे धीरे शादी का समय आया, वृंदावन से बारात आई, धूमधाम से विवाह हुआ और पहली बार वृंदावन गई तो पहली बार तो बड़ी धूमधाम से बैलगाड़ी से गई, लेकिन 4-5 दिन का मुहूर्त था, पुराने जमाने में मुहूर्त चलते थे, 4-5 दिन का मुहूर्त था, तो वापसी मायके जल्दी आ गई, बांके बिहारी ना जा पाई, तो पूरे रास्ते भर रोती रही। पति भी बहुत अच्छे मिले, वो भी ठाकुर जी के भगत थे, और इसके साथ में ठाकुर जी की मूर्ति देखकर पति भी बहुत खुश हुए, बोले वाह, हम तो सोच रहे थे तू वृंदावन से दूर रहती है तो शायद ठाकुर जी की सेवा ना कर, पर तू तो पहले से ही ठाकुर जी की सेवा कर रही है, तू कब से ठाकुर जी की सेवा कर रही है। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, स्वामी जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा कर रही हूं, इनसे मेरा संबंध है, नाता है, रिश्तेदार लगे ये मेरे। अच्छा हाँ, पति भी खुश और ये भी बहुत खुश। घर आ तो गई पर मन में एक मलाल रहा, ठाकुर जी के दर्शन ना कर पाए। इतने में समय बीता, दूसरी बार पति लेने आया। पुराना जमाना, गरीबी का जमाना, पैदल दूरी 16 किलोमीटर, तो पति पैदल ही पत्नी को ले जाने लगा कि चलो। तो मायके से विदा हुई, गांव वालों ने थोड़ी पूड़ी बना दी खाने के लिए, सामान का रास्ता के लिए भोजन बना दिया, नाश्ता बना दिया। पति ने पेटी उठाई, पोटली उठाई कपड़ों की, आगे आगे पति, पीछे पीछे ये पति के चिन्हों को देखती हुई चलने लगी। लंबा घूंघट डाले, ब्रिज में घूंघट की बहुत बड़ी प्रथा है, तो लंबा घूंघट डाले और पति ने कहा, सुन यहां मेरे सब जानने वाले रहते हैं, तू मुंह मत निकालना वरना लोग कहेंगे कैसी बहू है। जी महाराज, जो आज्ञा स्वामी जी। यमुना के किनारे वृंदावन पहुंच गए। यमुना के किनारे वृंदावन में जब जैसे ही बैठे तो पति ने कहा कि शाम होने वाली है, मैं जरा जमुना जी नहा लूं, तू थोड़ी देर यहीं बैठना, फिर मैं साथ में ले चलूंगा। जो आज्ञा महाराज। तो पति तो नहाने चला गया, लेकिन भैया ये तो सीधी साधी बैठ गई। इतने में एक छोटो सो छोरा, भागो भागो आओ और इसको धक्का देकर के बोलो, भाभी तू अपनो मुंह ना दिखाएगी का। इसको लगा कोई गांव का बालक होगा, गांव का छोरा होगा, बेफिजूली में हमें तंग करने आ गया। तो इसने जोर से अपना घूंघट पकड़ लिया और अंदर से कहा, अब वो छोटो सो छोरा इतनो चंचल, वो बालक इतनो चंचल कि जाको पल्लू ऐसो पकड़ के खींच के भाभी को मुंह देखवे के लाने, नीचे ते ऐसो मुंह डाल लो। और नीचे ते मुंह डाल के बोलो, अरे भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे। और ऐसो कह के वो छोरा भाग गो। अब ये बड़ी परेशान। इतने में पति आ गया, क्या हुआ? इसने कहा कोई छोटा सा छोरा है 8 साल का, वो आके कह रहा था कि भाभी तू अपनो मुंह दिखा, मैंने जब मना कर दी तो जबरदस्ती मेरो पल्लू उगाड़ करके मेरो मुंह देख करके गाओ, कह रहो भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे। तो पति यहां वहां देखने लगा, कौन छोरा है, कैसा दिखता है? बोले ठीक से तो नहीं देख पाई, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल थोड़ा घुंघराले हैं। अच्छा हाँ, पर चिंता मत कर, पत्नी से कहा पति ने, वृंदावन थोड़ी बड़ो है, बताना कौन है, सारी की कान कुच्ची करेंगे, कान पकड़ के देखेंगे कौन है, वृंदावन बड़ो थोड़ी है, काबूदन तो पकड़ो ही जाएगो, जैसे ही दिखाई देवे सोई बताना हमें। अब पत्नी कहा ठीक है चलो महाराज। दोनों घर आए, पत्नी रात को पति से बोली, स्वामी दूसरी बार आ गए हम, अब तक बचपन से ठाकुर जी के दर्शन ना करे बांके बिहारी के। पति बोला कल ही चल, तैयारी कर ले। रात को उसने खोवा उठा, खोवा के पेड़ा बनाए, पूरी रात आज जगती रही, कल ठाकुर जी के दर्शन होंगे। घूंघट लंबो डालकर बांके बिहारी के मंदिर में गई तो पति ने धक्का दे के कहा, बाबरी यहां भी घूंघट डाले रहेगी क्या, मुंह उघाड़ जरा देख ठाकुर को, बांके बिहारी जी को देखो कितने प्यारे लग रहे, आज कितने मलूक लग रहे अपने ठाकुर जी। और भैया जैसे ही बाने घूंघट उठाओ और देखते ही सोई चौंक गई। पति बोलो का भयो, का भयो? ये चिल्ला करके हाथ ऐसो उठा करके बोली, स्वामी जी स्वामी जी, यही तो वो छोरा है जो बादन हमारो घूंघट उठा करके भागो थे, यही तो है वो जो उस दिन हमारा घूंघट उठाकर भागा था। और इतना कहकर के रोने लगी, फूट फूट रोने लगी, आंखों से अश्रु धार बहने लगी, पति की भी नैनों में आंसू आ गए। पत्नी को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके कहा, अरे बाबरी तू धन्य है, तुझे बांके बिहारी ने दर्शन दे, मेरा तो वृंदावन में जन्म भो, पर आज तक जे हमको एक बार नहीं दिखो, पर तू धन्य है, पहली बार ही वृंदावन आई है ठीक से और तुझे ठाकुर के दर्शन हो गए, धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है। नैनों से खूब जल बहने लगा, दोनों पति पत्नी रोने लगे। वहीं बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अब आज के बाद जीऊंगी तो कन्हैया के लिए, मरूंगी तो कन्हैया के लिए। भैया इस कथा का आशय हम ये कहना चाहते, तुम यदि हनुमान जी से नाता जोड़ लोगे, रघुनाथ जी से नाता जोड़ लोगे, हमारे ठाकुर जी से नाता जोड़ लोगे, हम वचन देकर कह रहे श्रोताओ, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम दुनिया के भरोसे रहना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है, तुम दुनिया की चमक में मत रहना, तुम दुनिया में दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, आम गांव के पागलों और समस्त सनातनियों से हम प्रार्थना करना चाह रहे, हमसे कोई पूछे कि सच्चा साथी कौन है, हम दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी जैसा कोई दूसरा सच्चा साथी नहीं है।
1: हनुमान जी के जैसा दूसरा कौन होगा, उनके तुम चरण पकड़ लो, उनसे अपना नाता जोड़ लो, उनसे अपने संबंध, उनसे अपना संबंध जोड़ लो, राम जी से अपना नाता जोड़ लो। एक भजन हमें याद आ गया, कहो तो सुनाए। ठाकुर जी राम जी से सखियां गा रही, अवध सहिया मोरी छोड़ो ना भैया। एक भजन बड़ा अच्छा है, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। कौन कौन राम जी के चरणों में जीवन भर रहना चाहता है, उठाओ हाथ।

0: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's how-to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: जी खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए

0: दिल्ली एनसीआर में अभी और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की चेतावनी दी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आज से दिल्ली मेट्रो की बड़ी पहल, बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 फेरे। जरूरत के मुताबिक और बढ़ सकती है सेवाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए आज खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। बम भोले के जयकार, फूलों से किया गया धाम का भव्य श्रृंगार। इस पावन अवसर पर उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। लगभग 6 महीने खुला रहता है ये मंदिर। शीतकाल में अत्यधिक ठंड के कारण सर्दियों में गोपीनाथ मंदिर में होती है रुद्रनाथ की पूजा। यात्रा के दौरान पन्नार और ड्यूटी जैसे मखमली बुग्यालों और घने जंगलों से होकर करीब 20 से 22 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड के पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ। यहां पर भगवान शिव के स्वयंभू मुख की पूजा होती है। 23 मई से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा। 22 मई को पंच प्यारे गोविंद घाट से होंगे हेमकुंड साहिब रवाना। गुरुद्वारे में भी जोर शोर से की जा रही है सजावट। कपाट खुलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा हेमकुंड गुरुद्वारा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरीके से दुरुस्त कर चुकी है सेना। यात्रा शुरू होते होते पिघल जाएगी बर्फ। बीस मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था होगा रवाना, जो श्रीनगर होते हुए 21 मई को गोविंद घाट पहुंचेगा। 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारे में पहली अरदास के साथ घंघरिया के लिए कूच करेगा जत्था। भीड़ के चलते बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। इन दिनों रोजाना 19,025 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। गौचर जोशीमठ पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार है। वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन करने में हो रही है सहूलियत। रात में बढ़ती ठंड के बीच इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़ों के साथ यात्रा करने की सलाह। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सुबह से ही अंबाजी मंदिर में आस्था का माहौल छा गया। अंबा मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए घंटों कर रहे हैं इंतजार। भक्तों ने नारियल चोली और चूड़ियां चढ़ाकर मां अंबे से अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में जय माता दी के जय घोष माहौल हुआ भक्तिमय। भगवान विष्णु की विशेष उपासना दान और जप तप के एक साथ कई गुना पुण्य प्राप्त होने का मान्यता है। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु व्रत दान और पूजा पाठ करके भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष साधना में जुट गए। श्रद्धालु इस समय को भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित मानते हैं। छत्तीसगढ़ के एमसीबी शहर में रामकथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों महिलाएं स्तर पर कलश लेकर शामिल हुई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरी पारा में 9 दिवसीय श्री रामकथा का आयोजन किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज कथा वाचन करेंगे। कलश यात्रा में महिलाएं एक ही रंग में साड़ियों में नजर आई। जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान हुआ माहौल। मातृशक्ति की जागृति और भव्य सांस्कृतिक का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हजारों श्रद्धालु शामिल।

0: हुए। चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। दिल्ली में पहले से ज्यादा मेट्रो चला जाने की तैयारी। इस सोमवार को कामकाजी लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो आज से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें। नई योजना के मुताबिक डीएमआरसी हर सोमवार को चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेन, जिनकी मदद से रोजाना के मुकाबले 24 ज्यादा ट्रेनें चक्कर लगाएंगी। सुरक्षा और सुविधा के लिए भी ये पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज करेंगे मेट्रो से यात्रा। आईटीयू मेट्रो स्टेशन से शुरू होगी उनकी यात्रा। मेरा भारत मेरा योगदान और मेट्रो सोमवार अभियान के तहत होगी मुख्यमंत्री की ये यात्रा। सार्वजनिक परिवहन तथा ईंधन संरक्षण का बढ़ावा देना उद्देश्य। स्वीडन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। किसी विदेशी देश से मिला यह प्रधानमंत्री का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सम्मान के लिए उन्होंने स्वीडन का जताया आभार। सामुदायिक स्वागत समारोह के दौरान बंगाली संस्कृति से हुए प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट। मोदी ने कहा बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय है, स्वीडन भी इससे अछूता नहीं है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। पच्चीस मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट हैं प्रवीण। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड। पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री। अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तगाराम भील ने अलगोजा वादन को दी ग्लोबल पहचान। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। बस्तर में कई सारी योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में 400 डायल अप, 112 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियों और 33 मोबाइल फॉरेंसिक लैब को हरी झंडी दिखाएंगे शाह। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि भी देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर नगर निगम द्वारा निर्वाचित एसटीपी प्लांट का दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय लोगों को मिलेंगी बेहतर और तेज चिकित्सा सुविधाएं। दिल्ली को मिली विकास की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना मकसद, क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है आधुनिक रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साय सरकार का बड़ा फैसला। विदेश यात्राओं पर प्रतिबंधित जरूरी पड़ने पर होनी है मिलेगी अनुमति। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक बहुत दुर्लभ तस्वीर निकलकर सामने आई। कॉर्बेट के जंगलों में एक जंगली हाथनी अपने जुड़वा शावकों के साथ दिखाई दी। कर्मियों ने सबसे पहले 9 मई को बिजरानी जोन के जड़ पहाड़ क्षेत्र में हाथनी को दो बच्चों और नवजात बच्चों के साथ नजर आया। IPL के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत, डीसी ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेटों से हराया। राजस्थान ने दिल्ली के सामने 194 रनों का टारगेट रखा था, जिसे अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल और पोरेल ने 68 पारी के लिए 31 गेंद में 51 रन की 30 पारी के लिए, वहीं पर राहुल ने 42 गेंद में एक चौका और 3 छक्कों की बदौलत 56 रन बनाए। गेंदबाजी में दिल्ली की तरफ से स्टार्क ने राजस्थान को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। मिचेल स्टार्क ने राजस्थान के 4 विकेट झटके। दिल्ली की छठी बार जीत है, इस जीत के साथ उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी फिलहाल कायम। आईपीएल में अब तक प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, अब चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों का यह मुकाबला जीतना जरूरी। इस सीजन में शुरुआती 3 मुकाबले में हारने के बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ टीम अंक तालिका में छठे पायदान पर। हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 7 जीत हासिल, अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ा भारी नजर आता है। अब तक खेले गए कुल 24 मैचों में 16 मैच जीत चुकी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बीमार बना सकता है? क्या हाथ में कोई चिन्ह ऐसा होता है जो आपको जेल भी ले जा सकता है? क्या हाथ का कोई चिन्ह आपको बड़ी सारी यात्राएं कराता है? आपके हाथ और पैर के चिन्ह का क्या है रहस्य, क्या है अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
3: It's my music and it's my station.
2: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज के दिन किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं, अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं तो किसकी पूजा करेंगे। मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य देव की अगर आप नियमित उपासना करें तो आपका नाम और यश बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कैसे करेंगे? रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। जल में जरा सी रोली यानी कुमकुम मिला लीजिएगा और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तब लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक लगाएंगे। ऐसा रोज अगर आप करना शुरू करें तो आपको जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के अपयश से और किसी भी तरह की बदनामी से आपकी रक्षा होगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तमाम प्रयास करता हूं लेकिन मुझे जीवन में यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को बताए गए तरीके से जल अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह की। शीघ्र विवाह हो जाए इसके लिए किस देवी देवता की पूजा करेंगे। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता दुर्गा के सामने बैठें, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को जो पुरुष हैं वो लाल फूल अर्पित करेंगे और स्त्रियां यानी बालिकाएं सिंदूर चढ़ाएंगी और इसके बाद देवी का जो मूल मंत्र है ओम दूं दुर्गाय नमः, ओम दूं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 3 माला तो करिएगा ही। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 3 महीने तक करें। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की पूजा करेंगे। नौकरी पाने के लिए और नौकरी चलाने के लिए दोनों मामलों में भगवान शनि की पूजा करिएगा। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिएगा। सूर्योदय के पहले एक लोटा जल पीपल की जड़ में डालिएगा शनिवार को, और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास ही शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लें, शनि देव के मंत्र का जप कर लें, तो रात में काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइएगा, खाइएगा और लोगों को खिलाइएगा। ऐसा लगातार शनिवार के शनिवार अगर आप करें तो आपके लिए नौकरी पाना भी आसान होगा, और आगे नौकरी करना, नौकरी में सफलता पाना भी सरल होगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं, तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसाय में, व्यापार में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। अपने व्यापार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करें। जब आप अपने कारोबार में काम शुरू करते हैं उसके पहले एक रुई में गुलाब का इत्र लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करिए, और इसके बाद वही इत्र स्वयं लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में जीवन या आयु पर संकट की स्थिति बनी हुई है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवी देवता की पूजा करें? देखिए, अगर आयु पर संकट है या अल्प आयु के योग हैं तो आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें, और रोज पंचामृत अर्पित ना कर पाए तो सोमवार को पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद उनको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आप नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जप शिव मंदिर में ही करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। देखिए, जिस दर्पण में, जिस आईने में आप चेहरा देखते हैं, आईने को हमेशा साफ रखिए। जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं अगर वो गंदा है तो अच्छा नहीं होगा। गंदे आईने में चेहरा देखने से बचना चाहिए। अगर आप गंदे आईने में, गंदे मिरर में चेहरा देखेंगे तो ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होगा। तो जिस शीशे में या दर्पण में चेहरा देखते हैं उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि रोज के आपके काम में आपको सफलता मिले, रोज आपका करियर अच्छा रहे, तो क्या करेंगे? अपने काम करने के स्थान पर काम शुरू करने के पहले उस स्थान को नमस्कार करें, इसके बाद काम शुरू करें, काम उत्तम होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर बैठकर काम करते हैं वहां बैठने के पहले, शुरुआत के पहले भगवान का स्मरण करके, नमस्कार करके बैठ के काम शुरू करिए, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। पंच केदारों में से एक का चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम के आज से दर्शन, 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और ग्लोबल अवार्ड, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित, अब तक मिल चुके हैं 31 वैश्विक अवार्ड। दिल्ली NCR में अभी और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की दी चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आज से दिल्ली मेट्रो की बड़ी पहल, बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 फेरे, जरूरत के मुताबिक और बढ़ सकती है सेवाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: देखिए, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, कई लोगों के हाथों और पैरों पर अनेकों तरीके के चिन्ह होते हैं, तो आखिरकार ये जो चिन्ह है इसका क्या रहस्य है और ये आपके भाग्य के बारे में क्या कुछ बताता है, क्या कुछ उजागर करता है, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: को सुबह जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर से सूर्य देव का दर्शन नहीं होता, या सूर्य उगता नहीं है, या बिल्डिंग है, आप सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर पाते, तो रोज सवेरे स्नान करके सूर्य देव के 21 नाम का पाठ करिएगा। अगर रोज सवेरे आप सूर्य देव के 21 नाम का पाठ करें तो सूर्य को जल चढ़ाने के बराबर फल आपको प्राप्त होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का इस सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 18 मई 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या कुछ कहता है।
0: दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:05 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हाथ और पैर के जो तमाम चिन्ह होते हैं, आखिरकार उसका क्या महत्व होता है और क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। पंडित जी हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके हाथ और पैरों के चिन्ह के बारे में। हाथ और पैर के चिन्ह आपके जीवन और आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, आज इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें जो चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कुंडली में योग होते हैं, वैसे हाथ पैर के चिन्ह होते हैं। हाथ पैरों में बनने वाले चिन्ह दो तरीके के होते हैं। एक चिन्ह वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और दूसरे चिन्ह वो होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं, कभी बन गए, कभी हट गए, कभी बना कोई चिन्ह फिर गायब हो गया, तो वो एक समय के बारे में बताते हैं, जिस समय वो चिन्ह बनता है उस समय की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो चिन्ह आपके हाथ या पैरों में हमेशा बने रहते हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं, सारी खूबियां बताते हैं। हाथ पैर में बड़े सारे चिन्ह बनते हैं, वर्ग है, त्रिभुज है, मछली है, तारा है, मंदिर है, लेकिन ये चिन्ह तभी महत्वपूर्ण होंगे जब ये इंडिपेंडेंट होंगे, एकदम अलग से बने होंगे। जितना चिन्ह स्वतंत्र हाथ में बना होगा उतना ज्यादा ये आपके जीवन पर असर डालेगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए, चिन्हों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन से चिन्ह है साधारण और इन चिन्ह का क्या अर्थ है, पंडित जी से समझते हैं।
0: देखिए, आपको पहले बताया कि हाथ में दो चिन्ह होते हैं, एक साधारण चिन्ह और एक विशेष चिन्ह। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाथ में कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला चिन्ह है वर्ग का। वर्ग यानी स्क्वायर, ये रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। वर्ग हाथ में जहां भी होगा उस समय आने वाली समस्या से आपकी सुरक्षा करेगा। जीवन रेखा पर होगा तो आयु की रक्षा करेगा, भाग्य रेखा पर होगा तो भाग्य की रक्षा करेगा। लेकिन अगर शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो तो ये व्यक्ति को जेल ले जाता है, जेल यात्रा का कारण बनता है। त्रिभुज, त्रिभुज हाथ में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जिस पर्वत पर पाया जाता है, जिस जगह पाया जाता है, उस स्थान के प्रभाव को, उस स्थान की शक्ति को बढ़ा देता है। हाथ के बीचों बीच में अगर त्रिभुज हो तो आदमी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है, बहुत अच्छा मैनेजर होता है। तारा, कई रेखाएं एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटें तो वो तारा जैसा बन जाता है। हाथ या पैर में तारा जहां भी बने, स्टार जहां भी बने, उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। तारे का होने का मतलब कि जिस पर्वत पर है, जिस स्थान पर है, वहां पर मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर ये सूर्य के पर्वत पर बनता है या सूर्य के पर्वत पर है, तो जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्रदान करता है। वलय अंगूठी की तरह अंगुलियों के नीचे गोल सी आकृति होती है, उसको कहते हैं वलय। ये जहां भी होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। अमावस्या की तरह होता है, जिस पर्वत पर रहेगा उसके शुभ प्रभाव को रोकेगा। सूर्य के पर्वत पर वलय बहुत अशुभ माना जाता है, सबसे ज्यादा अशुभ होता है। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय है तो उसको सोलोमन की रिंग कहते हैं। ऐसे लोग न्याय, धर्म, कानून और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करते हैं। तिल की बात करते हैं। तिल केवल हथेली के बीचों बीच में अच्छा होता है, अन्य किसी जगह तिल अच्छा नहीं होता। जिस पर्वत पर तिल है उस पर्वत के प्रभाव में समस्या पैदा करेगा, उस पर्वत के रोग देगा। चंद्र के पर्वत पर तिल है, डिप्रेशन देगा। बृहस्पति के पर्वत पर तिल है, लीवर की बीमारियां देगा। लेकिन अगर तलवे में, पैर के तलवे में अगर तिल हो, तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी दौड़ भाग करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में हमेशा यात्रा करनी पड़ती है।
1: तो चलिए बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न प्रतिभा जी ने हमें लिखा है और प्रतिभा जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1991, जन्म का समय दोपहर के 1:45, जन्म स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं प्रयागराज से। प्रतिभा जी कह रही हैं कि मेरी एक संतान है और मैं दूसरी संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूँ, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? क्या दूसरी संतान ठीक तरीके से हो सकेगी? प्रतिभा जी आपकी कुंडली को देखते हुए और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको दूसरी संतान की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि संतान के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ जाए। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि दूसरी संतान के लिए प्रयास ना करें। एडॉप्शन वगैरह में जाना चाहें तो वो देख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल किस व्यूअर का पंडित जी ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं, रिमाइंड कर दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं पंडित जी।
0: अगला प्रश्न राम मोहन जी ने हमें लिखा है और राम मोहन जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1973, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म का स्थान है बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। राम मोहन जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल सकती है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? राम मोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपकी नौकरी बदलने का योग बन रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि इस साल के आखिरी में आप नौकरी बदल लेंगे अनुकूल तरीके से। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक मूंगा 10-12 रत्ती का बनवा के धारण करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो कौन से चिन्ह विशेष होते हैं, खास होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, हाथ में और पैरों में विशेष चिन्ह भी होते हैं, विशेष लक्षण भी होते हैं, उनका क्या अर्थ है वो समझते हैं। पहला विशेष चिन्ह है शंख का। अंगुलियों का जो टिप है, अंगुली के जो ऊपर का पोर है, इस पर शंख होता है, शंख पाया जाता है। शंख का मतलब विद्वता और ज्ञान है। कहा जाता है दशो शंख योगी, जिसके दशों अंगुलियों में शंख हो वो योगी है, वो आध्यात्मिक है। दूसरा चिन्ह होता है चक्र का। चक्र भी अंगुलियों के पोरों पर पाया जाता है। ये बताता है कि आप राजा हैं, यानी आप फाइनेंशियली जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, ये धन संपत्ति की सूचना है। दसों चक्र राजा, दसों संख योगी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद चिन्ह आता है त्रिशूल का। त्रिशूल बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर पाया जाता है। और अगर हाथ में त्रिशूल है तो ये अपार शक्ति देता है और जीवन में बड़ा यश देता है, बहुत नाम देता है। हाथ में मंदिर भी पाया जाता है। एक वर्ग के ऊपर त्रिभुज जुड़ जाता है और वो बन जाता है मंदिर। आम तौर पर शुक्र के पर्वत पर या हथेली के बीचों बीच राहु के पर्वत पर मंदिर पाया जाता है। ये दैवीय कृपा का चिन्ह है, भगवान की कृपा का चिन्ह है और आध्यात्मिक संस्कारों के बारे में बताता है। जिसके हाथ में मंदिर होता है ऐसा मान करके चलिए कि वो धर्म का अच्छा पालन करते हैं और उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मछली का चिन्ह भी हाथ में होता है। जीवन रेखा और मणिबंध के पास, कलाई के पास मछली का चिन्ह पाया जाता है या कुछ लोगों के पैरों के बीच में भी मछली का चिन्ह देखा गया है। अगर हाथ में या पैर में मछली का चिन्ह है तो ये यात्राओं और यात्राओं से लाभ की सूचना देता है। एक चिन्ह और होता है कमल का। बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और आसानी से कमल को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन विलक्षण लोगों के हाथ में होता है। पैरों के बीच में या हाथों में शुक्र के पर्वत पर होता है कमल का चिन्ह। जिसके भी हाथ या पैर में है, या तो वो स्वयं ईश्वर है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके हाथ पैरों में विलक्षण चिन्ह होते हैं, शंख है, चक्र है, कमल का फूल है, ये सब चिन्ह उनके हाथ पैरों में पाए जाते हैं। या कोई ऐसा संत महात्मा जो ईश्वर के बड़ा निकट होता है, उसके भी हाथ या पैरों में कमल का चिन्ह हो सकता है।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है

0: धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आपके हाथों में या पैरों में बुरे चिन्ह हो तो उसका दुष्प्रभाव आप अपने जीवन में किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में या पैरों में अशुभ चिन्ह हो, बुरे चिन्ह हो, तो उनका दुष्प्रभाव कैसे कम करेंगे? जिस पर्वत पर खराब चिन्ह हो, जैसे मान लिया बृहस्पति के पर्वत पे पहली उंगली के नीचे खराब चिन्ह है, तो उसमें 3 धातु का छल्ला पहनिए। इसमें सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवाकर उस उंगली में पहन लीजिएगा। पैरों में, खास तौर से दाहिनी कलाई में, हाथों में, कलाई में और पैरों में जहां एंकल पहनते हैं, जहां पे एंकलेट पहनते हैं, वहां पे एक काला धागा भी पहन सकते हैं। अगर पैरों में खराब चिन्ह है तो जहां पायल पहनते हैं वहां एक काला धागा बांध लें, और अगर हाथों में खराब चिन्ह है तो जिस हाथ में खराब चिन्ह है वहां एक काला धागा बांध लें। हाथों में जल भरकर अंजुली से पौधे में जल डालें, खास तौर से तुलसी के पौधे में अंजुली में जल भर के रोज डालिएगा। सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखिए, इसके बाद जमीन को प्रणाम करके अपना पैर पलंग से नीचे रखिएगा। माता पिता का अगर रोज चरण स्पर्श करें तो आपके हाथ में, हथेलियों में, प्रारब्ध में जो खराब चिन्ह होंगे उनका असर आपके जीवन से कम हो जाएगा। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखिए, भगवान का स्मरण करिए, जमीन को छूकर नीचे उतरिए, घर में जो बड़े हैं उनका मानसिक रूप से, अगर दूर हैं तो मानसिक रूप से, और अगर साथ में रहते हैं तो जा करके उनका चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा करने से आपके हथेलियों में, पैरों में जो नकारात्मक चिन्ह हैं उनका प्रभाव कम होगा, समाप्त होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की

0: दौड़ भाग रहेगी। मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न, अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा यानी आज का अंतिम सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न खुशबू कुमारी ने हमें लिखा है और खुशबू कुमारी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 2005। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म का स्थान है बाढ़, बिहार। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब में नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूं, क्या टीचिंग में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मुझे आगे उच्च शिक्षा में नौकरी मिलेगी या प्राइमरी स्कूल में मिलेगी। खुशबू, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, एमए कर लें और उसके बाद नेट एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आप एमए करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश करें तो आपको उच्च शिक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। उम्र के लगभग 26-27 साल के आसपास आपकी नौकरी आरंभ होगी। आपकी कुंडली में विलंब विवाह के योग हैं और ये भी संभावना है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएं, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन यानी जिनका बर्थडे 18 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कितना खास रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 18 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। तो पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग सूर्य देव को जल देते हैं, उसमें अक्षत डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, सूर्य को जल देने से प्रकाश का फायदा होता है, लाइट का और कलर का। इसीलिए अलग अलग रंग आप मिला करके उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। रोली मिला के, हल्दी मिला के, चंदन मिला के उसके अलग अलग कलर का प्रभाव बदल सकते हैं। लेकिन इसमें गुड़ डालना, चावल डालना, मीठा डालना, ये किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय हो गया है जानने का कि शुभ पहर क्या है, यानी 18 मई 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है, जान लेते हैं।
0: दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ज्यादा से ज्यादा शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति लगातार मजबूत होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानते हैं कि आज की भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान में स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है धनु। इस समय काम का बोझ और आंखों की समस्या से परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। आराम जरूर करिए और तनाव कम पालिए।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय आ गया है पंडित जी से जानने का कि आज का महा उपाय आखिर क्या है। पंडित जी,
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल और 3 बेलपत्र अर्पित करेंगे और जल और बेलपत्र घर से ले जाएंगे। जल घर से भरकर नंगे पैर शिव जी के मंदिर तक जाइएगा। उसके बाद जल और 3 बेलपत्र चढ़ाइएगा और शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है और इसके बाद अर्पित किए हुए बेलपत्र में से 1 बेलपत्र वापस लाकर रोगी के सिरहाने रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं, सप्ताह भर में ही स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए गुड लक टुडे में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: Hot Mics with Billy Bush, streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: यूरोप का सबसे बड़ा संगीत समारोह यानी यूरोविजन बुल्गारिया की ऐतिहासिक जीत के साथ संपन्न हो गया। आपको दिखाते हैं यूरोविजन में बुल्गारिया की सिंगर ने कैसे बजाया डंका और जीत के बाद किस तरह मनाया गया धमाकेदार जश्न।
11: ये तस्वीरें शानदार जश्न की है, ये तस्वीरें उस लम्हे की है जो किसी भी कलाकार की जिंदगी का सबसे बड़ा पल हो सकता है। ऑस्ट्रिया के वियना में रविवार को जब यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के विनर का ऐलान हुआ तो बुल्गारिया की सिंगर दारा खुशी से झूम उठी।

0: एक पल को ऐसा लगा जैसे दारा के दिल की धड़कनें थम गई और दूसरे ही पल फैन से घिरी दारा नए उत्साह से लबरेज नजर आई। दारा को जेजे के नाम से मशहूर पिछले साल के यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के विनर योहानिस पिच ने ट्रॉफी सौंपी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉन्टेस्ट में विजेता घोषित होने के बाद ट्रॉफी लेकर दारा खुशी से उछल पड़ी और फिर स्टेज पर दारा ने उसी गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी जिसके लिए उन्हें इस बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में विजेता करार दिया गया है। इस गाने बंगारंगा को सशक्तिकरण और संगीत में डूब जाने से जुड़े थीम पर तैयार किया गया है। गाने पर दारा के हाई वोल्टेज डांस में भी इसकी शानदार झलक दिखी। वहीं दारा ने कॉन्टेस्ट में विजेता घोषित किए जाने पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आखिर म्यूजिक की ताकत क्या है।
1: थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force. I truly believe that that force has one name, and it's God, and it's the universe, and it's the language that we all speak, which is music. Music is love, and it helps us make our reality so much colorful and tasteful.
0: बुल्गारिया ने पहली बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीता है, लिहाजा दारा की खुशी लाजमी है। खासतौर से ऐसे माहौल में जब ऑस्ट्रिया में हुआ यह कॉन्टेस्ट गाजा मुद्दे को लेकर पांच देशों की ओर से इजराइल के बहिष्कार की वजह से विवादों में रहा, वहीं बुल्गारिया ने इसमें शानदार जीत हासिल की। वहीं पब्लिक के भारी समर्थन के बावजूद इसमें इजराइल के सिंगर को लगातार दूसरी बार दूसरा स्थानी नसीब हो सका।
2: 220 पॉइंट्स।
0: यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय लाइव संगीत प्रतियोगिताओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1956 में यूरोप के देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए हुई थी। इसे यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की ओर से आयोजित किया जाता है। हालांकि गाजा पर इजरायली हमले के विरोध के मुद्दे की वजह से इस बार स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसमें बुल्गारिया के कलाकार की जीत ने यही संदेश दिया है कि संगीत राजनीति से परे है और यह वो ताकत है जो दुनिया में अमन चैन को बढ़ावा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मैराथन दौड़ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत से लोगों ने कई मैराथन दौड़ में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मैराथन की खबर दिखाने जा रहे हैं जो अब तक होती रही मैराथन में सबसे ज्यादा मुश्किल है। हालांकि दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन में शामिल होते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि चीन की दीवार पर यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर होती है। रिपोर्ट देखिए।
4: सैकड़ों धावकों का ये कारवां किसी आम सड़क पर नहीं बल्कि चीन की मशहूर दीवार पर दौड़ लगाने निकला है। इस अनोखी दीवार पर बनी पथरीली डगर पर दौड़ने के अलावा दौड़ते भागते हुए ही सैकड़ों सीढ़ियां पार करते ये धावक यहां अपनी शानदार दमखम की नुमाइश कर रहे हैं। दौड़ के दरमियान जगह जगह पारंपरिक चीनी अंदाज में धावकों का स्वागत भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। चीन के दीवार पर मैराथन की शुरुआत 1999 में हुई थी। पहली बार यहां पर हुई मैराथन में 350 धावकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस मैराथन दौड़ में 50 देशों के 1485 धावकों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन के दौरान तीन तरह की दौड़ हुई जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 8.5 किलोमीटर की फन रन में भी धावकों ने भाग लिया। 493 धावक फुल मैराथन में शामिल हुए जबकि 504 हाफ मैराथन में और 388 धावक फन रन में शामिल हुए। अमेरिका से सबसे ज्यादा 138 धावकों का दल मैराथन में भाग लेने पहुंचा। चीन की दीवार पर आयोजित ये मैराथन सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें केवल समतल ट्रैक पर दौड़ लगाना नहीं होता है बल्कि ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए ये इवेंट पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अंत में फिनिश लाइन पार करने पर खुशी की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है।
2: Me gustó mucho correr aquí en la muralla. Es impresionante las escaleras de subir y bajar. Se siente la tensión, se siente la energía, se siente esa adrenalina y muy feliz por el resultado.
5: C'était très impressionnant de monter sur le mur. La vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
4: चीन की ये दीवार तो दुनिया भर में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हुई इस मैराथन में धावकों को केवल प्राचीन हुआंग यांगून किले के दायरे में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों से लेकर तमाम विदेशी धावकों और सैलानियों ने इस इवेंट का खूब मजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: किस देवता की उपासना करने से जीवन में नाम और यश मिलता है? किस देवी देवता की उपासना करने से विवाह शीघ्र होता है? और किस देवी देवता की उपासना करने से मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है? अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की करें उपासना, जानिए मेरे साथ।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: So thank God I get to wake
8: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: शारदा में यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदार धाम के दर्शन।

0: से चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम के आज से दर्शन, 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने दर्शन देंगे।
1: झांसी के स्कॉन मंदिर में नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराजे श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन जैसी दिव्य छटा देखकर भाव विभोर हुए भक्त।
0: पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल अवार्ड, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित, अब तक मिल चुके हैं 31 वैश्विक अवार्ड।
1: दिल्ली एनसीआर में मौसम से सावधान, अभी और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ लू चलने की दी चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील।
0: आज से दिल्ली मेट्रो की बड़ी पहल, बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 फेरे, जरूरत के मुताबिक और बढ़ सकती हैं सेवाएं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मंगलवार की शुरुआत चारधाम यात्रा के साथ होगी, जिसमें श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ अब तक करीब 16 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देवभूमि में आस्था और विश्वास का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, हर तरफ भक्तों की भीड़ है। वहीं पर इस बीच आज से पंच केदार में शामिल भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए भी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो क्या है आस्था की ये रंग, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
0: वहीं अयोध्या का दशरथ महल, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का मुख्य शाही निवास और त्रेता युग का ऐतिहासिक स्थल है। दशरथ महल मंदिर एक भव्य और रंगीन मंदिर में परिवर्तित हो चुका है, जहां पर श्रद्धालु रामलला और उनके परिवार के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी दशरथ महल मंदिर की शानदार पुष्प सज्जा देखने को मिली और लाखों श्रद्धालु यहां पर उमड़े, तो कैसी रही ये सजावट और उत्साह दिखाएंगे आगे।
1: बिल्कुल पूजा देगी, साथ ही आपको कान फिल्म फेस्टिवल की भी तमाम रंग दिखाएंगे, जहां पर भारतीय सितारों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। हर दिन कान फिल्म फेस्टिवल से भारतीय सितारों के ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स निकल कर सामने आ रहे हैं। इस बार चरता अदिति राव हेदरी के लुक्स की भी खूब हो रही है, आगे आपको दिखाएंगे।
0: वहीं एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में बांस से बनी एक कैंटीन महिला सशक्तिकरण की कहानी दिखा रही है। स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस कैंटीन को बनाया गया है, जो कि आज जंगलों के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल बन अपनी कहानी खुद लिख रही है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
1: यहाँ देखिए, इसके अलावा आईपीएल के मैदान में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मैच होने जा रहा है। ये मैच जो है शाम 7:30 बजे होगा, चेन्नई में होने जा रहा है, तो कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां दिखाएंगे हम आपको आगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी खबरें।
0: उत्तराखंड से बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक शानदार सुबह, आज भक्त भगवान रुद्रनाथ के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को विधि विधान से बाबा की डोली को रवाना किया गया था। उत्तराखंड में पंच केदार से चतुर्थ केदार के रूप में रुद्रनाथ की पूजा अर्चना होती है।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, हर दिन हजारों यात्री चारधाम में पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि 1 महीना होने से पहले ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
0: श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां इस वक्त पूरे जोरों पर है। यात्रा के लिए मार्ग तैयार करने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। हेमकुंड साहिब को सजाने का काम भी जारी है। कपाट खुलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा।
1: छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर में भव्य श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले दिन ही निकाली गई ऐतिहासिक कलश यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया। लगभग 10,000 महिलाओं ने यह विशाल कलश यात्रा 5 किलोमीटर तक निकाली।
0: मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज से 6 अतिरिक्त मेट्रो चलाने का फैसला किया ताकि ईंधन संकट के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। इस कदम से यात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया, जो स्कैंडिनेवियाई देश द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष 131 पद्म सम्मान घोषित किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। 19 महिलाएं सम्मानित होंगी, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिलेगा।
1: आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 63वां लीग मैच आज चेन्नई के चेपक स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद से होने जा रहा है।
0: नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को 32वीं बार फतह करके इतिहास रच दिया। शेर्पा ने एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: और देखिए शुभ समाचार आपको बता दें, आज पंच केदार में से एक रुद्रनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा में आस्था भक्ति का अद्भुत रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस महातीर्थ में दर्शन पूजन का पुण्य कमा चुके हैं। उत्सव की हर तस्वीर आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले सात समंदर पार से आई वो तस्वीर दिखा देते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया।
0: ये एक बड़े हादसे को मात देकर जिंदगी की जीत की तस्वीर है। दरअसल अमेरिका के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में चल रहे एयर शो के दौरान ये हादसा हुआ, और जब दो अमेरिकी ये 18G ग्राउलर फाइटर प्लेन हवा में आपस में टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि हवा में ही दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे के बावजूद सभी क्रू मेंबर सुरक्षित लैंड कर गए।
1: बिल्कुल पूछा, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि दोनों फाइटर प्लेन्स कैसे हवा में आपस में उलझ गए, और एन वक्त पर बिल्कुल क्रू मेंबर्स ने प्लेन से एग्जिट किया। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर के ठीक बाद कुछ ही सेकंड्स में 4 पैराशूट खुलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, मार कर रही हैं हमने तस्वीरें, और सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटना कल दोपहर 12:30 बजे की है। अब आपको बता दें कि EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के उन्नत क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, और घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार दोनों जेट का जो मलबा है वो एयरबेस से करीब 2 मील दूर जाकर गिरता है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और हादसे की वजह को खंगाला भी जा रहा है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि चारों जो क्रू मेंबर्स हैं वो एग्जिट कर जाते हैं सेफली।
0: अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चार धाम यात्रा।

देवभूमि उत्तराखंड में आस्था भक्ति के अद्भुत रंग के साथ देवभूमि में आस्था और विश्वास का भव्य नजारा भी देखने के लिए मिल रहा है। हर तरफ भक्तों का सैलाब है। चार धाम यात्रा से लेकर पंचकेदार तक भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। गुड न्यूज ये है कि यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और इस साल चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि चारों धामों के कपाट खुलने के एक महीने के भीतर ही दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 15,60,000 के पार पहुंच गया है। देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के इस जबरदस्त उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2026 में देवभूमि में यात्रा इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है और इस कीर्तिमान में कई यात्री हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि देवभूमि केवल चारधाम यात्रा ही नहीं, आदि कैलाश यात्रा से लेकर पंचकेदार तक कई यात्रा चल रही है जिसमें भक्तों में सैलाब उमड़ रहा है। और आज से पंचकेदार में शामिल रुद्रनाथ के कपाट खुल रहे हैं, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह भी है।

0: चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी यात्रा शुरू हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या 15.5 लाख के पार जा पहुंची है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। जबकि अभी तो गर्मी की छुट्टियां करीब करीब बाकी हैं। सबसे पहले बात यमुनोत्री धाम की। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए भक्तों के उमंग का। श्रद्धालुओं का कारवां पड़ता जा रहा है। भक्ति की मस्ती में लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं।
1: बहुत ही सुव्यवस्थित है। पूरी प्रशासन, पूरा कर्मचारियां, निगम को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सभी भक्तों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका सहयोग भी किया है। सभी हमारा 9-10 की टीम है और सब गाजे बाजे के साथ भगवान का भजन करते हैं। बड़े भाव से, आनंद से झूमते हुए आ रहे।
0: यमुनोत्री धाम पहुँचने का मार्ग यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। जिधर देखो उधर श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा है।
1: पूरी तरह से आप ये क्राउड देख सकते हैं किस तरह से जो है तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा यहाँ लगा है। पैदल मार्ग पे तीर्थ यात्री जा रहे हैं और पूरी तरह से जो पगडंडी है वो यात्रियों की संख्या से सराबोर है, यानी कि आने वाले दिनों में और अधिक यात्रियों की संख्या में इजाफा होने वाला है।
0: बद्रीनाथ धाम का नजारा देखने लायक है। धाम के हर कोने में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। इस वीकेंड पर बद्रीनाथ धाम में भीड़ कुछ ज्यादा देखी गई। रोजाना 20,000 से 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
2: बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे उत्साह के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इन दिनों रोजाना 22,000 से 25,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुंच रहे हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं।
0: भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह यात्रा मार्गों पर देखा जा सकता है। गोचर, जोशीमठ, पांडुपेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। धाम में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो रही है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही बाबा केदार के दर पर हो रही है। अगर 17 मई की बात की जाए तो यहां पर 17 मई को 29,370 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का आशीर्वाद दिया और अभी तक 6,35,022 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 17 मई को 19,094 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 4,07,659 श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 17 मई को 15,030 श्रद्धालुओं ने माँ यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,62,275 श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 17 मई को 13,737 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 2,58,716 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर पूर्ण लाभ ले चुके हैं। और अगर चारों धाम की बात की जाए तो अभी तक 15,63,672 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कतार व्यवस्था और श्रद्धालुओं की एंट्री एग्जिट व्यवस्था का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और यमुनोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए बात पंच केदारों में चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम की करेंगे। आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब बाबा रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। इसी के साथ 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान हो गए, लेकिन उससे पहले भक्ति और आस्था का अलौकिक दृश्य देखने को मिला जब भगवान रुद्रनाथ की डोली जो है गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई।

0: हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे। वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप। और भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ आज पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूब गया। अवसर था पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के उत्सव डोली की गरिमामयी रवानगी का।
1: भारतीय सेना की मधुर बैंडों की ध्वनि के बीच हजारों श्रद्धालुओं की संख्या के साथ जो यात्रा है वो पैदल रुद्रनाथ के लिए रवाना हो गई है। लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा एकदम ट्रैकिंग रूट होता है बाबा रुद्रनाथ के धाम जाने को, और मध्य हिमालय में ये मौजूद है बाबा भोलेनाथ का ये धाम।
0: यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान रुद्रनाथ की डोली अपने मूल धाम के लिए रवाना हुई। इस भव्य शोभा यात्रा के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से आए हजारों भक्तों का तांता लगा। बाबा रुद्रनाथ की ये यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही अलौकिक है। जब भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना होती है जो भक्तों में भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है, पूरी घाटी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से बाहर लाया गया था और 16 मई तक गोपीनाथ मंदिर में भक्तों ने रुद्रनाथ भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली मूलधाम के लिए प्रस्थान कर गई। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सबसे दुर्गम पंच केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को शिव के पंच केदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। लेकिन अब ग्रीष्मकाल की शुरुआत के साथ बाबा रुद्रनाथ फिर अपनी हिमालयी चोटियों पर विराजमान होने जा रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वही दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा।

0: पवित्र तीर्थ स्थल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 23 मई का वो शुभ दिन बस आने ही वाला है जब श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।
1: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा, जिसमें महान शख्सियतां उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदघाट 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह पांच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे।
0: ऋषिकेश से गोविंद घाट तक गुरुद्वारों में सजावट के साथ तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुद्वारों में भी सजावट जोर शोर से की जा रही है। हेमकुंड साहिब के रास्तों पर अभी भी बर्फ है और सेना रास्ता बनाने में लगी हुई है। खबर है कि कपाट खुलने के दिन हेमकुंड गुरुद्वारा को 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जो उसी दिन शाम को श्रीनगर गुरुद्वारा पहुंचेगा। अगले दिन 21 मई को श्रीनगर से गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारा से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जिसमें जत्था सिख संगत भी हेमकुंड जाएगा। ये जत्था पहले दिन घंघरिया पहुंचकर विश्राम करेगा और अगले दिन पंच प्यारों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
2: तेईस मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था चलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। पहले दिन श्रीनगर और अगले दिन गोविंद घाट और 21 को जब गोविंद घाट पहुंचेगी तो 22 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं।
0: हेमकुंड गुरुद्वारा में सेवादार पहुंच चुके हैं और तरह तरह से गुरुद्वारा को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हल्की बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है। यात्रा शुरू होते ही बर्फ पिघल जाएगी। यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: वासा उत्सव की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में मौजूद अंबा मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां पर नारियल चोली चूड़ियां चढ़ाकर जो है भक्त मां से सुख शांति की कामना करते हैं। यहां अधिक मास में भगवान विष्णु की विशिष्ट पूजा अर्चना का महत्व है।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु

0: हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदार के दर्शन।

0: पंच केदारों में से चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम के आज से दर्शन 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान।
1: झांसी के स्कॉन मंदिर में नौका विहार महोत्सव का आयोजन। मोर नौका में विराजे श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन जैसी दिव्य छटा देखकर भाव विभोर हुए भक्त।
0: मैदानों की गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहे कश्मीर की ठंडा मौसम। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में मौसम का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक।
1: आज से दिल्ली मेट्रो की बड़ी पहल। बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 फेरे। जरूरत के मुताबिक और बढ़ सकती है सेवाएं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

और अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर भारतीय सितारों का जलवा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरती भी देखने को मिल रही है। भारतीय अभिनेत्रियों और कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों, शाही ज्वेलरी और लुक्स में चार चांद लगा दिए। देखिए 2026 कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने शुरुआत की और उनके बाद से अब अदिति राव हैदरी, हुमा कुरैशी और पंजाबी एक्ट्रेस रूपी गिल ने कान के मंच पर जो है एक अनोखी तस्वीर पेश की है। पंजाबी अभिनेत्री रूपी गिल अपनी फिल्म चाडीकला के लिए कान 2026 में शामिल हुई है और जिसका प्रीमियर जो है 29 मई को भारत में रिलीज होने से पहले कान फिल्म मार्केट में हुआ। वहीं पर देखिए असम की एमी बरुआ ने पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पांचवीं बार कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर वॉक किया। उन्होंने असम की कार्बी जनजाति की पारंपरिक पोशाक पहनी, जो हाथ से बने हुए वस्त्रों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। और ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही, तमाम बॉलीवुड के सितारे पढ़ चढ़कर कान में हिस्सा ले रहे हैं।

0: फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वही अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहाँ चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोला बाला है, वहाँ ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, यह अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देते अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था तब भी वहाँ उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात यह है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: साउथ मूवी में धमाल मचाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान का पारंपरिक भारतीय अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता नजर आया। दिशा ने 80 साल पुरानी विंटेज साड़ियों को आधुनिक कोसेट गाउन में बदलकर रेड कार्पेट पर धूम मचा दी। खूबसूरत ड्रेस के साथ शाही ज्वेलरी और बेहद ही खूबसूरत मेकअप के साथ दिशा ने अपने लुक में भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का शानदार मेल पेश किया।

0: देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में पंजाबी अभिनेत्री रूपी गिल भी पहुंची, जहां पर उनका रेड कार्पेट पर बहुत खास और पूरी तरीके से पंजाबी संस्कृति से प्रेरित लुक नजर आया। उन्होंने पंजाब की कृषि परंपरा को दर्शाते हुए खूबसूरत सूट पहना और जिसमें दो दुपट्टे और गेहूं से प्रेरित सुंदर कारीगरी देखने को मिली। अपने इस एथनिक लुक को उन्होंने पारंपरिक पंजाबी आभूषणों के साथ पेयर किया था कान के रेड कार्पेट पर। रूपी गिल का ये जो अंदाज है वो भारतीय है। खासतौर पर अगर हम देखें तो पंजाबी संस्कृति की मिट्टी की खुशबू और विरासत को दुनिया के सामने खूबसूरती से पेश करता हुआ नजर आया। रूपी गिल अपनी फिल्म चर्दी कला के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई हैं। फिल्म का प्रीमियर जो है 29 मई को भारत में रिलीज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कान फिल्म मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। तस्वीरें देखिए।
1: बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो दो बड़े सितारों की, दो बड़ी फिल्मों का टकराव अब टल गया है। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की। खबर है कि अक्षय और अजय देवगन ने बातचीत कर अपनी इस टकराव को टाल दिया है। धमाल 4 अब 4 जुलाई की जगह 17 जुलाई को रिलीज होगी, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होगी।
2: गोलमाल के गोपाल यानी अजय देवगन और दूसरी तरफ फेरा फेरी के राजू यानी खिलाड़ी अक्षय कुमार, यानी कॉमेडी का महाडोज तय है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं। एक की सीरियस एक्टिंग और दूसरे की दर्शकों को लोट पोट कर देने वाली जबरदस्त एक्टिंग। और जब बात बॉक्स ऑफिस पर दोनों सितारों की फिल्मों के क्लैश की हो तो मौका दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। 2026 में फैंस को ऐसी ही दो ब्लॉकबस्टर फैमिली एंटरटेनर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय कुमार के साथ लंबी चौड़ी स्टारकास्ट वाली वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन की धमाल 4 लोगों को दोनों ही फिल्मों का इंतजार है। हालांकि माना यह जा रहा था कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देंगी। खबरें थी कि ये दोनों ही मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में जुलाई की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी, जिससे दोनों के बिजनेस पर असर पड़ना तय था। लेकिन अब इस महाटकराव को बेहद समझदारी से टाल लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच इस क्लैश को लेकर सीधी बातचीत हुई, जिसके बाद अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। धमाल 4 अब तक 4 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को ही रिलीज हो रही है। दरअसल दोनों ही सितारे अच्छे दोस्त हैं और दोनों खुद प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर फिल्म को खुलकर सांस लेने के लिए स्पेस मिलना कितना जरूरी है। हालांकि दोनों ही फिल्में कॉमेडी जॉनर की हैं और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। अजय की धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी के ओरिजिनल पलटन मौजूद है, तो वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी समेत कई बड़े सितारे मौजूद हैं। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती हैं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि गर्मी के मौसम में दोनों ही फिल्में हंसी का तड़का दोगुना करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर को भारतीय सेना की मानद सदस्यता दी गई और उन्हें ये मानद सदस्यता दिग्गज 45 कैवलरी रेजिमेंट ने दी है। ये सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है और इसे बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। ईशान खट्टर ने इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके बाद उनके फैंस और फिल्म जगत के लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें, सेना की मानद उपाधि 45 कैवलरी रेजिमेंट की तरफ से। ईशान ने देखे सोशल मीडिया पर ये फोटो और वीडियोज भी शेयर किए हैं और सेना की मानद अधिकारी बने आप ईशान खट्टर, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सम्मान होता है और उसी की तस्वीरें ये उन्होंने अपने पर्सनल प्रोफाइल में शेयर।
1: अब आपको लिए चलते हैं आईपीएल के मैदान में, जहां पर आज आईपीएल में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पिछली चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेऑफ के लिहाज से दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला काफी अहम है। चेन्नई फिलहाल पॉइंट्स टेबल में छठे और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। चेन्नई को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी। वैसे दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मैच हुए हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 और सनराइजर हैदराबाद ने 8 मैच जीते हैं। वही इस सीजन हैदराबाद में खेला गया पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था।
0: तो देखिए आरसीबी ने पंजाब को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ इस सीजन प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली आरसीबी पहली टीम भी बन गई है। वहीं पर देखिए पंजाब किंग्स की लगातार छठी हार भी साबित हुई। आईपीएल में ये 11वां मौका है जब आरसीबी प्लेऑफ में पहुंची है, लेकिन इसी के साथ बेंगलुरु की इस विराट टीम ने मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आपको बता दें इस सीजन से अगर हम देखें तो ये डिफेंडिंग चैंपियन की कुल 9वीं जीत है और आरसीबी 18 पॉइंट्स के साथ फिलहाल पॉइंट्स टैली पर राज कर रही है, टॉप पर बनी हुई है। देखिए प्लेऑफ में अब आरसीबी पहुंच गई है, हम आपको बता दें, और उसी के साथ टॉप पर भी अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो बनी हुई है, 18 पॉइंट्स भी इसके साथ हासिल हो गए हैं। और बेंगलुरु की इस विराट टीम ने जो है मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की।

0: बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के देवास में कई जगहों पर कम लागत वाला मिस्ट टावर स्थापित कर दिया गया है, जिससे निकलने वाली महीन पानी की फुहार जो है आसपास के तापमान को कम करने में मदद करती हैं। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हो रहा है। वहाँ पर देखिए सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और जिससे हीटवेव में लोगों को ठंड का थोड़ा एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में लू चल रही है, राहगीरों को कोई परेशानी ना हो ऐसे में व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में बांस से बनी एक कैंटीन महिला सशक्तिकरण की कहानी बयां कर रही है। स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे बांस से बनाया गया है और इसके संचालन की जिम्मेदारी जो है स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है, जो आज जंगलों के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल बनके अपनी कहानी खुद लिख रही है।
1: जंगलों के बीच महिलाओं ने लिखी है आत्मनिर्भरता की नई कहानी और महिलाओं की इस कहानी का नायक है कान्हा टाइगर रिजर्व में सरही गेट पर बना बांस का ये कैंटीन। कान्हा टाइगर रिजर्व देखने आने वाले पर्यटक यहां बने इस बांस की कैंटीन से पारंपरिक स्वाद लेकर लौटते हैं। मंडला में बांस का ये कैंटीन स्व सहायता समूह की महिला चला रही है। कैसे ये कैंटीन यहाँ पारंपरिक स्वाद को तो बरकरार रखे हुए ही है, महिलाओं के लिए आजीविका का जीवंत साधन भी बन गई है।
2: हमने इको टूरिज्म बोर्ड से राशि प्राप्त करके एक बांस से निर्मित स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक कैंटीन बनवाई, जिसमें महिलाएं अब जो लोकल यहाँ की जो खाने के जो व्यंजन है वो परोसती हैं, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुलगुले हैं, फिर आपके बड़ा है और इस तरह के अन्य भी जो लोकल खाने वाले व्यंजन हैं वो परोसे जाते हैं, जिसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है।
1: महिलाएं खुद मानती हैं कि बांस के इस कैंटीन ने उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।
3: 2020 से हम लोग सर यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में काम करते है। 2 साल तो बहुत सी समस्या था सर हमें हमारे कैंटीन में, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं सर बाहर से, अरिया काम किए हैं सर, कोदो कुटकी खाना वाले काम, तो बहुत सर अभी हमारा आमदनी बढ़ रहा है।
1: यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच बांस के ये कैंटीन अपनी संरचना की वजह से तो आकर्षण का केंद्र बन ही चुकी है। पर्यटक यहाँ के पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लेने में भी रुचि दिखा रहे हैं। जाहिर है कि ये पहल महिलाओं की एक सत आजीविका के अवसरों के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। साथ ही ये पहल पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने में सहायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों के इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने कूदकुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: के कमाया जिस शान से उसी शान से उड़ाया भी, नोटों में हमने कभी रबर नहीं बांधी।
5: तो है भैया रबर कहीं नहीं बांधी यार,
4: अब एक नोट में कहाँ रबर बांधी।
6: अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी ना?
7: मैंने खुदकुशी की थी।
6: अच्छा क्या क्या बोला तुमने?
7: खुद की खुशी से की थी, मैंने खुद की खुशी से शादी की थी ये कह रहा था हम।
6: की खुशी से?
7: पक्का यही? मैं यही तो बहुत खुश था जब शादी हुई थी, मुझे बहुत खुशी थी।
8: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
0: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: पंच केदारों में से चतुर्थ केदार बाबा रुद्रधाम के आज से दर्शन, 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान। चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन। झांसी के स्कॉन मंदिर में नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराजे श्री श्री राधा गोविंद, वृंदावन जैसी दिव्य छटा देख भावभोर हुए भक्त। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का ठंडा मौसम, गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। आज से दिल्ली मेट्रो की बड़ी पहल, बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 फेरे, जरूरत के मुताबिक और बढ़ सकती है सेवाएं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज के दिन किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मई 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:05 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं, अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो किसकी पूजा करेंगे। मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य देव की अगर आप नियमित उपासना करें तो आपका नाम और यश बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कैसे करेंगे। रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। जल में जरा सी रोली यानी कुमकुम मिला लीजिएगा और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तब लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक लगाएंगे। ऐसा रोज अगर आप करना शुरू करें तो आपको जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के अपयश से और किसी भी तरह की बदनामी से आपकी रक्षा होगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तमाम प्रयास करता हूं लेकिन मुझे जीवन में यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को बताए गए तरीके से जल अवश्य देना चाहिए। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार की चिंता दूर होगी।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं विवाह की। शीघ्र विवाह हो जाए इसके लिए किस देवी देवता की पूजा करेंगे? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। कैसे करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता दुर्गा के सामने बैठें, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को जो पुरुष हैं वो लाल फूल अर्पित करेंगे और स्त्रियां यानी बालिकाएं सिंदूर चढ़ाएंगी। और इसके बाद देवी का जो मूल मंत्र है, ओम दूं दुर्गाय नमः, ओम दूं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 3 माला तो करिएगा ही। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 3 महीने तक करें। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाए। शुरू करें लगातार 3 महीने तक करें। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की पूजा करेंगे? नौकरी पाने के लिए और नौकरी चलाने के लिए दोनों मामलों में भगवान शनि की पूजा करिएगा। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिएगा। सूर्योदय के पहले एक लोटा जल पीपल की जड़ में डालिएगा शनिवार को, और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के बाद संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास ही शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लें, शनि देव के मंत्र का जप कर लें, तो रात में काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइएगा, खाइएगा और लोगों को खिलाइएगा। ऐसा लगातार शनिवार के शनिवार अगर आप करें तो आपके लिए नौकरी पाना भी आसान होगा और आगे नौकरी करना, नौकरी में सफलता पाना भी सरल होगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसाय में, व्यापार में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। अपने व्यापार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करें। जब आप अपने कारोबार में काम शुरू करते हैं उसके पहले एक रूई में गुलाब का इत्र लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करिए और इसके बाद वही इत्र स्वयं लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
अगर आपकी कुंडली में जीवन या आयु पर संकट की स्थिति बनी हुई है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवी देवता की पूजा करें। देखिए, अगर आयु पर संकट है या अल्प आयु के योग हैं तो आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें, और रोज पंचामृत अर्पित ना कर पाए तो सोमवार को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उनको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आप नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जप शिव मंदिर में ही करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। देखिए, जिस दर्पण में, जिस आईने में आप चेहरा देखते हैं, आईने को हमेशा साफ रखिए। जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं अगर वो गंदा है तो अच्छा नहीं होगा। गंदे आईने में चेहरा देखने से बचना चाहिए। अगर आप गंदे आईने में, गंदे मिरर में चेहरा देखेंगे तो ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होगा। तो जिस शीशे में या दर्पण में चेहरा देखते हैं उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि रोज के आपके काम में आपको सफलता मिले, रोज आपका करियर अच्छा रहे, तो क्या करेंगे? अपने काम करने के स्थान पर काम शुरू करने के पहले उस स्थान को नमस्कार करें, इसके बाद काम शुरू करें। काम उत्तम होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर बैठकर काम करते हैं, वहां बैठने के पहले, शुरुआत के पहले भगवान का स्मरण करके, नमस्कार करके बैठ के काम शुरू करिए, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

एक कथा हमें याद आ गई, कहो तो सुनाए, जरा जोर से बोलो ना। वृंदावन के पास एक लड़की का जन्म हुआ, उसका नाम लक्ष्मी था। गरीब घराने में जन्म हुआ, बचपन से ही बड़ी गरीब थी, माताजी मर गई बचपन में ही, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। ब्रज की बात है, वृंदावन से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर की बात है। अब जो दूसरी मां आई सौतेली मां, वो बड़ी खतरनाक थी, रोज डांट लगावे, कम भोजन देवे। गांव में एक बार भागवत हुई, लक्ष्मी की आयु 8 साल की थी, वो भागवत सुनने गई। वहां पंडित जी ने भागवत में सुनाया कि यदि कोई भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, नाता जोड़ ले, तो भगवान निभाते हैं। उसने सोचा कि हम भगवान से क्या नाता बनाएं, तो एक छोटे से बाल मुकुंद जी लेके आई। गांव के लोग वृंदावन जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, बातें बताते थे, बांके बिहारी ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, पूर्णमासी को भगवान ऐसे लग रहे थे। तो गांव की माताएं जाती थी तो बताती थी, पर ये जा नहीं पाती थी क्योंकि सौतेली माँ बहुत खतरनाक थी, बहुत गाली बकती। लेकिन इसको वृंदावन से ना प्यार हो गया, बांके बिहारी से प्रेम हो गया। इसने छोटे से बाल मुकुंद जी घर पे रख लिए और उनको ना अपने भाई के रूप में देखने लगी। भैया हैं हमारे, भैया हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बना लिया। बहुत दिनों तक रोज सोवे तो ठाकुर जी को सुलावे, जो कुछ खावे सो चुपके से ठाकुर जी को भोग लगा देवे, ताकि घर के माता जी को, जो सौतेली माँ है, उसको पता ना लग जाए, नहीं तो वो गाली बकेगी, पूजा नहीं करने देगी। भगवान की कृपा, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, कभी वृंदावन जा तो नहीं पाई, लेकिन पिता ने जब देखा कि उम्र बड़ी हो गई, बेटी का विवाह करना है, भगवान की कृपा से उसकी शादी वृंदावन में ही तय हो गई। आहा, वृंदावन में तय हुई। अब तो ये इतनी खुश, ठाकुर जी को लेकर रोवे अकेले, प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है, माता जी तो बचपन में मर गई, भाई कोई हमारा है नहीं, सौतेली मां प्रेम नहीं करती, पिता हमारी तरफ ठीक से देखता तक नहीं, पर आपने बहुत कृपा की, हमारा विवाह अपनी नगरी में तय करवा दिया। ठाकुर सच बतावे, हमने 8 साल पहले कथा में सुना था कि तुम संबंध निभाते हो, आज हमने देख लिया तुम सच में निभाती हो। आंखों में आंसू लेकर रोने लगी, झरझर नैनों से नीर बहने लगे लक्ष्मी बिटिया के। धीरे धीरे शादी का समय आया, वृंदावन से बारात आई, धूमधाम से विवाह हुआ। और पहली बार वृंदावन गई तो पहली बार तो बड़ी धूमधाम से बैलगाड़ी से गई, लेकिन 4-5 दिन का मुहूर्त था, पुराने जमाने में मुहूर्त चलते थे, 4-5 दिन का मुहूर्त था तो

पति पैदल ही पत्नी को ले जाने लगा कि चलो। तो मायके से विदा हुई, गांव वालों ने थोड़ी पूड़ी बना दी खाने के लिए, सामान का रास्ता के लिए भोजन बना दिया, नाश्ता बना दिया। पति ने पेटी उठाई, पोटली उठाई कपड़ों की, आगे आगे पति पीछे पीछे ये पति के चिन्हों को देखती हुई चलने लगी। लंबा घूंघट डाले, ब्रिज में घूंघट की बहुत बड़ी प्रथा है, तो लंबा घूंघट डाले। और पति ने कहा सुन, यहां मेरे सब जानने वाले रहते हैं, तू मुंह मत निकालना वरना लोग कहेंगे कैसी बहू है। जी महाराज, जो आज्ञा स्वामी जी। यमुना के किनारे वृंदावन पहुंच गए। यमुना के किनारे वृंदावन में जब जैसे ही बैठे तो पति ने कहा कि शाम होने वाली है, मैं जरा जमुना जी नहा लूं, तू थोड़ी देर यहीं बैठना, फिर मैं साथ में ले चलूंगा, जो आज्ञा महाराज। तो पति तो नहाने चला गया, लेकिन भैया ये तो सीधी साधी बैठ गई। इतने में एक छोटो सो छोरा, भागो भागो आओ, और इसको धक्का देकर के बोलो भाभी तू अपनो मुंह ना दिखाएगी का। इसको लगा कोई गांव का बालक होगा, गांव का छोरा होगा, बेफिजूली में हमें तंग करने आ गया। तो इसने जोर से अपना घूंघट पकड़ लिया और अंदर से कहा अब वो छोटो सो छोरा इतनो चंचल, वो बालक इतनो चंचल कि जाको पल्लू ऐसो पकड़ के खींच के भाभी को मुंह देखवे के लाने, नीचे तो ऐसो मुंह डाल लो। और नीचे तो मुंह डाल के बोलो अरे भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे, और ऐसो कह के वो छोरा भाग गो। अब ये बड़ी परेशान, इतने में पति आ गया। क्या हुआ? इसने कहा कोई छोटा सा छोरा है 8 साल का, वो आके कह रहा था कि भाभी तू अपनो मुंह दिखा, मैंने जब मना कर दी तो जबरदस्ती मेरो पल्लू उगाड़ करके मेरो मुंह देख करके गाओ, कह रहो भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे। तो पति यहां वहां देखने लगा कौन छोरा है कैसा दिखता है। बोले ठीक से तो नहीं देख पाई, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल थोड़ा घुंघराले हैं। अच्छा हाँ, पर चिंता मत कर, पत्नी से कहा पति ने, वृंदावन थोड़ी बड़ो है, बताना कौन है, सारी की कान कुच्ची करेंगे कान पकड़ के, देखेंगे कौन है, वृंदावन बड़ो थोड़ी है, काबूदन तो पकड़ो ही जाएगो, जैसे ही दिखाई देवे सोई बताना हमें। अब पत्नी कहा ठीक है चलो महाराज। दोनों घर आए, पत्नी रात को पति से बोली स्वामी दूसरी बार आ गए हम, अब तक बचपन से ठाकुर जी के दर्शन ना करे बांके बिहारी के। पति बोला कल ही चल तैयारी कर ले। रात को उसने खोवा उठा, खोवा के पेड़ा बनाए, पूरी रात आज जगती रही, कल ठाकुर जी के दर्शन होंगे। घूंघट लंबो डालकर बांके बिहारी के मंदिर में गई तो पति ने धक्का दे के कहा बाबरी यहां भी घूंघट डाले रहेगी क्या, मुंह उघाड़ जरा देख ठाकुर को, बांके बिहारी जी को देखो कितने प्यारे लग रहे, आज कितने मलूक लग रहे अपने ठाकुर जी। और भैया जैसे ही बाने घूंघट उठाओ और देखते ही सोई चौंक गई। पति बोलो का भयो का भयो, ये चिल्ला करके हाथ ऐसो उठा करके बोली स्वामी जी यही तो वो छोरा है जो बादन हमारो घूंघट उठा करके भागो थे, यही तो है वो जो उस दिन हमारा घूंघट उठाकर भागा था। और इतना कहकर के रोने लगी, फूट फूट रोने लगी, आंखों से अश्रु धार बहने लगी, पति की भी नैनों में आंसू आ गए। पत्नी को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके कहा अरे बाबरी तू धन्य है, तुझे बांके बिहारी ने दर्शन दे, मेरा तो वृंदावन में जन्म भो, पर आज तक जे हमको एक बार नहीं दिखो, पर तू धन्य है पहली बार ही वृंदावन आई है ठीक से, और तुझे ठाकुर के दर्शन हो गए, धन्य है तू धन्य है तू धन्य है। नैनों से खूब जल बहने लगा, दोनों पति पत्नी रोने लगे। वहीं बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अब आज के बाद जीऊंगी तो कन्हैया के लिए, मरूंगी तो कन्हैया के लिए। भैया इस कथा का आशय हम ये कहना चाहते, तुम यदि हनुमान जी से नाता जोड़ लोगे, रघुनाथ जी से नाता जोड़ लोगे, हमारे ठाकुर जी से नाता जोड़ लोगे, हम वचन देकर कह रहे श्रोताओ दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम दुनिया के भरोसे रहना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है।

गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है। तुम दुनिया की चमक में मत रहना, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। आम गांव के पागलों और समस्त सनातनियों से हम प्रार्थना करना चाह रहे, हमसे कोई पूछे कि सच्चा साथी कौन है, हम दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी जैसा कोई दूसरा सच्चा साथी नहीं है। हनुमान जी के जैसा दूसरा कौन होगा, उनके तुम चरण पकड़ लो, उनसे अपना नाता जोड़ लो, उनसे अपना संबंध जोड़ लो, राम जी से अपना नाता जोड़ लो। एक भजन हमें याद आ गया, कहो तो सुनाए। ठाकुर जी राम जी से सखियां गा रही, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। एक भजन बड़ा अच्छा है, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। कौन कौन राम जी के चरणों में जीवन भर रहना चाहता है,

राम जी से कौन कौन प्रेम करता है? एक बात बोले भैया, कह दो बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। भजन भले ही कम करना पर भरोसा ज्यादा करना। किस पर? अरे बोलो ना। भजन भले ही कम करना पर भरोसा ज्यादा करना। किस पर? राम जी पर। इसलिए दोनों हाथ उठा के

कौन पंडरीनाथ भगवान को प्रेम करता है, विठल नाथ जी का पागल कौन कौन बैठा है, बोल छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। दोनों हाथ

एक बात बोले कह दो बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। प्रेमी वो नहीं है जो कुछ दे, प्रेमी वो नहीं है गिफ्ट में कुछ दे, प्रेमी तो वो है जो खुद को ही दे दे। जो बाहर खड़े हुए दोनों हाथ उठा के पागलो।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है, और मौसम विभाग की अगर माने तो 23 मई तक कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून 26 मई को केरलम में दस्तक दे सकता है।
12: चक्रवातीय गतिविधियों में कमी आने के बाद अब देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ने लगा है और तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी का असर अब जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो राजस्थान में गर्मी के चलते पारा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गंभीर गर्मी को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय मौसमी कारक हैं। केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थीं, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्मी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं और साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विभाग ने उत्तर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है और ये भी कहा है कि फिलहाल लोगों को लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों जिनमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि राजस्थान में 23 मई तक लू चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 18 से 23 मई तक तापमान में तेजी आने की आशंका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 मई तक लू चलने की उम्मीद है।
7: आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर मौसम जो है वो मुख्यतः साफ रहेगा, जिस कारण टेम्परेचर जो है वो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है उसके अंदर बढ़ोतरी महसूस की जाएगी और इन सबके होते हुए हीट वेव का प्रकोप भी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो देखा जाएगा, जैसे कि ग्वालियर चंबल के रीजन है, खजुराहो, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जैसे जिले हैं, उधर विदिशा, सागर, उज्जैन, रतलाम आदि की जो बेल्ट है, जबलपुर, नरसिंहपुर और दमोहा की जो बेल्ट जो है उसके अंदर हीट वेव का प्रकोप जो है वो आगे वाले 4-5 दिनों के अंदर जो है वो फिलहाल अभी जारी रहने की उम्मीद है।
12: पूर्वोत्तर भारत यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में 23 मई तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि 16 मई को ही मानसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पूरे निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम समेत अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की सभी आवश्यक परिस्थितियां अनुकूल हैं और उम्मीद है कि मानसून 26 मई की सुबह तक केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
11: बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े सितारों की दो बड़ी फिल्मों का टकराव अब टल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन की स्टार फिल्म धमाल 4 की। खबर ये निकल कर आई है कि अक्षय और अजय देवगन ने बातचीत करके अपनी इस टकराव को टाल दिया है। धमाल 4 अब 4 जुलाई की जगह 17 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होगी।
13: एक तरफ गोलमाल के गोपाल यानी अजय देवगन और दूसरी तरफ हेरा फेरी के राजू यानी खिलाड़ी अक्षय कुमार, यानी कॉमेडी का महाडोज तय है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं। एक की सीरियस एक्टिंग और दूसरे की दर्शकों को लोट पोट कर देने वाली जबरदस्त एक्टिंग। और जब बात बॉक्स ऑफिस पर दोनों सितारों की फिल्मों के क्लैश की हो तो मौका दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। 2026 में फैंस को ऐसी ही दो ब्लॉकबस्टर फैमिली एंटरटेनर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय कुमार के साथ लंबी चौड़ी स्टारकास्ट वाली वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन की धमाल 4 लोगों को दोनों ही फिल्मों का इंतजार है। हालांकि माना यह जा रहा था कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देंगी। खबरें थी कि ये दोनों ही मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में जुलाई की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी, जिससे दोनों के बिजनेस पर असर पड़ना तय था, लेकिन अब इस महाटकराव को बेहद समझदारी से टाल लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच इस क्लैश को लेकर सीधी बातचीत हुई, जिसके बाद अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। धमाल 4 अब तक 4 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को ही रिलीज हो रही है। दरअसल दोनों ही सितारे अच्छे दोस्त हैं और दोनों खुद प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर फिल्म को खुलकर सांस लेने के लिए स्पेस मिलना कितना जरूरी है। हालांकि दोनों ही फिल्में कॉमेडी जॉनर की हैं और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। अजय की धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी के ओरिजिनल पलटन मौजूद है, तो वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी समेत कई बड़े सितारे मौजूद हैं। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती हैं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि गर्मी के मौसम में दोनों ही फिल्में हंसी का तड़का दोगुना करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: नाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: Sage University, transforming your passion into profession.
17: नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 मंत्रियों के साथ विधि सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ. कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल प्रियंका और खड़गे. पंच केदारों में से चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम के आज से दर्शन. 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान. चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी. 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या. 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन. झांसी में स्कॉन मंदिर में नौका विहार महोत्सव का आयोजन. मोर नौका में विराजे श्री श्री राधा गोविंद. वृंदावन जैसी दिव्य छटा देख भाव विभोर हुए भक्त. रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा शानदार नजारा. अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखी जंगली हाथी. वन्य जीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा. मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का ठंडा मौसम. गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्र उच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए आज खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। बम बम बोले के जयकारों उसके साथ गूंजेगा धाम। फूलों से किया गया धाम का भव्य श्रृंगार, इस पावन अवसर पर उमड़ी शिव भक्तों की भारी। लगभग 6 महीने खुला रहता है ये मंदिर। शीतकालीन में अत्यधिक ठंड के कारण सर्दियों में गोपीनाथ मंदिर में होती है रुद्रनाथ की पूजा। यात्रा के दौरान पन्नार और ल्यूटी जैसे मखमली बुग्यालों और घने जंगलों से होकर करीब 20 से 22 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हैं श्रद्धालु, जहां से नंदा देवी और त्रिशूल जैसी विशाल चोटियों के होते हैं भव्य दर्शन। उत्तराखंड के पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ। यहां पर भगवान शिव के स्वयंभू मुख की पूजा नीलकंठ महादेव के रूप में की जाती है। चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदार यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड, 1 महीने में कम से कम समय में 6 लाख से अधिक यात्री पहुंचे। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर कर रहे बाबा के दर्शन, यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा जवान किए गए तैनात। केदारनाथ धाम यात्रा में आ रहे भक्तों के स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है खास ध्यान, अलर्ट मोड पर मेडिकल टीम। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मौजूद, अब तक 30 यात्रियों को दी गई है सुविधा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ। इन दिनों रोजाना 19,000 से 25,000 तक श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं, अब तक 4 लाख भक्तों ने किए दर्शन। गोचर, जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें, पैदल भी यात्रा कर रहे हैं कई श्रद्धालु। वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन करने में हो रही आसान। रात में बढ़ती ठंड के बीच इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़ों के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई, मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद। 23 मई से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, 22 मई को पंच प्यारे गोविंद घाट से होंगे हेमकुंड साहिब रवाना। गुरुद्वारे में भी जोर शोर से की जा रही है सजावट, कपाट खुलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा हेमकुंड गुरुद्वारा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह से दुरुस्त कर चुकी है सेना, यात्रा शुरू होते होते पिघल जाएगी बर्फ। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था होगा रवाना, जो श्रीनगर होते हुए 21 मई को गोविंद घाट पहुंचेगा। मई को गोविंदघाट गुरुद्वारे में पहली अरदास के साथ घंघरिया के लिए कूच करेगा जत्था, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद 23 मई की सुबह कपाट खुलने के ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। झांसी के इस्कॉन मंदिर में भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराजे श्री राधा और गोविंद। नौका विहार के साक्षी बने हजारों भक्त, हरे कृष्ण के महामंत्र से भक्तिमय हो उठा पूरा माहौल। दीप से किया गया मंदिर का श्रृंगार, श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का किया गया वितरण। कृष्ण पर बनी राधा कृष्ण की रंगोली भी श्रद्धालुओं के लिए बने आकर्षण का केंद्र, भजन और प्रेरणादायक प्रवचनों ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। का विहार समारोह को भक्तों ने बताया वृंदावन की दिव्य अनुभूति, रोजाना रात 9:30 से 10 बजे तक होगा आयोजन। उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अनुसार रोजशाला में वागदेवी की पूजा पाठ का दौर जारी, स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी किया सरस्वती वंदना। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री वंगलपुड़ी अनीता, किया दर्शन पूजन। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन, सांसद हेमा मालिनी ने किया शुभारंभ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत कम करने को लेकर नया मेमोरेंडम किया जारी, अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश। दिल्ली में अब पहले से ज्यादा मेट्रो चलाए जाने की तैयारी, सोमवार को कामकाजी लोगों की भारी भीड़ देखते हुए दिल्ली मेट्रो आज से चलाएगी अतिरिक्त ट्रेन। नई योजना के मुताबिक डीएमआरसी हर सोमवार चलाएगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें, जिनकी मदद से रोजाना 24 से ज्यादा चक्कर लगाएगी मेट्रो। सुरक्षा और सुविधा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज करेंगे मेट्रो से यात्रा, आईटीओ मेट्रो स्टेशन से शुरू होगी उनकी यात्रा। मेरा भारत मेरा योगदान और मेट्रो सोमवार अभियान के तहत होगी सीएम की ये यात्रा, सार्वजनिक परिवहन तथा ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य। स्वीडन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मान। किसी विदेशी देश से मिला ये पीएम का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, सम्मान के लिए उन्होंने स्वीडन का जताया आभार। सामुदायिक स्वागत समारोह के दौरान बंगाली संस्कृति से हुआ पीएम का स्वागत, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट। पीएम मोदी ने कहा बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय है, स्वीडन भी इससे अछूता नहीं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगा फैसला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। भुवनेश्वर में पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, नगर निगम पेड़ों पर लगा रहा है आर्टिफिशियल घोंसले। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखी जंगली हाथी। वन्यजीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा, बच्चों के साथ खेलते हुए हाथीनी की तस्वीर कैमरे में कैद। जम्मू के ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने राजौरी जिले में स्थित निलंबन गांव का किया दौरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। आईपीएल में अब प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को ये मुकाबला जीतना जरूरी। इस सीजन में शुरुआती 3 मुकाबले हारने के बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी है, 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ टीम अंक तालिका में 6 स्थान पर बनी हुई है। हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 7 जीत हासिल कर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर, चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर हैदराबाद अपने प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना को और मजबूत कर लेगी। दोनों टीमों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला भारी रहा, अब तक खेले कुल 24 मैचों में चेन्नई ने 16 मैचों में जीत हासिल की, वहीं सनराइजर हैदराबाद को 8 मैच में सफलता मिली।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से।

0: काम
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: Join SRM ISC Ghaziabad campus. Visit srmup.in.
1: केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 मंत्रियों के साथ विधि सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ. कार्यक्रम में शामिल हुए प्रियंका, राहुल और खड़गे. पंच केदारों में से चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम के आज से दर्शन. 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान. चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी. 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या. 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए केदारधाम के दर्शन. झांसी के इस्कॉन मंदिर में नौका विहार महोत्सव का आयोजन. मोर नौका में विराजे श्री श्री राधा गोविंद. वृंदावन जैसी दिव्य छटा देखकर भाव विभोर हुए भक्त. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा शानदार नजारा. अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखे जंगली हाथी. वन्यजीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा. मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का ठंडा मौसम. गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी.

स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में स्थित पंचकेदार धाम की महिमा और अनोखी तीर्थ यात्रा की कहानियां। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज पंचकेदारों में से एक रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और आज से ही हिमालय की चोटियों के बीच विराजमान बाबा रुद्रनाथ के धाम के दर्शन शुरू हो जाएंगे। रुद्रनाथ को पंचकेदार में चतुर्थ केदार माना जाता है। साथ ही पंचकेदार में प्रथम केदार बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट 22 अप्रैल को ही खोल दिए गए, जबकि तृतीय केदार के रूप में पूजे जाने वाले बाबा तुंगनाथ के धाम के कपाट भी 22 अप्रैल को खुले। वहीं द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट 21 मई को खोले जाएंगे और पंचकेदार में पांचवा धाम कल्पेश्वर ऐसा है जहाँ पर साल भर हमेशा महादेव के दर्शन होते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ धाम की बात करते हैं, क्योंकि आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब बाबा रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। इसी के साथ 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से अपने ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले भक्ति और आस्था का अलौकिक दृश्य देखने को मिला जब भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई है।

0: हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे, वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप। और भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के सैलाब में डूब गया। अवसर था पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली की गरिमामयी रवानगी का। यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान रुद्रनाथ की डोली अपने मूल धाम के लिए रवाना हुई। इस भव्य शोभा यात्रा के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से आए हजारों भक्तों का तांता लगा। बाबा रुद्रनाथ की ये यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही अलौकिक है। जब भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना होती है, जो भक्तों में भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है, पूरी घाटी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ संक्रांति पर विग्रह को गर्भगृह से बाहर लाया गया था और 16 मई तक गोपीनाथ मंदिर में भक्तों ने रुद्रनाथ भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली मूलधाम के लिए प्रस्थान कर गई। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सबसे दुर्गम पंच केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। लेकिन अब ग्रीष्मकाल की शुरुआत के साथ बाबा रुद्रनाथ फिर अपनी हिमालयी चोटियों पर विराजमान होने जा रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देवभूमि उत्तराखंड, जहां की हवाओं में शिव का नाम गूंजता है और पत्थरों में भी आस्था बसती है, वहीं हिमालय की गोद में 5 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मिलकर बनता है पंच केदार। यहां पर भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। भगवान शिव के 5 ऐसे धाम जहां पर साक्षात उनके शरीर के अंगों की पूजा की जाती है। इस पावन सफर की शुरुआत केदारनाथ धाम से होती है, जिसे पंच केदार के पहले धाम की मान्यता है।

0: देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ की हवाओं में शिव का नाम है, जहाँ की फिजाओं में हर हर महादेव की गूंज है और जहाँ पत्थरों में भी आस्था बसती है। ऊंचे बर्फीले शिखर, मखमली घास के मैदान और मीलों लंबी पैदल डगर, ये रास्ता जाता है महादेव के उन पांच धामों की ओर जिन्हें दुनिया पंच केदार के नाम से जानती है। पंच केदारों में प्रथम है केदारनाथ, जहां भगवान शिव की पीठ के हिस्से की पूजा होती है। दूसरा है मध्य महेश्वर, जहां शिव जी के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तीसरा केदार है तुंगनाथ, जहां शिव जी की भुजा की पूजा होती है। और चौथे केदार रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है। जबकि पांचवा केदार है कल्पेश्वर, जहां शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। इन पांच कड़ियों से जुड़कर बनती है शिव की वो माला, जिसे पहनकर हिमालय धन्य हो जाता है।
1: पांच केदार के पांच धाम केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के पांच दिव्य स्वरूप और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक माने जाते हैं। बात करें केदारनाथ मंदिर की, तो केदारनाथ में भगवान शिव की कुबड़ यानी पीठ की पूजा होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता यह है कि दर्शन करने से व्यक्ति को भारी कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और केदारनाथ शिव के वैराग्य, तप और रौद्र रूप के प्रतीक माने जाते हैं।
0: मान्यता है कि इनके दर्शन से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। पंच केदार का शास्त्र में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ के दर्शन करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भक्त पंच केदार के दर्शन करने की इच्छा मन में जरूर रखते हैं। पंच केदार अर्थात केदारनाथ से कल्पेश्वर तक की ये यात्रा केवल पर्वतों की नहीं बल्कि आत्मा की है। शिव के पांच रूप, पांच मंदिर और एक ही संदेश, भक्ति, विनय और मोक्ष। पंच केदार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक, महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या करने के चलते गोत्र हत्या का पाप लग गया था। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी के दर्शन करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव इस युद्ध के कारण पांडवों से नाराज थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में शिव जी अंतर्धान हो गए और बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उस बैल की पीठ पकड़ ली। तब भगवान शिव के शरीर के पांच हिस्से पांच अलग अलग दिशाओं में प्रकट हुए। केदारनाथ में शिव की पीठ का भाग उभरा तो मद महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं पांच स्थानों को आज हम पंच केदार के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ को मिलाकर इन सभी स्थानों को पंच केदार कहा जाने लगा, क्योंकि इन्हीं पांच स्थानों पर भगवान शिव ने अपने दर्शन पांडवों को दिए थे, जिससे पांडव पाप से मुक्त हुए।
2: जब पांडव युद्ध जीत गए और उनके ऊपर अपने गोत्र बधी का यानी कि गोत्र में हत्या करने का जो दोष लगा, वो ढूंढने लगे कि किस प्रकार से हमें इस दोष से मुक्ति मिले, जो हमारे भाइयों के हत्या का दोष है, जो हमारे ऊपर पाप लगा है, इस किस प्रकार से मुक्ति हो। इस खोज में पांडव भगवान शिव के पास जाना चाहते थे कैलाश पर्वत पर, लेकिन भगवान शिव पांच पांडवों से क्रोधित थे, नाराज थे, वो मिलना नहीं चाहते थे। जैसे ही पांडव भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया, उन्होंने वृषभ का रूप धारण कर लिया यानी बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ है। जैसे ही भगवान को पकड़ना चाहा, भीम ने भगवान के पीछे का जो अंग होता है उसको पकड़ने की कोशिश करी, भगवान शिव पृथ्वी में समा गए। और भगवान शिव जब पृथ्वी में समा गए, जो पिछला भाग था उनका, वो केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ। जो पहला है केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग हमारे 12 आते हैं उनमें से पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जिसकी पूजा करने से हमारे कई जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं।
0: इस श्रृंखला का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है केदारनाथ धाम। समुद्र तल से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर न केवल पंच केदार में प्रथम है, बल्कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यूं तो हिमालय की लगभग सभी चोटियां भगवान शिव से संबंधित कथाओं से जुड़ी हैं। हिमालय का कण कण महादेव का है, लेकिन बर्फ से ढकी चोटियों के बीच विराजते हैं मृत्युंजय, अविनाशी बाबा केदार। मंदाकिनी नदी के तट पर खड़ा ये भव्य धाम वो द्वार है जहाँ पहुँचते ही इंसान खुद को भूलकर शिव में लीन हो जाता है। कहा जाता है कि जो एक बार बाबा केदार के दर पर पहुँच जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान शिव के स्वरूप को केदारेश्वर कहा जाता है जो भक्तों के दुख हरने और उन्हें मोक्ष देने के लिए स्वयं धरती पर विराजमान है।
3: भगवान शिव के पांच पवित्र मंदिर हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इनका मुख्य महत्व महाभारत के पांडवों से जुड़ा है जहां पे शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने पापों से मुक्त हुए थे। ये यात्रा आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मा अनुशासन और कर्म के फल को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है।
0: समुद्र की सतह से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा केदार का ये धाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। माना जाता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है जिसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के विशाल पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज पहरा देते हैं और गर्भगृह में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो भक्तों के सारे संताप हर लेता है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों ने उसकी नींव रखी। केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। माना जाता है कि जो भक्त पंच केदार की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी केदारनाथ का विशेष महत्व बताया गया है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक भावना है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ धाम आस्था का सबसे विराट धाम है। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर सांस में शिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: केदारनाथ के दर्शन के बाद अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। हिमालय की दुर्गम घाटियों में एक ऐसा स्थान है जहां पर शांति का वास है और महादेव के मध्य भाग की पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा धाम है जो बादलों को चीरते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में विख्यात है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य महेश्वर की असीम शांति और तुंगनाथ की उस ऊंचाई से जिसे देखकर श्रद्धा और साहस दोनों जाग उठते हैं।

0: पंच केदार की श्रृंखला में द्वितीय केदार है भगवान मध्य महेश्वर का धाम। ओखी मठ से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद जब आप इस भव्य और दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्रकृति, अध्यात्म और रहस्य का ऐसा संगम है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक तपस्या माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। इस साल इस भव्य मंदिर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। चौखंबा शिखर की तलहटी में मौजूद ये मंदिर उत्तर भारतीय स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। पत्थरों से बने इस प्राचीन मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अद्भुत है। बेहद सर्द मौसम और भारी बर्फबारी के बावजूद सदियों से ये मंदिर अटक है।
1: मध्य महेश्वर मंदिर, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि और उदर की पूजा होती है। ये धाम संतुलन, जीवन, ऊर्जा और भीतर की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से चौखंबा पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
0: मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को भीतर तक सुकून देती है। जितना अद्भुत ये मंदिर है उतना ही मुश्किल यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इसके लिए कठिन पहाड़ी रास्तों और कई किलोमीटर के ट्रैक से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जिसे भोलेनाथ बुलाते हैं वो इस धाम तक पहुँच जाता है। महेश्वर की शांति से निकलकर अब रुख करते हैं उस ऊंचाई की ओर जहां पहुंचकर इंसान खुद को ईश्वर के सबसे करीब महसूस करता है। ये है तृतीय केदार यानी तुंगनाथ धाम। यहां हर तरफ बर्फीले पहाड़, बादल और शिव भक्ति का अद्भुत माहौल दिखाई देता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा केंद्र है जहां पहुंचकर भक्त खुद को भोलेनाथ के और करीब महसूस करते हैं। समुद्र तल से 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। मान्यता के मुताबिक यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। यही वजह है कि इस धाम को शक्ति, तप और शिव कृपा का प्रतीक माना जाता है।
1: बात करें तुंगनाथ मंदिर की तो तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। ये संसार का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा, इसलिए ये स्थान केवल भौतिक ऊंचाई का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का भी प्रतीक माना जाता है। और शिव की भुजाएं यहाँ कर्म शक्ति और संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मबल का अनुभव करते हैं। तुंगनाथ के पास स्थित चंद्रशिला पर्वत भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जहाँ से हिमालय का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जिसे ध्यान एवं साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।
0: माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर भोलेनाथ के दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, कठिन चढ़ाई और पल पल बदलता मौसम। इस पवित्र धाम तक पहुँचने के लिए चोपटा से शुरू होने वाला 4 किलोमीटर का ट्रैक भले ही छोटा लगे पर इसकी चढ़ाई भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन शिव भक्ति के आगे ये सारी कठिनाइयाँ छोटी पड़ जाती है। तुंगनाथ के शिखर से जब आप चारों ओर देखते हैं तो नंदा देवी और पंचचूली जैसे पर्वत अद्भुत नजारा पेश करते हैं। कहते हैं कि तुंगनाथ में सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि यहाँ इंसान खुद को प्रकृति और परमात्मा के बेहद करीब महसूस करता है। यही वजह है कि सदियों से ये धाम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का सबसे ऊंचा प्रतीक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पंच केदार की इस दिव्य यात्रा में अब आपको कल्पेश्वर धाम के बारे में बताएंगे, जहां पर शिव की जटाएं भक्तों को तप, ध्यान और मोक्ष का संदेश देती है। आइए करते हैं पंच केदार के इस दिव्य धाम के दर्शन।
3: पंच केदार का अंतिम और पंचम केदार है कल्पेश्वर धाम। जहां शिव की जटाओं का दिव्य प्राकट्य हुआ, जहां गुफा में विराजते हैं महाकाल। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के घने जंगलों, कल कल बहती नदियों और ऊंचे पर्वतों के बीच एक ऐसा दिव्य धाम है जहां पहुंचकर लगता है मानो समय थम गया हो। ये वही धाम है जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार यात्रा का ये अंतिम पड़ाव भक्त की साधना को पूर्णता देता है।
1: तो कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह पंच केदारों में एकमात्र ऐसा धाम है जहां पूरे वर्ष दर्शन संभव है। कल्पेश्वर का ध्यान, तपस्या और योग का केंद्र भी माना जाता है।
3: कल्पेश्वर मंदिर एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है। मंदिर के भीतर चट्टान पर उभरी आकृति महादेव की जटा मानी जाती है। भक्त झुककर संकरी गुफा से होकर बाबा के दर्शन करते हैं। यही अनुभव भक्त को विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर चमोली जिले में उर्गम घाटी के शांत और दिव्य वातावरण में बसा है। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जहां बाकी चार केदार सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं कल्पेश्वर महादेव के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। यहाँ ज्यादा बर्फबारी नहीं होती। यही वजह है कि पंच केदारों में कल्पेश्वर धाम की यात्रा सबसे आसान मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है इस धाम का नाम पड़ा कल्पेश्वर, यानी कल्प वृक्ष समान वरदान देने वाले ईश्वर। भक्त मानते हैं कि कल्पेश्वर महादेव मन की अशांति दूर करते हैं, जीवन में स्थिरता देते हैं, तप साधना और ध्यान की शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले साधु संत कहते हैं कि कल्पेश्वर केवल मंदिर नहीं बल्कि शिव के ध्यान का जीवंत केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers.
5: The hits are on.
4: And hip-hop beats.
6: I'm in the game. I should have joined with this G23.
4: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
7: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
8: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good news today par.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
1: Oh, hey, friends. This sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
2: just
4: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 20 मंत्रियों के साथ बीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल, प्रियंका और खड़गे।
10: पंच केदारों में से विराजमान।
9: जोश और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन।
10: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखी जंगली हाथी। वन्यजीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा।
9: मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का ठंडा मौसम। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी।
7: एनईसीसी, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा फराज। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
9: चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदार यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड से, एक महीने से कम समय में पहुंचे 6 लाख से ज्यादा यात्री। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर कर रहे हैं बाबा के दर्शन, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं भक्तों की स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है विशेष ख्याल, अलर्ट मोड पर मेडिकल टीम्स। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा, अब तक 30 यात्रियों को दी गई है सुविधा।
10: उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। धार भोजशाला में वागदेवी की पूजा पाठ का दौर जारी, स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी की सरस्वती वंदना। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, किया दर्शन पूजा। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन, सांसद हेमा मालिनी ने किया शुभारंभ। झांसी के इस्कॉन मंदिर में भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराज श्री राधा और गोविंद।
9: केरल में वीडी सतीशन का राज तिलक हुआ, राहुल प्रियंका की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, जल्द निपटारे के आदेश। भुवनेश्वर में पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, नगर निगम पेड़ों पर लगा रहा है आर्टिफिशियल घोंसले। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ नजर आई हाथी। वन्य जीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा।
10: 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मान। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण कुमार। पैरा ओलंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तागाराम भील को भी मिलेगी पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तागाराम भील ने अलगोजा वादन को दी है ग्लोबल पहचान, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म।
9: बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी, 16 दिन में कमाए 96 करोड़, 100 करोड़ के क्लब में जल्द हो जाएगी शामिल। सूर्या स्टार फिल्म करुप्पू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 2 दिन में फिल्म दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार। वीकेंड पर पति पत्नी और वो बॉक्स ऑफिस पर उसकी देखने को मिल रही है चांदी, 2 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए 13 करोड़। वीकेंड पर फिर चमकी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हार्ट, 9 दिन में 12 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। तलाक के बाद मौनी रॉय सूरज ने फिर किया एक दूसरे को इंस्टा में फॉलो।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
9: यहाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
10: केरल में नई सरकार का गठन, वीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, कार्यक्रम में राहुल प्रियंका और खड़गे हुए शामिल।
9: आज से रुद्रनाथ धाम में होंगे दर्शन, भक्तों में भारी उत्साह, 6 महीने बाद भगवान एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन मंदिर में विराजमान।
10: केदारनाथ में दर्शन को उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन।
9: गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, कारोबारी खुश।
10: ईरान में 134 साल पुराना मंदिर बना चर्चा का विषय, अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर जारी किया साझा मंदिर का एक वीडियो, सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की झलक की थी।
9: तो लंच टाइम में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फिल्मी सफर पर, और देखिए सबसे पहले बात करेंगे बॉक्स ऑफिस पर टले एक का महाक्लेश की, ये क्लेश है शाहरुख खान की फिल्म किंग और अनीत पट्टा की फिल्म शक्तिशाली के बीच। दोनों ही फिल्में जो हैं क्रिसमस के मौके पर यानी 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बजट में बन रही किंग की भारी भरकम मौजूदगी की वजह से मेकर्स ने शक्तिशाली की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी जा सकती है, और शक्तिशाली के मेकर्स रिलीज डेट टालने पर विचार कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि शक्तिशाली अगले साल जनवरी में रिलीज की जा सकती है। They call him King with the capital K. We say SRK. I wanna break it away. Just wanna say you got it.
4: बॉलीवुड के किंग से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेने के लिए साहस और हिम्मत दोनों चाहिए। शायद शक्तिशालिनी में किंग से टकराने का वो साहस नहीं, और इसलिए चर्चा है कि शक्तिशालिनी के मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने पर विचार कर रहे हैं।
11: उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है।
4: 24 दिसंबर 2026 वो तारीख है जब शाहरुख खान की फिल्म किंग वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी और इसी तारीख पर अनीत पड्डा की फिल्म शक्ति शालिनी की रिलीज डेट तय की गई थी। इस लिहाज से बॉक्स ऑफिस पर किंग और शक्ति शालिनी की टक्कर होनी तय थी। माना जा रहा था कि मैडॉक की फिल्म को इस टकराव से तगड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में मेकर्स अब कई महीने पहले ही इसकी नई रिलीज डेट पर विचार कर रहे हैं ताकि शाहरुख खान की किंग से क्रैश से बचा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि 500 करोड़ी सैयारा देने के बाद अनीत पड्डा डिमांड में हैं। ऐसे में फैंस शक्ति शालिनी में उन्हें देखने के लिए बेताब। ये फिल्म मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है। इससे पहले इस यूनिवर्स की स्त्री भेड़िया, मुंजिया, स्त्री टू और थामा जैसी फिल्में आ चुकी हैं। इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है। अब शक्ति शालिनी से भी मेकर्स को कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। थामा की रिलीज के साथ मेकर्स ने थिएटर में अनीत पड्डा की इस फिल्म का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्ति शालिनी में अनीत पड्डा का डबल रोल है, एक रोल शक्ति का होगा और दूसरा शालिनी का। इस फिल्म में भी अच्छाई और बुराई के बीच जंग को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शक्ति शालिनी की शूटिंग फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। आउटडोर शेड्यूल मई महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद मेकर्स इसके विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू करेंगे। उधर किंग की शूटिंग भी तकरीबन फाइनल स्टेज में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए कुछ अहम सीन्स में सुधार के लिए कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है ताकि दर्शकों को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव मिल सके। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिल्म के एक बड़े और हाई ऑक्टेन एक्शन क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग इसी महीने मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और मुंबई में एक बड़ा शेड्यूल रखा गया। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपना काम खत्म कर मुंबई वापस लौट चुकी हैं। इस रीशूट का असर फिल्म की रिलीज डेट पर ना पड़े इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन का काम शूटिंग के साथ साथ चल रहा है। सितंबर में पूरी तरह शूटिंग रैप अप होने के बाद टीम फिल्म के फाइनल कट पर काम करेगी ताकि इसे 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सके। जहां तक शक्ति शालिनी की रिलीज डेट की बात है तो मेकर्स नई तारीख खोज रहे हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो मेकर्स इसे जनवरी 2027 में रिलीज करेंगे। माना जा रहा है कि इसे जनवरी के फर्स्ट हाफ में रिलीज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: तो बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े सितारों की एक और टकराव होने वाली थी लेकिन ये टकराव अब भी टल गई है। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की। खबर है कि अक्षय और अजय देवगन ने बातचीत कर अपने इस टकराव को टाल दिया है। धमाल 4 अब 4 जुलाई की जगह 17 जुलाई को रिलीज होगी जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होगी।
12: एक तरफ गोलमाल के गोपाल यानी अजय देवगन और दूसरी तरफ फेरा फेरी के राजू यानी खिलाड़ी अक्षय कुमार यानी कॉमेडी का महाडोज तय है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं। एक की सीरियस एक्टिंग और दूसरे की दर्शकों को लोट पोट कर देने वाली जबरदस्त एक्टिंग। और जब बात बॉक्स ऑफिस पर दोनों सितारों की फिल्मों के क्लैश की हो तो मौका दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। 2026 में फैंस को ऐसी ही दो ब्लॉकबस्टर फैमिली एंटरटेनर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय कुमार के साथ लंबी चौड़ी स्टारकास्ट वाली वेलकम टू द जंगल और अजय देवगन की धमाल 4 लोगों को दोनों ही फिल्मों का इंतजार है। हालांकि माना यह जा रहा था कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देंगी। खबरें थी कि ये दोनों ही मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में जुलाई की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी जिससे दोनों के बिजनेस पर असर पड़ना तय था लेकिन अब इस महाटकराव को बेहद समझदारी से टाल लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच इस क्लैश को लेकर सीधी बातचीत हुई जिसके बाद अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। धमाल 4 अब तक 4 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी जबकि अक्षय की वेलकम टू द जंगल 26 जून को ही रिलीज हो रही है। दरअसल दोनों ही सितारे अच्छे दोस्त हैं और दोनों खुद प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर फिल्म को खुलकर सांस लेने के लिए स्पेस मिलना कितना जरूरी है। हालांकि दोनों ही फिल्में कॉमेडी जॉनर की हैं और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। अजय की धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी के ओरिजिनल पलटन मौजूद है, तो वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी समेत कई बड़े सितारे मौजूद हैं। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती हैं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि गर्मी के मौसम में दोनों ही फिल्में हंसी का तड़का दोगुना करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, जो अपनी पोस्ट की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और अब अपनी पोस्ट की वजह से अमिताभ बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अमिताभ ने इस बार इंस्टाग्राम पर एक ईरान में मौजूद प्राचीन विष्णु मंदिर का दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में बज रहा है भजन फारसी भाषा में। वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर खूब कॉमेंट्स कर रहे हैं।

ईरान का 134 साल पुराना इकलौता हिंदू विष्णु मंदिर सोशल मीडिया पर अचानक सुर्खियों में आ गया है और इस मंदिर के सुर्खियों में आने की वजह है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने ईरान के बंदर अब्बास शहर में बने इस प्राचीन मंदिर का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और भारत और ईरान के बीच की सदियों पुरानी सांस्कृतिक रिश्तों की झलक और खासियत बताने की कोशिश की। इस मंदिर की दीवारों पर एक बोर्ड में लिखा है नेशनल प्रोटेक्टेड कृष्ण मंदिर। बैकग्राउंड में फारसी भाषा में भक्ति गीत सुनाई दे रहा है। इसे पर्शियन सिंगर ने गाया है जो हिंदू भगवानों की प्रार्थना कर रही है। गाने के बोल है हे विष्णु जान, हे रामा जान, हे कृष्ण जान।

0: ईरान में बने इस विष्णु मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने कैप्शन में लिखा है,
1: ईरान के अब्बास बंदर में स्थित प्राचीन हिंदू विष्णु मंदिर 1892 में काजर काल के दौरान ये मंदिर भारत से आए उन हिंदू व्यापारियों के लिए बनवाया गया था जो उस समय शहर में काम कर रहे थे। इसमें बज रहा गाना फारसी भाषा में है।
0: अमिताभ बच्चन के शेयर किए गए इस वीडियो में 134 साल पुराने मंदिर की पुरानी बनावट साफ नजर आ रही है जो बेहद खूबसूरत और अलग है। मंदिर के अंदर और बाहर के दृश्य दिखाए गए हैं। वीडियो में भगवान विष्णु की सदियों पुरानी मूर्ति की नक्काशी भी लोगों को हैरान कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आपने पहली बार कोई अच्छी जानकारी साझा की है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, ये शेयर करने के लिए शुक्रिया। तो किसी यूजर ने लिखा, वीडियो शेयर करने के लिए शुक्रिया, ये एक दुर्लभ और आकर्षक विरासत की कहानी है। इससे पहले शिवाजी पर भी एक ईरानी भजन वायरल हो चुका है। इस गाने का टाइटल था तू मस्त कैलाश। इस गाने में भी ईरान के पुराने मंदिर में कुछ लोग पूजा करते दिखाई दे रहे हैं।

0: फ्रांस में चल रहे कान फेस्टिवल में भारतीय सितारों का जलवा देखने के लिए मिल रहा है। रेड कार्पेट पर सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक भी दिखाई दे रही है। भारतीय अभिनेत्रियों और कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों, शाही ज्वेलरी और आकर्षक भारतीय अंदाज से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं बनारसी और कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई है, तो कहीं पर इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।
1: यहाँ पूजा देखिए, पारंपरिक कुंदन पोलकी और मंदिर ज्वेलरी ने लुक्स में और ज्यादा चार चांद लगा दी। 2026 कान फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने शुरुआत की थी और उनके बाद अब अदिति राव हैदरी, हुमा कुरैशी और पंजाबी एक्ट्रेस रूपी गिल ने कान के मंच पर एक अनोखी तस्वीर पेश किया। देखिए, पंजाबी अभिनेत्री रूपी गिल अपनी फिल्म चढ़ी कला के लिए कान 2026 में शामिल हुई है और जिसका प्रीमियर जो है 29 मई को भारत में रिलीज होने से पहले कान फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया गया। वहीं पर देखिए, असम की एमी बरुआ ने पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पांचवीं बार कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर वॉक किया। उन्होंने असम की कार्बी जनजाति की पारंपरिक पोशाक पहनी थी जो हाथ से बने हुए वस्त्रों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखाने के, इस प्रकार से भारतीय सितारों का जलवा देखने

0: में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से बॉलीवुड तक दुनिया भर के तमाम सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस बार भी इस फेस्टिवल में अब तक भारत की जानी मानी एक्ट्रेसेस अपना जलवा दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस बार अब जो खास बात कांस में नजर आ रही है वो ये है कि सितारों की इस महफिल में भारतीय अदाकाराएं ठेठ हिंदुस्तानी पारंपरिक लिबास साड़ी में झलक दिखलाने पहुंची हैं। जरा गौर कीजिए उमा कुरैशी का ये पहनावा और अंदाज। बनारसी साड़ी में सजी उमा कुरैशी शनिवार को कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लेवेंडर बनारसी साड़ी में उमा की ये तस्वीरें लाजवाब है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को उमा कांस में ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में बॉस लेडी अवतार के जरिए अलग ही जादू बिखेर रही थी। वहीं अगले दिन वो बनारसी साड़ी में अलहदा संदेश देती दिखी। उमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलाबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा ही लगता है। सिर्फ उमा कुरैशी ने ही नहीं, बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कांस फेस्टिवल में भारतीय पहनावे साड़ी को अहमियत दी है। अदिति ने सोशल मीडिया पर कांस में इस लुक की खास झलक फैंस के साथ साझा की। साड़ी में दिलकश पोज देती अदिति का रूप, रंग और दमकता नजर आ रहा है। अदिति की पोस्ट पर उनके पति सिद्धार्थ सहित कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है और तारीफ की है। अदिति राव हैदरी ने 2002 में जब कांस में डेब्यू किया था, तब भी वहां उन्होंने साड़ी ही पहनी थी। सितारों के अलावा डांस क्रिएटर निधि कुमार ने भी इस बार कांस में साड़ी पहनकर एंट्री की। साड़ी में निधि कुमार का लुक वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के चर्चित लुक से प्रेरित साड़ी कांस में पहनी। अहम बात ये है कि जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसे 20 कारीगरों ने 500 घंटे में तैयार किया है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मारी थी। ऐश्वर्या ने 2002 में कांस में साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया था। वो जूरी मेंबर के रूप में कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट और मितांशी गोयल समेत कई सितारे वहाँ साड़ी में नजर आते रहे हैं और ये सिलसिला अब तक कायम है। इस बार 12 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में अब तक आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, कल्याणी प्रियदर्शन, उर्वशी रौतेला सहित तमाम सितारे पहुंच चुके हैं। एक और कांस में रेड कार्पेट पर सितारे गजब ढा रहे हैं तो दूसरी ओर इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के कारोबार को भी परवान चढ़ाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में यहाँ वामिका गब्बी और लोकेश कनकराज की फिल्म डीसी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। भूत बंगला के बाद वामिका गब्बी की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो हाल ही में रिलीज हुई है और अब उनकी एक और फिल्म डीसी भी रिलीज होने को तैयार है, जिसकी झलक कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर के जरिए देखने को मिली है। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी 23 मई तक चलेगा। उम्मीद है इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ और भी सितारे फिल्मों के इस महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
1: तो देखिए, साउथ मूवी में धमाल मचाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदानी कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति की खूबसूरत छटा पेश की। देखिए, रेड कार्पेट पर दिशा मदान का पारंपरिक भारतीय अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आया। दिशा ने 80 साल पुरानी विंटेज साड़ियों को आधुनिक कॉर्सेट गाउन में तब्दील कर दिया और रेड कार्पेट पर उन्होंने धूम मचा दी। खूबसूरत ड्रेस के साथ, शाही ज्वेलरी और बहुत खूबसूरत मेकअप के साथ दिशा ने अपने लुक्स में भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का शानदार जलवा बिखेरा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से ये भारतीय सितारों के अलग अलग रंग।
2: फेस्टिवल में पंजाबी अभिनेत्री रूपी गिल भी पहुंची, जहां पर उनका रेड कार्पेट पर बेहद खास और पूरी तरह से पंजाबी संस्कृति से प्रेरित लुक दिखा। उन्होंने पंजाब की कृषि परंपरा को दर्शाते हुए खूबसूरत सूट पहना, जिसमें दो दुपट्टे और गेहूं से प्रेरित सुंदर कारीगरी देखने को मिली। अपने इस एथनिक लुक को उन्होंने पारंपरिक पंजाबी आभूषणों के साथ पूरा किया। कान के रेड कार्पेट पर रूपी गिल का ये अंदाज भारतीय खासतौर पर पंजाबी संस्कृति की मिट्टी की खुशबू और विरासत को दुनिया के सामने खूबसूरती से पेश करता नजर आया। रूपी गिल अपनी फिल्म चर्दीकला के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई। फिल्म का प्रीमियर 29 मई को भारत में रिलीज होना है, लेकिन उससे पहले कान फिल्म मार्केट में इसको लॉन्च किया गया।
1: चलिए कुछ और खबरों पर रुक करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में बांस से बनी एक कैंटीन महिला सशक्तिकरण की कहानी बयां कर रही है। स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे जो है बांस से तैयार किया गया और इसके संचालन की जिम्मेदारी स्वसहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है, जो आज जंगलों के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर अपनी कहानी खुद बयां कर रही है।
3: जंगलों के बीच महिलाओं ने लिखी है आत्मनिर्भरता की नई कहानी और महिलाओं की इस कहानी का नायक है कान्हा टाइगर रिजर्व में सरही गेट पर बना बांस का ये कैंटीन। कान्हा टाइगर रिजर्व देखने आने वाले पर्यटक यहां बने इस बांस की कैंटीन से पारंपरिक स्वाद लेकर लौटते हैं। मंडला में बांस का ये कैंटीन स्व सहायता समूह की महिला चला रही है। कैसे ये कैंटीन यहाँ पारंपरिक स्वाद को तो बरकरार रखे हुए ही है, महिलाओं के लिए आजीविका का जीवंत साधन भी बन गई है।
4: हमने इको टूरिज्म बोर्ड से राशि प्राप्त करके एक बांस से निर्मित स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक कैंटीन बनवाई, जिसमें महिलाएं अब जो लोकल यहाँ की जो खाने के जो व्यंजन है वो परोसती हैं, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुलगुले हैं, फिर आपके बड़ा है और इस तरह के अन्य भी जो लोकल खाने वाले व्यंजन हैं वो परोसे जाते हैं, जिसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है।
3: महिलाएं खुद मानती हैं कि बांस के इस कैंटीन ने उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।
5: 2020 से हम लोग सर यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में काम करते है। 2 साल तो बहुत सी समस्या थी सर हमें हमारे कैंटीन में, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं सर बाहर से, अरिया काम किए हैं सर, कोदो कुटकी खाना वाले काम, तो बहुत सर अभी हमारा आमदनी बढ़ रहा है।
3: यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच बांस के ये कैंटीन अपनी संरचना की वजह से तो आकर्षण का केंद्र बन ही चुकी है। पर्यटक यहाँ के पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लेने में भी रुचि दिखा रहे हैं। जाहिर है कि ये पहल महिलाओं की एक सत आजीविका के अवसरों के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। साथ ही ये पहल पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने में सहायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
2: मंडे मेट्रो डे की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में आम जनता के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसदों ने भी मेट्रो से सफर करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। इसमें आम से खास लोगों को सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेट्रो मंडे में 6 अतिरिक्त मेट्रो चलाई जा रही है, जो कि 24 फेरे लगाएंगी, जिससे लोगों को आसानी से सफर करने का मौका मिलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई बड़ी हस्तियां जुट गई हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मोर्चा

0: की अपील की। सरकार की इस मुहिम का जमीन पर कितना असर है, इसे लेकर देखिए हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा की रिपोर्ट। सफर कीजिए
1: मेट्रो का, तो मेट्रो तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये उनसे हर एक कम्यूटर से जो अपील की गई है कि किस तरीके से भी हम लोगों के ईंधन की बचत करनी है, और उसी में मंडे मेट्रो जैसी चीज का जो है वो लाया गया है। संसद वर्क फ्रॉम होम भी लोगों से किए जाने की जो है अपील करी, तो उसी अपील के साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एनडीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको यहाँ मौजूद आएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन से आप सफर कीजिए। मेट्रो यूजर जितनी भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए, इसी कारण जो है इसी वजह से हम लोग जो है ईंधन की बचत कर पाएंगे। तो हर एक पैम्फलेट भी देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखा आ जाएगा, तो मेट्रो यूजर्स एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर एनडीएमसी वेलकम करता है, और उसी को देखते हुए आज से मेट्रो के लिए 6 मेट्रो जो है वो बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ जो फेरे वाला जो ट्रिप्स की हम बात की गई है वो ट्रिप्स भी जो है बढ़ा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
2: बिल्कुल, साथ साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सफर किया। रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट से लेकर मेट्रो में ट्रैवल करते हुए आरटीओ मेट्रो स्टेशन तक पहुंची, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र राज भी मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से आपको पता है कि पूरे देश में एक अलग जगह गई है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए।
3: पेट्रोल और ईंधन की बचत को लेकर के प्रधानमंत्री की अपील के असर के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मेट्रो डे बना रही हैं, यानी मंडे मेट्रो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो से कश्मीरी गेट से लेकर के आईटीओ तक का सफर किया, और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सचिवालय के बाहर पहुंचते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीर है, जहां पर आपको मुख्यमंत्री उनके साथ दिल्ली सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो आपको नजर आएंगे, जो कि मेट्रो फीडर बस का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सचिवालय जो है वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वो भी आज जो है वो मेट्रो से सफर करके जो है वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं, ताकि पेट्रोल और ईंधन की बचत जो है वो की जा सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।
0: वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आसमान में मौत को मात देकर जीत गई जिंदगी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर,

0: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: 20 मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, बाबा का किया जाएगा तिलक श्रृंगार, मंदिर कमेटी ने साझा की जानकारी।
3: जोश और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
2: केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 20 मंत्रियों के साथ वीडी सतीशन ने लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ, कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल, प्रियंका और खड़गे।
3: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखी जंगली हाथी, वन्य जीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा।
2: मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का ठंडा मौसम, गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब आपको दिखाते हैं मौत को मात देने वाली एक ऐसी तस्वीर जो सात समंदर पार से निकल कर आई है। देखिए ये तस्वीर जो है जिंदगी जीत गई, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये देखिए आपको क्लोज करके हम दिखा रहे हैं शॉट, ये एक बड़े हादसे को मात देकर जिंदगी को जीत की जो तस्वीर है, इसको ऐसा कहा जा सकता है। अमेरिका के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में चल रहे एयर शो के दौरान ये हादसा निकलकर सामने हुआ, जब दो अमेरिकी EA-18G ग्राउलर फाइटर प्लेन्स हवा में आपस में टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि हवा में ही दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन राहत की बात देखिए ये रही, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भीषण हादसे के बावजूद सभी क्रू मेंबर्स जो हैं सुरक्षित लैंड कर गए। और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब दोनों फाइटर प्लेन्स हवा में आपस में उलझ गए थे, वो नज़ारा कितना भयावह था। एन वक्त पर क्रू मेंबर्स ने प्लेन में बिल्कुल एग्जिट लिया, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर टक्कर के ठीक कुछ ही सेकंड्स के भीतर पैराशूट खुलते नजर आते हैं, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार अगर हम देखें तो घटना जो है कल दोपहर 12:30 बजे की है। अब आपको ये भी बता दें कि ये 18G ग्राउलर फाइटर जेट्स अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के उन्नत क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार अगर हम देखें तो दोनों जेट का मलबा एयरबेस से करीब 2 मील दूर तक जाकर गिरा। आप कल्पना कीजिए कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और हादसे की वजह को खंगालने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि चारों क्रू मेंबर्स सुरक्षित।
3: आपको दिखाते हैं चारधाम यात्रा में आस्था भक्ति का अद्भुत रिकॉर्ड।

देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और विश्वास का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा से लेकर पंच केदार तक भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज ये निकल कर आई है, यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड अब ध्वस्त हो चुके हैं। इस साल चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि चारों धामों के कपाट खुलने के एक महीने के भीतर ही दर्शन करने वाले भक्तों का जो आंकड़ा है 15,60,000 के पार अभी हो चुका है। देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के इस जबरदस्त उत्साह को देखकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि साल यानी 2026 में देवभूमि यात्रा इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है और इस कीर्तिमान में कई यात्रा हिस्सा लेंगी, क्योंकि देवभूमि केवल चारधाम यात्रा ही नहीं बल्कि आदि कैलाश यात्रा से लेकर पंच केदार तक कई यात्रा चल रही है जिसमें भक्तों में सैलाब जबरदस्त है।

0: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी यात्रा शुरू हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या 15.5 लाख के पार जा पहुंची है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। जबकि अभी तो गर्मी की छुट्टियां करीब करीब बाकी हैं। सबसे पहले बात यमुनोत्री धाम की। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए भक्तों के उमंग का। श्रद्धालुओं का कारवां पड़ता जा रहा है। भक्ति की मस्ती में लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं।
1: बहुत ही सुव्यवस्थित से पूरी प्रशासन, पूरा कर्मचारियां, निगम को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सभी भक्तों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका सहयोग भी किया है। सभी हमारे 9-10 की टीम है और सब गाजे बाजे के साथ भगवान का भजन करते हैं। बड़े भाव से, आनंद से झूमते हुए आ रहे।
0: यमुनोत्री धाम पहुंचने का मार्ग यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। जिधर देखो उधर श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा है।
1: पूरी तरह से आप ये क्राउड देख सकते हैं किस तरह से जो है तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा यहाँ लगा है। पैदल मार्ग पे तीर्थ यात्री जा रहे हैं और पूरी तरह से जो पगडंडी है वो यात्रियों की संख्या से सराबोर है, यानी कि आने वाले दिनों में और अधिक यात्रियों की संख्या में इजाफा होने वाला है।
0: बद्रीनाथ धाम का नजारा देखने लायक है। धाम के हर कोने में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। इस वीकेंड पर बद्रीनाथ धाम में भीड़ कुछ ज्यादा देखी गई। रोजाना 20,000 से 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
2: बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे उत्साह के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इन दिनों रोजाना 22,000 से 25,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुंच रहे हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं।
0: भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह यात्रा मार्गों पर देखा जा सकता है। गोचर, जोशीमठ, पांडुपेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। धाम में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो रही है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही बाबा केदार के दर पर हो रही है। अगर 17 मई की बात की जाए तो यहाँ पर 17 मई को 29,370 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का आशीर्वाद दिया और अभी तक 6,35,022 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 17 मई को 19,094 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 4,07,659 श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 17 मई को 15,030 श्रद्धालुओं ने माँ यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,62,275 श्रद्धालु माँ यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 17 मई को 13,737 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 2,58,716 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर पूर्ण लाभ ले चुके हैं। और अगर चारों धाम की बात की जाए तो अभी तक 15,63,672 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए पुरजोर पुश में लगा है। अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कतार व्यवस्था और श्रद्धालुओं की एंट्री एग्जिट व्यवस्था का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। चमोली से कमल लैन सिलोड़ी और यमुनोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा।

0: सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 23 मई का वो शुभ दिन बस आने ही वाला है जब श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।
1: 23 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा। इसमें महान शख्सियतें उस दिन 5 प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदगढ़ 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंद धाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे।
0: ऋषिकेश से गोविंद घाट तक गुरुद्वारों में सजावट के साथ तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुद्वारों में भी सजावट जोर शोर से की जा रही है। हेमकुंड साहिब के रास्तों पर अभी भी बर्फ है और सेना रास्ता बनाने में लगी हुई है। खबर है कि कपाट खुलने के दिन हेमकुंड गुरुद्वारा को 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। 20 मई को ऋषिकेश से 5 प्यारों के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा जो उसी दिन शाम को श्रीनगर गुरुद्वारा पहुंचेगा। अगले दिन 21 मई को श्रीनगर से गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारे से 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा जिसमें जत्था सिख संगत भी हेमकुंड जाएगा। ये जत्था पहले दिन घाघरिया पहुंचकर विश्राम करेगा और अगले दिन 5 प्यारों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
2: क्या इस मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है? 20 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था चलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो 5 प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। पहले दिन श्रीनगर और अगले दिन गोविंद घाट और 21 को जब गोविंद घाट पहुंचेगी तो 22 मई को गोविंद घाट से 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं।
0: हेमकुंड गुरुद्वारा में सेवादार पहुंच चुके हैं और तरह तरह से गुरुद्वारा को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हल्की बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है। यात्रा शुरू होते ही बर्फ पिघल जाएगी। यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, अयोध्या का दशरथ महल भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का मुख्य शाही निवास और त्रेता युग का ऐतिहासिक स्थल है। आज दशरथ महल मंदिर एक भव्य और रंगीन मंदिर में परिवर्तित हो चुका है जहां पर श्रद्धालु जो है रामलला और उनके परिवार के दर्शन कर जाते हैं। इस बार भी दशरथ महल मंदिर की शानदार पुष्प सज्जा देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे।

0: ये अयोध्या के भव्य और दिव्य दशरथ महल की तस्वीरें हैं, जहाँ प्रभु श्री राम का बचपन गुजरा, जहाँ आंगन में वो खेले हैं। हर साल की तरह इस साल भी दशरथ महल मंदिर की भव्य और विशेष पुष्प सज्जा की गई। दशरथ महल मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी सामानों से खूबसूरती से सजाया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और प्रार्थना के लिए पहुंचे।
1: अंदर जाके ऐसा लगा कि मन को बहुत अच्छी शांति मिली। जो अंदर जाके जो शांति मिली वो आप देख सकते हो, यहाँ कितने सारे फूलों से सजाया हुआ है।
0: इस मौके पर दशरथ महल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं संपन्न की गयी। दशरथ महल मंदिर के पुष्प सज्जा और इस आयोजन का महत्व स्वयं सैनी श्री महंत ने बताया।
2: रामलाला के सेवा में यहाँ पर गर्मी के दिन के कारण यहाँ पर पुष्प उत्सव यानी कि पुष्प बंगला बना करके यहाँ पर सेवा पेश किया जा रहा है। इसी भाव को लेकर के भक्त लोग यहाँ भगवान के नाम रूप लीला धाम को गाते हैं। जैसे गर्मी के दिन है तो ठंडक चाहिए, वैसे गर्मी के दिन में ठंडक और ठंडी के दिन में गर्म चाहिए। इसी भाव से लेकर के गर्म कपड़ा ठंडी के दिन पहनाते हैं।
0: दशरथ महल मंदिर के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई। सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से प्रार्थना करने पहुंचे थे। मंदिर अधिकारियों ने भारी भीड़ को संभालने के लिए शानदार व्यवस्था की है। राम मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। श्री दशरथ महल मंदिर और राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक असीम प्रसन्नता नजर आई और रामलला को फिर देखने आने के वादे के साथ वो विदा हुए।
3: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: बात मौसम की कर ली जाए, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की अगर हम माने 23 मई तक कोई राहत वाली खबर निकल कर नहीं आ रही। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून 26 मई को ही केरलम में दस्तक दे सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के देवास में कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कम लागत वाला मिस्ट टावर स्थापित किया गया है, जिससे निकलने वाली महीन पानी की जो फुहार है वो आसपास के तापमान को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। ऐसा ही काम जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हो रहा है। यहाँ पर सड़क पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, जिससे हीट वेव में लोगों को ठंडी थोड़ी राहत दिलाई जा सके। तीन तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
1: चक्रवातीय गतिविधियों में कमी आने के बाद अब देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ने लगा है और तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी का असर अब जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है तो राजस्थान में गर्मी के चलते पारा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गंभीर गर्मी को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय मौसमी कारक हैं। केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थीं, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्मी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं और साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है और ये भी कहा है कि फिलहाल लोगों को लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों जिनमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राजस्थान में 23 मई तक लू चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 18 से 23 मई तक तापमान में तेजी आने की आशंका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 मई तक लू चलने की उम्मीद है।
2: आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर मौसम जो है वो मुख्यतः साफ रहेगा, जिस कारण टेम्परेचर जो है वो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है उसके अंदर बढ़ोतरी महसूस की जाएगी और इन सबके होते हुए हीट वेव का प्रकोप भी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो देखा जाएगा, जैसे कि ग्वालियर चंबल के रीजन है, खजुराहो, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जैसे जिले हैं, उधर विदिशा, सागर, उज्जैन, रतलाम आदि की जो बेल्ट है, जबलपुर, नरसिंहपुर और दमोह की जो बेल्ट जो है उसके अंदर हीट वेव का प्रकोप जो है वो आगे आने वाले 4-5 दिनों के अंदर जो है वो फिलहाल अभी जारी रहने की उम्मीद है।
1: पूर्वोत्तर भारत यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में 23 मई तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि 16 मई को ही मानसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पूरे निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम समेत अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की सभी आवश्यक परिस्थितियां अनुकूल हैं और उम्मीद है कि मानसून 26 मई की सुबह तक केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
0: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: TuneIn has the music.
2: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
3: TuneIn Poolside has the music I love.
2: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
1: Let's go.
2: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession.
8: कृपानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, अनिश्चित काल के लिए बंद हुई प्रतिदिन होने वाली पदयात्रा, एकांतित वार्तालाप पर भी रोक। इस मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, बाबा का किया जाएगा तिलक श्रृंगार, मंदिर कमेटी ने साझा की जानकारी। जोश और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की दर्शन। केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 20 मंत्रियों के साथ बीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल, प्रियंका और खड़गे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ देखी जंगली हाथी। वन्य जीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का ठंडा मौसम। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: दिल्ली में आज से हुई मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो, 24 फेरे लगाएगी ट्रेन। सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किया जा रहा लगातार उत्साहित, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो यात्रा की दी हिदायत। सुरक्षा और सुविधा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी तैनात। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की, एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से सफर किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की, कहा मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए, मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव मधु तेवतिया ने भी मेट्रो में सफर किया, स्टेशन के बाहर नजर आई। एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने मेट्रो में सफर किया, लोगों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग की अपील की। चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदार यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स, 1 महीने से कम समय के भीतर 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में पहुंचकर कर रहे हैं बाबा के दर्शन, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं भक्तों के स्वास्थ्य की भी लगातार हो रही है जांच। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी तैनात, 30 यात्रियों को अभी तक मिल चुकी है सुविधा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 4 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। इन दोनों रोजाना 19,000 से 25,000 के बीच में श्रद्धालु लगातार हाजिरी लगा रहे हैं, अब तक 4 लाख का आंकड़ा पार। गौचर, जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें। वर्तमान बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को हो रही है आसानी। रात में बढ़ती ठंड के बीच इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़े साथ रहने के साथ हिदायत दी जा रही है। 23 मई से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, 22 मई को पंच प्यारे गोविंद घाट से होंगे हेमकुंड साहिब रवाना। गुरुद्वारे में भी जोर शोर से लगातार सजावट का काम तेज, कपाट खोलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से होगी सज्जा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश, यात्रा शुरू होते होते पिघल जाएगी बर्फ। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हो जाएगा रवाना। 22 मई को गोविंदघाट गुरुद्वारे में पहली अरदास के साथ घंघरिया के लिए कूच करेगा जत्था। झांसी के इस्कॉन मंदिर में भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, मोर नौका में विराजे श्री राधा और गोविंद। नौका विहार के साक्ष्य बने हजारों भक्त, हर कृष्ण के महामंत्र की भक्तिमय हुआ माहौल। दीपों से किया गया मंदिर का श्रृंगार, श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण। ब्रज थीम पर बनी राधा कृष्ण की रंगोली, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य विषय भजन और प्रेरणादायक वचनों से। नौका विहार समारोह को भक्तों ने बताया वृंदावन की दिव्य अनुभूति, रोजाना रात 9:30 से 10 बजे तक होता है आयोजन। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। धारपुरशाला में वाघ देवी की पूजा पाठ के दौरान लगातार जारी स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी दर्शन किए। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री मंगलपुरी। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, सांसद हेमा मालिनी ने शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत को कम करने के लिए नया मेमोरेंडम जारी कर दिया, अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश। स्वीडन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किए गए। किसी विदेशी देश से मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सामुदायिक स्वागत समारोह के दौरान बंगाली संस्कृति का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय, स्वीडन में भी इससे अछूता नहीं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, व्यापार और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर फैसला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, जल्द निपटारे के आदेश। भुवनेश्वर में पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, नगर निगम पेड़ों पर लगा रहा है आर्टिफिशियल घोंसले। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ नजर आई हाथी। वन्यजीव विशेषज्ञ ने हाथी से जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा। जम्मू के ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राजौरी जिले में स्थित नंबलन गांव का दौरा किया। आईपीएल में अब प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। शिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना जरूरी। इस सीजन में शुरुआती 3 मुकाबले में हारने के बाद सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें रखी हैं जिंदा। हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 7 जीत हासिल करके अंक तालिका पर तीसरे पायदान पर बनी हुई है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ा भारी नजर आता है, अब तक खेले गए कुल 24 मैचों में 16 मैच जीत चुकी है। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगी पद्मश्री सम्मान। दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का नाम। राजस्थानी लोक कलाकार तकाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री। अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तकाराम भील ने अलगोजा वादन को ग्लोबल पहचान दी। डारा ने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीतकर रच दिया इतिहास। बुल्गारिया को प्रतियोगिता में पहली बार जीता। सोफिया पहुंचने पर एयरपोर्ट पर डारा का जोरदार स्वागत किया गया। हजारों फैंस ने रंगारंग कर फैंस ने वेलकम में डारा की तस्वीर वाले बैनर लहराए। रंगारंगा गाने में पब्लिक वोट और जूरी वोट दोनों ने किया शानदार प्रदर्शन। मुकाबले में इसराइल दूसरे पायदान पर। दारा ने बंगारंगा सॉन्ग को उम्मीद और सुकून का संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह गीत लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। तितलियों से गुलजार हुआ दक्षिण पश्चिम चीन। यूनान प्रांत की होंगे बटरफ्लाई वैली में बड़ी संख्या में पहुंची तितलियां। इन तितलियों को देखने के लिए दूर दूर से तमाम सैलानी पहुंचते हैं। तितलियों की प्रजातियों के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है होंगे बटरफ्लाई वैली। चीन के शांक्सी प्रांत में सामने आई पांडा की बहुत प्यारी तस्वीर। अपने बच्चे को मुंह में दबाए नजर आई पांडा। इस फुटेज में पांडा मां को अपने बच्चे को धीरे धीरे अपने मुंह में उठाकर ले जाते हुए नजर आती है। पोलैंड के काल्वरी वेजरोवो में वार्षिक तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया। भारी फेरथ्रॉन को लेकर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया। बैंड की धुन पर धार्मिक जुलूस में कलाकारों ने फेरथ्रॉन उठाकर प्रदर्शन किया। लगभग 40-120 किलो तक के फेरथ्रॉन को युवाओं ने कंधों पर संभाला। 18वीं-19वीं सदी से लगातार चली आ रही है परंपरा। इसमें लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं जश्न। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था और संस्कृति का सुंदर मिश्रण बताया। रेड बुल सो बॉक्स रेस 8 साल बाद लॉस एंजलिस में फिर से लौटी। 32 टीमों ने हिस्सा लिया। हजारों दर्शकों के बीच हॉलीवुड थीम ट्रैक पर अनोखी रेस हुई। प्रतियोगिता में स्पीड क्रिएटिविटी और शोमैनशिप का जज। कई टीमों की होममेड गाड़ियां ट्रैक पर पलट गईं, फिर भी रेस लगातार जारी रही। दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। रायन और मैडी ने सेलिब्रिटी जज की भूमिका भी निभाई। एसी सोबॉक्स रेस दुनिया के 107 शहरों में हो चुकी है। इस अनोखी नॉन मोटराइज्ड कार रेस की शुरुआत बेल्जियम से शुरुआत हुई। नेपाल के शेरपा गाइड कामी रीता ने रच दिया इतिहास। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया। 56 साल के कामी रीता रविवार सुबह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे और 14 पिक्स एक्सपेडिशन कंपनी के क्लाइमेट को लेकर पहुंचे थे। नेपाल पर्यटन विभाग ने कामी रीता को दी बधाई। सरकार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। कामी रीता का एवरेस्ट से रिश्ता 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। उन्होंने पहली बार 1994 में चढ़ाई की थी। कामी रीता उसी गांव से आते हैं जहां पर तेंजिंग नॉर्गे का हुआ था जन्म। कैरिसा मोरे ने न्यूजीलैंड प्रो में शानदार जीत दर्ज कर दी है। अमेरिका की लेकी को रोमांचित मुकाबले में हरा दिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
9: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27, while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
10: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: Some people think that Chalk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Chalk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Chalk Sport definitely contains nuts.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
13: It's your boy,
11: just
13: Jay-Z.
11: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है, और मौसम विभाग की अगर हम माने तो 23 मई तक कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही। हालांकि राहत की बात यह निकल कर आ रही है कि मॉनसून 26 मई को ही केरलम में दस्तक दे देगा।
19: चक्रवातीय गतिविधियों में कमी आने के बाद अब देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ने लगा है और तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी का असर अब जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो राजस्थान में गर्मी के चलते पारा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गंभीर गर्मी को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय मौसमी कारक हैं। केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थीं, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्मी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं और साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है और ये भी कहा है कि फिलहाल लोगों को लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों जिनमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि राजस्थान में 23 मई तक लू चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 18 से 23 मई तक तापमान में तेजी आने की आशंका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21 मई तक लू चलने की उम्मीद है।
13: आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर मौसम जो है वो मुख्यतः साफ रहेगा, जिस कारण टेम्परेचर जो है वो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है उसके अंदर बढ़ोतरी महसूस की जाएगी और इन सबके होते हुए हीट वेव का प्रकोप भी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो देखा जाएगा, जैसे कि ग्वालियर चंबल के रीजन है, खजुराहो, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जैसे जिले हैं, उधर विदिशा, सागर, उज्जैन, रतलाम आदि की जो बेल्ट है, जबलपुर, नरसिंहपुर और दमोह की जो बेल्ट जो है उसके अंदर हीट वेव का प्रकोप जो है वो आगे आने वाले 4-5 दिनों के अंदर जो है वो फिलहाल अभी जारी रहने की उम्मीद है।
19: पूर्वोत्तर भारत यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में 23 मई तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि 16 मई को ही मानसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पूरे निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम समेत अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की सभी आवश्यक परिस्थितियां अनुकूल हैं और उम्मीद है कि मानसून 26 मई की सुबह तक केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, अनिश्चित काल के लिए बंद हुई प्रतिदिन होने वाली पदयात्रा, एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक। 20 मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, बाबा का किया जाएगा तिलक श्रृंगार, मंदिर कमेटी ने साझा की जानकारी। जोश और उत्साह के साथ जारी है चारधाम यात्रा, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 20 मंत्रियों के साथ BD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल, प्रियंका और खड़गे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ देखी जंगली हाथी। वन्य जीव विशेषज्ञों ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा। बच्चों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का ठंडा मौसम, गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गैस सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों के बीच अब सब लोग ढूंढ रहे हैं स्मार्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, ये तो है सुपर। बताइए कैसे। एक तो ये एलपीजी बचाता है और उसके साथ साथ हमें प्रोवाइड करता है स्मोक फ्री कुकिंग, जिससे हमारी किचन मॉडर्न और सेफ दोनों बन जाती है। तो आज तो इस इलेक्ट्रिक स्टोव के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ ताका झांकी करते हैं आपके फेवरेट शोज के आंगन में और पता कर आते हैं आज कौन सी कहानी में आया है, कौन सा स्पाइसी ट्विस्ट और किससे आ रही है हमारे लिए कोई गुड न्यूज। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, आग में फंसेगा अरमान, अभीरा बनेगी रक्षक, सीरियल वसुधा में होगा तमाशा, चंद्रिका लगाएगी करिश्मा को फटकार, रेत पर भड़केगी दिव्या, परेशान होगी अपराजिता, रक्षित देगा

0: किचन कॉन्वर्सेशंस और उसके साथ साथ फैमिली मोमेंट्स, यही तो होता है घर का बेस्ट पार्ट। और देखिए आज हमारे शो का बेस्ट पार्ट है ये इलेक्ट्रिक स्टोव, जो दे रहा है हमें एक इजी कुकिंग सोल्यूशन, स्पेशली ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के चलते हुए। लेकिन क्या हो रहा है प्रेजेंटली राघव और रीत की इस कहानी में, चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर, क्योंकि कहानी में फिर आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
1: रीत पर लगा मर्डर का इल्जाम, खतरे में प्रतीक की जान, शालिनी की नौटंकी से फिर उलझेंगे रीत के रिश्ते, जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में प्रतीक के साथ हादसा हो गया है, जिसके चलते प्रतीक जिंदगी और मौत की घड़ी गिन रहा है, क्योंकि उसका खून बह चुका है, इसलिए डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर मच गया है बवाल, क्योंकि वीरेन को पता चल गया है कि ये सब रीत ने कराया है। ऐसे में वो रीत से सवाल पूछते हैं, इससे पहले कि रीत कुछ कहती दिव्या ने सभी के सामने रीत को ही दोषी ठहरा दिया। अब रीत तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रतीक खतरे की कगार पर पहुंच जाए, लेकिन प्रतीक के पापा परेशान हैं ये जानकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में दिव्या ने कर दिया सबके सामने खुलासा कि ये सब रीत ने क्यों किया है। अब रीत तो सिर्फ शालिनी का सच सभी के सामने लाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता कि शालिनी ने उसका पासा पलट दिया है। ऐसे में वहाँ पर राघव भी आता है और रीत राघव को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आज राघव ने भी सभी के सामने रीत से सवाल कर दिया। ये देखकर रीत हैरान है और दूर खड़ी शालिनी खुश है, क्योंकि जो वो चाहती थी वही हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सभी के सामने ड्रामा करना भी शुरू कर दिया, अपने चेहरे पर पट्टी बांध दी ताकि उनका चेहरा रीत के सामने ना आए। अब राघव ने शालिनी के चेहरे से पट्टी तो हटा दी, लेकिन शालिनी ने रो रो कर ऐसा तमाशा क्रिएट किया कि सभी रीत से नफरत सी करने लगे हैं। इसी बीच डॉक्टर ने आकर बताया है कि प्रतीक बहुत ही क्रिटिकल है। ये सुनकर दिव्या का हाल बेहाल हो गया, उसके तो आंसू थम नहीं रहे। ऐसे में रीत आगे बढ़ती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन दिव्या ने उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। यहाँ दिव्या ने रीत को मर्डरर बना दिया, तो वहाँ वीरेन लेकर आ गया है उस ट्रक ड्राइवर को। ऐसे में रीत उससे सवाल कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने इतनी जोरदार टक्कर क्यों मारी। लेकिन आज तो ड्राइवर भी वहाँ पलट गया है, क्योंकि शालिनी ने उसे दुगने पैसे जो दिए हैं।
2: आपने तो वो पैसे उसे उड़ाने के लिए मुझे दिए थे, और मैंने वही किया।
3: तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब कहा ऐसा?
2: हाँ, आपने साफ साफ कहा था कि उसे टक्कर ऐसे मारना।

0: मौत के कगार तक पहुंच जाए लेकिन मरे नहीं। और आपने ये भी कहा था कि आप क्राइम रिपोर्टर हो, सब तो आपने तय किया था कि ट्रक की स्पीड कितनी होगी, वक्त क्या होगा और किस तरफ से टक्कर मारनी है। आपने जैसे बोला मैंने वही तो किया।
1: रीत ड्राइवर की बातें सुनकर हैरान है। उसने तो दिव्या भाभी को सच बताने की कोशिश की लेकिन अब कोई भी रीत पर विश्वास नहीं कर रहा। यानी अब शालिनी का पलड़ा भारी हो गया है और रीत के रिश्ते फिर से उलझने लगे हैं। देखना होगा क्या रीत सच का खुलासा कर पाएगी या फिर हो जाएगी पूरे परिवार से दूर। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ओ हमनवा, तुम तेरा साथ मेरा कुछ ऐसा ही कह रहे हो आज मैं अपने स्मार्ट कुकिंग सॉल्यूशन यानी इस इलेक्ट्रिक स्टोव से। और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर अपराजिता और रक्षित की इस कहानी में। फाइनली शायद बन रहा है कोई कनेक्शन और आ रहे हैं एक दूसरे के पास। ओ माय गॉड, पर कितनी सुपर हिट है ये जोड़ी, श्रितिजा और शब्बीर आलूवालिया। वैसे मुझे भी मौका मिला है दोनों के साथ ही काम करने का। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
3: बहुत गर्म खाना जल गया होगा।
1: रक्षित और अपराजिता की दोस्ती की शुरुआत।
4: तुम देरा साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा।
1: अपराजिता के लिए दिखी रक्षित की केयर।

0: प्राचीता ने जो डिजाइन बनाया वो बहुत अच्छा।
1: कॉम्पिटिशन में आया नया ट्विस्ट।
0: कभी ना हार मानने वाली को भला कोई हरा सकता है? तुम तो

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में हो रहा है कंपटीशन जिसका नाम है बेस्ट वीवर्स ऑफ सारी, जिसमें हिस्सा लिया है अपराजिता ने और ये कंपटीशन उसके लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में वो पूरी जी जान लगा रही है लेकिन उसके हाथ में चोट भी लगी है। ऐसे में देखिए कैसे रक्षित उसका ख्याल रख रहा है लेकिन फिर गरम गरम चाय भी गिर जाती है और अपना रुमाल रक्षित अपराजिता को देता है।
1: मैम के हाथ पर चोट लगी है, बर्फ लाकर मैं उनके टेबल पर रख देना।
2: ताने क्यों उनके लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है मुझे।
3: बहुत गर्म था ना, जल गया होगा।
4: आपको पेशेंट के बारे में कुछ और पता लगा कि पेशेंट को एग्जैक्टली बीमारी क्या है?
0: ऐसे में रक्षित के ही रुमाल पर अपराजिता ने बना दिया है ये डिजाइन। ऐसे में ईरा अपराजिता पर भड़क गई है और उसे कंपटीशन के रूल्स समझा रही है लेकिन फिर एक बार रक्षक बनकर आते हैं रक्षित, जो देखिए कैसे सबके सामने अपराजिता के डिजाइन्स की तारीफ भी कर रहे हैं और कंपटीशन में उसे आगे भी बढ़ा दिया है, जिस बात से अपराजिता काफी खुश हो गई है। खुशी तो दूसरी तरफ आ गया है गम। जी हाँ, सीरियल में आ गया है पुलिस वाला ट्विस्ट, जहाँ पर ईरा है और पुलिस वैन में बैठी है अपराजिता, जो बहा रही है आंसू क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार जो कर लिया है। अब ऐसे में फिर एक बार रक्षक बनकर रक्षित आता है अपराजिता को बचाने के लिए और उसे छुड़वा लेता है। हर मोड़ पर रक्षित अपराजिता की ढाल बनकर खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस कंपटीशन में ही बन जाएगी इन दोनों की जोड़ी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कभी कभी किचन में शुरू हुई एक छोटी सी बात भी रिश्तों की हीट बढ़ा सकती है, ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। वैसे रूहानी बात तो सही है, वो कभी कभी ना कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी इतना बड़ा बन जाता है और बाद में हम सोचते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। तो बस कोई जरूरत नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा चीज को यूं बड़ा बनाने की या उसे एग्जैजरेट करने की, क्योंकि हमारे रिश्ते ही तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों लेकर आना उनमें बेकार का कंफ्यूजन। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।
0: रूहानी पर लगा इल्जाम,

0: रचना का हुआ मेकओवर। सर से पैर तलक बेता हाशा हुस्न से भरी। होने वाली दुल्हनिया की खुशी। जल्द बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। जी हाँ, आप सबकी प्यारी जागृति रियल लाइफ में शादी करने जा रही है। उनकी सगाई तो हो चुकी है और अब तैयारी शुरू हो गई है शादी की। और ऐसे में आज सास बहू और बेटिया में वो बन गई है हमारी खास मेहमान और पहुंच गई है शैलोम सैलोम में करने खुद का मेकओवर। भाई शादी होने वाली है, ऐसे में मेकओवर तो बनता ही है। भाई आज तो ये फ्लॉन्ट करेंगी अपनी सगाई वाली रिंग, होगा इनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को आज ये करेंगी पैम्पर। और इतना ही नहीं, आज तो सास बहू और बेटिया में रचना मिस्त्री शेयर करेंगे अपनी सगाई और शादी की सारी बातें। और साथ ही हम जानेंगे रचना और अमित की लव स्टोरी। और ये सारी चीजें आज रचना मिस्त्री एक्सक्लूसिवली सास बहू और बेटिया में बताने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं करनी रचना से खास मुलाकात और करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत।
1: वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है। तो ऐसी एक एक्ट्रेस है हमारे साथ, आप सबकी प्यारी जागृति, जो शादी का लड्डू चखने जा रही है। हाय, वेलकम टू सास बहू और बेटिया।
2: थैंक यू सो मच।
1: सो क्या फीलिंग है, मतलब लड्डू चखने की बारी आने वाली है? तो आधा तो हो गया है, मतलब एंगेजमेंट हो गई है।
2: आधा तो हो गया है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारा स्ट्रेस भी है कि भाई ये भी करना है, ये भी होता है। एंड प्लस इट्स एन इंटरकास्ट मैरिज, वो पंजाबी है, मैं गुजराती हूँ, तो डबल धमाले, दो सबसे लाउडेस्ट कम्युनिटी शादी कर रही है, तो यू कैन इमेजिन द केओस। बट अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बहुत खूबसूरत शुरू होने वाला है, वो वाली फीलिंग है।
1: और दोनों ही कम्युनिटी में ऐसा है कि धूमधाम से शादी होती, कोई कमी नहीं रखते।
2: एंड दोनों बहुत लाउड कम्युनिटीज है, यू नो, अगर आप देखोगे तो मतलब पंजाबीज आर ऑल्सो वेरी लाइक, यू नो, पंजाबी आ गए हुए लाइक दैट। एंड गुजरातीज आर ऑल्सो वेरी लाइक, जहाँ मतलब कुछ हो नहीं हो, गरबा इज लाइक नेसेसरी लाइक दैट एंड ऑल, एंड वी आर वेरी लाउड अबाउट एवरीथिंग। के यू नो, जैसे वो कहते हैं ना कि गुजराती लोग बात भी करते हो तो ऐसा लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं क्या। तो या आई नो द फीलिंग कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है अब, बट इट्स फन, क्योंकि एंड बेस्ट पार्ट इज यू नो कि यूजुअली लोगों की लव स्टोरीज में ऐसा होता है कि इंटरकास्ट होती है, तो बहुत सारी ऐसे जो कहते हैं ना बॉलीवुड की फिल्में देख के हम कह सकते, अरे हमारा तो बहुत स्ट्रगल था, हमको तो फैमिलीज को मनाना पड़ा, पहले ये था। हमारी दोनों फैमिलीज बहुत एक्साइटेड थी, मतलब उन्होंने बहुत ही पहले एक्सेप्टेंस दे दिया था, एंड आई फील दे वर सो हैप्पी टू एक्सेप्ट द अदर कल्चर। मतलब माई पेरेंट्स ऑल्सो थे लाइक, हाँ हाँ अपनी जो रस्में होती है सब बताना, हम सब करेंगे। एंड उनके पेरेंट्स भी ऐसे कि यू टेल अस वॉट एवर इट इज़, हम सब करेंगे। तो इट वॉज़ वेरी नाइस, इट वॉज सरप्राइजिंगली न्यू, एंड अच्छा लग रहा था ये देख कर। अब बस शादी तक ऐसा ही रहे,
1: तो बाकी चीज़ें अंदर करेंगे। हम यहाँ आ गए हैं इस सैलों में, so let's go inside first, yeah?
2: Yes. बहुत टाइम हो गया, मैंने आई थिंक अपने बालों को टच ही नहीं किया, बिकॉज वेन एवर यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, स्पेशली जब आप ऐसा मैं IPS का रोल कर रही थी, तो यूजुअली ज़्यादा मुझे करने नहीं मिलता है कुछ बालों के साथ, स्पेशली कलर या कुछ। मैं चाहती हूँ इस बार तो लेट्स गो आउट एंड आउट कुछ ऐसा कि भाई अलग, ये रचना ही है, ऐसा कुछ करते हैं।
0: तो भाई आज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ढेर सारी किस्से कहानियां हम आज रचना से जानने वाले हैं, उनके सगाई के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में और शादी के प्लान्स के बारे में। तो शुरू हो चुका है इनका ये मेकओवर वाला प्रोसेस। वैसे आज रचना अपने साथ लेकर आई है ये पिक्चर, जिसमें वो बताएंगी कि उन्हें किस तरह से अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
3: तो हम इसको गीता रचना से सीधा रचना
2: बनाएंगे। मतलब मैंने सोचा था सिमिलर ऐसा कुछ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हेयर कलर है, एक्साइटमेंट तो होती है कि यार क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो मैंने बोला आई शुड ऑल्सो गो प्रिपेयर, सो दैट यू नो मालिका फील्स कंफर्टेबल, क्योंकि शी इज कम प्रिपेयर विद व्हाट शी वांट्स। तो मेरे दिमाग में था कि इस पेज पे कुछ अच्छा सा ऐसे, व्हाटएवर शी फील्स सूट्स मी द बेस्ट, आई वुड गो विद दैट।

0: तो शुरुआत हो चुकी है, तो क्या फर्स्ट स्टेप हुआ है पहले ये बताइए।
1: आई थिंक वो टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बालों पे बिना ब्लीच के अगर हो पाएगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ब्लीच जितना कम यूज हो बालों पे उतना अच्छा होता है। दे आर ट्राइंग के, क्योंकि वर्जिन हेयर जो होते हैं जिन पे कभी कलर नहीं हुआ होता उसे वर्जिन हेयर कहते हैं, बट हमने कभी ना कभी तो करवाया ही होता है, सो इट्स नॉट वर्जिन। सो दे आर जस्ट चेकिंग कि अगर बिना ब्लीच के हो जाएगा तो बेस्ट है, वरना फिर शायद हमें ब्लीच करना पड़ सकता है। सो लेट्स होप कि बिना ब्लीच के हो जाए।
2: तो भाई अब धीरे धीरे सारा प्रोसेस होगा। वैसे इसी बीच रचना ने हमसे शेयर की अपनी सगाई की ये कहानी।
0: कितनी एक्साइटेड है पूरा मेकओवर के लिए आप?
1: आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक इट्स बीन 2 years। मैंने अपने बालों को कलर या सच कोई लुक अलग से जो कहते हैं ना हम, वो हेयर कट तो ऑब्वियसली बात हम करवाते हैं, बट आई हैव नॉट टच्ड माय हेयर फॉर अ प्रॉपर मेकओवर काइंड ऑफ अ चेंज, के हाईलाइट करवाया हो या कुछ करवाया हो। 2 years बैक आई हैड डन समथिंग लास्ट आई रिमेम्बर, उसके बाद से मैंने नहीं करवाया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट हाउ विल दिस टर्न आउट। खुद को एक अलग तरीके से देखना इज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, कि 2 साल से मैंने अपने बाल ऐसे ही देखे हैं, सिंपल ब्लैक डार्क ब्राउनिश। सो आई एम वेरी एक्साइटेड।
0: अच्छा वैसे एंगेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो अपने ऑडियंस को रिंग दिखा दीजिए आप
1: प्लीज। बहुत ही स्वीट सिंपल थी, बिल्कुल मेरे जैसी रिंग है जैसी मुझे चाहिए थी। टिंग टिंग टिंग,
0: आपकी चॉइस है।
1: यस एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट, सो आई एम श्योर हर लड़की इस बात से रिलेट कर पाएगी कि जब भी हम एंगेजमेंट की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, दिस इज समथिंग दैट स्टेज विद यू फॉर एवर एंड यू वॉन्टेड टू बी वेरी स्पेशल, यू वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी यू, यू नो, जो आपके बारे में या आपकी, एटलीस्ट मेरा ये मानना था कि जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ जैसी मैं हूँ वैसी मेरी रिंग होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारे पिक्चर्स सेव करके रखे थे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट देन जब रिंग, जब चीज़ें फाइनल हुई क्योंकि फाइन अब एंगेजमेंट करनी है, तो तब सोचा कि अब कैसी रिंग, सारे फोटोज निकालेंगे सब में से बेस्ट डिज़ाइन ये वो। एंड हुआ ये था कि मैं और अमित हम लोग कहीं ऐसे महावीर नगर साइड पे चाट थोड़ा खाने के लिए गए थे, एंड वहाँ पे ना बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे ज्वेलरी के स्टॉल्स लगते हैं, एंड वहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे मुझे ये रिंग दिखी इमिटेशन में। ये सेम रिंग थी बट मतलब थोड़ा अलग था, ऑब्वियसली बात है थोड़ा डायमंड सेटिंग अलग था उसका, बट सेम डिट्टो सेम रिंग दिखी ऐसे इमिटेशन में। मैं उस रिंग देखी, मैंने ऐसे रखी, मैंने बोला दिस इज द रिंग आई वांट, एंड अमित इज लाइक आर यू श्योर यू डोंट वांट टू सी एनी अदर डिजाइन, आई मीन यू नो यूजुअली गर्ल्स फॉर वेरी गो फॉर वेरी लाउड डिजाइन, लड़कियों को मतलब मैंने मोस्टली जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है मैं वो बोल रही हूँ। मैंने देखा कि यू नो थोड़ा पॉप ऑफ डायमंड होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे बड़ा सा कुछ, मैंने बोला नहीं मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ ब्लेंड हो जाए, इट हैज टू बी स्टेटमेंट एट द सेम टाइम वेरी सिंपल वेरी क्लासिक वेरी मीन। सो आई डिडंट वांट टू मेनी डायमंड्स, आई जस्ट वॉन्टेड वन सिंपल डायमंड, वो भी मुझे एकदम बड़ा नहीं, समथिंग नाइस स्मॉल डेलिकेट। एंड वही एग्जैक्ट रिंग मैंने ज्वेलर्स से कहकर सेम बनवाई है, तो यस ये वही रिंग है जो मैंने महावीर नगर से खरीदी थी किसी स्टॉल से इनविटेशन की, एंड मैंने उनको वो डिज़ाइन दी, एंड ज्वेलर हैज डन एन अमेजिंग जॉब, उन्होंने सेम वैसी जैसी मुझे चाहिए थी बनवा के।
0: वैसे हमने एक चीज नोटिस कर ली, भले ही रचना ना बताए, ये रिंग के साथ साथ यहाँ ए भी
1: लिखा लोगो, इट्स ए एन आर, तो अमित एंड रचना का लोगो। जब मैंने एंगेजमेंट के नेल्स करवाए थे तो मेरे को ऐसे सिंपल नेल्स चाहिए, जैसे कि मैंने कहा वही सिंपल एंड क्लासी, तो मैं वही सिंपल एंड क्लासी काइंड ऑफ नेल्स आई वांटेड, जस्ट लिटिल क्रोम, बट मैंने बोला कुछ तो करें, तो मैंने फिर ये रिंग फिंगर पे ये क्यूट सा लोगो बनवाया था हमारा। सो या है ना, मतलब सिंपल क्लासी, वेरी मी वेरी मी वेरी रचना, जो मुझे जानते थे नो दिस इज वेरी रचना, दिस इज वेरी रचना, दिस इज वेरी रचना।
0: So, बाकी की लव स्टोरी भी हम जानेंगे लेकिन थोड़ा और इनको पैम्पर होने के बाद।
1: रुक रुक के
2: तो भाई हेयर कलरिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच थोड़ी पेट पूजा भी तो बनती है। वैसे रचना शादी के बंधन में बंधने वाली है, इसीलिए वो अपनी डाइट का पूरा पूरा ख्याल रख रही है और डाइट वाला खाना ही खा रही है।

0: इट्स अ ग्रीन जूस. बहुत सारे लोग इसके बारे में हम जानते हैं. इतना कोई ऐसे स्पेशल आजकल जो मैं देख रही हूँ ना कि लोग जितना ध्यान दे रहे हैं ओवरऑल भी खुद की डाइट पे, खुद की हेल्थ पे, तो दे नो व्हाट दिस इज कॉल्ड ग्रीन जूस. इसमें क्यूकम्बर और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, पुदीना वुदीना सब मिक्स करके ऐसे ग्राइंड करके इसको बनाया जाता है. दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, यू नो, ग्लो. सो यस, दिस इज ग्रीन जूस. आई थिंक ये सबको पीना चाहिए. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुल्हन वुल्हन के लिए, बट आई फील सबको पीना चाहिए. दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ.
1: टेस्ट कैसा है? थोड़ा चख के मुझे बताओ.
0: थोड़ा सा ऐसा होता ना, See, I think the pudina and the जो cucumber के थोड़ा mixture थोड़ा ऐसे देता है आपको, but it's nice. I like it.
1: So diet का कितना ख्याल रखा जाए?
0: बहुत ख्याल रखा जा रहा है भाई, बहुत. I've been struggling with weight from a very long time. एक तो जो खाना, मैं आम गुजराती, please तुम कैसे मुझे बोलोगे मीठा मत का. फटाफट पूरी आ रही है
1: गुजराती, इसका तो है ही आमरस पूरी फेवरेट डिश.
0: लाइक फेवरेट डिश से ज्यादा आमरस इज लाइक आर, इट्स अ रिलीजन. गर्मी के दिनों में तुमने आमरस नहीं खाया, मतलब रोटली ने रस नहीं खाया, तो तुमने क्या किया? तुम समर में नहीं हो, मतलब तुम कहीं और हो. तो हमारे घर पे जैसे हर गुजराती घरों में आपको इस वक्त दिख रहा होगा आंबे की भर भर के पेटियां, तो हमारे घर पे भी कुछ वैसा ही. आज ही सुबह आई थिंक वन ऑफ माय सिस्टर्स फ्रेंड, उन्होंने भिजवाया रत्नागिरी से, उनके बाग है. इट्स प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स, उनके रत्नागिरी में बाग होते हैं. तो उन्होंने वहां से इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा फल मैंने बहुत रेयरली देखा है. मतलब यू नो वहां के मैंगोज जो थे इतने बड़े, एंड दे आर सो यम, बट आई कांट ईट देम, क्योंकि फिर मेरे मुंह पे जो इतने बड़े बड़े अंबे आते हैं. आई हैव अ वेरी बैड एक्ने प्रोन स्किन, जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अंबे नहीं खाए हैं. हाँ, मतलब मेरे बाल बहुत बड़े लंबे हैं एंड बहुत घने हैं, तो यूजुअली बहुत दिक्कत होती है. बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, बट शी इज़ वेरी क्विक, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. उनको पता है, एंड शी इज़ वेरी क्विक. आधे से आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एयर हो चुके हैं, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज. वरना मुझे पहले कहा था मैं, आपके बाल अच्छे हैं पर बहुत है. या इट्स अ गुड थिंग, टच वुड, इट्स अ गुड थिंग. बट हाँ, आधे, आई थिंक आधे बाल हो चुके हैं, बाकी के आई थिंक शी विल डू इट नाउ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड.

I'm feeling like I was going to peek a boo. Okay. This is tere naam wali vibes hai meri filhal, theek hai? Please. वो क्या था वो गाना था ना, सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसे बाल. मैंने सीरियसली ले लिया थोड़ा, मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने दिल पे ले लिया है. सोने जैसा रंग है मेरा फॉइल वाले बाल. हर तरफ फॉइल ही फॉइल है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मतलब धीरे धीरे ना और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड आई थी कि यार मतलब आई एम गोना नॉट लुक द सेम एनी मोर. अब ये देखने के बाद तो आई एम वे मोर एक्साइटेड. एंड वैसे थोड़ा ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रह जाए तो मैं आप लोग को देख पाऊंगी. इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट वॉज वेरी स्वीट कि उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको. एंड बट मैं बस होप करी कि इसका रिजल्ट अच्छा है. होप नहीं, मुझे पता है अच्छा आएगा. जितनी मेहनत इन्होंने की है वो दिख रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है.

0: यस एवरीथिंग इज हेल्दी नाउ. क्या हेल्दी है, तुम खाना कौन बोल रहा?
1: अच्छा लग रहा है खाने.
0: क्या लग रहा है? नहीं, आई एंजॉय ईटिंग फ्रूट. आई लव ईटिंग फ्रूट एक्चुअली. सो आई एम ओके विद दैट. दिस डिश इज प्योर फ्रूट सैलेड. सो आई एम ओके विद दैट. अच्छा लग रहा है, मुझे फ्रूट खाने बहुत पसंद है. मैं फ्रूट्स कितने भी खा सकती हूँ. हाँ, कंपेयर टू इफ यू टेल मी ग्रीन सैलेड या फ्रूट सैलेड, आई विल से फ्रूट सैलेड ऑलवेज. ऑलवेज

0: tell you one thing. Every girl with long hair will say yes to this. जिन भी लड़कियों के लंबे बाल होते हैं ना, जब कोई और उनके बाल धोता है ना, इतना अच्छा लगता है. अरे भाई, it is so relaxing because when we wash our hair as a girl who's with such a long hair, इतना दिक्कत होता है, ऐसा लगता है अरे यार अभी तो धोए, अभी तो इनको सुखाना है, फिर नॉट्स निकालना है. बट जब कोई और आपके हेयर वॉश करके देता है ना, ऐसा लगता है वो इंसान भगवान है.
1: Oh my God. आज के डेट पे मैं भगवान हूँ.

0: वॉश के बाद अब बारी दूसरे स्टेप की, जहाँ पर एक और कलर की लेयर लगाई जा रही है।
1: अभी भी बाकी है थोड़ा, दिस इज स्टिल नाइस, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। खुद को ऐसे कलर हेयर में, कलर्ड हेयर में 2 साल बाद देखना, इट्स वेरी न्यू फॉर मी, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। I'm not used to seeing myself like this. बहुत, मतलब भाई मेरे बाल पूरे almost I think black brownish थे, and now it's all colored and this is looking so beautiful. But this is not it. कुछ अलग होने वाला है इसमें। Step two है and I'm now more excited for that.

0: बालों ने जो हम लोग ने गोल्डन गोल्डन बाल कर दिए थे, मुझे जो एक सुनहरी बना दिया था, नाउ उसके ऊपर उन्होंने सेकेंड टेक्सचर लगाया कलर का. और दिस इज मोर ऑफ लाइक ग्लोबल काइंड ऑफ अ थिंग, पूरे ही बालों में लगाया उन्होंने एज यू कैन सी. एंड अब हमें वेट करना है, अब जो इसको हम लोग निकालेंगे उसके बाद रिवील होगा फाइनल फाइनल लुक. बट ठंड बहुत लग रही है भाई, बहुत ठंड लग रही है, बहुत मतलब गर्मी है. आई नो मई का महीना है बट मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक मेरे बाल गीले हैं और गीले बालों में ही हमने वो फटाफट लगा दिया है जो प्रोडक्ट था, जो सेकेंड कोट था कलर का, तो आई थिंक उस वजह से ही सही. मुझे बहुत ठंड लग रही है.
1: तो भाई हेयर कलर लग चुका है, लेकिन अब इसे सूखने में थोड़ा समय लगेगा. और इसी बीच रचना ने हमसे शेयर की अपनी कई और बातें, जैसे कि सगाई के दिन वो कैसे इमोशनल हुई. साथ ही इन्होंने बताई अपनी और अमित की लव स्टोरी, कैसे वो अमित से मिली, कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा, किसने किसको प्रपोज किया. तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनकी ये प्रेम कहानी.
0: सर इमोशनल हो गई थी सो मुझे ना कई मुझे बहुत लोग ना ऐसे छेड़ा करते थे, अरे तेरी तो इतनी बार एंगेजमेंट हो गई ऑन स्क्रीन, या तुम लोग यू नो यू विल बी यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स. एंड आई वाज वेरी आई एम लाइक वन ऑफ दोज ब्राइड्स, वो नहीं होती है जो सब कर रही होती है, हाँ अंकल लाइट वहाँ लगा दो, हाँ टेबल यहाँ पे, हाँ फूल यहाँ पे लगे. आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज अरेंजिंग एवरी थिंग, लिटरली एवरी थिंग. मतलब कहते हैं ना कि हाँ ये हो गया वो हो गया वो, मतलब मेरा ना मतलब सब जगह पे ध्यान था कि सब लोग रेडी होके आ गए ना, मम्मी कैसी लग रही है, सिस्टर कैसी लग रही है, भाई कैसा लग रहा है, पापा कैसे लग रहे हैं, सबके फोटोज हुए हैं कि नहीं, ये वो, मतलब मैं सब आई वॉज लाइक आई वॉज दैट ब्राइड हू मैनेजेस एवरीथिंग, वॉज ऑल्सो एन इवेंट प्लानर. And I remember my sister-in-law telling me that क्योंकि सब गेस्ट आने लग गए थे, ऑलमोस्ट फैमिलीज वगैरह सब आ गए थे, एंड देन फिर बाद में हम लोग ने एंट्री करनी थी ना, तो मुझे बोलते हैं बड़ी बड़ी स्वीटली शी इज कमिंग एंड टेलिंग मी कि आपको नहीं लगता आप लोगों को थोड़ी देर ऐसे ऐसे छुप जाना चाहिए, सो देर इन इट्स अ सरप्राइज एंट्री. आई जस्ट लुक्ड एट हर, शी इज सो क्यूट, बिकॉज शी इज सो क्यूट, शी इज लाइक कि आप लोगों को ना अभी छुप जाना चाहिए, फिर सबके सामने से एंट्री अच्छा लगेगा. आई वॉज बट मेरे को रियलाइज ही नहीं हो रहा था तब तक कि यार मेरी ही एंगेजमेंट है, हाँ यार एवरीबडी सपोज टू सी दैट एंट्री, अरे लाइक यू नो ब्राइड एंड ग्रूम लाइक दैट. देन आई वाज लाइक ओके हाँ राइट, फिर भी बट ऑब्वियसली बात है थोड़ी रिचुअल्स करने थे, बहुत सारी तैयारियाँ करी थी, वो सब कर रहे. एंड देन जब द मोमेंट केम ना व्हेन आई एंड अमित हैड अ एंट्री एंड एवरीथिंग, तो इट वाज सो मैजिकल. मतलब सी आई नो बहुत लोग जो होते हैं ना वो बोलते भी है कि अरे इतना ही है नहीं, बट जब जो उस मोमेंट में होता ना वो समझता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ लव मैरिज वेर यू हैव डेटेड द पर्सन फॉर सो लॉन्ग एंड यू हैव बीन थ्रू योर पर्सनल अप्स एंड डाउन, बीट करियर वाइज, बीट पर्सनल लाइफ वाइज, या जिस भी तरीके से हो, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रगल होती है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है जो शायद हम नहीं समझते, वो बेहतर समझते और हमें उसे जज नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक मेरी अपनी एक कहानी थी, मेरे अपने स्ट्रगल्स या मेरी अपनी एक जर्नी रही है अमित के साथ. सो आई फेल्ट व्हेन वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज व्हेन वी हैड अ एंट्री एंड हमने गाना सिलेक्ट किया था इशकजादे, इट वॉज सो मैजिकल एंड आई डोंट नो मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे नहीं लगा था. वैसे मैं बहुत रोती हूँ, मुझे पता है, एज जागृति, एज विधि, एज यू नो आर्या फ्रॉम द बंगी, मैं बहुत रोती हूँ. बट मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँगी, बिकॉज बट देन दैट मोमेंट यू नो आई फेल्ट लाइक ऑल दोज ईयर्स ऑफ डेटिंग, ऑल दोज days of standing by each other in tough times, all those days of fighting over stupid issues. इट जस्ट वो सब ऐसे ना आंखों के सामने ऐसे दिख रहा था, वो इतना सुंदर पल था, स्पेशली व्हेन ही मेड मी वेयर द रिंग, इट ऑल फेल्ट रियल. तब तक ऐसे लग रहा था कि हाँ नाइस, इट्स फन. तब वो ऐसे हिट हुआ कि इट्स माई फियांसे नाउ, इट्स हैपनिंग, दिस इज द मैन आई एम गोना स्पेंड माई लाइफ विथ, हुम आई हैव चोजन, एंड आई एम सो हैप्पी, आई वाज सो प्राउड. आई थिंक बहुत रेयरली आपको ऐसा फील होता है कि आपने जिसे अपनी जिंदगी के लिए चुना है, मतलब यू नो यू फील सो हैप्पी एंड प्राउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड आई एम सेइंग रेयरली बिकॉज आज के ज़माने में आई थिंक थोड़ी दुर्लभ चीज़ हो गई है ये. आई प्रे कि हर किसी को ये फीलिंग एक बार, हर लड़की को, हर लड़के को ये फीलिंग एक बार हो, जब वो अपने पार्टनर को अपने बाजू में देखे, अपने साथ खड़ा हुआ देखे, कि दिस इज़ फॉर एवर. बहुत फिल्मी कहानी है, बट आई मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट फॉर यू गाइस. इट्स बीन 5 years, अभी 3 जून को हमें 5 years हो जाएंगे डेट करते हुए एक दूसरे को. ये आई हैव ऑलवेज बीन अ गर्ल हुज बिलीव लाइक डेट कर रहे तो शादी के लिए वरना नहीं टाइप्स. तो एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. ही ओन्ड दिस कैफे, उनका अपना कैफे था, कैफे ATM करके इन बोरीवली. एंड जब मैं बैरिस्टर बाबू कर रही थी तब उन दिनों मैं वहाँ पे ना वो सेट पे 7 की शिफ्ट लगती थी, तो 7 to 7 एंड देन इन द इवनिंग आई यूज टू गो देयर समटाइम्स टू हैव अ कप ऑफ टी, क्योंकि वरना ना बहुत रूटीन थोड़ा अब डिप्रेसिंग हो जाता है घर से सेट, सेट से घर. एंड दैट्स वेयर आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक यार ये तो बड़ा क्यूट सा बंदा है. फिर पता चला ओनर है. एंड उनकी एक बहुत अच्छी खास बात थी कि ही वॉज दो ओनिंग अ ब्यूटिफुल कैफे, यू नो स्टिल ही यूज टू, ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल टेकिंग ऑर्डर्स, यू नो डिलीवरिंग द ऑर्डर्स एंड लाइक दैट, लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑन द टेबल्स एंड एवरीथिंग. तो ही नेवर हैड दैट एटीट्यूड कि अरे मेरा कैफे है या यू नो आई ओन दिस सच अ बिग ह्यूज कैफे, आई एम नॉट सपोज टू गो एंड टेक ऑर्डर्स एंड ऑल. एंड हर एक जो उनके कस्टमर्स थे उनके साथ उनका एक अच्छा रिलेशन था. आई वुड स्माइल एट एवरीवन एंड आई वाज लाइक दिस इज वेरी नाइस. एंड या देन स्लोली वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी स्टार्टेड. नाउ दैट्स अ क्वेश्चन. ओह आई डोंट नो, आई फील लाइक कॉलिंग अमित मदान राइट नाउ. हु प्रपोज्ड अमित मदान? नोबडी प्रपोज्ड. So it was mutual. I think he did. He was the first one to say I love you. But there has been no proposal as such. But yeah, he was the first one to say that he loves me. He was the first one. उन्होंने पहले confess किया था that he likes me and he loves me and blah blah. And then I was like, okay, fine. Even I like you. So yeah, that's how it started. बाकी की तो जो फिर journey रहा है वो तो बहुत सुंदर रहा. But yeah, that's how we met. सगाई, आई थिंक सगाई वाले मोस्टली सारे पिक्चर्स मैंने इंस्टा पे डाले, बट एक केक कटिंग वाला पिक्चर है जो बहुत मैं वो सारे वीडियोस आई डोंट हैव अपेरेंटली. माय फोटोग्राफर विल होपफुली हेल्प मी विद दैट वेरी सून. आई एम फेसिंग वो सारे जो इश्यूज जो ब्राइड्स वगैरह अपनी स्टोरीज पे इंस्टा पे डालते थे ना ऐसे बना के कि पता नहीं फोटोग्राफर कभी वीडियो देगा ये वो मुझे अब फील हो रहा है. सो आई विल शो यू ब्यूटिफुल मोमेंट. ये मैंने फोटो नहीं डाली है, ये हमारा केक था. It was a beautiful cake. It's me and my fiance. So this, ये picture मैंने किसी के साथ share नहीं किया अभी तक. This was very special. This is very special. Yeah, finally he went on his knees for sure.

0: तो भाई बाकी बातों के साथ साथ मेकओवर करना भी तो जरूरी है। अब बारी हेयर वॉश की, जिसके बाद फाइनल लुक सामने आएगा ब्लो ड्राई और हेयर स्टाइलिंग के बाद। तो देखा आपने कितनी एक्साइटेड है रचना अपना नया लुक पाने के लिए, जिसके लिए काफी मेहनत भी है।
1: ओके, तो अभी स्पेशल पिक्चर्स मैंने दिखा दिए जो किसी ने नहीं देखे, वो अब आप लोगों ने देखे, बट आई थिंक अब टाइम हो गया ये हेयर वॉश करने का और फाइनल लुक रिवील करने का। सो आई विल सी यू इन 5 मिनट्स।

सुपर एक्साइटेड. ये मैं आई थिंक 10 बार बोल चुकी हूँ. इट्स ओके, ये मैं 10 बार बोल चुकी हूँ और ये सच है बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. नहीं नहीं, यस फाइनल लुक जब दिखेगा. हाँ मुझे फुल कॉन्फिडेंस है. उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस मुझे समझाया सबसे पहले तो कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके क्या रीज़न है करने के. अभी उन्होंने वो मेरे हेयर एकदम ड्राई करने वाले तो उन्होंने पहले हीट प्रोटेक्टर लगाया, अभी उन्होंने सीरम लगाया जिससे उनके लैंग्वेज में बालों का ही सनस्क्रीन टाइप कहते हैं. सो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पूरा प्रोसेस समझाया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फाइनल रिजल्ट. अच्छा लग रहा है. उन्होंने इतना प्यारा मसाज दिया मुझे भी हेयर वॉश करते वक्त. मैं सो ही गई थी, फिर मुझे उठाया कि बस हो गया अभी खत्म. सो लेट्स वेट, एक बार वो ब्लो ड्राई करेंगे फिर हमें फाइनल लुक पता चलेगा बालों का.

0: दुबई अपना ये नया लुक पाकर रचना काफी खुश है और उन्हें अपना ये मेकओवर काफी पसंद आया है।
1: So, what do you think? I think it's amazing. I feel I'm in love with this new look, this new Rachna, this new Jagriti, this new Vidhi, whatever you want to call me. And जैसा कि मैंने कहा था, मैं बहुत टाइम बाद कुछ अलग करवा रही हूँ. And जितनी मैं एक्साइटेड थी, आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट वर्थ इट थी. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई लव इट. एंड अ बिग थैंक यू टू द टीम ओवर हियर एट शैलोम, दे वर सो स्वीट. प्लीज़ मालिका मैम, प्लीज़ कम हियर, यू गाइस वर सो स्वीट. दे अंडरस्टूड कि मुझे क्या चाहिए था. आई डिडंट वांट एनीथिंग टू लाउड, आई डिडंट वांट एनीथिंग टू सटल. कुछ अलग, जैसा इन्होंने कहा था गीता को सीता बनाते हैं, तो लिटरली इन्होंने गीता को सीता बना दिया है. आपको कैसा लग रहा है?
2: यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल. Very happy that you're happy.
1: Oh, I'm very happy. Can you see my smile? Yes. Jaw to jaw. Year to year wala smile hai ye.
2: Yes.
1: I'm very happy. Thank you so much. Thank you.
3: पसंद आया.
1: Please. जो भी मेरे fans हैं, जिनको भी मेरा look अच्छा लगा है, नहीं लगा है, तो भी please come here. रीमा जी से एक बार I think मिलना तो बनता ही है. She's magician. She's done an amazing job on my hair.

0: देखोगे। सो लुक तो फाइनल हो गया और जैसे कि आप इनकी स्माइल देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा खुश है रचना अपने न्यू लुक से,
1: बहुत ज्यादा।
0: सो अपने फैंस को ये बताइए कि शादी कब है और क्या सोच रखा है, कुछ प्रिपरेशंस की।
2: मैं हर चीज को ऐसे सस्पेंस नहीं रखूंगी। आई नो यू गाइस आर एक्साइटेड टू नो कि शादी कब है। शादी बहुत जल्द है, बस इस साल नहीं है, थोड़ा टाइम है शादी को, बट बहुत जल्द है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है, तो बहुत जल्द है। एंड प्रिपरेशन वाइज तो आई थिंक मुझे बस ऐसी शादी चाहिए। ये शायद बहुत बार बहुत लोगों ने कहा है, सुना है कि मेरी शादी में मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली खुश हो, एंड उसी की प्रिपरेशन चल रही है। ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत खुश है विद अमित एंड द वे द पार्टनर आई हैव चोजन फॉर मी, द फैमिली आई हैव चोजन फॉर मी, बट यू नो प्रिपरेशंस के दौरान एंड एवरीवेयर आई एम सीइंग दो स्माइल्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बस चाहती हूँ कि एंड तक, मेरी विदाई तक वो जो स्माइल्स है वो बरकरार रहे। तो बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है कि क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें। अभी तक तो कुछ फाइनलाइज भी नहीं किया, अभी तो जस्ट एंगेजमेंट हुई है, मुश्किल से तो एंगेजमेंट की चीज़ें फाइनल कर पाए थे। नाउ वी आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस होल जर्नी, बट हाँ गोल यही है कि मुझसे ज़्यादा, इनफैक्ट उनको भी यही चाहिए कि हम दोनों से ज़्यादा अगर कोई खुश हो हमारी शादी में, तो सोचो हमारी खुशी कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा खुश हो हमारी शादी में।
0: सो गुजराती दुल्हन बनने वाली है या पंजाबी दुल्हन, बिकॉज पंजाब वेडिंग होगी
2: पूरी। इट्स अ गुजराती दुल्हन, प्लीज आउट एंड आउट, एज आई सेड आई एम अ गुजराती गेटिंग मैरिड टू पंजाबी एंड बट हाँ ऑब्वियसली बात है शादी के बाद बहुत सारा पंजाबी अवतार भी दिखेगा आप लोगों को हर फेस्टिवल में, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। एंड बट ये दुल्हन थोड़ी गुजराती ही होगी।
0: दोनों स्टाइल में शादी होंगी या
2: नहीं? नहीं, वी विल बी हैविंग अ वेरी स्वीट सिंपल वेडिंग वेयर वी रिस्पेक्ट बोथ द रिचुअल्स, दोनों जो एंड आई टेल यू व्हाट, हमें ऐसा भले लगता हो कि पंजाबी गुजराती है, बट रिचुअल्स बहुत सारे सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें सेम है जो उनके इसमें होती है, शायद नाम अलग है पर उसमें जो प्रोसेस है, जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इट्स गोना बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ यू नो रिचुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड कल्चर,
0: टू स्टेट्स काइंड
2: एक्चुअली। तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत।
0: अच्छा, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अब जैसे जागृति तो बंद हो चुका है, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स कोई फैंस आपको देख पाएंगे?
2: गुड क्वेश्चन। वेल एज ऑफ नाउ मैं बस ये कहूँगी कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग, बट आई नो सबको पता है अरे ये तो शादी कर रही है, अरे ये तो शादी कर रही है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड से माय फोकस इज वेडिंग थोड़ा, बट यू नेवर नो, यू माइट जस्ट गेट सम न्यूज, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग इन पाइपलाइन दैट आई विल डेफिनेटली से।
0: तो जाते जाते क्विकली कॉल तो बनता है अमित को,
2: आई कैन गिव हिम एन ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, सॉरी आई जस्ट फर्स्ट चेक विद हिम इफ ही इज अवेलेबल फॉर अ वीडियो कॉल। सो गाइज मैंने मेरे फियांसे अमित को कॉल किया है एंड ही हैज गॉट समथिंग टू टेल यू ऑन। बच्चों यू ऑन?
3: या हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग द न्यू लुक टू माय फियांसे।
2: थैंक यू वन सेकंड, as I said, he is not, as you all know now, he's not an actor, so he's not used to all these things. So he's very pooky, he's very cute, he's very raw. But actually, even I want to say thank you so much, Saas Bohan Betiya, for this new look. I am very excited to flaunt this everywhere possible. And this was fun.
4: Yeah, fun.
2: Very much fun.
0: हम तो मतलब ऐसे off camera बात कर रहे दोस्त को।
2: मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी दोस्त को लेकर आई हूँ, क्या चल यार बाल को कुछ करवाते हैं यार, हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे, तो दिस वॉज वेरी नाइस। इनफैक्ट बीच बीच में ऐसा था वी आर टॉकिंग एंड वी आर फकरी, ओ हमें ये रिकॉर्ड करना है, ओ हमें, तो आई थिंक दिस शोज के यू नो कितना अच्छा टाइम बिताया आपने।
0: थैंक यू सो मच रचना एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज। थैंक यू।

0: देखा अपने नए लुक के साथ साथ अपनी शादी के लिए भी काफी एक्साइटेड है रचना। उम्मीद है रचना को हम जल्द ही नए किरदार और नए सीरियल में देखें। अब वक्त हो चला है रचना को बाय बाय कहने का। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: किचन हैक्स और मॉडर्न गैजेट्स ये तो होते हैं बहुत ही रॉकिंग, लेकिन इनका भी अगर आप ओवरडू करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा ये आपके लिए शॉकिंग। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक स्टोव पूरा दिन ऑन रहे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी तो बढ़ जाएगा, तो प्लीज जरा संभल कर। फिलहाल नजर डालते हैं हम इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे जहां हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। जी हाँ, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: नजर डालते हैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही डूके इस प्रोमो पर, जहाँ नंदनी का हो गया है रॉय से सामना।
2: I'm so sorry. आपको कुछ चाहिए अंकल?
3: मैं आपसे किसी के बारे में जानना चाहता हूँ।
2: किसके बारे में?
3: अंश वीरानी। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ उनकी डेथ कैसे हुई थी।
2: कौन है आप?
3: I'm Rio. मैं अंश वीरानी का बेटा हूँ।

प्यार विंस ओवर पैसा। एमटीवी के शो स्प्लिट्सविला 16 के विनर बने हैं गुल्लू यानी कि कुशाल तन्वर और कायरा अनु।

की शाम सना अरफीन खान ने गर्ल्स हेल्दी डेट रखी थी, जहां उनके साथ पहुंची सना सुल्तान, हुनर हाली और दिव्या अग्रवाल।

0: वसुधा तो हमसे कह रही हैं कि घर की जिम्मेदारियों के बीच मॉडर्न सुविधाएं अपनाएं, ये भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस एक जगह, लेकिन हमारे ये जो मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं ये दूसरी जगह। अब देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें तो इलेक्ट्रिक स्टोव है द बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वसुधा और देवांश के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी कहानी में आज।
1: करिश्मा का देव पर अत्याचार, होश में आई चंद्रिका और किया करिश्मा पर प्रहार। क्या अब करिश्मा करेगी अपना अगला वार? जी टीवी के सीरियल वसुधा में देव और वसुधा ने मिलकर करिश्मा को ऐसे उकसा दिया है कि आज करिश्मा अत्याचार करने पर उतर आई है। जरा देखिए कैसे उसने अपने आदमियों के हाथों देव को अपना बंधक बना लिया है। ऐसे में वहाँ पर प्रभात भी जाते हैं जो देव को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी करिश्मा के आदमी प्रभात को भी पकड़ लेते हैं। ऐसे में देव जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो तो एक ही काम कर रहा है और वो है करिश्मा को उकसाने का, और ऐसे में करिश्मा पर वो असर हो भी जाता है।
2: देव, इस पत्तमीज़ औरत के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। देखो करिश्मा है बड़ी जिद्दी, वो इतनी जल्दी तो पीछा छोड़ेगी नहीं। करिश्मा आती है मुंह के खाती है पर वो हिम्मत नहीं हारती। तो अभी तो सब पासा पलट गया क्योंकि चंद्रिका होश में आ गई है, और करिश्मा ये नहीं चाहती थी कि चंद्रिका होश में आए, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पता था कि जिस दिन ये होश में आएगी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और क्योंकि चंद्रिका स्तंभ है इस शो की, इस फैमिली की, एंड वो होश में आ गई है। अब वो जो कुछ भी करेगी करिश्मा का हर चीज़ उल्टा पड़ने वाला है। जितना उसने शासन किया है, कुशासन किया है, अब सबका भांडा फोड़ होने वाला है और करिश्मा अब अपने ससुराल जल्द ही पहुंचने वाली है शायद।
3: अब मासा बहुत दिनों से चुप हैं, हम सब बहुत बोल लिए, अब मासा का बोलने का वक्त आ गया है। तो हमने बहुत कोशिश की कि किस तरह मासा को ठीक करें, तो हमें पता चलता है कि देव अगर हर्ट होता है तो मासा के बॉडी में हलचल होती है, इमोशंस में हलचल होती है। तो ये सब प्लान एक है जिसमें देव ने डिसाइड किया है कि वो पिटेगा और मासा शायद उठ जाए, और वैसा ही होता है। और फिर अब तो आप आगे देख ही लेंगे।
1: भाई अपनी माँ को ठीक करने के लिए देव किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन प्रभात पर करिश्मा हमला ना करे इसीलिए दादी आकर प्रभात को वहाँ से ले जाती है।

ने कह दिया, बेचारा देव मार पर मार खा रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा। ऐसे में करिश्मा को दिखाई दे जाता है पंचिंग वाला हथियार। बस फिर क्या, उस पंचिंग वाले हथियार को वो उठाकर पहुंच जाती है देव के पास उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है वैसे ही वहाँ पहुंच जाती है चंद्रिका, और फिर जो करिश्मा का हाल होता है वो देखने लायक होता है।

0: जमीन पर खड़ी हो वो जमीन हमारी है। हमारे घर पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
1: चंद्रिका एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, इसीलिए देव ज्यादा मार खा रहा है। मतलब चंद्रिका अपनी मुट्ठी बंद कर रही है, आंखें बड़ी कर रही है, गुस्सा आ रहा है उनको। वो मतलब क्योंकि उनको समझ में, वो ट्राई कर रही है तो लास्ट में जाके फिर उस वो करिश्मा का हाथ पकड़ लेती है।
2: थप्पड़ और करिश्मा का अलग ही कनेक्शन है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी।
3: जी अब मासा उठ चुकी है तो अब एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि देव के लिए मासा उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा मोरल बूस्टर है। और अब मासा उठ चुकी हैं तो देव का दिमाग भी और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। और मासा की हिम्मत से होपफुली करिश्मा को वापस बाहर फेंक पाएंगे और अपना घर और बिजनेस वापस हासिल कर पाएंगे।
4: अब देव, वसुधा और पूरा परिवार जो चाहता था वो हो गया है। चंद्रिका को होश आ गया है, यानी करिश्मा की अब बैंड बजेगी और करिश्मा फिर से सलाखों के पीछे जाएगी। लेकिन इसी के साथ क्या घर में जो भेदी है उसका भी खुलासा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
5: देवियों को आज आपके राम जैसे बेटे के साथ आप ही की अयोध्या में अन्याय हो रहा है। क्या अपने ही बेटे के साथ हो रहे अन्याय को अपनी आँखों से देखेंगे आप?
4: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: फैमिली किचन में यहाँ तो इलेक्ट्रिक स्टोव को लेकर शुरू हो गया है डिस्कशन। अब क्या ये रिश्तों में लेकर आएगा एक नया मोड़? तो क्या कहला रहे हैं यहाँ पर इनके रिश्ते? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अभीरा और अरमान के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज, क्योंकि यहाँ भी है आपके लिए ट्विस्ट का तड़का।
7: खतरे में पड़ी अरमान की जान,

0: अभीरा बनी रक्षक। सीरियल में आया आग वाला ट्विस्ट। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अरमान संग हो गया है हादसा। असल में घर में तो चल रही थी पार्टी, सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि खुशी गम में बदल गई। भाई अरमान जा रहा था कमरे में और कमरे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है। ऐसे में सभी घर वाले काफी घबरा गए हैं, क्योंकि अरमान उस कमरे में जो फंसा हुआ है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ऐसे में भागती हुई अभीरा पहुँचती है उस कमरे की तरफ अरमान को बचाने के लिए।
1: Eight, seven, six, five, four.

भाई दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका है। ऐसे में देखिए कैसे अभीरा दरवाजा तोड़ रही है और आखिरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद अभीरा ने दरवाजा तोड़ ही दिया और अरमान वो तो बेहोश पड़ा है।

0: लेकिन अभी रहे ना, वो सब कुछ संभाल ही लेगी। तभी तो देखिए कैसे वो अरमान को जगाने की कोशिश में लगी हुई है, और फाइनली अरमान को होश आ ही गया।
1: मैं रूम में जाता हूँ और रूम में बच्चियों ने लॉक चेंज करा लिया लगता है, घर में हाईटेक करवा लिया घर को। अभी तक तो हम सिर्फ गुंदियाँ खोलते थे, और लेकिन इस बार इन्होंने पीछे से, हम फैमिली के चक्करों में बिजी रहे, इन्होंने थोड़ा हाईटेक लॉक लगवा लिया, जिस वजह से कमरे में बंद हो जाता है अरमान और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब क्योंकि घर बहुत पुराना है तो हमारा जो पूरा सिस्टम है ना इलेक्ट्रिक, वो अपडेटेड नहीं है ना, टाइम भी चाहिए, तो इसलिए वो क्या है, हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ता है, हम सीधा आग ही लगती है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया कमरे में, पूरा सब कुछ जल गया भैया, सब कुछ जल गया, बेटी का कमरा पूरा जल गया। इतने अरमानों से अरमान ने वो कमरा बनाया था, लेकिन सब जल गया, और उस चक्कर में अरमान बाहर नहीं निकल पाया, और इतना भयंकर धुआं हो गया, आई डोंट नो वो कर्टन्स कौन से मटेरियल के थे कि बेहोश हो गया अरमान वहाँ पे। और फिर कर्टन्स भी तो जले, मेन कर्टन जले, वो स्पीकर भी जला, कोई तो ऐसी चीज जली जिसकी वजह से गैस ऐसी जहरीली फैली अंदर।
0: इस हादसे ने तो अरमान और अभीरा की जोड़ी ही बना दी। देखिए कैसे आज अभीरा ने अरमान से प्यार का इजहार किया और उसे गले से लगा लिया। भाई दोनों के दिल में प्यार तो बहुत है, और एक दूसरे से दूर जाने का डर इन्हें और भी ज्यादा करीब ले आया। लगता है इनकी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी है, क्योंकि प्यार का इजहार फिर से जो हो चुका है

0: कैन डू एनीथिंग. थर्ड अटेम्प्ट में खोल ही लिया मैंने, चाहे कोई कुछ भी कहे. अरमान अंदर था, उसको बचाना था. उसने अभी अभी मुझ पे भरोसा करना शुरू किया. इसको अभी इतनी जल्दी नहीं जाने दे सकते यार, अभी कहानी बाकी है. यू कांट गो टू द गॉड्स हेवन. हाँ, आई लव यू भी कहा. मतलब वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आई थिंक वल्नरेबल आप इतने ज़्यादा हो जाते हो कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन को आपका सामने वाला जिससे आप प्यार करते हो ऐसी सिचुएशन में, प्लस उसने अभी टेस्ट ही था वो दादी सा एंड ऑल का जो इसने पास कर लिया, तो हर तरह से आप मतलब चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं अभीरा के हिसाब से. तो उसने बोला कि आई नीड यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सुन के चमत्कार हुआ.
1: उसको लगा पहले कि वो शायद इमेजिनेशन में तो नहीं है, धीरे धीरे आंखें खुली क्योंकि वो ये तीन शब्द सुनने के लिए कब से मर रहा था. तो उसने सोचा कि अब जब बोल दिया तो मरने की क्या जरूरत है. तो वो फिर आंख, वो एक शक्ति आपके अंदर ना एक ऐसी आती है कि जो आपको जगा देती है. तो वो शक्ति उसके अंदर आई और उसने बोला शक्ति माँ शक्ति. और वो फिर वहां से उठा और देखा कि वो खुद की साड़ी में उसके आग लगी है और अभीरा जो अरमान के पाँव में आग लगी उसको बुझा रही है. यहाँ पे मैं सोचा कि पाँव बोल देता हूँ.
2: तो भाई अरमान और अभीरा की इस लव स्टोरी में अब कौन से नए ट्विस्ट आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
3: आज तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्टोव पर ही कर रही हूँ कुकिंग. वैसे क्या पक रहा है आज मन्नत की कहानी में? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट, या फिर कोई नया ड्रामा, या फिर कोई नई सिचुएशन, या कोई नई परेशानी, या फिर हो गया है कहानी में फिर से कोई नया कंफ्यूजन? वेल, जो भी हो, एंटरटेनमेंट तो सुपर है इस कहानी में. कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास.
2: मन्नत की हैप्पी फैमिली. दुआ को सुनाई अपनी कहानी. जल्द होगी मन्नत और विक्रांत की शादी. कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर फिर एक बार एक होने जा रहे हैं मन्नत और विक्रांत, जिसमें दुआ की भी हामी है. ऐसे में देखिए कैसे आज मन्नत पहुंच गई है ये टॉय लेकर सुनाने दुआ को अपनी आप बीती या यूं कहें अतीत की कहानी. और एक एक कर कहानी के ही जरिए दुआ को मन्नत ने अपनी कहानी बताई.
4: मान जा. अरे मान जा.
5: अच्छा बंटी, कोई बात नहीं बेटा, दुआ को बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, रहने दो ना, मैं खेलती हूँ आपके साथ. ठीक है, मैं आपको ना कहानी सुनाऊं. कहानी सुनिए, किस्मत ने खेला खेल और रानी की लाइफ बन गई फेरी टेल. बाबा जी ने भेजा उसके लिए एक राजा. दोनों को एक दूसरे में दिखने लगा संसार सारा. धीरे धीरे हो गया प्यार. लोग कहते थे रब ने बनाई जोड़ी है यार. पर फिर लग गई बुरे लोगों की नजर. क्या उनका प्यारा घर राजा रानी हो गई. छोड़ के पीछे अपना सारा संसार. पर फिर दिल में था एक इंतजार. आने वाली थी प्रिंसेस प्यारी, बदलने वाली थी दुनिया सारी. और एक सच्चा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, जिसने सहारा दिया बार बार हर बार प्रिंसेस बनके खुशियों का.
2: भाई धैर्य भी अपनी इस हैप्पी फैमिली से काफी खुश है क्योंकि वो दुआ से बेहद प्यार करते हैं. और मन्नत की इस कहानी में धैर्य का भी अहम हिस्सा है.
6: जब प्रिंसेस ने लिया जन्म, खुशियों से भर गया हर मौसम. इंदौर में थी वो पली बड़ी, सबकी आंखों की चमक. मम्मा की जान बाबा की प्यारी थी नटखट सी, लेकिन बातें करती थी बहुत सारी, पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पकड़।
2: तो भाई इनकी इस कहानी और खुशियों में तीसरी कड़ी यानी विक्रांत भी जुड़ गए, जिन्होंने अपनी भी कहानी बताई। इसी के साथ अब बातों ही बातों में इन्होंने बता दिया है कि मन्नत और विक्रांत शादी करने वाले हैं।
7: और वो छोटी सी प्रिंसेस सपने से लगे कंपटीशन के बहाने मुंबई चली आई, उसे क्या पता था किस्मत क्या रंग दिखाएगी। एक अनजान आदमी से उसकी दुनिया रुक जाएगी। थोड़ा खुश जरूर था, दिखने में थोड़ा खलूस था। धीरे धीरे वो कंपनी का बदल
2: तरफ आज विक्रांत हो रहे हैं काफी इमोशनल और अपनी मम्मी नीतू को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। तभी वहाँ पर दुआ भी पहुँचती है और ये हैप्पी फैमिली देखने को मिलती है, जहाँ दुआ ने शादी के लिए हामी तो भर दी है लेकिन साथ ही रखी है शर्त कि विक्रांत को दुआ की सारी बातें माननी होंगी और टेस्ट पास करना होगा।
5: किस बात की चिंता कर रहे बता मैं?
4: ऐसे नहीं खिलाते।
7: मेरी वजह से स्ट्रेस होता है, ओके? I am sorry. एक काम करते क्या हम ये सब भूल जाते, दोस्ती फिर से शुरू करेंगे। What do you say?
4: मैं आपकी और मम्मा की शादी तय करूँगी। Stop. मैं आपके कुछ टेस्ट लूंगी। आपको मेरा दूसरा बाबा बनना है ना, तब को प्रूफ करना होगा आप मेरे दूसरे बाबा बनने की क्वालिटी है या नहीं।
7: या यस मैम, जैसे तुम होगी वैसी होगी। योर विश इज माय कमांड।
8: बहुत ही क्यूट सा उसने एक क्यूट सी बात बोली है कि आपको मेरे दूसरे बाबा बनना है तो मैं आपको टास्क दूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आप उस लायक हैं ये या नहीं है। मतलब शी सेड दैट। और वो बहुत प्यारी चीज़ बोलती है कि सबसे पहले तो आपको मेरा फेवरेट कलर पहनना पड़ेगा ना, आपको और मम्मा को। और उसका फेवरेट कलर होता है रेड, जो विक्रांत को पसंद नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें, क्यूट क्यूट चीज़ें जो एक बच्ची अपने फादर को बोलना चाहती है वो। और मैं और विक्रांत तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं जब वो ये कहती है कि उसने अप्रूव कर दिया है इस बात के लिए कि मम्मा और सलूजा, मिस्टर सलूजा की शादी होगी। सो वी आर हैप्पी कि ये बात फिक्स हो गई है कि अब शादी होगी।
2: तो भाई मन्नत और विक्रांत का पुनर्विवाह तो होगा, लेकिन इसमें धैर्य ट्विस्ट का तड़का लाने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विक्रांत और मन्नत एक हो जाए। और अब वो कहानी में लाएगा ट्विस्ट।
9: बुआ, क्या आप सच में मिस्टर सलूजा और मम्मा की शादी से खुश हो? अयोग्य
4: आप चाहते हो तो मैं ओके हूँ।
10: बुआ मेरे बच्चे, I'm really sorry, लेकिन इस शादी को मैं ऐसा बर्बाद करूंगा ना कि मन्नत और विक्रांत की मोस्ट अवेटेड शादी मोस्ट डिजास्ट्रस शादी बन जाएगी।
2: तो भाई अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत की इस शादी में क्या तमाशे होते हैं, क्योंकि ये तमाशे करने वाला कोई और नहीं बल्कि धैर्य है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सिंपल कुकिंग जो होती है काफी रॉकिंग, लेकिन देखिए अगर आप अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं LPG सिलेंडर्स का तो ये डेफिनेटली होगा आपकी किचन के लिए और आपके वॉलेट के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारे इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
11: रोशेश भैया, आपने हमेशा मम्मी जी के लिए कविता लिखी है, मेरे लिए भी।
12: पेश है बॉलीवुड, OTT और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं रूपाली गांगुली की, जो फिर एक बार नजर आ रही है मोनिशा साराभाई के अंदाज में। वो भी अपने देवर रोशिश सारा भाई के साथ। देख लीजिए उनका ये इंटरेस्टिंग वीडियो।
11: रोशिश भैया, आपने हमेशा मम्मी जी के लिए कविता लिखी है, मेरे लिए भी कुछ सुनाइए ना।
13: ओह यस, वेरी फ्रेश फॉर यू।
11: थैंक यू।
13: ओ मनीषा भाभी, आपका सीरियल अनुपमा है जैसे गर्मी में ठंडी छास। लेकिन मामा को हमेशा ये लगता है मिडिल क्लास, बट नॉट बकवास।
12: भाई खबरें आ रही हैं कि फिर एक बार बन सकती है श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर की जोड़ी। भाई फिर एक बार ये करेंगे अपना साथ साथ टेलीविजन कमबैक। कुंडली भाग्य के बाद फैंस बेहद एक्साइटेड हैं इस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए।

खबरें आ रही हैं कि सृष्टि जैन अब नहीं नजर आएंगे जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बिटिया में, और उन्हें रिप्लेस कर रही हैं मराठी एक्ट्रेस नम्रता प्रधान। वैसे आपको बता दे कि खबरें ये भी थी कि सृष्टि जैन को रश्मि गुप्ता रिप्लेस कर सकती है, लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन निभाएगा सृष्टि का किरदार।

0: ये सच है, ये सच है कि इश्क मजहब मुल्क और सरहदों का मोहताज नहीं होता।
1: स्टार प्लस लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है सैराब। भाई ये एक इंटेंस लव स्टोरी होगी जिसकी ना कोई हदें होंगी। ऐसे में इस सीरियल में खबरें आ रही हैं कि हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट की जोड़ी बन सकती है, लेकिन इस पर अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है।
0: अगर जमाने में उम्र ना होती तो क्या इश्क ना होता?
2: कैसे समझाऊं तुम्हारे इस नादान दिल को, ये जमाना ऐसे इश्क को चैन से

खबरों की माने तो एक विलेन के बाद फिर एक बार साथ काम करेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो भी एक इंटेंस लव स्टोरी के लिए।

0: जय गुरुदेव।
1: जय गुरुदेव।
0: आज हम श्री श्री रविशंकर जी की बेंगलोर में स्थित गौशाला में आए हुए हैं और ऐसा अद्भुत नजारा, यहाँ अराउंड 19 स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज जो अलग अलग स्टेट्स की जो गाय हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से उनका रख रखाव और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल।
2: श्री श्री गौशाला पहुँचे अंकिता लोखंडे और विकी जैन, ऐसे में उन्होंने शेयर किया है अपना ये एक्सपीरियंस।
0: बहुत सेवा बोलते हैं, अद्भुत है, मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं हो सकता। सब गाय में एक खास बात है, कोई भी अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबका पर्सनल इतना अच्छे से रख रखाव हो रहा है और इतना ह्यूमन टच है उनको कि हर गाय किसी को भी आप जाके जब छूते हैं, सहलाते हैं, प्यार करते हैं तो कोई भी आपको मारने के लिए नहीं आती।
1: मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि मैं किसी गौशाला में ऐसे आई हूँ। याजी जो है वो हमेशा बोलती थी रात की जो रोटी होती है वो गाय को देनी चाहिए।
3: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बस एक चीज आपको दिखानी थी, आप देख रहे हैं ये पीछे एक स्कीमर है जो लगाया जा रहा है, हाइट पे लगाते हैं जिसकी वजह से धूप थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है।
2: भाई इन दिनों मुंबई में काफी गर्मी है, लेकिन चाहे आम आदमी हो या फिर कलाकार, वो रोज अपने काम पर जरूर जाता है। ऐसे में देखिए कैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर गर्मी से बचने के लिए किया गया ये उपाय।
3: गर्मी ना लगे, सीरियसली हैट्स ऑफ टू दिस गाइस, जिनकी वजह से हमें छांव में काम करने का मौका मिलता है। धूप तो बहुत है लेकिन फिर भी धूप का अपना मजा है। बस आपको ये दिखाना था नजारा। टेक केयर गाइस।
2: बहुत जल्द होने वाला है नागिन 7 का फिनाले। ऐसे में खबरों की माने तो तेजस्वी प्रकाश, अनीता हसनंदानी के साथ साथ दिव्या अग्रवाल भी रीयूनाइट करेंगी नागिन 7 के फिनाले के लिए।

बन गई है अभिषेक मल्हान और अश्नूर कौर की जोड़ी। वे ये दोनों बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे, क्योंकि उनके सोशल मीडिया की स्टोरीज कुछ यही कह रही है।

मेकर एटली और प्रिया ने अनाउंस किया है अपनी बेबी गर्ल का नाम। जी हाँ, उन्होंने अपनी बिटिया रानी का नाम रखा है मियू।

0: तुषार कपूर ने फाइनली कंप्लीट कर ली है गोलमाल 5 की शूटिंग। जी हाँ, 79 डेज का उनका ये स्केड्यूल अब खत्म हो चुका है।
1: मीरा जी, अगर आप 1,00,000 रुपए जीत कर जाती हैं, तो क्या करेंगे?
0: नजर डालते हैं तुम हो ना के इस प्रोमो पर। भाई यहाँ पर तो घर की सुपरस्टार बन गई है टेलीविजन की रानी।
2: अम्मा रिकॉर्ड करे में हीरो की जरूरत पड़े, अम्मा आपके सहयोग हमें चाहे।
1: वीडियो में हम का करत रही चम्मच बचावत रही इसके लिए हमें मुंबई से जौनपुर ले जात रही।
3: अरे यही तक ना, आपका तो जौनपुर आई नहीं है ना?
1: हाँ नहीं आई।
3: हाँ आपके राजीव जी क्यों ना कहे।
1: हाँ
3: आओ, राजीव आया है।
1: आपके कुमु जी से बात करते हैं। कुमु जी, आपके लिए जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई, क्या बदलाव आए जब ये आपकी जिंदगी में?
4: थोड़े टाइम पहले मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि घर पे आईसीयू रूम बनाना पड़ेगा। वो सारा सोनी ने किया था और मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ।

0: शाहिद कपूर अब नजर आएंगे कियारा अडवाणी और जानवी कपूर के साथ वही उनकी आने वाली रोम कॉम फिल्म में।
1: तो देखा आपने किस तरह टेक्नोलॉजी आसान बना रही है हमारी डेली लाइफ को। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक स्टोव बन गया है इन हालातों में हम सब का स्मार्ट साथी, जो बचा रहा है पैसे, मेहनत और टाइम। अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप रखें अपना अच्छे से ख्याल और बनाइए इस इलेक्ट्रिक स्टोव को अपना नया साथी। टेक केयर, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, अनिश्चित काल के लिए बंद हुई प्रतिदिन होने वाली पदयात्रा, एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक। 20 मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, बाबा का किया जाएगा तिलक श्रृंगार, मंदिर कमेटी ने साझा की जानकारी। जोश और उत्साह के साथ चार धाम यात्रा जारी, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन को पहुंचे, केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 5 देशों के दौरे के 4वें चरण में नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने किया रिसीव, भारतीय समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में किया स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल हुई सफल, अभ्यास में दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का ठंडा मौसम, गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।

0: दिल्ली में आज से हुई मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो, 24 फेरे लगाएगी ट्रेन। सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किया जा रहा लगातार उत्साहित, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो यात्रा की दी हिदायत। सुरक्षा और सुविधा की किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी तैनात। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की, एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से सफर किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की, कहा मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए, मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव मधु तेवतिया ने भी मेट्रो में सफर किया, स्टेशन के बाहर नजर आई। एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने मेट्रो में सफर किया, लोगों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग की अपील की। चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदार यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स, 1 महीने से कम समय के भीतर 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में पहुंचकर कर रहे हैं बाबा के दर्शन, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं भक्तों के स्वास्थ्य की भी लगातार हो रही है जांच। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी तैनात, 30 यात्रियों को अभी तक मिल चुकी है सुविधा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 4 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। इन दिनों रोजाना 19,000 से 25,000 के बीच में श्रद्धालु लगातार हाजिरी लगा रहे हैं, अब तक 4 लाख का आंकड़ा पार। गौचर, जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें। वर्तमान बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को हो रही है आसानी। रात में बढ़ती ठंड के बीच इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़े साथ रहने के साथ हिदायत दी जा रही है। 23 मई से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, 22 मई को पंच प्यारे गोविंद घाट से होंगे हेमकुंड साहिब रवाना। गुरुद्वारे में भी जोर शोर से लगातार सजावट का काम तेज, कपाट खोलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से होगी सज्जा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश, यात्रा शुरू होते होते पिघल जाएगी बर्फ। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हो जाएगा रवाना। 22 मई को गोविंदघाट गुरुद्वारे में पहली अरदास के साथ घंघरिया के लिए कूच करेगा जत्था। झांसी के इस्कॉन मंदिर में भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, मोर नौका में विराजे श्री राधा और गोविंद। नौका विहार के साक्ष्य बने हजारों भक्त, हर कृष्ण के महामंत्र की भक्तिमय हुआ माहौल। दीपों से किया गया मंदिर का श्रृंगार, श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण। ब्रज थीम पर बनी राधा कृष्ण की रंगोली, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य विषय भजन और प्रेरणादायक वचनों से। नौका विहार समारोह को भक्तों ने बताया वृंदावन की दिव्य अनुभूति, रोजाना रात 9:30 से 10 बजे तक होता है आयोजन। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। धारपुरशाला में वाघ देवी की पूजा पाठ के दौरान लगातार जारी स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी दर्शन किए। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री मंगलपुरी। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, सांसद हेमा मालिनी ने शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत को कम करने के लिए नया मेमोरेंडम जारी कर दिया, अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश। स्वीडन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किए गए। किसी विदेशी देश से मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सामुदायिक स्वागत समारोह के दौरान बंगाली संस्कृति का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय, स्वीडन में भी इससे अछूता नहीं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, व्यापार और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर फैसला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, जल्द निपटारे के आदेश। भुवनेश्वर में पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, नगर निगम पेड़ों पर लगा रहा है आर्टिफिशियल घोंसले। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ नजर आई हाथी। वन्यजीव विशेषज्ञ ने हाथी से जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा। जम्मू के ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राजौरी जिले में स्थित नंबलन गांव का दौरा किया। आईपीएल में अब प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। चिपकॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना जरूरी। इस सीजन में शुरुआती तीन मुकाबले हारने के बाद सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें रखी हैं जिंदा। हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 7 जीत हासिल करके अंक तालिका पर तीसरे पायदान पर बनी हुई है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ा भारी नजर आता है, अब तक खेले गए कुल 24 मैचों में 16 मैच जीत चुकी है। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगी पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का नाम। राजस्थानी लोक कलाकार तकाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तकाराम भील ने अलगोजा वादन को ग्लोबल पहचान दी। डारा ने यूरोविज सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीतकर रच दिया इतिहास, बुल्गारिया को प्रतियोगिता में पहली बार जीता। सोफिया पहुंचने पर एयरपोर्ट पर डारा का जोरदार स्वागत किया गया, हजारों फैंस ने रंगारंग कर दिया, फैंस ने वेलकम में डारा की तस्वीर वाले बैनर लहराए। रंगारंगा गाने में पब्लिक वोट और जूरी वोट दोनों ने किया शानदार प्रदर्शन, मुकाबले में इजराइल दूसरे पायदान पर। दारा ने बंगारंगा सॉन्ग को उम्मीद और सुकून का संदेश बताया, उन्होंने कहा कि यह गीत लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। तितलियों से गुलजार हुआ दक्षिण पश्चिम चीन, यूनान प्रांत की होंगे बटरफ्लाई वैली में बड़ी संख्या में पहुंची तितलियां। इन तितलियों को देखने के लिए दूर दूर से तमाम सैलानी पहुंचते हैं। तितलियों की प्रजातियों के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है होंगे बटरफ्लाई वैली। चीन के शांक्सी प्रांत में सामने आई पांडा की बहुत प्यारी तस्वीर, अपने बच्चे को मुंह में दबाए नजर आई पांडा। इस फुटेज में पांडा मां को अपने बच्चे को धीरे धीरे अपने मुंह में उठाकर ले जाते हुए नजर आती है। पोलैंड के काल्वरी वेजरोवो में वार्षिक तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया, भारी फेयर थ्रोन को लेकर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया।
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: After multiple assassination attempts, they can't even get...
3: They're reliable.
4: Always when I need them.
1: To live sports action.
5: One-hand jam by LeBron on the break.
6: That's another three, Steph Curry.
1: And your favorite music.
7: Well, the dawn begins to crack.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
8: Good news today is really good. It's good in this case. It's good in this case. It's good in this case.
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना

0: कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पांतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

जल का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई प्रतिदिन होने वाली पदयात्रा, एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक। 20 मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, बाबा का किया जाएगा तिलक श्रृंगार, मंदिर कमेटी ने साझा की जानकारी। जोश और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा, अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। 5 देशों के दौरे के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने रिसीव किया, भारतीय समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में किया स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल हुई सफल, अभ्यास में दिल्ली पुलिस, CISF, NSG समेत कई सुरक्षा एजेंसियां हुई शामिल। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का ठंडा मौसम, गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है, अविनाशी शिव की महिमा अपरंपार है, अगर शिव की कृपा मिल जाए तो जीवन की नैया आसानी से भवसागर पार लग जाएगी। देखिए, माना जाता है कि भोले भंडारी जलाभिषेक के साथ बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव महापुराण को सबसे कारगर माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि शिव महापुराण के पाठ और पूजन से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं।

0: शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के है मन में शिवाला, महादेव की पूजा से होगा महाकल्याण, मनोकामना पूरी करेगा शिव महापुराण। सभी पुराणों में शिव महापुराण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में महाकाल की संपूर्ण शक्ति समाई है। शिव महापुराण के हर श्लोक में शिव की महिमा का बखान है। इसमें अविनाशी शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान समेत उनकी पूजा पद्धतियों का भी वर्णन किया गया है। हम आज शिव के इस अद्भुत और चमत्कारी ग्रंथ की महिमा का बखान करेंगे, तो सबसे पहले एक नजर शिव पुराण से जुड़ी खास बातों पर। शिव पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं। ये श्लोक 7 संहिताओं में बटे हुए हैं। शिव पुराण में शिव की महिमा और उनकी पूजा पद्धति का वर्णन है। शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने वालों का भगवान शिव कल्याण करते हैं।
1: सर्वप्रथम शिव पुराण में भगवान शिव जी की स्तुतियां, आराधनाएं, पूजा पाठ का संपूर्ण विधान को प्रतिपादित किया गया है। साथ साथ में शिव पुराण की महिमा के बारे में कहा गया है कि जिसने जीवन में अपने मन और चित्त को एकाग्र करके एक बार शिव पुराण का अध्ययन कर लिया अथवा शिव पुराण का श्रवण कर लिया तो मानो वह शिव के समीप्य कैलाश धाम को प्राप्त करता है। साथ साथ में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलषित कामनाओं को

0: संसिद्ध करने के लिए शिव पुराण पर्याप्त है।
1: भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन शिव महापुराण में भगवान शंकर के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ज्योतिष मानते हैं कि शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। हम आपको वो नियम और संयम भी बताएंगे, लेकिन पहले महाशिव पुराण की पूजा विधि। पूजा के दिन सुबह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो जाएं, साफ वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी करें। भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भर कर रखें। बेलपत्र, आग और धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल भगवान को चढ़ाएं। यदि शिवालय ना जा पाए तो शुद्ध मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। इसके बाद शिव महापुराण का पाठ पढ़ें या सुने। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करें। इसके बाद व्रत को समाप्त करें।
0: विस्तार से विधि ऐसी है कि करालम, महाकाल, कालम, कृपालम, पंचोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, अष्टोपचार पूजन है, जहाँ पर राजसी पूजन है अनेक प्रकार से, यहाँ तक कि आठ आठ प्रकार की आरतियों का विधान है कि आठ टाइम की आरती करिए। ये मंगला आरती है, ये प्रातः काल की आरती है, फिर ये मध्यान्ह काल की आरती है, फिर मध्यान्ह शयन की आरती है, फिर जो है तो सायंकाल की आरती है, रात्रि काल की आरती है। इस प्रकार से आठ प्रकार से राजसोपचार पूजन और षोडशोपचार वर्णन किया गया है।
1: शिव महापुराण अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन खास नियमों को जिनके पालन में छिपा है आपका सर्व कल्याण। कथा सुनने से पहले बाल, नाखून आदि काटें। शरीर को शुद्ध करके साफ कपड़े पहने। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए व्रत रखें। व्रत के दौरान भूमि पर सोएं। किसी की निंदा, चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। सात्विक भोजन खाएं, तामसिक पदार्थों का त्याग करें। किसी भी तरह का नशा ना करें। कथा पूर्ण होने पर शिव महापुराण और शिव परिवार का पूजन करें।
0: शिव पुराण पढ़ने का सबसे बढ़िया नियम है कि स्नान, ध्यान, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का ध्यान रखते हुए, और संभव हो तो भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनि शुचिस्रवाहा, ऐसा विष्णु सहस्र नाम में भी वर्णित है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने का नियम स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ में, और जिस प्रकार से, जिस भावना से संभव हो पाए उस प्रकार से करना चाहिए।
1: भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में लिखा है। इन उपायों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: ऐसी मान्यता है कि शिव महापुराण का पाठ कष्टों का समूल नाश करने वाला है। इसमें शिव की संपूर्ण शक्ति समाई हुई है। शिव महापुराण का पाठ हर बाधा को दूर कर सकता है। मान्यता है शिव महापुराण में बताए गए कुछ बेहद सरल और कारगर उपायों को अगर अपनाया जाए तो सभी समस्याओं का हल निकल सकता है।

0: जिनकी उपासना से छट जाएगी संकट की छाया, जिनके चरणों की धूल से उपजी है संसार की माया। कीजिए अविनाशी गंगाधर की महिमा का बखान, शिव महापुराण के पाठ से होगा कल्याण। शिव महापुराण को भगवान महादेव की संपूर्ण महिमा का बखान माना जाता है। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि शिव महापुराण के पाठ से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
1: ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि भाव ही मेट सकहिं त्रिपुरारी, विधि के विधान को भी मेटने में भगवान शिव सक्षम है, क्योंकि सभी तो देव हैं लेकिन भोले बाबा भगवान शिव देव नहीं है, वो देवों के देव हैं, इसलिए उनका नाम है महादेव। इसलिए हम लोग कहते भी हैं हर हर महादेव। तो भगवान शिव जो है तो ऐसा यदि चाह लें तो ऐसा कोई विधि का विधान नहीं जिसको भगवान मेटने में सक्षम ना हो।
0: भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में महाशिव पुराण में लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है और शिव की कृपा पाई जा सकती है। तो आप भी नोट कीजिए शिव महापुराण के बेहद सरल और चमत्कारी उपायों को। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है, गेहूं चढ़ाने से संतान होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट देना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से सेहत का वरदान मिलता है।
1: उनको जल आप चढ़ाओगे तो जल से आपको समस्त कामनाओं की प्रतिपूर्ति कर देंगे। अक्षत चढ़ाओगे तो अलंकार को दे देंगे। आप भगवान शिव को जो है तो दूध चढ़ाओगे तो वंश की वृद्धि दे देंगे। तो हर प्रकार से भगवान शिव खुद में ही चमत्कारिक है और उनसे जुड़े हुए सभी चमत्कारिक प्रयोग किए जा सकते हैं। और शिव पुराण का अक्षर अक्षर जो है तो सावर मंत्र है और चमत्कारिक मंत्र है, जिसका प्रयोग करके जीवन में आप जो चाहोगे वो पालोगे, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है।
0: शिव कृपा निधान यानी बेहद करुणा से भरे देवता के रूप में पूजनीय है। धार्मिक आस्था से शिव का करुणा भाव ही संसारिक जीवन में सुख का कारण है। शिव महापुराण कहता है कि शिव की कृपा पाने का सबसे आसान और सटीक उपाय है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। शास्त्रों के मुताबिक पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण व्यक्ति के जीवन में हर काम और मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र के ध्यान मात्र से ही शिव भक्त का जीवन कलह मुक्त रहता है।
1: आपने कथाओं के माध्यम से जाना होगा कि मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। हमारे काशी में मार्कंडेय जी का मंदिर भी है कि उनको मात्र 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन की आयु मिली थी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय ऋषि जी चिरंजीव हो गए और अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम भी आ गया। तो भगवान शिव खुद में चमत्कारिक है।
0: शिव महापुराण में पंचाक्षरी मंत्र के जप का विधान बताया गया है। जिनके स्मरण से शीघ्र और मनचाहे नतीजों को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए हमें करना होगा कुछ नियमों का पालन। शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र को गुरु से प्राप्त करें, इससे मंत्र जाप अधिक प्रभावी और मंगलकारी होता है। देवालय, तीर्थ या घर में साफ, शांत व एकांत जगह बैठकर मंत्र जप करें। नमः शिवाय के आगे ओम लगाकर जाप करें। गुरु, पति, माता पिता के प्रति सेवा भाव और सम्मान मंत्र जाप काल के दौरान ना भूलें। पंचाक्षरी मंत्र जाप की अवधि में खान पान, वाणी और इंद्रियों पर पूरा संयम रखें।
1: शिव पुराण के प्रमुख मंत्र जहां पर अष्टाक्षर मंत्र का वर्णन आया है और प्रमुख मंत्रों में पंचाक्षर मंत्र जिसे हम लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, ये भगवान शिव का सर्व प्रधान पंचाक्षर मंत्र है। और भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताया गया है कि शिव जी के जो मंत्र हैं मानो वो मंत्र भाव और आराधना से पर प्रतिपूरक है, और भाव और आराधना के माध्यम से समस्त जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव प्रतिपादित किए जाते हैं।
0: अविनाशी शिव तो दया और करुणा के सागर हैं। सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग फूलों को अर्पित करने के उपाय बताए गए हैं, वे हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो हम आपको बता रहे हैं शिव महापुराण की महिमा। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव महापुराण में बताए गए उपाय आपकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण में फूलों का प्रयोग भी बताया गया है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं फूलों से जुड़े कुछ महाप्रयोग।

0: शिव सृजन करता है तो साथ में संहारक भी है महादेव। माना जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ महादेव की आराधना की जाए तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं।
1: सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने आप में सरलता होनी चाहिए। इस विधि से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये जो हमारा शरीर है आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, वो हमारी आत्मा ही मंदिर है और भगवान शिव उसी मंदिर के अंदर में सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान शिव हमारे हृदय के अरविंद में रहते हैं। और जो आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, जो उनकी पत्नी है पार्वती मैया, वो मानो हमारी बुद्धि है मति है, और जो हमारे प्राण धन है वो भगवान के गण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाति विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, यही भावना से, सरल भावना से भगवान शिव की उपासना और आराधना की जा सकती है।
0: माना जाता है कि भोलेनाथ का हृदय फूल जैसा कोमल है, भक्ति की शक्ति से वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। तभी तो वो देवों और दानवों में भेद नहीं करते, सभी को समान रूप से वरदान देते हैं। शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण में फूलों के भी कुछ प्रयोग बताए गए हैं। तो आइए ज्योतिष में बताए गए इन पुष्पों के बारे में जानते हैं जिन्हें भगवान शिव को चढ़ाने की मान्यता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से फूल से कृपा पाई जा सकती है। शिव को लाल और सफेद रंग के फूल चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हार सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है।
1: शिव पुराण में पूजा की विधि भगवान शिव की तो बताया गया है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म अणतो अणियान महतो महीयान। भगवान शिव जी की पूजा की विधियों में कहा गया है कि जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी भक्ति है, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो केवल भगवान शिव जी को एक लोटा जल अर्पित कर देने से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
0: शिव महापुराण के ये सरल और कारगर उपाय आपको भगवान शिव की कृपा का पात्र बना सकते हैं, इसलिए इन उपायों को अपनाएं और महादेव से खुशियों का वरदान पाएं।
2: प्रार्थना हूँ स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNTA के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: जल का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गए पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा।

0: सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 23 मई का वो शुभ दिन बस आने ही वाला है जब श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।
1: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा। इसमें महान शख्सियतें उस दिन 5 प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंद गार्ड 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंद धाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे।
0: ऋषिकेश से गोविंद घाट तक गुरुद्वारों में सजावट के साथ तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुद्वारों में भी सजावट जोर शोर से की जा रही है। हेमकुंड साहिब के रास्तों पर अभी भी बर्फ है और सेना रास्ता बनाने में लगी हुई है। खबर है कि कपाट खुलने के दिन हेमकुंड गुरुद्वारा को 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा जो उसी दिन शाम को श्रीनगर गुरुद्वारा पहुंचेगा। अगले दिन 21 मई को श्रीनगर से गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारा से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा जिसमें जत्था सिख संगत भी हेमकुंड जाएगा। ये जत्था पहले दिन घाघरिया पहुंचकर विश्राम करेगा और अगले दिन पंच प्यारों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
2: तेईस मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था चलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। पहले दिन श्रीनगर और अगले दिन गोविंद घाट और 21 को जब गोविंद घाट पहुंचेगी तो 22 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं।
0: हेमकुंड गुरुद्वारा में सेवादार पहुंच चुके हैं और तरह तरह से गुरुद्वारा को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हल्की बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है। यात्रा शुरू होते ही बर्फ पिघल जाएगी। यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: जल का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जानिए क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: भक्तों के लिए बड़ी खबर, वृंदावन में अनिश्चितकाल के लिए दैनिक पदयात्रा पर लगा विराम, एकांत वार्तालाप पर भी रोक।

रविवार को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार। मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी। श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पूजा। पांच देशों के दौरे में नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। भारतीय समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में स्वागत किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल हुई सफल। अभ्यास में दिल्ली पुलिस सीएसएफ एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का ठंडा मौसम। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी।

0: हेल्थ फिटनेस कूल गर्मी जाओ भूल आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब पारा 45 के पार हो तो कैसे रखें अपना ख्याल, इस समर कैसे करें सेल्फ केयर, आज इसी को लेकर हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका गुड हेल्थ वाला प्लान क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शरीर उम्र के हिसाब से सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत कॉमन होती हैं। तो इस समर कैसी हो आपकी गुड हेल्थ वाली डाइट, कैसा हो गुड हेल्थ वाला समर फैशन, और कैसी हो आपकी लाइफस्टाइल जो इस गर्मी आपको रखे कूल कूल, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहरहाल दिल्ली से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर अगर हम कोलकाता तक की बात करें तो पूरे देश में फिलहाल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, कुछ ऐसी जगहों पर पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों की अगर हम बात करें तो लू की चपेट में है। गर्मियों में कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे करें सेल्फ केयर, जेएनटी पर एक्सपर्ट्स के साथ बनाएं अपना समर हेल्थ प्लान। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या हो मेंटल हेल्थ का हैप्पीनेस डोजेस को लेकर भी हम बात करेंगे। तपती गर्मी से खुद को अपने परिवार को कैसे बचाएं, इन तमाम सवालों का जवाब आगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ चिलचिलाती गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों के लिए तेज गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ गया है। श्रीगंगानगर प्रयागराज जहां पर तापमान 46 डिग्री के पार जा चुका है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गर्मी बहुत ज्यादा है। आज लखनऊ जयपुर में भी पारा बढ़ा हुआ है। तो लू से खुद को आप कैसे बचाएं, मौसमी बदलाव से बच्चों को कैसे आप बचाएं, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो ऐसे में सूती कपड़े आप पहन सकते हैं, लिनन खादी के ढीले कपड़े आप जरूर पहने जब भी आप गर्मी में या फिर बाहर निकल रहे हैं। कपड़ों के रंग का विशेष तौर पर ख्याल रखें, सफेद या फिर लाइट पिंक स्काई ब्लू कलर के कपड़े आपको जरूर पहनने चाहिए, और कपड़ों के हल्के रंग धूप को सोखते नहीं है। तो घर से बाहर निकलते समय आंखों और स्किन का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहने। समर में हेल्दी डाइट बहुत जरूरी हो जाती है, और साथ ही साथ खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को हाइड्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ तेल मसाले और जंक फूड से परहेज करें, बचे इससे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने डेली हेल्थ में या कहें कि डेली रूटीन में अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो यकीन मानिए कि गर्मी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि फिलहाल तो मौसम विभाग का ही कहने कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है, तो मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है।
1: अगर देखा जाए उष्ण लहर से लेके भीषण उष्ण लहर का परिस्थितियां जो है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं उसके साथ साथ देश के मध्य भाग में आने वाले जो हफ्ता है, माने कि आज से लेके लगभग जो 23 तारीख के बीच में अधिकांश दिनों में उष्ण लहर का परिस्थिति विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में 21 मई तक तापमान जो है दिन का तापमान सर्वोच्च तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उसके बाद 22 से 23 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भाई पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उसमें 2 से 3 डिग्री तक आने वाले जो है 19 तारीख के तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद 20 से लेकर 23 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र गुजरात में 19 तारीख तक तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें बाद 2 से 3 डिग्री तक 23 तारीख के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है।
0: तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गर्मी से इंस्टा रिलीफ के लिए हम ऐसे फूड्स का सहारा ले लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते, अच्छे नहीं होते हैं। अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग ले लेते हैं, चिल्ड सोडा या फिर पैकेज जूस, आइसक्रीम्स बेशक हमें ठंडक का एहसास कराते हैं लेकिन कुछ समय के लिए इसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। गर्मी से कूल पलों की फौरी राहत ये देते हैं लेकिन असल में इनका शरीर पर कुछ और ही असर हो जाता है। तो एक्सपर्ट से आज हम इसी को लेकर आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो चीजें हमें टेस्ट में ठंडी लगती हैं वो शुगरी चिल्ड आइटम्स दरअसल शरीर के तापमान का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। तो इन ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है, कैफीन की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है और इन प्रोडक्ट्स के लगातार सेवन से लंबे समय में शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये तमाम ऐसी समस्याएं जो आपको आगे चलकर आ सकती है। लिहाजा जानकार कहते हैं कि ऐसे ड्रिंक्स पिए, ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो नेचुरल हो, कुदरती तौर पर शरीर को ठंडा करे, जिनकी तासीर ठंडी हो, सेहत को भी ये फायदा पहुंचे, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, दही, छाछ, बेल का शरबत, आम पन्ना वगैरह, ये चीजें आप ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन और कंसल्टेंट, गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा सिंघल जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवदीप जोशी हैं, फाउंडर हैं, नव योगा के योग गुरु भी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वैशाली वर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हो हमारा समर का हेल्थ प्लान, खाने से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि अक्सर मिस्टेक्स यहीं पर होती है। डॉक्टर वैशाली, आपसे शुरू करेंगे।
2: नमस्कार। ऐसा जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो शरीर में 50-60% हमारा पानी ही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने हाइड्रेशन लेवल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अभी जैसा कि मैं सुन रही थी, बात हो रही थी कोल्ड ड्रिंक और इन सारे कंजप्शन की समर्स के टाइम में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है प्रोसेस पैकेजेस फूड और जो है हमारा ये डाइट हो कि इस चीजें हम अवॉइड करें, क्योंकि यस, ये हाइड्रेशन है, बट कहीं ना कहीं एक्सेस शुगर जो है हमारी बॉडी से टिश्यू से वाटर को ड्रॉ करता है, हमारे जो एक्सेस शुगर की पीक आती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो होम बेस्ड ड्रिंक जो है, आम पन्ना है, सत्तू ड्रिंक है, गोंद कतीरा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो सब गर्मियों में निकलने से पहले रात में जो है भीगे हुए गोंद कतीरे को भिगो के जो है मॉर्निंग में नींबू पानी के साथ या छाछ में मिक्स करके, जैसे भी आपको पसंद है वैसे उसका कंजप्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इवन अगर आप गर्मियों की सीजनल सब्जियों का ध्यान दें या फलों का ध्यान दें, तो सब में जो है हाइड्रेशन अच्छी लेवल पे होता है। तो हमें अपनी रोजमर्रा की डाइट में ऐसी ही चीजों का यूज करना है जिसमें 50-60% वाटर हो। फ्रूट्स में वाटर मेलन है, आप मस्क मेलन है, इन चीजों को जरूर ही अपनी डाइट में यूज करना।
0: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ूं, आपने वाटर मेलन, मस्क मेलन की बात कही, एक सवाल जो आम तौर पर देखने को मिलता है कि अक्सर ये देखा गया है कि आजकल खास तौर पर, क्योंकि इसके खाने का हो सकता है तरीका सही ना, वाटर मेलन और मस्क मेलन की हम अगर बात करें तो कई बार स्टमक अपसेट हो जाता है, तो इसके खाने का सही तरीका भी बताते चलिए, और इसका जूस भी बहुत से लोग लेते हैं, क्या वो सही है?
2: पहले तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए कि मिड टाइम में, ब्रेकफास्ट, लंच या लंच डिनर के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे फ्रूट्स का कंजप्शन हो, और तुरंत जो है बाहर से लाके उसका कंजप्शन ना करें, जैसे धूप से ले आए हैं और हमने कट करके उसको खा लिया, हमें ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं ये जो गर्मी है इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जिस तरीके से फ्रूट्स मिल रहा होता है, अवेलेबल होता है, कई बार क्योंकि हमारा गर्मियों में डाइजेशन, जो गट हेल्थ है वो थोड़ी सी जो है हमारी प्रोन टू इन्फेक्शन होती है, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रखें या ठंडे पानी में उसको रखें भिगो के, उसके बाद ही उसको का यूज करें। और हाँ, जूस से बेहतर है कि आप फ्रूट्स खाएं, बट जो मस्क मेलन की सीड है, अगर आप उसका जो है उस पूरे सीड को क्रश करके और जैसे वाटर के साथ या कर्ड के साथ एंड उसको जब सीव करके इन अ ड्रिंक फॉर्म लेते हैं, तो जो मस्क मेलन सीड है नेचुरली बहुत ज्यादा पोटेशियम, सोडियम जो है मैग्नीशियम रिच होती है, जिसका सबसे ज्यादा समर्स के टाइम में अगर स्वेट बढ़ रहा है या बॉडी अपने आप को कूलिंग मैकेनिज्म में जब डालती है बॉडी को ठंडा करने के लिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका लॉस होता है, तो वो बहुत ही रिच होता है कंजप्शन करना चाहिए।
0: ठीक है, चलिए आगे आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर नवदीप, आपके पास है, उससे पहले एक सवाल मनीषा सिंघल जी से। हम यहाँ पर समर हेल्थ प्लान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर समर मेंटल हेल्थ प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्या इसका सीजन से कुछ ना कुछ कंसर्न अगर है तो फिर समर में किस तरह से इसका ख्याल रखा जाए? मनीषा जी
3: जी, बिल्कुल, अगर गर्मी के दिन हैं तो इरिटेबिलिटी थोड़ी सी नेचुरली ज्यादा होगी, क्योंकि हीट की वजह से जो तापमान, जो बढ़ा हुआ तापमान होता है, उससे जनरली भी आप एक पेशेंस कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा सा कम हो रही होती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, अगर हम लाइन में खड़े हुए हैं किसी चीज का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट करना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम या बच्चे बच्चों की जैसे समर वेकेशंस हो रही हैं, तो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो भी, और अगर पेरेंट ए वन ऑफ अ पेरेंट इज यू नो नॉट वर्किंग, इज एट होम, मतलब वर्किंग बट एट होम, सो उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अगर हम पहले से एक गोल नहीं फिक्स करते हैं या एक अपना स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं रखते हैं तो। और अगर हमें अपना रूटीन पता है सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा फोकस थोड़ा सा गर्मी से हटकर क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या क्या हमें करना है, उस पर आ जाता है। और उसमें बच्चों के लिए केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिससे वो खुद को थोड़ा अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे ही बड़ों के लिए भी गर्मियां जहां शुरू होती हैं वहां पर ठीक है, हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, स्लीप का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओवर स्लीपिंग या डाइट पे ही केवल फोकस करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारी दिनचर्या में क्या क्या कुछ जरूरी है जिससे हम इन समर्स को और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आ गई, अगर हम अपना एक एक्सरसाइज का रूटीन रखते हैं, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक रोज एक्सरसाइज का नियम रखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज है,
0: ठीक है,
3: आपकी स्टेमिना आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, तो आप अपने हार्मोन्स को थोड़ा सा रेगुलेटेड रख सकते हैं। जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है, या फिर वो एक्टिविटीज जो आपको पसंद है, सो उससे आप थोड़ा सा अपना अपने मानसिक तौर पे आप यू कैन फील मच हैप्पियर एंड काम। सो ये एक दिनचर्या
0: ठीक
3: बहुत
0: है,
3: जरूरी होनी।
0: बिल्कुल। चलिए, यानी कि आपका पूरा रूटीन जो है उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अब डॉक्टर नवदीप आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर वली के पास जाऊंगी। यहां पर हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं चाहूंगी, क्योंकि आप एक योगा एक्सपर्ट भी हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल देखिए सुबह 7:30-8 बजे धूप निकल आती है, तो बाहर आउटडोर एक्सरसाइज करने करना मुश्किल होता है क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इंडोर एक्सरसाइजेस पहली बात जरूरी भी हैं, लेकिन कितनी जरूरी है, कितने ड्यूरेशन तक करनी चाहिए, और अगर आप योग के माध्यम से बता पाएं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इन गर्मियों में इस सीजन में कैसे ठीक कर सकते हैं।
4: जी, धन्यवाद। जैसा मैं बताऊं कि गर्मी की जब हम बात करते हैं तो वो केवल तापमान बढ़ने से नहीं है, उसमें हमारे शरीर में जैसे जल संतुलन है उसकी गड़बड़ी होती है, हमारे हार्मोन की चेंजेज होती है, नींद गड़बड़ होने लगती है हमारी, हमारे जो शरीर में मानसिक शांति जिसकी आपने बात करी है उसका बड़ा फर्क पड़ता है, और साथ में हमारी ऊर्जा भी बहुत लो होने लगती है। तो इन सब चीजों के लिए बड़ा आवश्यक है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग का सहारा लें, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हमारी शोध में रिसर्च में पाया गया है कि जब हम योग की कई उसका कारण केवल आसन ही नहीं है, अगर हम प्राणायाम, जैसे प्राणायाम को हम करते हैं और ठीक तरह से करते हैं, जैसे हमने कहा कि इंडोर में क्या क्या कर सकते हैं, तो इंडोर में ये सही बात है कि ज्यादा गर्मी में ज्यादा आसन करना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन हम घर के अंदर कुछ आसनों को कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा शशांक आसन है, मकर आसन है, भुजंग आसन है, हाँ वज्र आसन है, क्योंकि इसमें पित्त बढ़ने का, जैसे जितना गर्मी होगी हमारे शरीर के अंदर पित्त पड़ता है, हमारा डाइजेशन गड़बड़ होने लगता है, उसके लिए वज्र आसन बहुत अच्छा है। वज्र आसन के बाद मकर आसन बहुत अच्छा है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, अगर मेंटल लेवल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो हम मकर आसन में लेट के उसमें हमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है और हमें बहुत अच्छा शांति का भी अनुभव होता है। इसलिए ऐसे ही शीतली प्राणायाम, जो शीतली प्राणायाम है बहुत इजी है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है हमारी बॉडी में। हमारे शरीर में माना जाता है कि दो ईड़ा पिंगला नाड़ी जो हमारे शरीर में एक गर्मी पैदा करती है और एक ठंडक पैदा करती है, तो उसमें जब हम ईड़ा नाड़ी को बढ़ाते हैं जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम के द्वारा, तो हमारे शरीर में ठंडक बढ़ती है, जब शरीर में ठंडक बढ़ेगी तो हमारे जो पित्त प्रकृति वो कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर में जैसे जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है ऐसे ऐसे हमारे मन में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ऐसी हम किसी भी काम में हमें क्रोध भी ज्यादा आ रहा है, तो जैसी हम ये शीतली प्राणायाम को करते हैं, हम चंद्रभेदी प्राणायाम को करते हैं, तो तुरंत ही 5-7 मिनट के बाद ही हमें एक धीरे धीरे रिलैक्सेशन फील होने लगता है, क्योंकि जो रिलैक्सेशन फील होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे ही हमें फील होने लगे तो हम जैसे अभी जो डाइट बता रहे थे उस डाइट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जितने भी हमारे मौसमी फल आ रहे हैं उसके साथ में जब हम प्राणायाम और योग निद्रा ध्यान को करते हैं तो बहुत हमें लाभ मिलने लगता है।
0: बिल्कुल, चलिए किस तरह के योग और प्राणायाम कर सकते हैं इस पर बात करेंगे डॉक्टर मोहसिन वाली। अब आपके पास आऊंगी, आपने सबकी बातचीत सुनी, देखिए डाइट भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, और एक बड़ी बात यह है कि एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि दिन लंबे होते हैं और अब बच्चों की छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं और बहुत से लोग रिलैक्स होके उठते हैं, सुबह देर से सोके उठते हैं, ज्यादा सोना या कम सोना ये भी कितना जरूरी है ये भी बताते चलिए।
5: बिल्कुल, सोना तो सोना है, इट्स गोल्ड ऑफ लाइफ। हाँ, ज्यादा सोना रातें तो देखिए छोटी, आपने सही कहा, दिन लंबे हैं रातें छोटी हैं, तो थोड़ा सा दिन में अगर सो जाएं, जिन लोगों को मौका है दिन में सोने का उसको हम आफ्टरनून नैप भी कहते हैं, इंग्लिश में, अरेबिक में बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको कैलूला कहते हैं, एंड दिस इज प्रैक्टिस बाय द प्रॉफिट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट, स्पेशली आफ्टर लंच। तो लंच के बाद थोड़ा सोना, और रात को चूंकि नेचुरली हम कम ही सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, चहल पहल शुरू हो जाती है, जो लोग क्राउडेड एरिया में रहते हैं वो तो सो ही नहीं सकते सुबह को देर तक जाके, हम जैसे लोग जो शांत कमरों में सो जाते हैं इसी चला के वो सो जाते हैं, देर तक सो सकते हैं लेकिन काम पे जाना होता है। तो मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि सोना जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 7-8 आवर्स है एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए 12 घंटे छोटे बच्चों के लिए, और अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए 8 घंटे से 9 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे। तो मैक्सिमम 10 घंटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मैक्सिमम 8 घंटे, इससे ज़्यादा सोएंगे तो खोएंगे। तो सोना जो है बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन ज़रूरी है, और रात में नींद भी काफ़ी खुलती है, पानी पीते हैं, कुछ एल्डरली लोग तो पेशाब के लिए रूटीन में उठते हैं, और हम जैसे लोग भी एक आध बार उठ ही जाते हैं। तो हमारी एक हम नाम है शालोम बॉम्बे में, वो इस पे काम कर रही हैं हीट पे, उन्होंने 7-8 मंत्र दिए हैं, उसमें पहला मंत्र वो ये जो आपने दिखाया, स्टे हाइड्रेटेड, एवॉइड पीक आवर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्मी में ना जाइए। और ड्रेस स्मार्ट का मतलब आपने बताया, लिनन के सूती कपड़े पहने। ईट लाइट मील्स का मतलब ये है, ज्यादा मसालेदार खाना आपने बताया। अब तो डॉक्टर नवजोत के जो टिप्स हैं वही मेरे टिप्स से बिल्कुल मिलान खा रहे हैं। तो ईट लाइट मील्स के बाद है नेवर स्किप मील्स। कुछ लोग कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, और इसके बाद मॉनिटर योर हेल्थ, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, अगर ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें। और दमे के मरीजों को खुश्की से बहुत नुकसान होता है आजकल, ड्राई एयर उनके लिए हार्मफुल है, वैसे भी रिलेटिवली एयर में ड्राइनेस इस मौसम में बढ़ गई है, इस साल ज़्यादा है। और कुछ सिम्टम्स हैं जैसे चेस्ट पेन हो, पसीना ना आए, फेंटिंग होने लगे, चक्कर आए और पेल्पिटेशन हो, तो ये डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन मौसम की जब हम बात करते हैं तो आज ही मैंने ठंडाई मंगवाई है गांव से मंगवा के। इसमें चारों बीज जो ऑल फोर गुड सीड्स होते हैं ना, सब जानते हैं वो, और कम शुगर की ठंडाई है ये। और दूसरा है कलौंजी, कलौंजी ये ब्लैक सीड्स होता है, तो ये भी गर्मी के लिए अच्छी होती है। लेकिन आम के पन्ने की आपने शायद बात की है, शायद दिखा भी रहे हैं इत्तेफाक से, नींबू पानी घर में बनाया हुआ ड्रिंक, और दही, दही से मिलती जुलती चीज़ें जैसे लस्सी है, छाछ है, दूध से छाछ है, आम पन्ना हो गया, और गोंतीरा बताया हमारी डाइटिशियन ने, बासल सीड्स होते हैं, तुखुम बालंगा बासल सीड्स, उसकी तासीर कहते हैं गर्मी को मारने के लिए, दी बेस्ट है। नारियल पानी अगर अफोर्ड कर सकें, अब महंगा हो गया, सत्तू घरेलू चीज़ है, पुराना ड्रिंक है, इसको लोग भूल गए हैं, बट अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन भी है इसमें, और ये सब चीज़ें हैं। एक और बात मेडिकल पॉइंट से मैं बताना चाहूँगा कि लोग सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएं अगर अफोर्ड कर सकें तो, और इस पे SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मिनिमम 50 वाला ही लें, इससे कम वाले में सन प्रोटेक्शन नहीं होगा, और कम से कम 2 बार लगाएं, आप अपने पर्स में रखें, कार में रखें, और इसको 3 घंटे के बाद रिपीट कर लें, क्योंकि स्वेट के साथ भूल जाता है। तो स्किन का बहुत ख्याल रखना है, स्किन सबसे पहले इफेक्ट होती है और डिहाइड्रेशन में जो है पूरा सिस्टम हमारा खराब होता है। कई मरीज मेरे पास आ रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 80 रह जाता है ऊपर का, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हाइड्रेशन करने के बाद वही ब्लड प्रेशर 2 घंटे के बाद हो जाता है 110। तो ब्लड प्रेशर लो होने से गिर भी सकते हैं, हेड इंजरी भी हो सकती है। हाँ, मुझे देख के याद आया, पुदीना बहुत अच्छा है गर्मी के लिए। सादा खाना आप पका रहे हैं तो पुदीने के साथ लौकी खाइए पका के, बहुत मुफीद रहेगी। घी, तेल, खटाई ये सब कम खाइए
0: बिल्कुल।
5: और ये बाजार का जो गन्ने का रस है थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, इसको जहां तक हो अवॉइड करें, घर पे निकाल के बनकर गन्ना खाइए। मैं तो कहता हूँ गन्ना खाइए, कभी कभी गन्ने के रस से इन्फेक्शन हो जाता है। और तरबूज का जो वाकया बॉम्बे में हुआ था उसके बाद तो मुझे लग रहा है तरबूज सड़कों पे रखे हुए बिक नहीं रहे, तरबूज से नहीं हुई थी वो डेथ बॉम्बे में। तरबूज बहुत अच्छा है गर्मी के लिए, दिन के वक्त खाना, हमारे बड़े मना करते थे रात के वक्त तरबूज को खाना और फ्रेश काट के खाना,
0: दिन ढलने के बाद नहीं खाना।
5: और अगर तरबूज में इंजेक्ट नहीं किया गया है तो उसकी लाली जो है एक जैसी होगी। अगर तरबूज में आपको कहीं ज्यादा लाल कहीं कम लाल लगे तो आप चेक करिए ये इंजेक्टेड तो नहीं है। दही बहुत अच्छा है आप दिखा रहे हैं, छाछ बहुत अच्छा है, लस्सी बहुत अच्छा है, मतलब मौसम के सारे फल, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, सारे मौसम के फल बहुत अच्छे हैं। और तुकुम बालंगा पे मैं जोर दूंगा, हमारे यंगस्टर्स को इसको यूज करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, लौटती हूँ आपके पास, बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर वैशाली, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर अपना समर डाइट प्लान की बात कर रहे हैं, समर मेंटल हेल्थ की प्लान की बात कर रहे हैं। एक चीज जो अक्सर देखी गई है कि लोग नॉर्मली अपना ख्याल रखते हैं जब वो एक रूटीन में होते हैं। अब समर वेकेशन शुरू हो गए, जाहिर सी बात है कि लोग घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा चीट डे एक होता है वो चीट डेज हो जाते हैं बहुत सारे। तो उस दौरान कैसे अपना ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहता। लोग कहते हैं कि हम तो वेकेशन पे आए, अब अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, हम रूटीन में तो वैसे ही बैलेंस डाइट लेते हैं।
2: नहीं, बिल्कुल जो है पार्टी अलाउड होती है और हाँ बच्चों की समर वेकेशन चल रही है, इस टाइम लोग घूमने जाते हैं तो हमें मस्ती करनी है विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि अगर आपको समर में आप बाहर हैं तो जैसे ORS के पैकेट को कैरी करना इजी होता है क्योंकि उस टाइम पे कोई आप फ्रूट जूसेस या कोई ड्रिंक नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ORS अपने पास रखें। बच्चों के लिए भी टेट्रा पैक्स भी अवेलेबल हैं जो अपने बैग में आपको कैरी करना चाहिए हमेशा। और ड्रिंक्स बहुत सारे कंटिन्यूएशन में आपको दिखाए जा रहे हैं, आम पन्ना, बेल शरबत, ये सारी चीजें। बट ये जितना लाभदायक होता है गर्मियों में, अगर आप बाहर का बिना जो है फ्रेश बनवा के लेना है, मशीन जहां पे भी वो बन रहा है हाइजीनिक होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा गट जो है हमारी हेल्थ जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपको पार्टी पिक करना है चीट मील से पहले, जैसे हमारे खीरा, ककड़ी, ये जो सैलेड्स बहुत अच्छे बनते हैं अभी गर्मियों में, तो आप अगर डिनर पार्टी के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो खाने से पहले जो है निकलने से, घर से निकलने से पहले फुल प्लेट खीरा ककड़ी कट करके खा के निकले, ताकि इससे हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और जो है आपका जो स्टमक है वो फाइबर से फुल रहेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत जो है ऑयली फूड का कंजप्शन करते भी हैं तो वो जो आपका सैलेड प्लस हाइड्रेशन उसको मैनेज करेगा। लेकिन पार्टी करते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि बाहर की कच्ची चीजें जैसे चटनी है, सलाद है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि यस वो फ्रेश होता है बट कई बार गर्मियों में बन के रखा हुआ है कर्ड जितनी बेनिफिशियल होती है उतना ही, अगर जैसे चटनी में बहुत सारे रेस्टोरेंट में आजकल दही का यूज हो रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन अगर बहुत टाइम से रखा हुआ है तो ये आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। तो कोशिश करें बाहर जब आप हैं और पार्टी फूड इंजॉय कर रहे हैं तो सारी कुक्ड चीजें ही लें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि उससे पहले या उसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक जैसे छाछ है या आप दाल जो है उसका लें कि हाइड्रेशन मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा ड्राई डाइट को अवॉइड करें। और या तो जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं तो आप साउथ इंडियन जो है ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि सांभर इडली का आप जो है कॉम्बिनेशन खा रहे हैं या डोसे के साथ फ्लूइड ज्यादा ले रहे हैं, या जैसे ढोकला है उसका आप जो है कंजप्शन कर सकते हैं, जिसमें फ्लूइड हाइड्रेशन आपको लग रहा है कि वाटर कंटेंट है, या जो जब आप पहुंच गए, जैसा मैंने कहा कि सैलेड खा के निकले, जब
0: जी
2: आप पहुंच गए तो सबसे पहले जो है आप कुछ फ्रूट स्मूदी जैसा कुछ ऑर्डर करें, या कॉम्बिनेशन में नींबू पानी या आप किसी स्नैक्स के साथ प्रोटीन बेस्ड जो भी स्नैक्स ऑर्डर कर रहे हैं, कुक्ड बेस जो है रहे उसके साथ रॉ, मैं बार बार कह रही हूँ कि चटनी एनॉल को अवॉइड करें, तो आप इससे जो आपकी जो पार्टी है वो जो है हेल्दी वे में आप कर सकते हैं और आप
0: बिल्कुल
2: इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो
0: बिल्कुल
2: नेक्स्ट डे अगर जो है आपका कुक्ड फूड जितना फायदा करेगा, जो रॉ चीजें हैं चाहे रेस्टोरेंट में वो कितना भी हाइजीन मेंटेन करें, वो आपको फ्रेश नहीं बना के देंगे। सो समर्स का जो बेसिक रूल होता है, यू हैव टू ईट फ्रेश इफ यू आर ईटिंग रॉ, अदरवाइज गिव प्रेफरेंस टू आउटसाइड ओनली कुक्ड फूड।
0: चलिए
2: तो ये
0: लौटती हूँ आपके पास, बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास, यानी कि फाइबर रिच फूड हमें ज्यादा लेना है। डॉक्टर नवदीप आपके पास आना चाहूंगी। आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज है कि रात में मेथी दाना भिगो दो, या फिर रात में चिया सीड्स आप भिगो दो, ऐसे वो इतनी सारी चीजें भिगोने को बोल दी जाती हैं, इतने सारे वीडियोज आ जाते हैं कि एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हमें एक्चुअली सुबह किसका पानी पीना है और कब कितनी देर बाद पीना है, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, एक आइडियल अगर हम समर की डाइट की बात कर रहे हैं तो।
4: नहीं बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। देखिए अभी जितनी भी चीजें वैशाली जी बता रही थी उसमें सुबह जैसे हम ठंडा, जैसे अब नारियल पानी है वो ठंडा ही है, इस समय जितने मौसमी जो भी फल आ रहे हैं वो सब ठंडे ही हैं। अब लेकिन जैसे आपने मेथी का पानी, अगर हम पानी की बात करते हैं किसी भी चीज की, वो ठंडा ही होता है, लेकिन वो डायबिटीज है तो मेथी दाना लेना है, किसी को कफ है तो अदरक लेना है, ये तो उसकी आवश्यकता नहीं है। हम उसको सुबह अगर पानी भी हम लेते हैं, लेकिन सुराही का पानी, जितना हम फ्रिज का पानी लेते हैं हमें लगता है कि ठंडापन हो रहा है, लेकिन उसके हमारे कफ की प्रकृति बढ़ जाती है, तो वात पित्त कफ है, तीनों को बैलेंस होना जरूरी है। और जो अभी मैं एक भोजन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें योगिक डाइट में जब हम बात करते हैं तो तुरंत गर्म के बाद ठंडा या ठंडा के बाद तुरंत गर्म लेना ठीक नहीं है। हमने खाना खा लिया उसके बाद हमने खूब सारा पानी पी लिया, वो भी हमारी बॉडी को, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देता है तो डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, तो ये भी ध्यान अपने रखना चाहिए। साथ में जो अभी डॉक्टर वली जी कह रहे थे नींद वाली बात, तो हमारे योग में तो बहुत आसान है, वो 10 घंटे की नींद जहाँ बता रहे थे 8 घंटे की, अगर हम योग निद्रा करते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, तो वही नींद हम जो अगर आधे घंटे का करते हैं तो वो 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च हमारी कहती है, हमारे अंदर जो ब्रेन वेव्स है अल्फा ब्रेन वेव्स, उस नींद के कारण, उस मेडिटेशन के कारण वो बढ़ जाता है। और जैसे हमारा कॉर्टिसोल है जो स्ट्रेस, अब हम गर्मी है तो स्ट्रेस है, वातावरण में स्ट्रेस है, हम कहीं जॉब में जा रहे हैं वहां स्ट्रेस है, तो कॉर्टिसोल बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया तो हर चीज को बढ़ाएगा, वो आपके हार्ट को बढ़ाएगा, वो आपकी डायबिटीज को बढ़ाएगा, एंगरनेस को बढ़ाएगा, तो वह बॉडी में हमारे जो हार्मोन को डिस्टर्ब कर देगा, इसीलिए हमें जो सीरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए ये

0: अगर अच्छा गीत आता है तो उस गीत को गुनगुनाना है, हमें कोई श्लोक आता है तो श्लोक को गुनगुनाना है, तो हमें अपनी जो आईज से जो हम देख रहे हैं ना उसको भी कम करना है।
1: बिल्कुल,
0: ये घर में
1: यानी
0: जैसे हम
1: डिजिटल
0: लोग
1: डिटॉक्स भी उतना ही जरूरी है। चलिए यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्या हो इंडिया का हेल्दी डाइट प्लान, इस समर इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं? जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है? जानिए क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: हेल्थ फिटनेस स्कूल, गर्मी जाओगे भूल, क्या हो आपका गर्मियों का हेल्दी डाइट प्लान और क्या हो आपका हेल्थ प्लान, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये न सिर्फ हमारे मन मस्तिष्क शरीर सबसे जुड़ा हुआ। डॉक्टर वली, आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि गर्मियों में पानी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, अब कितना पानी पिए, किस तरह का पानी पिए, ये भी हमें बताते चले। साथ ही साथ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे, गर्मी बढ़ रही है, वर्कआउट करना जरूरी है क्या, क्योंकि ये भी देखा गया है कि लोग जो वर्कआउट करने के लिए जाते हैं डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल लो होता है। तो किस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहां पर आपको रुक जाना चाहिए, इसके भी थोड़े टिप्स दीजिए।
4: हाँ, मैं नींद का जरा एक सेकंड में क्लियर कर दूं। नींद मैंने मैक्सिमम बताया, टास जितने में आपका शरीर ना थके उतनी नींद आपके लिए काफी है। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी 4 घंटे से ज्यादा सोया नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी मैं सबको बताऊंगा 4 घंटे सो। दूसरा, पे की बात करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि बियर, जैसे चिल्ड बियर है, आपने भी बताया, शायद इशारा किया है, इस तरह की चीजें जो है ना पिए। अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेंट है, सेम तरीके से चाय भी डिहाइड्रेंट है, ये दोनों चीजें पानी निकालते हैं। आपने पूछा पानी, पानी की देखिए वेरिएबल होती है प्यास, कोई लोग कम पानी पी के भी ठीक रहते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा। इट डिपेंड्स कि आपका यूरिनरी आउटपुट कितना है। अगर आप अच्छे से पेशाब कर रहे हैं, कोई बीमारी गुर्दे की नहीं है, तो आप 2 लीटर पानी तो मिनिमम पिए, और इससे ज्यादा जितना आपको प्यास बुझे उतना पिए। हाँ, गुर्दे के जो मरीज होते हैं उनको और हार्ट के मरीज होते हैं उनको हम पानी 1 लीटर तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ को हम इससे भी कम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अगर बीमारी नहीं है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तो आप पानी, अच्छा आप शरबत के फॉर्म में पी सकते हैं, बहुत पॉपुलर कुछ शरबत हैं, अब शरबत के नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में। कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स न लें, बियर न लें, और घर के बने हुए ड्रिंक्स लें। ये मैंने लिख के रखा था कि पॉइंट रह ना जाए, आम पन्ना, दही, सत्तू, नींबू पानी, बीज का शरबत जिसको ठंडाई कहते हैं, गोंद, तीरा, ये सब डिस्कस हो गया, नारियल पानी। अब आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, बॉडी के डिहाइड्रेशन के जो साइंस होते हैं, स्किन में झुर्री पड़ने लगे, आँख को गर्मी लगने लगे, मुँह सूखने लगे, या आँखों में जलन होने लगे, आपको ऐसा लगे कि मुँह सूख रहा है, तो उसमें आप पानी पी लीजिए, नापने की जरूरत नहीं है। आप पानी गर्मी में नाप के मत पीजिए, अगर ज़्यादा पी लेंगे तो यूरिन बन जाएगा, कम पियेंगे तो नुकसान होगा। और ये जो बात की थी

0: अभी वो पैक्ड ड्रिंक्स जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, ये कॉमर्शियल ड्रिंक्स में WHO के मानकों के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बनाना है तो WHO का जो मानक प्रमाणित इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट है वो लीजिए। कॉमर्शियली बहुत महंगे भी हैं और वो उनमें इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल नहीं है। एक मुट्ठी शकर और एक चुटकी नमक, ये गांव के लोगों को भी हम बताते हैं और शहर के लोगों को भी हम बताते हैं, 1 लीटर पानी में पीजिए, ये आपका बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अब यहाँ नमक के बारे में मैं बहुत जोर दे के आजकल कह रहा हूँ लोगों से, सोडियम जो है सेंधा नमक में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, सोडियम नहीं होता पिंक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट में। तो रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल न करें, बल्कि रेगुलर जो है आयोडाइज सॉल्ट, जो सफेद नमक है, उसका इस्तेमाल करें। गाँवों में अभी भी डेले वाला नमक यूज होता है। आप तो पुरानी चीजें याद रखती हैं, तो आपने भी खाया होगा पीस के सिल पे। तो ये नमक जो व्हाइट सॉल्ट है यही खाएं, अनलेस यू हैव वेरी हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें कि हम आजकल रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, दवाई से ठीक करते हैं उसको। और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि छाते आप दिखा रही हैं, तो छाता जो हो वो व्हाइट होना चाहिए, जैसे इस शख्स ने कपड़ा पहन ओढ़ रखा है व्हाइट। तो व्हाइट छाते का इस्तेमाल गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सन रेस को डिफिकल्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह मैंने SPF बताया, जो लोग फेस पर यूज करते हैं हीट रेपेलेंट्स, जो भी यूज करते हैं, उसका SPF 50 के ऊपर या 50 मिनिमम होना चाहिए। और डिहाइड्रेशन महसूस हो जाता है। और मैं तो, आप शुरू में पूछती क्या करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले कहता गर्मी में घर से निकलो ही मत। लेकिन भैया दूर, जिसको हमारे लिए मेट्रो का खंबा बनाना है, वो अगर घर से नहीं निकलेगा तो मेट्रो कैसे चलेगी? तो हमारे गरीब मरीज मजदूर, उनके लिए प्याज रखते हैं, वो खाने में प्याज खाते हैं। प्याज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और प्याज लू लगने से भी बचाते हैं। अब एक चीज होती है लू लगना, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, मैं आधे मिनट में उसकी भी बात कर
1: जी
0: लूं। लू है वो जब पसीना आना बंद हो जाता है उस वक्त लगती है, क्योंकि पसीना हमारे बॉडी से हीट को निकालता है, वाष्पन से, एवेपोरेशन से ठंडक उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को पसीना आना बंद हो जाता है, तो उनकी हीट उनकी बॉडी में ही ट्रैप हो जाती है, तो उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। सीवियर हो जाता है तो उसको हम हीट कोमा कहते हैं, जो बेहोश जाते हैं लोग, जो ठंडे मुल्क
1: ठीक
0: के टूर
1: है
0: जाते हैं उनको हीट कोमा हो जाता है। तो ये
1: जी
0: सब जनरल चीजें हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम सडन एक्सपोजर से बचे। एसी
1: बिल्कुल
0: दफ्तर निकले भाई साहब और गर्म गाड़ी में पार्किंग में आके बैठ गए, हो गया हीट स्ट्रोक। तो ये जो सडन चेंज ऑफ है टेम्परेचर का, बॉडी इसको नहीं एडेप्ट कर सकती। इसके लिए हम
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा गाड़ी को या तो पहले स्टार्ट कर लें, या एसी कमरे का कमरे से निकलने से पहले बंद कर दें, तो ये हीट स्ट्रोक
1: या
0: से
1: फिर अगर
0: और
1: हम
0: हीट
1: गर्मी से जा रहे हैं तो तुरंत से एसी की तरफ ना जाए। बिल्कुल
0: एकदम
1: मनीषा जी, मैं
0: अवॉइड
1: आपके
0: करें।
1: पास आना चाहूंगी। देखिए मुश्किल होता है, अब ये आप सब लोग ये बता ही रहे हैं कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, इस तरह की एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मेड डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू लगने का खतरा रहता है, स्पेशली अगर यहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों की बात की जाए। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाएगा?
2: देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है तो वो एक दिमागी तापमान भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी बढ़ सकता है। तो उसको कैसे हम कूल रख सकते हैं, उसके लिए ठीक है डाइट्स वगैरह ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ है हमारा एक निश्चित रूटीन, और वो रूटीन में क्या क्या होना चाहिए जो हमें पसंद है। तो जो भी चीजें हमें पसंद होती हैं करना, वो अगर हम कर रहे होते हैं तो हम कभी गुस्से की तरफ जा नहीं पाते हैं। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, हम उसको और ज्यादा खुशी खुशी करते हैं, और वो जो मोमेंट होता है वो हमारा एक तरह से बेस्ट टाइम हो जाता है हमारे पूरे दिन का। तो वो चीज, वो क्या चीजें हो सकती हैं, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती हैं उसकी चॉइस के हिसाब से। तो उन चीजों में अगर हम अपना मन लगाते हैं तो हम अपने हार्मोन सब काबू में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, सारे सेरोटोनिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल, सारे लेवल्स हमारे कंट्रोल रहेंगे। और इसके अलावा हम क्या खुद खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हमारे ड्रॉबैक्स क्या है, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, हम किस तरह से उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो अब अगर हम गर्मियों का ये जो टाइम है पीक समर्स का, उसमें अगर हम इस चीज पे फोकस करें तो शायद हमारा गर्मी से ध्यान हटके और एक इम्प्रूवमेंट वाले एरिया में आ जाएगा। और उसके लिए हम कहाँ पे क्या एक्टिविटीज, क्या कोचिंग्स है, क्या इंटर्नशिप्स है, क्या किस तरह से हम उन पे काम कर सकते हैं, कैसे हम खुद की पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो अब अगर हम हमारा फोकस यहाँ रहेगा सो डेफिनेटली हमारी जो गर्मी की वजह से जो एक इरिटेशन है वो इरिटेबिलिटी भी को भी हम कम कर सकते हैं। क्योंकि सारा जो गेम होता है वो फोकस का होता है कि हम अपना माइंड कहाँ पे लगा रहे हैं। और उसमें डेफिनेटली जो अनुलोम विलोम है, मेडिटेशन है या माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस बहुत इफेक्टिव होती है। और उसको हम अपने रूटीन के जो भी हमारे काम है उनके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नारियल पानी पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं। अब अगर हमारा पूरा फोकस नारियल पानी पीने पे है तो किस तरह से वो सिप अंदर जा रहा है और कैसा हमारे सलिवरी बड्स, हमारे किस तरह से वो ग्लैंड्स एक्टिव हो रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहा है, कैसे हमारे अंदर वो जा रहा है, सो वो क्या फीलिंग है, उसको अगर हम पूरा फील करते हैं बिना स्क्रीन के तो
1: जी,
2: हम उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। और
1: जिसको
2: ये
1: बार बार
2: जो
1: अक्सर डॉक्टर्स कहते भी हैं डिजिटल डिटॉक्स जरूरी, स्पेशली अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, क्योंकि आप उसको तभी एंजॉय कर पाएंगे।
2: तभी एंजॉय कर पाएंगे। और ये रूटीन के जो हमारे काम है, खाना हो
1: बिल्कुल
2: गया, चलना हो गया, कोई भी काम करना है, वो माइंडफुलनेस को हम उसी में ही यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये एक मेडिटेशन के जैसे यूज होता है और उससे हमारे हमारा जो इरिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है।
1: जी जी डॉक्टर नवदीप, आपके पास आना चाहूंगी। मॉर्निंग में जो लोग वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो योगा कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट या फिर कोई गेम भी खेल रहे हैं, प्री वर्कआउट आजकल लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज की तारीख में, इन समझ में, इस मौसम में प्री वर्कआउट किस रूप में होना चाहिए?
0: देखिए, एक तो क्या है कि जैसे अभी हम सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, अभी मनीषा जी ने भी बात करी कि हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए गर्मी गर्मी गर्मी ऐसा करके मन में नहीं रखना चाहिए। डेली रूटीन हमें सुबह से ही प्रारंभ करना चाहिए और सुबह घूमना जरूर चाहिए। गर्मी के कारण हम बाहर ना निकले, ये बहुत ही हमारे हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हम जब अचानक निकलेंगे और गर्मी सीधा 40 डिग्री है, सुबह हमारा 20 डिग्री होता ही है, ज्यादा से ज्यादा 25 होगा। तो सुबह हम निकल के एक बार धूप, जिस धूप के कारण हम दिन में बच रहे हैं, सुबह वही धूप हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो अपना 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, क्योंकि हमें विटामिन डी भी चाहिए, B12 भी चाहिए, और वह जो एक हमारी परंपरा भी है सूर्य नमस्कार की, सूर्य को जल देने की, ये परंपरा इसीलिए रखी गई है कि हमारा मन सुबह से ही प्रसन्न हो जाए। एक बार जैसे ही हमारे अंदर सीरोटोनिन डोपामाइन सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो प्री वर्कआउट में थोड़ा सा जाएं, थोड़ा टहलें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे बॉडी में अगर हार्मोन अच्छा हो जाए, हमारी बॉडी का बैलेंस अच्छा हो जाए, तो दिन भर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत हल्का हल्का, जैसे मैंने कुछ अभी आसनों की बात करी भी, कुछ हम सूक्ष्म यौगिक व्यायाम कर लें, कुछ हम लोग जो है आपस में बातचीत कर लें, कुछ हल्का फुल्का अगर दौड़ भी लगाना चाहते हैं तो उसमें सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है फिर हमें ध्यान देना है। अभी एक बहुत अच्छी जो बात अभी चल रही थी कि टेम्परेचर का बदलाव है। अब हम घर के अंदर बैठे हैं, हम एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, अचानक हमें बाहर निकलना है, तो उसमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और उस समय भी हम शीतली प्राणायाम जो करते हैं, या फिर अपने आप को, अपने शरीर को ढक के जाए, क्योंकि जो सर है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर में सबसे पहले गर्मी लगती है, तो जहां हम छाता की बात कर रहे हैं, अगर छाता नहीं भी है तो हमने देखा होगा कि अधिकतर लोग अपने में पगड़ी कोई बांधता है, कोई अगर अलग तरह से अपने सर को बांध के तब फिर हम गर्मी में जाए। और जो उससे पसीना निकलता है ना, वो भी हमारे लिए कूलिंग इफेक्ट है। अगर हमारी अंदर पगड़ी पहनी है या हमने कोई भी अंगोछा बांधा है, कुछ भी बांधा है, उससे जो पसीना आ रहा है
1: जी
0: वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। और साथ में ये भी ध्यान देने की बात है कि हम अपने को डीप ब्रीदिंग करें, जैसे हम, क्योंकि मन की अगर स्थिति खराब होगी तो गड़बड़ होगा। और डीप ब्रीदिंग का बहुत अच्छा रिसर्च हर जगह दिखाई देता है। हमने पूरी श्वास ली, ऐसे पूरी श्वास भरनी है तो इसको हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि अब मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा चेस्ट नहीं, मेरा लंग्स जो है वह आगे आना चाहिए, वो हमारा एब्डोमन, एब्डोमन सांस भरेंगे तो पेट जो है, When you inhale, your abdomen bulging up, and exhale, abdomen sinking down. और ये जो डीप लेना छोड़ना जब हम करते हैं तो इसके कारण हमारी जो वेगस नर्व्स है,
3: हमारे अंदर की जो जो अस्थिरता है, मन का जो एक तरह से डिसबैलेंस होना, वह सब ही सुधरता है। और वह हमारे ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देता है, हमारे अंदर जो हार्ट रेट है उसको वो ठीक करता है। तो ये कुल मिला के सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो
1: बिल्कुल
3: ये सब चीजें बहुत ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल डॉक्टर
3: और
1: वैशाली, से लौटती हूँ आपको, डॉक्टर वैशाली एक बार आपको इंक्लूड करूंगी। एक नॉर्मल डे स्केड्यूल बताइए, डाइट का पूरा स्केड्यूल क्या होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक?
4: अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जैसा जैसे जो भी सीड्स पसंद है, सौंफ जो है हमारी फेनल सीड्स बहुत लाभदायक होती है, या जैसे मैंने गोंद कतीरा की बात करी तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक चीज आप कोकोनट वाटर या नींबू पानी में डाल के सुबह से अपना दिन शुरुआत करें। और उसके बाद नाश्ते में भी जो है मूंग दाल की इडली है रायते के साथ या छाछ के साथ, या सेमी सॉलिड ओट्स का उपमा है, दलिया है जिसके साथ आप छाछ रायता, इन सारी चीजों को जगह दें। मिड मॉर्निंग में आप पूरा एक बोल फ्रूट का जरूर एंजॉय करें। फ्रूट का जो बोल है उसमें आप कुछ क्रश्ड जो है मिंट लीव डाल सकते हैं, या आपको मॉर्निंग में गोंद कतीरा लेना पसंद नहीं है तो आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह, और उसके बाद लंच में भी जब आप भोजन जो कर रहे हैं तो उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए कि इसमें फ्लूइड, जैसे दाल की कटोरी है तो दाल की कटोरी हो, जो भी सब्जियां किया तोरी टिंडा सीताफल पेठा, ये सारी सब्जियां जो है आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं और जो है गर्मियों के लिए भी अच्छी होती हैं। सलाद में जो है खीरा प्याज टमाटर इनको इंक्लूड करें। टमाटर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि सैलेड ज्यादा है भूख जो है कम है, तो आप खीरे और प्याज, खीरे या ककड़ी में से एक और प्याज को जरूर जगह दें, जैसे कि उसमें क्वेरसेक्टिन होता है जो कि आपको लू से बचाता भी है। फिर शाम के टाइम में जैसे आप अगर कर्ड का इंटेक अच्छा कर चुके हैं, नहीं करना चाहते हैं तो जो है सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं आप, या बेल हैं, और नहीं तो चाहे तो आप 10 से 12 मखाने दही में भीगे हुए उसको थोड़ा जो है चटपटा चाट के फॉर्म में, या जो है मखाने को मिल्क में ठंडई जैसा बना लिया, या सोप मखाना ब्लेंड कर लिया मिल्क या कर्ड, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ऐसा एक पूरा ड्रिंक आप जरूर ले। उसके बाद डिनर जो है जल्दी करें, समय पे करें और हल्का करें, और उसमें भी जैसे आप जो है दलिया है उपमा है इसमें स्प्राउट्स डाल के, और एक फ्लूइड ऑप्शन जो भी आपको बेहतर लगता है। अगर कुछ लोग जो है गर्मियों में रात के टाइम में या शाम, अगर आप अर्ली डिनर कर रहे हैं तो भी दही को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर लगता है तो आप तड़का दे दें दही को और उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं, क्योंकि अगर जैसे भी टेम्परेचर्स की बात चल रही थी तो टेम्परेचर सेंसिटिव या ठंडा वो चीज है कि जैसे फ्रिज से निकाल के बिल्कुल एसी में बैठ के अगर रात में आप ठंडा खाते हैं तो कई बार बहुत सारे लोगों को नुकसान करता है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रात में भी जो है उसका कंजप्शन कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो हल्का सा जो है दही में जो है सौंफ का तड़का दें, उसमें दही को पोर कर दें घी में, सॉरी बहुत थोड़े से हाफ टी स्पून घी में सौंफ के पाउडर क्रश करके तड़का दे के दही को पोर करके, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे खाने के साथ जो है रोटी खाना है आपको या है सो मूंग दाल इडली या कोई आप मूंग दाल चीला रायते के साथ ऐसी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन बेस भी रखना है, बैलेंस आउट करना है, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि सैलेड में अनियन क्यूकुम्बर या ककड़ी का कोई ऑप्शन हो,
1: जी
4: मिड में स्टूडेंट टेक रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये आप अपना पूरा डाइट प्लान बना सकते हैं सुबह से शाम तक, और इसी तरीके से अपना ख्याल रखिए क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। अभी फिलहाल मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है, ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो अपना ख्याल जरूर रखें पानी, जैसा कि सभी लोगों ने एडवाइस किया है, डॉक्टर वली ने भी कहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा आपको पीना, और अपनी डाइट में वो तमाम चीज़ें इंक्लूड करनी जो आपको हेल्दी रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: ये अयोध्या के भव्य और दिव्य दशरथ महल की तस्वीरें हैं, जहाँ प्रभु श्री राम का बचपन गुजरा, जहाँ आंगन में वो खेले हैं। हर साल की तरह इस साल भी दशरथ महल मंदिर की भव्य और विशेष पुष्प सज्जा की गई। दशरथ महल मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी सामानों से खूबसूरती से सजाया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और प्रार्थना के लिए पहुंचे।
1: अंदर जाके ऐसा लगा कि मन को बहुत अच्छी शांति मिली। जो अंदर जाके जो शांति मिली वो आप देख सकते हो, यहाँ कितने सारे फूलों से सजाया हुआ है।
0: इस मौके पर दशरथ महल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं संपन्न की गईं। दशरथ महल मंदिर के पुष्प सज्जा और इस आयोजन का महत्व स्वयं सैनी श्री महंत ने बताया।
2: रामलाला के सेवा में यहाँ पर गर्मी के दिन के कारण यहाँ पर पुष्प उत्सव यानी कि पुष्प बंगला बना करके यहाँ पर सेवा पेश किया जा रहा है। इसी भाव को लेकर के भक्त लोग यहाँ भगवान के नाम रूप लीला धाम को गाते हैं। जैसे गर्मी के दिन है तो ठंडक चाहिए, वैसे गर्मी के दिन में ठंडक और ठंडी के दिन में गर्म चाहिए। इसी भाव से लेकर के गर्म कपड़ा ठंडी के दिन पहनाते हैं।
0: दशरथ महल मंदिर के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई। सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से प्रार्थना करने पहुंचे थे। मंदिर अधिकारियों ने भारी भीड़ को संभालने के लिए शानदार व्यवस्था की है। राम मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। श्री दशरथ महल मंदिर और राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक असीम प्रसन्नता नजर आई और रामलला को फिर देखने आने के वादे के साथ वो विदा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Your Saturday nights will never be the same.
6: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
7: The Tailgate Block Party.
5: The Tailgate Block Party.
6: 6 hours non-stop. Non-stop.
7: The best DJs from around the world.
5: The Tailgate Block Party.
6: Saturday night.
5: 8 p.m. Eastern.
7: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
6: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए आज बात सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल की होगी, कैसे भारतीय अंदाज वहां पर छाया हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हुमा कुरैशी से लेकर अदिति राव हैदरी तक कैसे अपने साड़ी लुक में नजर आ रही है और कैसे ये खूब पसंद किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आगे दिखाएंगे आपको।
4: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए कान की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी रिजल्ट का भी टाइम है। 10th के एग्जाम्स जो हैं उसके रिजल्ट आ चुके हैं, 12th के आ गए हैं, और ऐसे में रिजल्ट टाइम में जो सबसे ज्यादा बात होती है कि आपने कितना परसेंटेज लाया है, बच्चे कितना परसेंट लेकर के आए हैं, इसको लेकर चर्चा होती है। बच्चों के भविष्य को नंबरों से आंकने वाले भी कम नहीं है, लेकिन मुंबई के एक स्टूडेंट और उसके परिवार ने पढ़ाई के इस नंबर सिस्टम को चैलेंज किया है। बच्चे के 55% नंबर आए हैं, लेकिन उसका परिवार इन नंबरों को सेलिब्रेट कर रहा है। इस बच्चे और उसके परिवार से भी आपको हम मिलवाएंगे।
5: नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। आगे बात मौसम की भी करेंगे, जो जिंदगी की अग्नि परीक्षा ले रहा है। पारा कई शहरों में 45 डिग्री को पार कर रख चुका है, ऐसे में गर्मी से कैसे चल रहा है लोगों का युद्ध और कैसे लोग कर रहे हैं इस भीषण गर्मी का सामना, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, वृंदावन में अनिश्चितकाल के लिए दैनिक पदयात्रा पर लगा विराम, एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक। मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार, मंदिर प्रशासन ने दी जानकारी। पांच देशों के दौरे में नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर, भारतीय समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में किया स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल हुई सफल, अभ्यास में दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियां हुई शामिल। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। बत्तीसवीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नेपाल के कामी रीता शेरपा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 56 साल के कामी साल 1994 से कर रहे चढ़ाई, महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11वीं बार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची लहाकपा शेरपा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात कान फिल्म फेस्टिवल भी की करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से वहां पर पूरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री वहां आ रही है, लेकिन तहलका तो बॉलीवुड और इंडिया का बज रहा है डंका।
5: क्या कहेंगे, जितने भी लोग इंडिया से जा रहे हैं ना, ज्यादातर आउटफिट्स आप देखेंगे ना तो उसमें इंडियन लुक जो बनाए गए हैं, जो टच है वो कहीं ना कहीं दिखाता है भारतीय संस्कृति को, तो वो एक इमोशन बन जाता है, अदर देन फैशन स्टेटमेंट वो एक इमोशन भी बन जाता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया की तरफ से इतने सारे लोग जाकर ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
8: देखिए कहने को तो ये फिल्मों का मेला है, कान फिल्म फेस्टिवल, कहने को फिल्मों की बात होती है, लेकिन जब भारत के एक्टर्स, कलाकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पर पहुंचते हैं, वो एक तरीके से भारतीयता को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए बल्कि अपने परिधानों के जरिए भी। हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारे किस तरह की ऐतिहासिक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेस्टर्न तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन इंडियन लुक को आप ग्लोबलाइज किस तरीके से बता रहे हो, उसमें भी अपने कल्चर को दिखाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
5: और साड़ी तो एवरग्रीन है, आप देखिए साड़ी सबसे ज्यादा एलिगेंट लगती है। आप भी, मैंने सुना था आप कहते हैं डेली अगर साड़ी पहना जाए तो कितना खूबसूरत।
9: इस बार आज स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं हुमा कुरैशी और अदिति राव हैदरी
5: जी,
9: अगर उनके लुक को आपने देखा होगा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हुमा ने कहा कि वो काफी इंस्पायर्ड है ऐश्वर्या से। उन्होंने कहा कि उनका जो लुक है साड़ी वाला लुक, वो देवदास में जिस तरह से वो आई थी पहली बार पहन करके, जिस तरह से ऐश्वर्या साड़ी, कुछ उसी से इंस्पायर्ड उनका लुक है। और अदिति तो एवरग्रीन, वो साड़ी में उनको हमने कई बार देखा,
8: लास्ट कांस में भी उन्होंने रेड साड़ी।
9: एग्जैक्टली, तो अमेजिंग है। आपको हम सीधे बताएं, चलिए आपको हम वहीं लिए चलते हैं रेड कार्पेट पर, जिस तरह से ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर जो भारतीय संस्कृति और परंपरा जो देखने को मिल रही है, उसका सौंदर्य यहां पर देखने को मिल रहा है, वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियां, कलाकार और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास भारतीय अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई।
8: बिल्कुल, आपको दिखाते हैं वही रंग। देखिए हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी जब रेड कार्पेट पर पहुंची तो कैसे सबकी नजरें बस उन्हीं की ओर टिक गई।

0: कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कान्स में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कान फिल्म फेस्टिवल ये एक ऐसा मंच है जहां पर रेड कार्पेट पर चलना सिर्फ कैमरों की फ्लैश तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि वहां तक पहुंचने के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और खुद को साबित करने की कहानी छिपी होती है। दुनिया भर के कलाकार, मॉडल्स, डिजाइनर्स और डिजिटल क्रिएटर्स इस मंच तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना हर किसी के हिस्से में नहीं आता, क्योंकि कान सिर्फ ग्लैमर का मंच नहीं, यहाँ पहचान मिलती है उस शख्सियत को जिसने अपने काम से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हो।
1: बिल्कुल, कान की सबसे खास बात यही है कि यहाँ सिर्फ महंगे कपड़े या चमक धमक मायने नहीं रखते, यहाँ आपकी मौजूदगी बताती है कि आपने दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाई है। और शायद इसी वजह से जब कोई भारतीय कलाकार साड़ी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी या फिर भारतीय अंदाज के साथ रेड कार्पेट पर उतरता है, तो वो फैशन से कहीं ज्यादा एक भावना बन जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलवाएंगे आपको, जिसका इंटरनेशनल मंच तक पहुंचना जादू जैसा है।
0: कान फिल्म फेस्टिवल वो भव्य मंच है जहां दुनिया भर के सिनेमा, फैशन और ग्लैमर का सबसे बड़ा संगम देखने को मिलता है, जहां रेड कार्पेट पर कदम रखना किसी भी कलाकार और क्रिएटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा होता है। और अब इसी प्रतिष्ठित मंच पर भारतीय कलाकार से लेकर डिजिटल क्रिएटर्स की चमक भी लगातार बढ़ती जा रही है। रेड कार्पेट पर जहां एक ओर सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं नई पीढ़ी के कंटेंट क्रिएटर्स भी ग्लोबल मंच पर भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के भव्य मंच पर ऑफ व्हाइट ड्रेस में अपना जलवा बिखेरती है हृदा थराना, जिनका सफर एक छोटे से गाँव से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेड कार्पेट तक पहुँचा है। अपने एलिगेंट लुक, आत्मविश्वास और दमदार मौजूदगी से रिदा ने न सिर्फ फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि भारतीय डिजिटल क्रिएटर्स की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी मजबूती से दुनिया के सामने पेश किया। गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के प्रतिष्ठित रेड कार्पेट तक पहुंचने का रिदा का सफर और संघर्ष आत्मविश्वास और मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। आर्थिक तंगी और समाज की सोच ने कई बार उनके रास्ते रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के दम पर पहले सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई और रिदा थराना ने कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच पर भी अपनी दमदार अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक छोटे से गांव से निकलकर ग्लोबल रेड कार्पेट तक पहुंची रिदा ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के आगे कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कांस के रेड कार्पेट पर उनका आत्मविश्वास, स्टाइल और मौजूदगी नई पीढ़ी के डिजिटल क्रिएटर्स के लिए प्रेरणा बन गई। दरअसल कान का मंच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित फिल्म और फैशन आयोजनों में गिना जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना पूरी तरह से निमंत्रण और प्रोफेशनल कैटेगरी पर निर्भर करता है। इस आयोजन में फिल्म, मीडिया और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े चुनिंदा लोगों को ही एंट्री मिलती है। इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में आमतौर पर फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल होते हैं। फिल्म निर्देशक, निर्माता और राइटर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं फैशन डिजाइनर और ब्रांड एम्बेसडर्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स, मॉडल्स और ग्लोबल सेलिब्रिटीज को भी इस मंच पर निमंत्रण मिलता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मीडिया, फिल्म मार्केट से जुड़ा होना या फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल होना जरूरी होता है। वहीं रेड कार्पेट पर चलने का मौका भी केवल चुनिंदा आमंत्रित मेहमानों को ही मिलता है। रेड कार्पेट पर केवल वही लोग चलते हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हों। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उनकी फिल्मों, प्रोजेक्ट्स या फिर आधिकारिक आमंत्रण के आधार पर एंट्री दी जाती है और डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें बड़े फैशन या फिर ब्यूटी ब्रांड्स के जरिए रेड कार्पेट पर आने का मौका मिलता है। कान केवल फिल्मों का उत्सव नहीं बल्कि फैशन, कला और संस्कृति और ग्लोबल पहचान का सबसे बड़ा मंच बन गया है जहां हर साल दुनिया भर की नजरें टिकी रहती हैं और अब भारतीय प्रतिभाएं भी इस मंच पर लगातार अपनी चमक बिखेर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो कान फिल्म फेस्टिवल की चमक हमने देखी और हर बार इसमें इस चमक को और ज्यादा दुगुना तिगुना हमारे जितने भी सितारे हैं वो वहां पर जाकर करते हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा को दिखाते हुए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान, उनका जलवा ऐसा है कि एयरपोर्ट पर दिख जाए तो कैमरा पीछा नहीं छोड़ता और अगर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन भी अगर वो लिख दे तो इंटरनेट उसका मतलब खोजने में बैठ जाता है। सबसे पहले तो आप लोग बताइए, मैं भी खोज रही थी क्योंकि उनका मैंने देखा एक थोड़ा सा ग्रेश ब्लैकिश लुक में, एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आप कह सकते हैं, एक फोटोग्राफ उनका आया सोफे पे, थोड़े से वो आराम से ऐसे बैठे हुए हैं शर्टलेस, जो उनका अक्सर अंदाज रहा है वो है, एंड कुछ लाइन उन्होंने लिखी। आपने वो फोटो देखी? मुझे तो उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया।
1: मैंने वो फोटो देखी और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब आपने जिक्र करा उस फोटो का तो मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा वो सलमान खान थे क्योंकि वो किसी ऐसी ने फोटो डाली हुई थी तो मैंने ध्यान ही दिया, मैंने कहा ये कौन है और बस मैंने उस फोटो को देख के मैं आगे बढ़ गई, स्क्रॉल कर दिया। बट अब आपने बताया सलमान खान और बॉडी जिस तरह से
2: दिख रहे थे,
1: अब पता चला कि सलमान खान की फोटो है लेकिन नीचे क्या लिखा उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, नीचे उन्होंने लिखा है, जो लिखा है वही तो एक्चुअली खबर है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सलमान खान सिंगल है, सारी दुनिया चाहती है कि वो मिंगल हो जाए, मतलब वो शादी कर ले, पूछा जाता है उनसे, वो भी हर मंच पर जाकर कहते हैं, तो नीचे वाला जो उन्होंने कैप्शन लिखा है ना, खबर वही है। उन्होंने कहा है कि मैं तन्हा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ किसी को, अब वो तन्हा क्यों है, ये सबसे बड़ी खबर है, इसको लेकर कयास अब लग रहे हैं।
1: बिल्कुल, दरअसल सलमान ने जो पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने तन्हाई यानी अकेलेपन का जिक्र करा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सलमान खान को अब तन्हाई सताने लगी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सलमान खान की जिंदगी खुद ही एक रहस्य रही है। वो सुपरस्टार हैं, करोड़ों फैंस हैं, शोहरत, दौलत और स्टारडम सब कुछ उनके पास है, इसके बावजूद उनकी निजी जिंदगी में एक अनकहा दर्द है। कहा जा रहा है कि सलमान ने अपनी पोस्ट से कुछ ऐसे ही इशारा किया है।
3: बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर को क्या अकेलेपन का दर्द सताने लगा है? क्या जिंदगी के इस मोड़ पर सलमान खान पर तन्हाई हावी होने लगी है? सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक शर्टलेस तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनकी टोन बॉडी, फिट एब और मस्कुलर फिजिक दिखाई दे रही है। 60 साल की उम्र में भी ऐसी फिजिक काबिले तारीफ है, जिसकी फैंस जमकर तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके पोस्ट के कैप्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। कैप्शन में सलमान ने लिखा है, मैं खुद और खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं, अकेला और तन्हा। अकेला रहना आपकी पसंद होती है, लेकिन तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता। अब इसके आगे आपको खुद समझना है कि आपको क्या करना है। एक बात तो साफ है कि सलमान ने ये बातें यूं ही नहीं कह दी, काफी सोच समझ कर की है और इमोशन में डूबी हुई आवाज उनके दिल से निकली है, जिसकी गवाही उनकी पोस्ट की गई तस्वीर भी दे रही है। तस्वीर में सलमान आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही उनका बॉडी पोस्चर बता रहा है कि वो गंभीर सोच में है, शायद कुछ है जो उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। अब ये तो सबको पता है कि सलमान खान का भरा पूरा परिवार है, माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, भांजे, जिनके साथ अक्सर वो तस्वीरें पोस्ट भी करते रहते हैं। अगर नहीं है तो एक साथी, एक हमसफर, जो उनकी खुशियों को साझा कर सके, उनके गम को बांट सके, और शायद यही वो कमी है जो उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर तन्हा महसूस करा रही है। खैर, सलमान के पोस्ट पर फैंस ने भी खूब कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, आप लाजवाब हैं। एक सच्चे वॉरियर के प्रशंसक होने पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा, आपको सलाम, आप हमें शक्ति देते हैं। एक दूसरे यूजर ने कहा, आप इकलौते सलमान खान हैं जो इतने सालों में जरा भी नहीं बदले, आपका अंदाज आज भी वैसा ही है। वही सलमान के कुछ फैंस ने उनके जबरदस्त फिजिक की तारीफ करते हुए कमेंट्स की बौछार कर दी है। फैंस ने सलमान खान को 60 साल की उम्र में भी भारत के असली बॉडी बिल्डिंग आइकन कहा है। लेकिन ऐसी सारी अचीवमेंट्स के बीच सलमान खान खुद क्या महसूस करते हैं, उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, हम अब एग्जाम्स की बात कर लेते हैं और रिजल्ट की। एग्जाम तो खत्म हो गए तो इसलिए रिजल्ट की बात करेंगे। 99% अगर किसी को आए तो फिर कहना ही क्या,
4: पार्टी,
2: फिर पार्टी होती है, सिर्फ पार्टी है ना। तो केक कटता है, लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कहीं आपने सुना है कि 55% मार्क्स आए और उसको सेलिब्रेट किया गया?
4: भाई अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो धन्य है।
5: मतलब नहीं, आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है, आजकल पेरेंट्स मार्क्स पे नहीं जाते हैं आज के, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो, क्योंकि एक समय था कि 12th में आपके कितने मार्क्स आ रहे उस हिसाब से आगे आपको एडमिशन मिलेगा।
2: Exactly.
5: हाँ, लेकिन देखिए सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। दूसरा ये भी है कि 12th में आपको मिनिमम 60% तो चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको फिर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, तो दोनों चीजें हैं। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा कूल रख रहे हैं आजकल।
2: बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हमारी ये अगली खबर है जो हम आपको बता दें कि अमूमन 55% जहां पे आते हैं नंबर, वहां पर हम देखते नहीं है कि लोग इतने खुश होते हैं, लेकिन यहां जश्न मनाते परिवार वाले भी और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मुंबई का ये परिवार है, यहां पर इंटरनेट का इस परिवार ने एक तरह से दिल जीत लिया है। इंटरनेट पर छा चुकी है ये खबर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक परिवार अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% नंबर आने पर केक काटकर जश्न मनाता नजर आ रहा है।
5: बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से खुशी मनाई गई है इस परिवार में। एग्जाम में टॉप करने पर केक काटकर जश्न मनाते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन अब जरा 55% लाने का ये जश्न भी देख लीजिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जहां एक परिवार अपने बच्चे की 55% नंबर्स को सेलिब्रेट कर रहा है। मुंबई का ये परिवार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जिस तरह से नंबर से हटकर इस परिवार ने बच्चे की खुशी को तरजीह दी है, ये जश्न इसलिए भी अनूठा हो गया क्योंकि जो केक काटा गया वो हूबहू बच्चे की मार्कशीट की तर्ज पर ही बना था, और केक काटते वक्त बच्चे और परिवार की खुशी देखते ही बन रही थी। मोहम्मद जैद की मार्कशीट की हूबहू कॉपी केक पर उतारी गई। एक एक सब्जेक्ट और उसके नंबर्स केक पर उकेरे गए और बड़े शान से उनकी परसेंटेज का जिक्र भी किया गया। कैंडल भी 55 नंबर की ही थी। परिवार ने ऐसा करके बच्चे को बता दिया कि नंबर कितने भी हो, जिंदगी का जश्न थमना नहीं चाहिए। मुंबई के इस परिवार ने जिस तरह से बच्चे के 55% नंबर्स पर जश्न मनाया है, उसने लोगों का दिल जीत लिया। तमाम यूजर्स ने मुंबई के इस परिवार की जमकर तारीफ की और लिखा कि 84% अंक मिलने के बावजूद भी मुझे कभी इतना सम्मान या फिर सराहना नहीं मिली। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, हर माता पिता को इसी तरह से जश्न मनाना चाहिए। वीडियो पोस्ट करने वाले जैद के परिवार की सदस्य ने कहा कि मेरे बच्चे के 55 अंक 95 या 85 से कहीं अधिक हैं। उसे डांटने या उसे बुरा महसूस कराने के बजाय मैं उसे खुश रहना सिखा रही हूँ। ऐसे वक्त में जब नंबर्स की दौड़ लगी है, बच्चों की मेंटल हेल्थ और एकेडमिक्स प्रेशर पर खुलकर बातचीत हो रही है, ऐसे में 55% नंबर वाला जश्न वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आप यकीन नहीं मानेंगे, सोशल मीडिया पे जब मैंने ये देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है मोबाइल में, सो दैट कि अगर कोई अगल बगल भी दिखे तो मैं दिखा पाऊं और इंस्पायर कर पाऊं। तो मोहम्मद जैद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सायरा उनकी जो मौसी हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप दोनों को ढेर सारी बधाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं।
6: थैंक यू सो मच।
2: कैसा लग रहा है जैद? आपको पूरा परिवार ही नहीं, अब तो पूरा देश आपको बधाइयां दे रहा है और बहुत खुश है।
7: बहुत अच्छा लग रहा है नीरो।
8: बिल्कुल जैद, अच्छा ये बताइए, एक तो आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, कम से कम आज के पेरेंट्स को ये खबर जरूर देखनी चाहिए जो अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं या फिर डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके लिए तो बहुत ज्यादा रिलीफ रहा होगा, बहुत स्ट्रेस फ्री होके आपने एग्जाम दिए होंगे। जैद मेरी आवाज आप तक आ रही है?
7: आ रही है।
8: अच्छा बताइए, जब रिजल्ट आया, आपने मार्कशीट देखी तो आपको कैसा लगा? परिवार का क्या रिएक्शन था उसके बाद?
7: मुझे अच्छा लगा बहुत, और मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए थे।
2: सारा ये बताइए कि परिवार के लोग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर, मतलब वो जो पूरा मार्कशीट होता है ना, उसको केक में उन्होंने उतारा था, वो प्रिंट किया था। तो आप लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि मार्क्स जो भी आए हमें सेलिब्रेट करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
6: हाँ, हम लोग ने पहले ही मतलब सोच के रखा था कि मार्क्स चाहे कुछ भी आए पर हमें सेलिब्रेट करना ही है।
8: देखिए एक चीज और है, नॉर्मली क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, और नॉर्मली स्कूल्स में जब टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि ज्यादा प्रेशर नहीं लो, अब तो प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर कोई 33% मार्क्स भी ले रहा है तो उसने 33% मेहनत तो की है ना, कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की। 55% आना, 85%, 99% आना, क्या परसेंटेज आज की तारीख में मैटर करती है? सारा मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे आपने जायद पर ये जो पढ़ाई का प्रेशर था उसको थोड़ा कूल किया?
6: एक्चुअली हम लोग का मानना ये है कि हर बच्चा पढ़ाई से आगे बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स लेवल में हो, चाहे कोई भी लेवल में हो, पर उसमें कैसा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड है तो ही उसको एंट्री मिलेगी या कुछ मिलेगा। हर किसी का अपना अपना, हर बच्चे का अपना अपना माइंड होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, तो इसीलिए अभी वो भी उसका भी कोई जो भी स्किल रहेगी उसकी, तो वो स्किल से आगे बढ़ेगा। अगर उसका पढ़ाई में नहीं है मन तो फिर नहीं है, अगर उसको दूसरी चीजों से आगे बढ़ना है तो वो दूसरी चीजों से आगे बढ़ेगा। अभी जैसे पर्सनली मैं भारती सिंह के व्लॉग्स वगैरह बहुत देखती हूँ, तो भारती सिंह जो है वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, बट वो उनके पास एक लोगों को हंसाने का और ये करने का बहुत अच्छा तरीका है उनके पास, तो आज वो इतनी फेमस हो गई, आज सब कुछ कर रही है वो, अपने टैलेंट के इस पे कर रही है।
2: बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। एक बार फिर से जैद आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आप लोगों के इस स्टोरी से बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो प्रेरित होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।
8: यहाँ पर देखिए एक लाइन और, मैं यहाँ पर खुशी आप एक एड ऑन कर दूं, इन्होंने कहा स्किल से, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ना, उसमें स्किल पर फोकस करने की बात हो रही, यही वजह है कि इस पॉलिसी को लाया गया। क्यों? क्योंकि बच्चे केवल किताबी कीड़ा बन के ना रह जाए, जो उनकी इनर स्किल्स हैं उनको भी निखारा जाए, जो कि अभी शुरू हो चुके हैं।
2: और इस सरकार में ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कितना ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये भी हम देख ही रहे हैं। बहुत सही बात इन्होंने कही। चलिए हम रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर अब मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक डाकिया की किस्मत बदल गई है। कसरत करने के जुनून ने डाकिया योगेंद्र को एक नई पहचान दिला दी है। पोस्टमैन योगेंद्र कुशवाहा मशहूर अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के फैन हैं और उन्हीं के स्टाइल में कसरत करने का वीडियो बनाते हैं।
8: और यही बात जब अमेरिका के मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर एशन हॉल को पता चली तो इसके बाद वो अमेरिका से सीधे मुरैना में योगेंद्र के गांव पहुंच गए और उनसे मिलने के लिए वो यहां पहुंचे। देखिए दोनों ने जमकर कितना धमाल मचाया।

जब जब दुनिया ने कहा कि सपने सिर्फ बड़े शहरों में पूरे होते हैं, तब तब गांव ने साबित किया कि मेहनत और लगन का कोई तोड़ नहीं। और ये गांव में रहने वाले एक युवक के सपने के सच हो जाने का जश्न है। मध्य प्रदेश के मुरैना के एक छोटे से गांव में रहने वाले योगेंद्र फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। अपने इसी हुनर से उन्होंने अमेरिका के मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल को अपने गांव आने पर मजबूर कर दिया। एस्टन हॉल मुरैना में योगेंद्र के गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। गांव में दोनों ने साथ में कसरत करने की कई वीडियोस बनाए।

कसरत के साथ देसी अंदाज में चूल्हे में खाना भी बनाया और इतना ही नहीं गांव के खुले मैदान में घुड़सवारी भी की। दोनों की मस्ती के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी एक वीडियो में एस्टन हॉल होटल के बाहर योगेंद्र का बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रही है, जहां एस्टन हॉल ने योगेंद्र के पहुंचने पर गले लगाकर स्वागत किया और फिर होटल के रूम तक छोड़कर आए।

0: एस्टन हॉल अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके 3 AM मॉर्निंग रूट वाले वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। आज भी YouTube पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और TikTok पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कोविड के दौरान उनकी जिम मैनेजर की नौकरी चली गई थी, तब उन्होंने ऑनलाइन फिटनेस कंटेंट बनाना शुरू किया था। योगेंद्र एस्टन हॉल की तरह अपनी फिटनेस के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। वो उन्हीं की तरह बर्फ थेरेपी, जिम, रनिंग करते थे। यानी एस्टन जो भी फिटनेस एक्टिविटी करते, योगेंद्र हूबहू उसकी कॉपी करते। जब योगेंद्र ने एस्टन हॉल की कॉपी करते हुए वीडियो बनाकर उन्हें शेयर किया तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये वीडियो तब वायरल हो गया जब खुद एस्टन ने इस पर कमेंट किया। एस्टन ने लिखा कि अगर योगेंद्र के इस वीडियो पर 5 लाख लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो वो खुद उनसे मिलने भारत आएंगे। और ये टास्क पूरा होते ही एस्टन ने अपना वादा निभा दिया। एस्टन हॉल ने योगेंद्र को एक थार गाड़ी भी गिफ्ट की, साथ ही भविष्य में अमेरिका बुलाने और आर्थिक मदद देने का भरोसा भी दिया है। इस मुलाकात के बाद योगेंद्र के सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या 300 से बढ़कर 7 लाख हो चुकी है। एस्टन हॉल ने महज एक वादा नहीं निभाया बल्कि मेहनत और गांव की मिट्टी का सम्मान भी किया है। ये मुलाकात अब इतिहास बन चुकी है जो युवाओं को मेहनत करने की प्रेरणा दे रही है। मुरैना से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 44 डिग्री की गर्मी के बीच क्या है इंडिया का समर प्लान।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जानिए क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: स्वागत है आप सबका चाय पर चर्चा में। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम्बोली के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी खबर, वृंदावन में अनिश्चितकाल के लिए दैनिक पदयात्रा पर लगा विराम, एकांतिक वार्तालाप पर भी रोक। 20 मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार, मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी। IPL टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनर्जी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाया हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी बात की। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल सफल हुई, अभ्यास में दिल्ली पुलिस, CISF, NSG समेत सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नेपाल की कामिरता शेरपा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 56 साल की कामी साल 1994 से कर रही चढ़ाई। मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त आसमान से आंधी बरस रही, बहुत सारे शहर ऐसे जहां 45 के पार पहुंच चुका है पारा, और सबसे बुरा हाल तो उत्तर भारत में बना हुआ है मौसम के मिजाज में। फिलहाल आने वाले दिनों में नरमी का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या किया जाए।
9: बिल्कुल, आपको बता दें गर्मी से बचना कैसे है ये हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी से आधा भारत कैसे जंग में जुटा हुआ है। कहीं प्रशासन की ओर से कूल इंतजाम किए जा रहे हैं, तो कहीं लोग खुद ही गर्मी से दो दो हाथ करने में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं गर्मी से इंडिया के महायुद्ध की तस्वीरें।

चिलचिलाती धूप सूरज की ये तपेश महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी की साफ तस्वीर पेश कर रही है। अकोला और अमरावती जैसे शहरों में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा, तो दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरता दिखा। इस सीजन में विदर्भ में लू का प्रकोप चरम पर है, तो लोगों को गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया है। वहीं जो लोग बाहर

0: निकल भी रही है। वो सिर पर अंगोछे बांध कर और अच्छी तरह से मुंह हाथ ढक कर ही आवागमन कर रहे हैं, ताकि तेज गर्म हवाओं से बचाव कर सके। लगातार बढ़ते तापमान और लू के कारण लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मौसम के इस हाल से बचाव के लिए क्या प्लान होना चाहिए। हालात को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों का मानना है कि बढ़ता तापमान का स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है, इसीलिए लोगों को धूप में निकलने से बचना चाहिए। सभी को खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में जल की कमी न हो। गर्मी के कारण पूर्वी और उत्तर भारत के राज्यों में भी हालात पश्चिमी भारत जैसे ही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में जो लोग घरों से मजबूरी में बाहर निकल भी रहे हैं, उन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोग तपिश से बचने के लिए छांव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर कई राहगीर छाते का इस्तेमाल करते भी नजर आते हैं, तो बहुत से लोग अंगोछे की मदद से ही सिर ढक कर धूप से बचाव करते दिखते हैं। गर्मी में तरावट के लिए लोग रुक रुक कर पानी पीते हैं। साथ ही गन्ने के रस और फलों के जूस का भी उपयोग बढ़ गया है, ताकि गर्मी से थोड़ी राहत तो मिले।
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारी जो कोचिंग होती है वो 9 से 2 बजे तक चलती है। हम लोगों को सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है और दोपहर को कड़ी धूप में निकलना पड़ता है। फिर यहाँ कोचिंग से 2 बजे छुट्टी होती है। रास्ते में इतनी ज्यादा धूप की वजह से हमें रुमाल और जगह जगह पर प्यास लगती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: गर्मी का असर इंसान के साथ साथ हर प्राणी के जीवन पर असर डालता है। लिहाजा वडोदरा के सयाजी बाग चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों की विशेष रूप से देखभाल की जा रही है। इस चिड़ियाघर में भालू, बंदर के साथ साथ बाघ और दूसरे प्राणी भी हैं। इन्हें तेज गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही इनके लिए खाने पीने के भी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि ये जानवर तरावट महसूस कर सके।
2: बंदर, भालू, तेंदुआ, बाघ, इन सबको बर्फ के टुकड़े मुहैया कराए जाते हैं। बर्फ के साथ पूरा दिन दोपहर तक खेलकर, उसे चाटकर, उसके साथ ये करके उनको ठंडक मिलती है। पशु पक्षियों के पीने के पानी में, जैसे हमारे मनुष्य में ORS और ग्लूकॉन डी जैसे जो सप्लीमेंट्स आते हैं, वैसे ऐसे जो वेटनरी सप्लीमेंट्स हैं, वो सप्लीमेंट्स को पानी में मिला के इनको दिया जाता है, ताकि वो पानी पीकर भी जो है उनको हाइड्रेशन रहे, डिहाइड्रेट ना हो।
0: देहरादून के चिड़ियाघर में भी पशु पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस चिड़ियाघर में खास तौर से पंछियों की कई प्रजातियां हैं, साथ ही कछुए, घड़ियाल, अजगर और हिरण सहित बहुत से जानवर यहां पर रखे गए हैं। इन्हें गर्मी से परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है।
3: जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था इस तरीके से, हमारे फाउंटेन चल रहे हैं, हमारे जो ये बाड़े हैं इनको आधा हमने तिरपाल से ढक रखा है कि जो डायरेक्ट सूरज की किरणें जो है सीधे उन पे न पड़े, अपने चिड़ियाओं पे न पड़े, जानवरों पे न पड़े। और पानी के द्वारा हमने उनका बाड़े पूरे पानी से स्प्रे कर रखा है। खाने में भी इस तरीके से हमने, जैसे चिड़ियाओं के लिए है खीरा है और ये तरबूज है, ठंडी चीज़ें, फल काट के उनके बाड़ों में रखे हुए हैं, जो कि उसको खा के उनको जो है कि पानी की पूर्ति हो जाए।
0: गर्मी के बावजूद इन दिनों देहरादून चिड़ियाघर में सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानियों की कमी रही है, क्योंकि यहां पर हरियाली के कारण तपिश से राहत मिलती है। ऐसे में यहां रखे गए जानवर भी गर्मी से प्रभावित ना हो और सुस्त ना दिखे, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। अकोला से धनंजय साबले और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, गर्मी का हाल तो आपने देख लिया, चलिए अब आपको मॉनसून का अपडेट भी देख देते हैं। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बात करें तो उसने समय से पहले रफ्तार पकड़ते हुए निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लिया है और इसके साथ ही अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में भी इसकी दस्तक दर्ज की है। भारतीय मॉनसून विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून तय समय से पहले यानी 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
5: बिल्कुल, आपको बता दें अगर ऐसा होता है तो ये लगातार तीसरा साल होगा जब मॉनसून समय से पहले भारत में प्रवेश करेगा। इससे पहले साल 2023 में मॉनसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था, जबकि सामान्य तौर पर इसकी एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआती मॉनसून कृषि गर्मी से राहत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आपको हम बता दें कि देश के कई शहर इन दिनों आग उगलती गर्मी से तप रहे हैं। सड़कों पर लू के थपेड़े हैं और लोग छांव तलाशते फिर रहे हैं, लेकिन इसी तपिश के बीच कश्मीर का गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। यहां की बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और बादलों से लिपटी वादियां सैलानियों को ऐसा एहसास दिला रही है मानो गर्मी अचानक कहीं गायब हो गई हो।
6: तो गुलमर्ग आपको सीधा लिए चलता है जहां बर्फ से ढके पहाड़ बुला रहे हैं सैलानियों को, और सैलानी वहां पर रोमांच और सुकून के लिए पहुंच रहे हैं।

0: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के भूटा पथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में।
1: हम वहाँ एमपी से आए, जब हम आए थे तो वहाँ 45 डिग्री था
0: जी।
1: वहाँ पर हमको बाप रे इतनी गर्मी लग रही थी और यहाँ आए तो बिल्कुल -4 डिग्री में ऐसा लग रहा है कि क्या पता क्या जन्नत मिल गई हम यहाँ आए तो। मतलब हमने कभी देखा नहीं था, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आ गए हम। कश्मीर वास्तव में एक स्वर्ग है, जन्नत है। मैं यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
2: यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में
0: तो कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हमें
3: यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जो भी देख रहा है मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप कश्मीर एक बार तो ज़रूर आए। मैं क्या महीने में मैं तो ग्रीनरी देखने आया था कश्मीर की, लेकिन स्नो भी दिख गई, ये तो सोने पे सुहागा ही है।
4: गुजरात में 50 डिग्री गर्मी पड़ती है, यहाँ पे -5 डिग्री है और मेरा नसीब अच्छा है, स्नो पड़ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा है।
5: यहाँ पे एकदम जन्नत वाला वेदर है, मज़ा आ गया, ऑसम है और रियली कश्मीर जन्नत है। ऐसे नहीं सोचा था कि हमें स्नोफॉल मिल जाएगा, लेकिन लकीली मिल रहा है तो एंजॉय कर रहे हैं।

0: आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट है।
1: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला 2 जो किया हमने, वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। मेरी ये छोटी बच्ची है, वो पहली बार आई यहाँ पे, उसने भी काफी एंजॉय किया।
2: बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा वेदर है।
0: गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं न कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं। शेख दाऊद, JNT न्यूज, गुलमर्ग।
3: दिल्ली की भागती दौड़ती सड़कों पर सोमवार सुबह एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला नहीं बल्कि आम यात्रियों के बीच मेट्रो के डिब्बों में बैठ थे नजर आए मुख्यमंत्री और मंत्री। वजह थी ईंधन बचाने और प्रदूषण घटाने की वह मुहिम जिसकी अपील सरकार लंबे समय से कर रही है, लेकिन इस बार नेताओं ने सिर्फ संदेश नहीं दिया बल्कि खुद उदाहरण बनकर दिखाया।
4: बिल्कुल, मंडे को मेट्रो अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट के सहयोगियों ने निजी गाड़ियों को किनारा करते हुए सचिवालय पहुंचने के लिए मेट्रो का सफर किया। स्टेशन पर आम लोगों के बीच नेताओं को देखकर यात्री भी काफी उत्साहित नजर आए। कई लोगों ने इसे नेताओं का जमीन से जुड़ने वाला सफर बताया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये उनसे हर एक कम्यूटर से जो अपील की गई है कि किस तरीके से भी हम लोगों के ईंधन की बचत करनी है, और उसी में मंडे मेट्रो जैसी चीज का जो है वो लाया गया है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम भी लोगों से किए जाने की जो है अपील करी, तो उसी अपील के साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मतलब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि NDMC की कार्यकर्ता भी आपको यहाँ मौजूद आएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन से आप सफर कीजिए। मेट्रो यूजर जितनी भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए, इसी कारण जो है इसी वजह से हम लोग जो है ईंधन की बचत कर पाएंगे। तो हर एक पैम्फलेट पे देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखा आ जाएगा, तो मेट्रो यूजर्स एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर NDMC वेलकम करता है, और उसी को देखते हुए आज से मेट्रो के लिए 6 मेट्रो जो है वो बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ जो फेरे वाला जो ट्रिप्स की हम बात की गई है वो ट्रिप्स भी जो है बढ़ा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
6: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से आई सबसे अनूठी तस्वीर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: मध्य प्रदेश के मांडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच एक ऐसी अनोखी कैंटीन मौजूद है जो सिर्फ चाय नाश्ता परोसने की जगह नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और प्रकृति प्रेम की जीवंत मिसाल बन चुकी है। खास बात यह है कि पूरी कैंटीन बांस से तैयार की गई है। जंगल की हरियाली के बीच बनी ये कैंटीन पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है।
2: बिल्कुल, इस कैंटीन की असली ताकत है सेव सहायता समूह से जुड़ी वे महिलाएं जिन्होंने कभी घर की चौखट तक सीमित जिंदगी देखी थी, लेकिन आज जंगलों के बीच अपने हुनर और मेहनत से नई पहचान बना रही हैं। कैंटीन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं महिलाओं के हाथों में है।
3: जंगलों के बीच महिलाओं ने लिखी है आत्मनिर्भरता की नई कहानी, और महिलाओं की इस कहानी का नायक है कान्हा टाइगर रिजर्व में सरही गेट पर बना बांस का ये कैंटीन। कान्हा टाइगर रिजर्व देखने आने वाले पर्यटक यहां बने इस बांस की कैंटीन से पारंपरिक स्वाद लेकर लौटते हैं। मंडला में बांस का ये कैंटीन स्व सहायता समूह की महिला चला रही है। कैसे ये कैंटीन यहाँ पारंपरिक स्वाद को तो बरकरार रखे हुए ही है, महिलाओं के लिए आजीविका का जीवंत साधन भी बन गई है।
4: हमने इको टूरिज्म बोर्ड से राशि प्राप्त करके एक बांस से निर्मित स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक कैंटीन बनवाई, जिसमें महिलाएं अब जो लोकल यहाँ की जो खाने के जो व्यंजन है वो परोसती है, जिसमे मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुलगुले हैं, फिर आपके बड़ा है, और इस तरह के अन्य भी जो लोकल खाने वाले व्यंजन हैं वो परोसे जाते हैं, जिसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है।
3: महिलाएं खुद मानती हैं कि बांस के इस कैंटीन ने उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।
5: 2020 से हम लोग सर यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में काम करते है। 2 साल तो बहुत सी समस्या था सर हमें हमारे कैंटीन में, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं सर बाहर से, अरिया काम किए हैं सर, कोदो कुटकी खा खाना वाले काम, तो बहुत सर अभी हमारा आमदनी बढ़ रहा है।
3: यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच बांस के ये कैंटीन अपनी संरचना की वजह से तो आकर्षण का केंद्र बन ही चुकी है, पर्यटक यहाँ के पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लेने में भी रुचि दिखा रहे हैं। जाहिर है कि ये पहल महिलाओं की एक सत आजीविका के अवसरों के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। साथ ही ये पहल पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने में सहायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: जंगल में अक्सर एक हथनी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है, लेकिन उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो तस्वीर सामने आई है उसने वन्यजीव विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। रामनगर में मौजूद कॉर्बेट के घने जंगलों में एक जंगली हथनी अपने जुड़वा बच्चों के साथ नजर आई। ये दृश्य इतना दुर्लभ है कि वन अधिकारी भी इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा बता रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में दोनों नन्हे बच्चे कभी अपनी माँ के आसपास खेलते नजर आते हैं तो कभी उसके पास सटकर चलते दिखाई देते हैं। माँ हथनी भी दोनों बच्चों को बेहद सतर्कता और ममता के साथ संभालती दिख रही है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक हाथियों में जुड़वा बच्चों का जन्म बेहद दुर्लभ माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हथनी का लंबा गर्भकाल। ऐसे में हाथियों के जुड़वा बच्चों का जन्म लेना और दोनों का स्वस्थ होना वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बेहद पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।
7: तो यहाँ पर हाथियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत अच्छी संख्या है, और हमारे लिए पूरा जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है जो पूरे उत्तराखंड में, जिसका कॉर्बेट भी एक पार्ट है, वो पूरा जो एलिफेंट रिजर्व बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो हमारा जो गर्जिया जोन है उसमें हमको एक हाथी दो बच्चों के साथ, दो जुड़वा बच्चों के साथ देखा गया है। इस हथनी ने दो बच्चों को जो जन्म दिया है, ये जो जो इवेंट है ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि हाथी जो अपने जो बच्चे हैं वो गर्भकाल जो होता है उसका लगभग 22 से 24 महीने होता है, यानी लगभग 2 साल तक वो अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है बिफोर वो उसको पैदा करे। तो ऐसी उसमें दो बच्चों को पैदा करना एक बहुत ही रेयर ऐसी घटना होती है जो कि सामान्यतः नहीं देखी जाती, ये हमारे क्षेत्र में देखी जा रही है। पर्यटकों में इन बच्चों को देखने का बहुत अच्छा एक उसका जोश है, बहुत सारे पर्यटक हमारे गर्जिया जोन में स्पेशली इन बच्चों को देखने आ रहे हैं।
2: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: AI is changing what tech jobs look like and what employers expect. Moving forward requires more than just knowing about AI. You need to know how to use it. At WGU, our online technology master's programs are built to help you gain job-ready skills for an AI-driven world. You'll focus on what actually matters in today's tech roles and learn in a way that fits around your life. If you're ready to build skills that keep pace with what's next, learn more at WGU.edu.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्रिकेट के मैदान पर गेंद को स्विंग कराने वाले इरफान पठान अब सोशल मीडिया पर मैजिक बॉल घुमाते नजर आ रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर का एक छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उत्सुक भी। सिर्फ 17 सेकंड के इस वीडियो में इरफान पठान किसी जादूगर की तरह क्रिकेट बॉल के साथ ऐसा करतब दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर पहली नजर में आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
2: आपको बता दें, वीडियो की शुरुआत में इरफान बेहद शांत अंदाज में खड़े दिखाई देते हैं, बैठे हुए हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बैठे हुए हैं और उनके हाथ के ऊपर क्रिकेट गेंद हवा में तैरती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि गेंद उनकी हथेली से कुछ इंच ऊपर मंडराती रहती है और उनके हाथ की हरकतों के साथ बिल्कुल तालमेल में चलती दिखाई देती है। पास खड़े दो लोग इस मैजिक बॉल को देखकर हैरानी जताते हैं और कैमरे की तरफ आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, और तभी वीडियो खत्म हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग यही समझने में जुटे हुए हैं कि कैमरा ये ट्रिक है या फिर हाथ की सफाई या सच में कोई जादू। फैंस इरफान को क्रिकेट का जादूगर बता रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि मैदान के बाद अब इरफान भाई इंटरनेट पर भी स्पिन करा रहे
3: हैं। परेशान है नहीं तो अब
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake up.
2: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
5: I have no idea how this election is going to play out,
4: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। बीस मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार, मंदिर प्रशासन ने दी जानकारी। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई में एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। दुनिया में युद्ध के बादल घिरे हैं और ऊर्जा संकट हमारी दहलीज पर खड़ा है। भारत का इस मैन मेड आपदा को लाने में कोई रोल नहीं है। ये मुसीबत हमारे बुलाने से नहीं आई है, हाँ, लेकिन अपने घर को इससे उबारने का रास्ता एक देश के तौर पर हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने यही आह्वान करते हुए देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी और शहर शहर अब उस अपील का असर दिख रहा है। कई कई कारों वाले लंबे चौड़े काफिले, कभी जिन मंत्री सांसदों की पहचान का हिस्सा थे, आज दिल्ली वालों ने उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर जाते देखा। आज दिल्ली सरकार के सीएम समेत कई मंत्री मेट्रो से सफर कर दफ्तर पहुंचे। आज से राजधानी दिल्ली में मेट्रो मंडे की शुरुआत हुई है। अब से हर मंडे दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो चलेगी और मेट्रो के फेरे भी बढ़ेंगे, ताकि दिल्ली में निजी वाहन की जगह मेट्रो समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले।
1: दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: सफर वही है, नजर नहीं है। जो मेट्रो ट्रेन पिछले 25 साल से देश की राजधानी में सफर को आसान बना रही है, अब वही मेट्रो मुश्किल वक्त में देश के लिए आम नागरिक के योगदान का जरिया बनेगी। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध से पनपे हालात और वैश्विक परिदृश्य के बीच हाल ही में पीएम मोदी ने देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी। इसके बाद से शहर शहर अलग अलग रूपों में उस अपील का असर नजर आ रहा है। आज बारी देश की राजधानी की रही। आज दिल्ली सरकार की मुखिया समेत कई मंत्री अपनी गाड़ियां छोड़ मेट्रो में सफर करने उतरे। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने 18 मई से हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाने का ऐलान किया था। इसी के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हर सोमवार को राजधानी में अतिरिक्त मेट्रो चलाने और वर्तमान मेट्रो के फेरे बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। दिल्ली के पहले मेट्रो मंडे के दिन पूरी दिल्ली सरकार मेट्रो में सफर करती नजर आई। तेल बचाने की मुहिम में सीएम रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो रेल से अपने अपने दफ्तर पहुंचे। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह और मनोज तिवारी समेत कई मंत्री और सांसद हफ्ते के पहले दिन दिल्ली मेट्रो के मुसाफिर बने।
4: आज से मंडे मेट्रो डे की शुरुआत हो गई है और दिल्ली सरकार और देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ईंधन की जो है बचत हो सके। और ऐसे में आज है मंडे मेट्रो डे, यानी मेट्रो से ट्रैवल करने का दिन। सभी सरकारी दफ्तर के लोग हो या फिर आम दफ्तर में जाने वाले लोग जो है वो इस तरीके से मेट्रो में ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के लिए डीएमआरसी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है।
3: मेट्रो मंडे मुहिम को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद मेट्रो में सफर किया। सोमवार की सुबह रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट से मेट्रो में ट्रेवल करते हुए आरटीओ मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र राज भी मेट्रो में सफर करते नजर आए। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी हफ्ते के पहले दिन गाड़ी को छोड़ मेट्रो में सफर कर दफ्तर पहुंचे।
5: हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेट्रो मंडे बनाना है, तो मैंने मेट्रो में देखा बहुत सारे अधिकारी वो भी मेट्रो से आ रहे थे और वो उनसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने घर से पैदल चला, उसके बाद में मेट्रो लिया, फिर मैंने जो है हमारी अपना देवी बस ली। मेरे को जितना समय गाड़ी से लगता था उतना कम समय में यहाँ पर पहुंच गया ऑफिस में। तो मेट्रो, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना अपना प्रयास करना है। देश की आज मांग है कि हमको ईंधन को बचाना है और वो लंबे समय तक हमारा रिजर्व रहे, उसके लिए कोशिश करनी है।
3: इसी क्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेपी नेता और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने भी मेट्रो मंडे के दिन मेट्रो रेल की सवारी की।
4: आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से मंडे मेट्रो डे की शुरुआत हुई है, तो हम इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद आपको मनोज तिवारी भी आगे नजर आ जाएंगे, कुलजीत सिंह चहल भी नजर आ जाएंगे, कि किस तरीके से आज वो दोनों एक साथ मेट्रो से सफर करते हुए जो है राजीव चौक स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। और ये अलग ही आज एक रौनक जो है वो नजर आ रही है, कि किस तरीके से जो मेट्रो के अतिरिक्त फेरे भी जो है आज से उनकी शुरुआत हुई है। और आप देख सकते हैं कि कुलजीत से सबसे पहले बात करते हैं। कुलजीत जी, आज आपने मेट्रो से सफर किया, कैसा लगा? पहले तो ये बताइए कि मंडे मेट्रो की आज शुरुआत हुई है।
6: मंडे मेट्रो की जो आज शुरुआत है वो भी एक अच्छा है, और माने प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल करी थी कि सेफ फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, तो वो भी हमने एक शुरुआत करी है। हमने ऑटो पूल भी किया है, मैं मनोज जी के घर से हमने ऑटो पूल करके निकले हैं। मैं दिल्ली की जनता से भी अपील करता हूं कि देश की अच्छी सच्ची सेवा और सच्ची देशभक्ति वही है कि पेट्रोल डीजल हम कितना बचाएं। और जब इस समय वो है कि माने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह युद्ध के टाइम पर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो हम जितना फॉरन रिजर्व बचाएंगे वो देश की सच्ची सेवा और सच्ची देशभक्ति है। तो अभी हम यहाँ पर जो मेट्रो के यात्री भी आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम अभी एक कार्यक्रम की इनॉग्रेशन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं।
4: माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री भी जो है मेट्रो से ट्रैवल करेंगे,
6: जी,
4: उनके साथ भी सफर करने का प्लान है?
6: नहीं, वो सब अपने अपने गंतव्य पे, अपने अपने कामों पे मेट्रो से जा रहे हैं।
7: जो मेट्रो यूज कर रहे हैं हम उनको 21 तोपों की सलामी देना चाहते हैं। और अभी अभी हमने भी कुलजीत चहल जी के साथ ऑटो पूल किया, हम घर से इलेक्ट्रिक ऑटो से निकले हैं, और बाद में मेट्रो स्टेशन आके वहां से हम सीपी आए हैं, लोगों से बातचीत किया हम लोगों ने। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि हे मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना किए हैं वो कोई लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पालन करेंगे आपको आनंद हो।
3: पहले मेट्रो मंडे पर नेता ही नहीं बल्कि दिल्ली के आम आदमी भी खासे उत्साहित दिखे। कई तो ऐसे यात्री भी नजर आए जो अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर पीएम की अपील के बाद मेट्रो में सफर करने पहुंचे थे।
4: आपने मेट्रो से ट्रैवल कर आए हैं अभी?
8: जी, मैं मेट्रो से ट्रैवल करके आया हूँ।
4: तो रोजाना करते हैं या फिर पीएम मोदी की अपील के बाद?
8: नहीं, वैसे मैं बाइक से ही आता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने बोला है तो अब उनका अपील उन्होंने की है तो मानना ही पड़ेगा। अगर देश के हित के लिए बात है तो अब बोला
4: तो है। ये मंडे मेट्रो ही अभियान रहेगा या रोजाना मेट्रो से ट्रैवल?
8: नहीं नहीं, अभी फिलहाल जब तक तो ये अभियान चल रहा है 1 महीने तक, तो मैं 1 महीने तक मेट्रो से जाऊंगा।
4: आप मेट्रो से ट्रैवल कर आए अभी?
8: यस, मेट्रो।
4: अपील का असर है या फिर रोजाना ट्रैवल करते हैं?
8: नहीं नहीं, अपील का असर है, क्योंकि कंपनी ने तो गाड़ी प्रोवाइड कराया लेकिन सर ने बोला स्कूटी से ना जाके तुम मेट्रो से ही यूज करो।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
8: तो बेटर है। मेरा काम वही बिजनेस डेवलपमेंट का ही कंपनी के लिए, तो वही वर्क कर।
4: तो रोजाना ऐसे ही ट्रैवल करना है?
8: हाँ हाँ, अब तो ऐसे ही करना है।
4: तो रोजाना ट्रैवल करने वाले लोग हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप मेट्रो से ट्रैवल कर आए हैं सर, ये बताइए।
9: मेट्रो से
4: ट्रैवल कर रहे हैं, अपील का असर है या फिर रोजाना?
9: देश में पूरे में असर है इसका। अच्छा। ज्यादा नहीं कि पेट्रोल डीजल से ज्यादा बच सके, और अभी ज्यादा लोग बस में इलेक्ट्रिकल गाड़ी से ही सफर कर रहे हैं।
4: आप बताइए सर, मेट्रो से ट्रैवल कर आए अभी आप?
8: नहीं जी, बस से करके आए हम।
4: बस से ट्रैवल, इलेक्ट्रिक बस से ट्रैवल कराइए, बताइए।
8: हाँ जी हाँ जी।
4: अच्छा सर, तब भी आप लोगों ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपनी बाइक या कार?
8: जी बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद या फिर वैसे ही आपका?
8: अपील के बाद है, स्पेशली अपील के बाद है।
4: मेट्रो से ट्रैवल किया पीएम मोदी की अपील के बाद ये ट्रैवल है या फिर रोजाना?
10: नहीं, पीएम मोदी की वैसे ही है। वैसे मैं रिटायर्ड हूँ, मैं गाड़ी से आता जाता था, पर अभी मेट्रो से कर रहा।
4: मेट्रो से आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर है?
11: ये नरेंद्र मोदी की अपील का असर है।
4: अपील का असर है, तो रोजाना आप इसी तरीके से मेट्रो से ट्रैवल करने वाले?
3: आपको बता दें कि दिल्ली NCR में मेट्रो का 416 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जिसमें 303 स्टेशन हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 350 मेट्रो ट्रेन हर दिन 4,500 से ज्यादा फेरे लगाती हैं। हर रोज दिल्ली सहित नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 65 लाख से ज्यादा यात्री मेट्रो का उपयोग करते हैं। दिल्ली मेट्रो के 12 लाइंस दिल्ली NCR के प्रमुख कमर्शियल, एजुकेशनल, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। और अब हर सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन 24 अतिरिक्त फेरे लगाकर इस नेटवर्क को और मजबूत करेंगी। इसे देखते हुए DMRC ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। अब से DMRC हर सोमवार को क्राउड मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करेगी। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे, अतिरिक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर चालू किए जाएंगे। साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी सर्विस को और मजबूत किया जाएगा। इस तमाम कवायद का मकसद सिर्फ इतना सा मैसेज देना है कि इस समय निजी वाहन की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होने वाली आपकी हर ट्रिप देश हित में एक ठोस कदम साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह उसी एक एक बूंद से देश का फ्यूल रिजर्व भी लंबे समय तक बना रह सकता है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: दिल्ली सरकार के मंत्रियों को आपने मेट्रो में सफर करते देखा, अब जरा तस्वीरों में देख लीजिए कि देखने में ये दोनों बेहद आम तस्वीरें आपको लगेंगी। ये देखिए, ये दो तस्वीरें, लेकिन संदेश यहां बेहद खास है। पहली तस्वीर है चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की, जो कि साइकिल से दफ्तर जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन कार पूलिंग करके सफर करते दिख रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में कई बार इस तरह की तस्वीरें नजर आ जाती है जहां कोई नेता या फिर वीआईपी साइकिल से सफर करता दिख जाता है, क्योंकि वहां के कल्चर और रहन सहन का ये एक हिस्सा है। लेकिन हमारे देश में ऐसी तस्वीरें दिखना आम नहीं है। बहरहाल, फ्यूल बचाने की मुहिम के बीच जनप्रतिनिधियों की ऐसी तस्वीरों का आना फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा है। फिलहाल अलग अलग मोर्चों पर प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है। दिल्ली में नेता जनता वाले ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, तो वहीं नोएडा की बड़ी बड़ी कंपनियां भी ईंधन बचाने की मुहिम में साथ आ चुकी है। यूपी सरकार की एडवाइजरी के बाद नोएडा की कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लागू कर दिया है। एनर्जी क्राइसिस पर दूरगामी असर के लिए WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को किस तरह अपनाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं।

0: दिल्ली एनसीआर में बदलते वर्क कल्चर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां ऑफिसेज में सुबह और शाम एम्प्लॉयज की भीड़ लगी रहती थी, वहीं तस्वीरें अब बदल चुकी है। तस्वीरें कुछ ऐसी कि वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार ने हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की बात हो या फिर नो कार डे जैसे ऑप्शन जो है उनकी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो पड़ रहा है आईटी कंपनीज में। नोएडा की आईटी कंपनी में इस वक्त हम मौजूद है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक सन्नाटा आपको यहां पर नजर आने वाला है। यूं तो आईटी कंपनीज में जो है सुबह शाम आपको एम्प्लॉयज की जो भीड़ है वो मिलेगी, कचा कच ऑफिस जो है वो पूरा भरा होता है, हर वक्त जो है काम करते हुए लोग जो है वो नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें अब कुछ ऐसी कोविड के बाद अब कि जो समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां कुछ तस्वीरें ऐसे दिखने वाली है कि हर एक क्यूबिकल की अगर हम बात करेंगे या तो आपको एम्प्लॉयज दिखेंगे नहीं या फिर एम्प्लॉयज आपको कुछ कम स्ट्रेंथ में जो है वो दिखने वाले कि एक या दो एक कमरे में आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, पूरा वर्क स्टेशन यहाँ पे जो है लगा हुआ और दूर दूर तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सन्नाटा एक खालीपन जो है आपको वहाँ पे नजर आने वाला है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये यूपी गवर्नमेंट ने जब से ये चीज़ का ऐलान किया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जो है वर्क फ्रॉम होम रखा जाए, उसके बाद हर कोई कंपनी जो है इस तरीके के बदलाव करने में जुड़ी हुई है। हमारे साथ जिशान खान इस वक्त मौजूद है जो कि आईटी कंपनी के हेड है। सर, सबसे पहले सवाल ही कोविड के समय की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूरी हो गया था कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाना जरूरी है, जितना आप घर में रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन जितनी भी मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है उसके बाद जो ये गवर्नमेंट ने अपील करी है उस पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जितने भी भारत देश के सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है हमें और आगे चल के, क्योंकि बहुत बड़ी क्राइसिस और ज़्यादा आने वाली है, उसमें हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट जैसे ही गवर्नमेंट का एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, तो हम लोग ने उसका ऑलरेडी एक प्रोसेस चालू कर दिया कि 50% 80% लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम करा के देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी भी मोस्टली कोशिश ये है कि अगर इनकेस 0.1% 80% एम्प्लॉयज के पास हमारे कार हैं तो उनको कार मना करके हम कैब की सर्विसेज प्रोवाइड कर दें,
2: नो डे का।
1: हाँ, तो उससे क्या होगा कि मोस्टली एक ही कार से 5 बच्चे 10 बच्चे हमारे आ सकते हैं, एक तो सोल्यूशन ये है। सेकेंड सोल्यूशन ये है कि हम लोगों को 50% एम्प्लॉयज़ को बुलाएं, 50% को छुट्टी देते हैं। थर्ड कोशिश हमारी ये है कि भाई वीक में 2 दिन हम वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। तो तीनों सोल्यूशन हमारे पास में ऑलमोस्ट डन है, हम प्रिपेयर हैं और कंट्री को अगर 1 साल क्या 2 साल की भी जरूरत पड़ेगी तो हम सपोर्ट में खड़े।
0: जिस तरीके से ऊर्जा बचत की बात भी हो रही है, आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज हो या फिर जब जरूरत ही नहीं है तो उसका यूज ना हो, वो भी आपको तस्वीरें जो है वो दिखती हुई नजर आ जाएगी कि किस तरीके से
1: इसमें देखेंगे कि तो 2 पार्ट है, हम लोगों ने एसी का 2 पार्ट करा हुआ है। फर्स्ट एसी हमने इस साइड में किया हुआ है और सेकंड एसी हमारा इस साइड में है एयर कंडीशन का। तो सेकंड पार्ट वाले को हमने क्लोज किया हुआ है कि ताकि ज्यादा एनर्जी को हम बचा सकें और कोशिश करें कि गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट हम कर सकें।
0: तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑफिसेस ने स्टार्ट कर दिया है, जब से सीएम योगी ने इस चीज का ऐलान किया है कि ऑफिसेस में जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जाए, कम से कम एम्प्लॉयज रहे ताकि फ्यूल का बचत भी हो, एनर्जी का बचत भी हो, हर तरीके से जो है इस वक्त हमें देश के साथ खड़े रहना है। एम्प्लॉयज भी है, हालांकि बहुत कम स्ट्रेंथ आपको यहां नजर आने वाली है। एम्प्लॉय से बात करते हैं, सबसे पहला तो सवाल है आपसे ये, आईटी कंपनी में आप काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी वाइज कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मुझे अभी आप लोग ही नजर आ रहे हो।
3: हमारी अभी प्रोडक्टिविटी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि टीम जो है वो घर से भी काम कर रही है और यहाँ से भी काम कर रही है। हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं तो हम लोग US यूरोप को कैटर करते हैं, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम इज फिजिबल फॉर अस।
0: वर्क फ्रॉम होम करने से फ़ायदा क्या है, आप क्या सोचते हैं?
2: वर्क फ्रॉम होम करने से बहुत सारे फायदे हैं, लाइक आने जाने के पेट्रोल बच रहा है, राइट, हमारे को रेडी होने की जरूरत नहीं है, घर रह के प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो रही है हमारी। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स जो है मोस्टली इंटरनेशनल हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
0: जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जाए, उस पर सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकार जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में नजर आ रही है। कई कंपनीज ने ये चीज ऑलरेडी शुरू कर दी है और बाकी कंपनीज इस पे विचार कर रही है कि किस तरीके से कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जो है रखा जाए, रोटेशनल शिफ्ट या फिर थ्रू आउट वर्क फ्रॉम होम या फिर हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। कैमरा पर्सन मनीष पिथोड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
4: और अब बात प्रधानमंत्री की अपील के दूसरे हिस्से की। ईंधन बचाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से साल भर के लिए सोना ना खरीदने की भी अपील की थी। ऐसे में जो लोग निवेश के लिए सोना खरीदने में यकीन रखते हैं उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर गोल्ड का ऑप्शन नहीं तो क्या वर्तमान हालात में प्रॉपर्टी में निवेश एक सही विकल्प हो सकता है? अगर हाँ तो प्रॉपर्टी में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं।
5: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
6: जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद साल भर के लिए सोना न खरीदने की अपील की हो तो असर दिखना लाजमी है और शहर शहर पीएम की अपील का असर दिखने भी लगा है। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और वाकई सोना नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों में कंफ्यूजन की भी स्थिति है। हमारे देश में लगभग हर तबके में सोने को परंपरागत रूप से इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान हालात देश हित में सोने में निवेश न करने की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में अगर गोल्ड में निवेश न करें तो फिर कहां करें? सोने का विकल्प न होने की सूरत में क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है। इसी सवाल का जवाब देते हुए रियल एस्टेट एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रॉपर्टी निवेश के लिए गोल्ड की तुलना में हमेशा से बेहतर ऑप्शन रहा है। जानकार बताते हैं कि सोने के दामों में पिछले 5 साल में दिखी अभूतपूर्व बढ़त वैश्विक उथल पुथल का नतीजा था और नजदीकी भविष्य में सोने के ऐसे रिटर्न देने की संभावना बेहद कम है।
7: जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम सिर्फ गोल्ड की पहले शुरू में बात करते हैं तो 2016 में गोल्ड का रेट सिर्फ 28,000 रुपए था। 2019 तक भी उसका रेट सिर्फ 35,000 हुआ, तो दैट मीन्स ओनली 5% सालाना उसमें अप्रिसिएशन थी। 2020 एक यूनिक वो बनता है बिकॉज उसमें कोविड आया था यहाँ पर, तो कोविड के टाइम पे गोल्ड में एकदम से जंप आया था बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी और सारे पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई थी। अगर आप उसके बाद देखेंगे पिछले 5 साल तो गोल्ड में ये इंक्रीज सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि गोल्ड एक बहुत अप्रिशिएटिंग एसेट है और हिस्टोरिकली भी गोल्ड ऐसी रिटर्न देता है। वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले यहाँ पर रशिया वॉर हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑयल के इश्यूज आए, फिर अभी यहाँ पे जब से 2024 से ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने फिर टैरिफ इश्यूज आए और उसके बाद अब ये ईरान वॉर हो गया। सो अगर आप देखेंगे ये सारे ग्लोबल जो इश्यूज हैं इनकी वजह से गोल्ड में ये जो इंक्रीज आया है वो सब इसकी वजह से आया है।
8: मतलब आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड के रेट का इतना बढ़ जाना नॉर्मल नहीं है?
7: ये बहुत एबनॉर्मल है और ये दोबारा से ऐसा होता आगे दिखता भी नहीं है,
8: रेयर है ये,
7: बहुत रेयर है। और तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि अगले अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो गोल्ड वापस से कुछ ऐसी रिटर्न्स देगा। इनफैक्ट अब ये बहुत एक स्टेबल ही होगा या शायद इसके अंदर थोड़ा रेट में आपको सॉफ्टनेस दिखेगी कि हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आए, क्योंकि अगर ये रशिया वॉर और ईरान वॉर अगर सेटल हो जाता है तो वापस से फिर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हो सकता है अपना पैसा दोबारा निकाल के यूएस डॉलर में और बाकी चीज़ों में वापस डालें। तो देयरफॉर इट आगे मुझे नहीं दिखता कि गोल्ड के अंदर दोबारा से कोई ऐसी जो ये 2x 3x वाली जो जर्नी हमने देखी है पिछले 5 साल में वो दोबारा देखने को मिलेगी।
8: 10 साल में लगभग 5 गुना हो गई है।
7: 10 साल में 5 गुना हो गई। और
8: अगर आप नोटिस करें तो 16 में 28 के आसपास है, 17 में 29 है, 31 है, 35 है, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ पर सिर्फ 5%
7: पर एनम आता था।
6: यानी सोने की बढ़त हर बार ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से तेजी से चढ़ती और उतरती रही, वहीं वैश्विक हालात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट से परे प्रॉपर्टी ने इन्वेस्टर्स को मोटे तौर पर निराश नहीं किया। यानी भले ही प्रॉपर्टी ने सोने जैसी छप्पर फाड़ छलांग न लगाई हो, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स की बढ़त हर दौर में बनी रही।
7: जैसे अगर हम पिछले 5 साल का देखेंगे तो प्रॉपर्टी ने हर जगह रिटर्न दिया है। ये तो हमने दिल्ली का, गुड़गांव, नोएडा की प्रॉपर्टी के सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे 2x, 3x, 4x तक रिटर्न्स मिल रही हैं। बट अगर हम ऑल ओवर इंडिया भी देखेंगे, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गोल्ड मत खरीदो एक साल तक, राइट, और वो उन्होंने पूरे देश के लोगों से अपील की है। बट अगर हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी के दाम अगर हम टीयर टू सिटीज में भी देखेंगे, जैसे लखनऊ हो गया, जैसे आपका कानपुर हो गया, आपका वाराणसी हो गया, आपका वाइजैग हो गया, पुणे हो गया, रायपुर हो गया, तो उन सब जगहों में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं लोगों को पिछले 3-4 साल में 5 साल में भी, और आगे चलते हुए भी उन स्पेशली टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़ के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर फिर दोबारा इस तरह के 2x, 3x के मल्टीपल अगले 5 साल में मिल सकते हैं। तो वो एक जर्नी जो है ना, वो रियलाइजेबल जर्नी दिखती है और एक सेफ्टी दिखती है उसके अंदर। हाँ। कि यस, प्रॉपर्टी के अंदर आदमी को फिर भी हमेशा पता है कि पैसे बढ़ते ही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो एक, रियल एस्टेट भी तो एक कमोडिटी है। हाँ। लैंड कभी बढ़ती नहीं है।
8: और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी पर आपको ग्लोबल सिचुएशंस का जो यहाँ फर्क दिखाई पड़ रहा है उसका कोई खास फर्क होता दिखा, अगर कोविड जैसा कुछ चीज ना जाए तो।
7: हाँ, बिल्कुल,
8: तब तो बढ़िया है।
7: कोविड के बाद भी देखेंगे तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े ही थे,
8: बढ़ाया
7: था। हाँ, और प्रॉपर्टी के साथ एक और चीज क्या रहती है, देखिए इंडिया का रियल एस्टेट की स्टोरी जो है ना वो इंडिया से ड्रिवन है। जैसे आपने बोला कि उससे ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं आता चीजों का।
6: कम से कम एक्सपर्ट्स की राय ये इशारा करती है कि कुछ दिनों के लिए सोने से दूरी बनाने में ऐसा कोई बड़ा हर्ष दिखता नहीं। हाँ, लेकिन पैसा आपके पास जमा हो गया हो और आप निवेश करना चाहते हो तो ऐसे में प्रॉपर्टी आपके लिए गोल्ड का एक बेहतर विकल्प हो सकती है। बस जरूरत है तो निवेश से पहले थोड़ी सावधानी और समझदारी की, क्योंकि ये दोनों बरत कर अगर प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो जमीन आपके लिए सोने की खान साबित हो सकती है।
8: कहाँ पे हम प्रॉपर्टी में फ्लैट लें या फिर प्लॉट लें, लोकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या होना चाहिए? गोल्ड के साथ तो ऐसा नहीं है, आपने गोल्ड गए खरीदा रखा वो हो गया। प्रॉपर्टी के साथ एक रिस्क होता है लोकेशन को लेकर, बाकी चीजें लेकर, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है?
7: देखिए मेरा ये मानना है कि जब प्रॉपर्टी लेता है ना कोई भी, एक आम आदमी लेता है, देखिए कोई इस बिजनेस में है, डेवलपर है, ब्रोकर है, तो उनको तो 10 तरह की जानकारी रहती है। बट अगर कोई एक आम आदमी है जो नौकरी कर रहा है या जो अपना बिजनेस चला रहा है दूसरा, तो उनको मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो किसी रेप्यूटेड डेवलपर के यहाँ पे अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो प्लॉट करे या फ्लैट करे, अपार्टमेंट ले। क्योंकि होता क्या है कि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता चलती। जैसे अगर कोई आदमी कई बार सोचते हैं जी हम 1 एकड़ 1 बीघा जमीन ले लेते हैं, 2 एकड़ जमीन ले लेते हैं, उसमें नहीं पता चलता कि उसके अंदर कोई लैंड में इशूज हैं, लोगों को बेसिक ड्यू डिलीजेंस करना नहीं आता लैंड से रिलेटेड। फिर साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत आती रहती है जिसके अंदर कहीं कोई ज़मीन एक्विजिशन में आ जाती है, कहीं रोड में आ जाती है, हाईवे में आ जाती है, तो वहाँ नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप एक रेरा अप्रूव्ड डेवलपर, कोई रेप्यूटेड डेवलपर के यहाँ पे खरीदें, चाहे प्लॉट खरीदें चाहे फ्लैट खरीदें, क्योंकि बट वहां पर आपको एटलीस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। और वो जो एक रिस्क आप बता रहे हैं कि धोखा हो सकता है, गलती हो सकती है, वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है।
8: क्या कर सकते हैं आप? वो सारे उपाय, वो सारे तरीके कंपैरिजन करते हुए हमने आपको बता दिए और पता यही चलता है कि जिस तरह से गोल्ड के रेट अभी इतना हाई हो चुका है ये बहुत नॉर्मल नहीं है। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने खुद मना किया है, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? आप प्रॉपर्टी में करें, जाहिर तौर पर उसमें अच्छा रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की

0: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक विधि रिवाज से हुआ अनुष्ठान पूर्ण। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बीस मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार, मंदिर प्रशासन ने दी जानकारी। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नेपाल के कामी रिता शेरपा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 56 साल के कामी साल 1994 से कर रहे हैं चढ़ाई, महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11वीं बार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची लाहकपा शेरपा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान से और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया पूरा धाम, हर हर महादेव के जय घोष के बीच खुलते ही मंदिर परिसर शिव भक्ति से गूंज उठा। शुभ मुहूर्त में खोल दिए गए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ की पूजा अर्चना। कठिन पर्वतीय यात्रा के बावजूद कपाट खुलने से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला, शिव भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख समृद्धि और मंगल की कामना की, भक्तिमय रहा वातावरण। चारधाम यात्रा में भक्तों ने की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदार की यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड, 1 महीने से कम समय में पहुंचे 6 लाख से अधिक भक्त। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में पहुंच रहे गए भक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा जवान किए गए तैनात। केदारधाम यात्रा में आ रहे भक्तों के स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा ध्यान, अलर्ट मोड पर मेडिकल टीम। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मौजूद, अब तक 30 यात्रियों को दी गई सुविधा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 4 लाख से अधिक भक्त पहुंचे बद्रीनाथ धाम। इन दिनों रोजाना 19,000 से 25,000 तक श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं, अब तक 4 लाख भक्तों ने किए दर्शन। गौचर, जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ तक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें, पैदल भी यात्रा कर रहे हैं कई श्रद्धालु। वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन करने में हो रही आसानी। रात में बढ़ती ठंड के बीच इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़ों के साथ यात्रा करने की सलाह, मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 23 मई से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, 22 मई को पंचप्यारे गोविंद घाट से होंगे हेमकुंड साहिब रवाना। गुरुद्वारे में भी जोर शोर से की जा रही सजावट, कपाट खुलने के दिन 350 क्विंटल फूलों से सजाया गया हेमकुंड गुरुद्वारा। रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह दुरुस्त कर चुकी है सेना, यात्रा शुरू होते होते पिघल जाएगी बर्फ। 20 मई को ऋषिकेश से पंचप्यारों की अगुवाई में पहला जत्था होगा रवाना, जो श्रीनगर होते हुए 21 मई को गोविंद घाट पहुंचेगा। 22 मई को गोविंदघाट गुरुद्वारे में पहली अरदास के साथ गंगरिया के लिए कूच करेगा जत्था, जहां दात्री विश्राम के बाद 23 मई की सुबह कपाट खोलने की ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा।

झांसी के इस्कॉन मंदिर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराजे श्री राधा और गोविंद। नौका विहार के साक्षी बने हजारों भक्त, हरे कृष्ण के महामंत्र से भक्तिमय हो उठा पूरा माहौल। दीपों से किया गया मंदिर का श्रृंगार, श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का किया गया वितरण। ब्रज थीम पर बनी राधा कृष्ण की रंगोली भी श्रद्धालुओं के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, भजन और प्रेरणादायक प्रवचनों ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। नौका विहार समारोह को भक्तों ने बताया वृंदावन की दिव्य अनुभूति, रोजाना रात 9:30 से 10 बजे तक होगा आयोजन। उज्जैन में बाबा अकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या भक्तों ने किए दर्शन पूजन। धार भोजशाला में बागदेवी की पूजा पाठ का दौर जारी, स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी किया सरस्वती वंदना। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री वंगलपुड़ी अनिता, किया दर्शन पूजन। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन, सांसद हेमामालिनी ने किया शुभारंभ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत कम करने को लेकर नया मेमोरेंडम जारी किया, अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश। दिल्ली में आज से हुई मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत, पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो, 24 फेरे लगाएंगी ट्रेन। सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किया जा रहा प्रोत्साहित, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो यात्रा की दी हिदायत। सुरक्षा और सुविधा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी की लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील, एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी रहे साथ में मौजूद। मुख्यमंत्री एकनाथ गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से किया सफर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से की अपील, कहा मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते नजर आए, मंत्री कपिल मिश्रा ने भी किया मेट्रो में सफर। सीएम रेखा गुप्ता की सचिव मधु तेवतिया ने भी मेट्रो में किया सफर, स्टेशन के बाहर आई नजर। एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने मेट्रो में किया सफर, लोगों से की सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अपील। दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कार पोलिंग को बनाया मिशन, रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त लिफ्ट। राजधानी बस स्टैंड पर मिले दो यात्रियों को राजेश ने दिया सहारा, मुफ्त सेवा देकर सफर बनाया आसान। ऊर्जा संकट के बीच राजेश चौरंगी की अनोखी पहल चर्चा में, कार पोलिंग से ईंधन बचाने और लोगों को मदद करने का दे रहे संदेश। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी, मौसम विभाग में अगले कुछ दिनों तक तापमान बढ़ने और तेज धूप की दी चेतावनी। ओखला औद्योगिक क्षेत्र और नेहरू प्लेस में दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप ने लोगों की बढ़ी परेशानी, लोगों से दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील। यूपी के बांदा में पड़ रही भीषण गर्मी, रविवार को तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी। बांदा इस समय बना हुआ है हीट चैम्बर, तेज लू और झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन प्रभावित। बांदा में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से ना निकलने की अपील की, प्रशासन ने शहर के चौराहों पर कूलिंग सेंटर और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की। उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों की तरह वाराणसी का भी पारा हाई, वाराणसी का तापमान इस गर्मी दूसरी बार 44 डिग्री सेल्सियस के पार। धौलपुर में बढ़ रही है भीषण गर्मी, सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। गर्म हवाओं और बिजली कटौती के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर, धूप और लू से आम जनजीवन प्रभावित। लोग तेज गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव, ठंडे पेय और आइसक्रीम का सहारा नजर आए, मौसम विभाग ने बाहर ना निकलने की अपील की। दार्जिलिंग हिल्स के सबसे पुराने स्कूलों में शामिल स्कॉट्स मिशन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज पहली बार असेंबली के दौरान वंदे मातरम गूंजा, राज्य सरकार के निर्देश का हुआ पालन। दार्जिलिंग हिल्स के स्कूलों में आज से मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम गाने की
वंदे मातरम गीत की हुई शुरुआत, छात्र छात्राओं और शिक्षकों में देखा उत्साह। नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी, 43 वर्षों के बाद पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर ने किया पीएम मोदी का स्वागत, प्रवासी भारतीयों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारतीय तिरंगा और स्वागत संदेशों के साथ लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत, पीएम ने भी लोगों से की मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने पीएम मोदी की यात्रा को बताया ऐतिहासिक, कहा दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। कल ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कई सारी योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। रायपुर में 400 डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियां और 33 मोबाइल फोरेंसिक लैब को गृहमंत्री शाह ने दिखाई हरी झंडी, राज्य को मिलेगी विकास की रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अमित शाह ने जनसुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, केंद्रों के जरिए कई गतिविधियां की जाएगी शुरू। बस्तर के 196 सुरक्षा कैंप में से 70 कैंप बनेंगे जनसुविधा केंद्र, नेतानार में गृहमंत्री शाह ने जनसभा को किया संबोधित। जगदलपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को गृहमंत्री शाह ने दी श्रद्धांजलि, नक्सल विरोधी कार्रवाई में गंवाए थे प्राण। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपने काफिले को छोड़ा, साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय। चरखी दादरी के नवदंपति ने शादी को बनाया सामाजिक जागरूकता का अभियान, बाबा साहेब की तस्वीर के सामने लिया जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तेहरान में 1000 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह समारोह, कार्निवल इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक निकाला जाएगा जुलूस। बागपत में नन्ही कली पहल की शुरुआत, डीएम ने किया शुभारंभ, डॉक्टर बोले बच्चियों के इलाज में 70% तक की छूट।

0: लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। भुवनेश्वर में पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, नगर निगम पेड़ों पर लगा रहा आर्टिफिशियल घोंसले। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा शानदार नजारा, अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखी जंगली हाथी। वन्य जीव विशेषज्ञ ने हाथी के जुड़वा बच्चों को माना प्रकृति का अनोखा करिश्मा, बच्चों के साथ खेलते हुए हथिनी की तस्वीर कैमरे में कैद। जम्मू के ग्रामीण विकास विभाग की निदेशक ने राजौरी जिले में स्थित नंबलन गांव का किया दौरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल में अब प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना जरूरी। सीजन में शुरुआती 3 मुकाबले हारने के बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी है, 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ टीम अंक तालिका में 6 स्थान पर बनी है। हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 7 जीत हासिल कर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर, चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर हैदराबाद अपने प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना को और मजबूत कर लेगी। दोनों टीमों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला भारी रहा है, अब तक खेले कुल 24 मैचों में चेन्नई ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को 8 मैच में सफलता हासिल हुई है। चाइना म्यूजियम फॉर फुजियान ताइवान किनशिप की स्थापना के 20 साल पूरे, इस मौके पर फुजियान प्रांत के क्वांझोउ शहर में खास कार्यक्रम का आयोजन। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 की थीम म्यूजियम ब्रिज कनेक्टिंग द वर्ल्ड रखी गई, फुजियान और ताइवान के बीच सांस्कृतिक संबंधों और विरासत संरक्षण की उपलब्धियों को दिखाया गया। पिछले 2 दशकों में यहां 1.77 करोड़ से ज्यादा लोग संग्रहालय का कर चुके हैं का विजिट, इनमें चीन के ताइवान क्षेत्र से आए करीब 10,38,000 से ज्यादा आगंतुक शामिल। संग्रहालय ने पारिवारिक इतिहास और वंशावली शोध के जरिए अब तक 360 से अधिक चीन ताइवान परिवारों को उनके पैतृक संबंधों से दोबारा जोड़ने में सफलता हासिल की। लोगों का मानना है संग्रहालय केवल ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र नहीं बल्कि चीन और ताइवान के बीच सांस्कृतिक संवाद, पारिवारिक रिश्तों और आपसी समझ को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण मंच। तितलियों से गुलजार हुआ दक्षिण पश्चिम चीन, यूनान प्रांत की होंगे बटरफ्लाई वैली में बड़ी संख्या में तितलियां अपने कोकून से बाहर निकली। इन तितलियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं सैलानी, इस वैली में मौजूद तितलियों की कई प्रजातियों से होते हैं रूबरू। तितलियों की प्रजातियों के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है होंगे बटरफ्लाई वैली, यहां हर साल वसंत के अंत और गर्मियों की शुरुआत में बड़ी संख्या में निकलती हैं तितलियां। चीन के शानक्सी प्रांत से सामने आई पांडा की एक बेहद प्यारी तस्वीर, अपने बच्चे को मुंह में दबाए नजर आई मादा पांडा। इस फुटेज में पांडा मां अपने बच्चे को धीरे से अपने मुंह से उठाकर ले जाते हुए दिखाया गया, जहां वो हर कदम बेहद संभल कर चलते हुए नजर आ रही है। दारा ने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीतकर रच दिया इतिहास, बुल्गारिया को प्रतियोगिता में पहली बार जीत मिली, देश भर में जश्न का माहौल। सोफिया पहुंचने पर एयरपोर्ट पर दारा का जोरदार स्वागत, हजारों फैंस ने बंगारंगा गाने पर डांस करते हुए जाहिर की खुशी। फैंस ने वेलकम में दारा की तस्वीर वाले बैनर लहराए, सुनहरे कॉन्फेंटी के बीच दारा डांस करते हुए भीड़ के बीच पहुंची। बंगारंगा गाने ने पब्लिक वोट और जूरी वोट दोनों में किया शानदार प्रदर्शन, मुकाबले में इजराइल दूसरे स्थान पर रहा।
1: यूरोप के देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव।
0: दारा ने बंगारंगा सॉन्ग को उम्मीद और सुकून का संदेश बताया, उन्होंने कहा यह गीत लोगों को सकारात्मक सोच देता है। पोलैंड के कल्वरी वेजरोवो में वार्षिक तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया, भारी फैथ्रॉन को लेकर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया। बैंड की धुन पर धार्मिक जुलूस में कलाकारों ने फैथ्रॉन फाट प्रदर्शन किया, भीड़ ने इस अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को देखा। लगभग 40 से 120 किलो तक के फैथ्रॉन को युवाओं ने कंधों पर संभाला। नृत्य और झुकाव के साथ धार्मिक भावना का प्रदर्शन किया गया। अठारहवीं 19वीं सदी से चली आ रही है परंपरा, इसमें लोग श्रद्धा और उत्साह से बिना किसी इनाम के भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था संस्कृति का सुंदर मिश्रण बताया, लोगों का बना रहा आकर्षण।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, Nora Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffeehouse or ask your device to play Coffeehouse on TuneIn.
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और चलिए खबरों में बात कर लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की, जहां रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास भारतीय अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कान्स में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें
2: का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
4: After multiple assassination attempts, they can't even get.
5: They're reliable.
6: Always when I need them.
3: To live sports action.
7: One hand jam by LeBron on the break.
8: That's another three, Steph Curry.
3: And your favorite music.
9: Well, the dawn begins to crack.
3: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
11: This guitar about as hard as a cane.
10: To top 40 hits you just can't get enough of.
12: Thank God I get to.
10: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country. Country Roads.
12: So thank God I get to wake
13: and everything
12: up
13: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। बीस मई को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार। मंदिर प्रशासन ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल। विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
14: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देवभूमि उत्तराखंड में यात्रा महोत्सव जारी है और इस महोत्सव में आज एक और यात्रा जुड़ गई है रुद्रनाथ की। पंच केदार में से एक रुद्रनाथ के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए। इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले रुद्रनाथ के द्वार। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और विश्वास का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ भक्तों का सैलाब है। चारधाम यात्रा से लेकर पंच केदार तक भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। रुद्रनाथ के कपाट खुलने से भी भक्तों में भारी उत्साह है।

0: उत्तराखंड की पावन वादियों में इन दिनों आस्था, भक्ति और उल्लास का महापर्व अपने चरम पर है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बसे पवित्र और पावन धामों के चारों ओर जयकारों की गूंज है। मंदिरों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्तिमय माहौल ने देवभूमि को पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा इस बार आस्था और श्रद्धा के नए रिकॉर्ड बना रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही बाबा केदार के दर पर हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही हर दिन एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। बात करते हैं चारधाम में सबसे ज्यादा यात्री जहां पहुंचते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, वहां पर अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इसके बाद बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो 4,07,000 लोग बाबा बद्री विशाल के भी दर्शन कर चुके हैं और इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री के धामों में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
0: केदार धाम में हर दिशा में भक्तों का सैलाब है और आस्था के समंदर में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जा रहा है। बुजुर्ग श्रद्धालुओं और अस्वस्थ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। खराब स्वास्थ्य या गंभीर स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अब तक 30 लोगों को एयर एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।
2: बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम पहुंचने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थ यात्रियों के लिए नई सुविधा जारी की है। इस नई सुविधा के तहत बुजुर्ग एवं दिव्यांग तीर्थ यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
0: देवभूमि में आस्था का ये समंदर महादेव के रुद्र रूप मंदिर रुद्रनाथ में देखने के लिए मिल रहा है। ऊंचे हिमालयी पर्वतों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित ये पावन धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं की भक्ति और जयकारों से गूंज उठा है। आज रुद्रनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान महादेव के रुद्र रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर मंदिर पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर भक्तों का उत्साह और आस्था देखते ही बन रही है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है।
3: भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। आप लोग आप आराम से आकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं।
0: यात्रा के इस महोत्सव में आने वाले दिनों में एक और यात्रा का रंग देवभूमि को चढ़ने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और 23 मई को हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
4: 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयार यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट, रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं।
0: जाहिर है देवभूमि में यात्रा के सीजन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, जिससे स्थानीय कारोबार, होटल व्यवसाय और यात्रा व्यवस्थाओं में नई रौनक ला दी है। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ईंधन संकट के बीच सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर सोमवार को मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेनें पटरी पर उतारेगी। इन ट्रेनों की मदद से मेट्रो रोजाना के मुकाबले 24 ज्यादा चक्कर लगाएगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है ऊर्जा बचत के लिए दिल्ली में मंडे मेट्रो। आपको बता दें, निजी वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला किया। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि सोमवार को कामकाजी लोगों की भारी भीड़ होती है, इसलिए फेरे बढ़ाने की शुरुआत इस दिन से की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में यात्रियों की मांग और बढ़ती है तो हफ्ते के बाकी दिनों में भी मेट्रो की ऐसी ही अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम किए हैं। स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और यात्रियों को लंबी लाइनों से बचाने के लिए नए टिकट काउंटर खोले गए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक उनका पूरा मेट्रो नेटवर्क यात्रियों को एक बेहतरीन और निर्बाध कनेक्टिविटी देता है। ऐसे में इस मजबूत नेटवर्क की वजह से लोगों की सड़क परिवहन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी, जिससे न सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों का दबाव घटेगा बल्कि देश में ईंधन की खपत कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।
6: देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एनडीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको यहाँ मौजूद आएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन से आप सफर कीजिए, मेट्रो यूजर्स जितने भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी कारण जो है इसी वजह से हम लोग जो है ईंधन की बचत कर पाएंगे। तो हर एक पैम्फलेट पे देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखा आ जाएगा कि मेट्रो यूजर्स एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर एनडीएमसी वेलकम करता है, और उसी को देखते हुए आज से मेट्रो के लिए 6 मेट्रो जो है वो बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ जो फेरे मतलब जो ट्रिप्स की हम बात की गई है वो ट्रिप्स भी जो है बढ़ा दी गई है। तो इसी तरीके से मंडे मेट्रो की शुरुआत हो गई है, और सुबह का समय है, जितने भी जो भीड़ मंडे के दिन देखी जाती है, अगर हम आपको एक आंकड़ा बताएं तो 65 से 70 लाख रोजाना लोग जो है मेट्रो से सफर करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही है। उसकी तमाम वजह हो सकती है, जिसमें से एक वजह हम आपको ये बताएं कि आज हालांकि मंडे है लेकिन साथ ही साथ फेरे भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, कि किस तरीके से जो ट्रिप्स होती थी वो बढ़ा दी गई है, मेट्रो ट्रेन्स बढ़ा दी गई है। तो कारण ये भी एक हो सकता है कि मेट्रो में उस कारण जो है रश जो है कम नजर आ।
5: बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रही पुलिस पाठशाला में एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। यहाँ रेड लाइट और स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उनके लिए बैंक में एफडी अकाउंट खोले जा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है मुजफ्फरपुर के बच्चों ने सीखी बचत की ताकत। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कन्हौली पुलिस नाका में पुलिस पाठशाला चलाई जाती है, जो कि अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही बल्कि बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। पुलिस पाठशाला में पहले बच्चों के गुल्लक बैंक खोले गए, और अब यही पहल एक कदम आगे बढ़ते हुए बच्चों के नाम पर बैंक एफडी तक पहुंच चुकी है।
0: स्कूल के बच्चों के हाथ में एफडी अकाउंट का ये छोटा सा दस्तावेज सिर्फ एक बैंक पेपर नहीं बल्कि उनके सुनहरे भविष्य की नई उम्मीद है। बिहार के मुजफ्फरपुर की पुलिस पाठशाला में पढ़ने वाले ये बच्चे अब सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि बचत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व भी सीख रहे हैं।
7: मुजफ्फरपुर के स्लम इलाका रेड लाइट के इलाके के बच्चों के लिए पुलिस पाठशाला की शुरुआत की गई थी, और आज पुलिस पाठशाला में गुल्लक बैंक की भी शुरुआत की गई थी। गुल्लक बैंक से इन बच्चों का सफर आज बचत बैंक तक पहुंच चुका।
0: मुजफ्फरपुर के कन्हौली पुलिस नाका में चल रही पुलिस पाठशाला में पढ़ाई लिखाई की पहल अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जिंदगी संवारने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। कभी छोटी छोटी रकम गुल्लक में जमा करने वाले ये बच्चे अब एफडी बैंक तक का सफर तय कर चुके हैं।
8: अच्छा लग रहा है कि 2023 में हमने पुलिस के साथ काम शुरू किया और आज ये सफर कायम करते हुए हम तीसरे साले पहुंच गए हैं, और अब हमारे साथ पिछले साल से बैंक भी साथ आ गए हैं।
0: 3 साल पहले मुजफ्फरपुर में पुलिस पाठशाला की शुरुआत हुई थी, तब केवल 15 बच्चे यहाँ पढ़ते थे, लेकिन आज यहाँ 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक सुरक्षा थी, ऐसे में इन बच्चों के लिए पहले यहाँ गुल्लक बैंक की शुरुआत की गई ताकि वे बचत सीख सकें और भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बने।
9: मुझे लगता है बच्चों में अगर हम इस उम्र में बचत की आदत डालते हैं तो ये एक लॉन्ग वे, इट गोज अ लॉन्ग वे, उनको आगे भी और भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने में भी मदद मिलती है।
0: पुलिस पाठशाला में बच्चों को छोटी सी उम्र से ही पैसों की अहमियत, बचत की आदत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सके। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मध्य प्रदेश के देवास जिले के नगर निगम ने अनोखी पहल की है। देवास नगर निगम देवास ने यात्रियों को बढ़ते तापमान और धूल से तुरंत राहत देने के लिए भोपाल चौराहे पर एक मिस्ट टावर लगाया है। खास बात यह है कि यह टावर कबाड़ की चीजों से तैयार किया गया है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है, और वो है देवास में कड़ा कबाड़ से मिस्ट टावर तैयार। आपको बता दें कि देवास नगर निगम ने कबाड़ स्टील के पाइप और पुरानी मोटरों से बना मिस्ट टावर लगाया है। इस मिस्ट टावर से पानी की लगातार फुहार निकलती है, जिससे कि यात्रियों को बढ़ती तापमान में राहत मिलती है। दरअसल देवास के भोपाल चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हवा की गुणवत्ता बनाए रखने, धूल कम करने और तापमान को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की टीम ने पुराने और बेकार पाइपों के साथ साथ पुरानी मोटरों का इस्तेमाल करके ये मिस टावर बनाया है। इस गर्मी में भोपाल चौराहे पर आने से मिस टावर से बहुत राहत मिलती है। इसका असर चौराहे के 2 से 2.5 मीटर के दायरे में रहता है। इसके लिए बहुत कम पानी यानी केवल 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। भोपाल चौराहे पर एक स्प्रिंकलर भी लगाया गया है और उसी से ये मिस टावर चलता है। नगर निगम के मुताबिक इस मिस टावर को लेकर जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग नगर निगम के इस पहल की तारीफ कर रहे हैं।
10: का जो भोपाल चौराहा है वो उस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डस्ट कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने के कब बच्चे ही हमारी टीम ने जो पुराने अनयूज्ड पाइप मोटर और इन सब को जोड़ के मिस टावर बनाया है। और पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जितनी भीषण गर्मी है उसमें जब आप भोपाल चौराहे पर पहुँचते हैं तो डेफिनेटली वो एक राहत महसूस करते हैं।
11: सर बहुत भाई सर, जनता आगे रुकती है 2-5 मिनट आराम मिलता है उनको, बहुत शांति मिलती है, बहुत दुआएं देते हैं सर वो, हमारे हमको भी बहुत आराम रहता है। ये धूप बहुत तेज है सर, इसमें फुहारे की बारी बारी बूंद आती है, उससे हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत धूप से राहत मिलती है सर। इतनी तेज धूप है उससे ऐसे नॉर्मल धूप हो जाती है जी सर। सुकून है, मतलब बहुत सुकून है सर। आस पास भोपाल इधर है, अपने आए इधर गांव के देहात के जो आते हैं वो भी 2-5 मिनट, कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज की बालिका है वो रुक जाती है, वो भी 2-5 मिनट सर आराम।
5: वाराणसी के माँ अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र LPG किल्लत से जूझ रहा है। स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि अन्न क्षेत्र को बंद करना पड़ गया है, लेकिन अब यहां पर गेल ने एक नई पहल करते हुए अन्न क्षेत्र तक PNG पहुंचा दी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है माँ अन्नपूर्णा के अन्न क्षेत्र में ईंधन की किल्लत खत्म। वाराणसी का माँ अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र में LPG संकट का समाधान निकल गया है। यहाँ गेल इंडिया ने शुरू की है 24 घंटे PNG आपूर्ति, जिससे कि अन्नपूर्णा मंदिर के दोनों अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसाद जो है वो तैयार हो रहा है और इससे हजारों श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन करने का रास्ता साफ हो गया है।

0: मान्यता है कि काशी का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लेकिन हाल के दिनों में यह सूरत बदली है। दरअसल देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी लोगों को LPG सिलेंडर की किल्लत से दो चार होना पड़ा। इससे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक माँ अन्नपूर्णा मंदिर का अन्न क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। दरअसल माँ अन्नपूर्णा के अन्न क्षेत्र में रोजाना हजारों आस्थावान भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन LPG संकट की वजह से एक वक्त तो नौबत ये हो गई थी कि अन्न क्षेत्र के दोनों यूनिट को बंद करना पड़ गया था। इसी समस्या के समाधान के लिए गेल इंडिया ने पहल की है। गेल की तरफ से अन्नपूर्णा मंदिर के दोनों अन्न क्षेत्र में 24 घंटे PNG की सप्लाई शुरू की गई है। इससे श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर और श्री काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित यूनिट 1 और यूनिट 2 में प्रतिदिन दर्शनार्थियों को निःशुल्क सुबह शाम नाश्ते और भोजन की व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है।
1: यहाँ जो बाहर से सिलेंडर हमारे पास आते थे डेली 15-20 सिलेंडर 25 सिलेंडर जैसी आवश्यकता पड़ती थी, अब उसमें हमको सहूलियत रहेगी और पाइपलाइन के माध्यम से गैस आएगी, तो यहाँ पर जो भोजन वगैरह बनेगा तो सहूलियत भी रहेगा। और आने वाले रास्ते में टैलीमैन आते थे, सिलेंडर लेके आते थे, उसमें काफ़ी समस्या की सहूलियत रहेगी, क्योंकि पाइपलाइन से गैस आ जाएगी तो भोजन भी जरा जल्दी बन जाएगा और हमको सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पब्लिक को समय पे हम भोजन दे पाएंगे।
0: अन्य क्षेत्र में प्रतिदिन 15-20 LPG सिलेंडर का उपयोग होता था, लेकिन अब PNG सर्विस शुरू हो जाने से अन्य क्षेत्र में खाना बनाने में सहूलियत मिलेगी। अब LPG सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इससे समय पर भोजन बनेगा और भक्तों को समय पर भोजन उपलब्ध हो सकेगा।
2: मंदिर में यहाँ मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ की सकड़ी गली थी, लेकिन काफी दिन रात मेहनत करके जो देश में LPG का संकट है उससे उभरने के लिए ये गैस पाइपलाइन चालू की है। इसमें लगातार गैस आती रहती है, 24 घंटे यहाँ पे गैस फ्यूल की कोई कमी नहीं आएगी कभी भी, ये हमारा वादा है। और ये बनारस के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ पे अन्नपूर्णा क्षेत्र में गैस चालू हुई, इससे LPG सिलेंडर जो यहाँ से हटेंगे वो बाकी घरों में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपूर्ति अच्छी होगी।
0: अन्य क्षेत्र की गली के सक्रिय होने की वजह से इस जगह पर PNG पाइपलाइन लाना बड़ी चुनौती का काम था, लेकिन गेल के इंजीनियर्स ने यहां तक PNG पहुंचाकर शानदार काम किया है। अब देश में LPG किल्लत के बीच अन्नपूर्णा मंदिर के अन्य क्षेत्र में लगे PNG पाइपलाइन से यहां 24 घंटे ईंधन की सप्लाई होती रहेगी। इससे न केवल यहां पर खाना पकेगा बल्कि इससे LPG सिलेंडर की भी बचत होगी और ये उपभोक्ताओं के घरों तक पहुँच सकेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
3: मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में बांस से बनी एक कैंटीन महिला सशक्तिकरण की नई कहानी कह रहा है। स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैंटीन को बांस से तैयार किया गया है और इसके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कान्हा टाइगर रिजर्व में महिलाओं की कैंटीन। आपको बता दें कि महिलाओं की ये पहल जंगलों के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है और इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है।
4: जंगलों के बीच महिलाओं ने लिखी है आत्मनिर्भरता की नई कहानी और महिलाओं की इस कहानी का नायक है कान्हा टाइगर रिजर्व में सरही गेट पर बना बांस का ये कैंटीन। कान्हा टाइगर रिजर्व देखने आने वाले पर्यटक यहां बने इस बांस की कैंटीन से पारंपरिक स्वाद लेकर लौटते हैं। मंडला में बांस का ये कैंटीन स्वयं सहायता समूह की महिला चला रही है। कैसे ये कैंटीन यहाँ पारंपरिक स्वाद को तो बरकरार रखे हुए ही है, महिलाओं के लिए आजीविका का जीवंत साधन भी बन गई है।
5: हमने इको टूरिज्म बोर्ड से राशि प्राप्त करके एक बांस से निर्मित स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक कैंटीन बनवाई, जिसमें महिलाएं अब जो लोकल यहाँ की जो खाने के जो व्यंजन है वो परोसती हैं, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुलगुले हैं, फिर आपके बड़ा है और इस तरह के अन्य भी जो लोकल खाने वाले व्यंजन हैं वो परोसे जाते हैं, जिसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है।
4: महिलाएं खुद मानती हैं कि बांस के इस कैंटीन ने उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।
6: 2020 से हम लोग सर यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में काम करते हैं। दो साल तो बहुत सी समस्या सर हमें हमारे कैंटीन में, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं सर बाहर से, अरिया काम किए हैं सर, कोदो कुटकी खा खाना वाले काम, तो बहुत सर अभी हमारा आमदनी बढ़ रहा है।
4: यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच बांस के ये कैंटीन अपनी संरचना की वजह से तो आकर्षण का केंद्र बन ही चुकी है, पर्यटक यहाँ के पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लेने में भी रुचि दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: पूरे देश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में इंसानों के साथ बेजुबान भी उन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है बेजुबानों को भीषण गर्मी से बचाने का इंतजाम। आपको बता दें भीषण गर्मी से इंसान तो बेहाल है ही, अब इसका असर वन्य जीवों पर भी साफ नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच वन्य जीवों को ठंडक पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। चिड़ियाघरों में बाघों और तेंदुओं को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं जो दिन रात लगातार चलते रहते हैं। सिर्फ कूलर ही नहीं, गर्म हवाओं से बचाने के लिए केज के चारों तरफ ग्रीन नेट भी लगाया गया है ताकि तापमान का असर कम हो सके, जानवरों को गर्म हवाओं से बचाया जा सके। जानवरों को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए खाने में विटामिन सी और मल्टी विटामिन भी दिया जा रहा है। बटंडा के बीर तालाब चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए उनके केज में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं वडोदरा के सयाजी चिड़ियाघर में भी जानवरों को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाया गया है। भोपाल के वन विहार चिड़ियाघर में जानवरों को ठंडा रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और उनके आराम के लिए शेड बनाया गया है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
8: चारधाम यात्रा में मौसम की कठिन परीक्षा, आस्था के मार्ग पर टूटे सभी रिकॉर्ड बारी बारी। समय से पहले आएगा मॉनसून, घर में रखे सोना चांदी का चढ़ावा। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
9: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
10: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: जल का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको

0: में विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार। मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का आदेश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हूं बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: यहाँ पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है, और यूजर्स वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
2: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शिवेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है, और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये

0: कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया। हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और ये सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई ये सही है। इसलिए हमने इससे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
1: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: चारधाम यात्रा में मौसम की कठिन परीक्षा, आस्था के मार्ग पर टूटे सभी रिकॉर्ड बारी बारी, समय से पहले आएगा मॉनसून, घर में रखे सोना चांदी का चढ़ावा, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena,
4: La Que Buena,
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: अच्छी खबर सच्ची खबर,
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
3: हमारा नानी घर तो

0: करो, हम आपके साथ हैं।
1: कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की ये छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ बीपी। भाई तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यार और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शांत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं? जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है? जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले आपको दिखाएंगे चारधाम यात्रा में किस तरीके से मौसम कठिन परीक्षा ले रहा है, लेकिन बावजूद इसके कैसे आस्था के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। समय से पहले मानसून दस्तक देने वाला है, केरल में पहली बारिश की तारीख भी तय, और आस्था परंपरा और राष्ट्रभक्ति का संगम, घर में रखी चांदी के चढ़ावे से अर्थव्यवस्था सुधरने की उम्मीद। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Sage University, transforming your passion into profession.
5: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। को 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार गर्भगृह में, विशेष पूजा अर्चना के साथ होगा बाबा का तिलक श्रृंगार, मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने के निर्देश दिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हूं बैठकें। ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का इस्तेमाल करें, विदेश यात्राओं पर भी कटौती हो। नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हथियारों पर आजमाया, जवानों के साथ फिटनेस पर भी बात की। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।

अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरा होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है और हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इसके चलते अब तक 15.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा तब है जब इस एक महीने के दौरान बारिश, सर्दी, गर्मी ने श्रद्धालुओं का की खूब परीक्षा ली है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब एक महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस एक महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा सुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदगढ़, 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल एंसेलॉडी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।
6: और अगली खबर मौसम से जुड़ी है। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश कहा जा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले यानी कि 26 मई तक केरलम के तट पर पहुंच सकता है।

0: मई का चौथा हफ्ता आते ही दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। केरलम से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक तक कई जगहों पर मानसून से पहले वाली बारिश शुरू हो चुकी है, यानी प्री मानसून बारिश दक्षिण भारत के राज्यों में राहत बनकर बरस रही है। तिरुचिरापल्ली हो या फिर तुतुकुड़ी और हुबली, आसमान में काले घने बादलों और झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। प्री मानसून बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा चलने और बिजली गरजने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून देश में वक्त से पहले 26 मई तक केरलम तट पर पहुंच सकता है।
1: केरल में हमारा अनुमान है कि 26 मई के आसपास जो है मानसून दस्तक दे सकता है, जिसमें 4 दिनों की मॉडल त्रुटि होती है। तो अभी आप देखेंगे केरल में भी तो हमारा बहुत भारी वर्षा चेतावनी जो है जारी की गई है। तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो दक्षिण भारत क्षेत्र है यहाँ पर जो है अमूमन थोड़े से अभी सामान्य के करीब है और इतने ज़्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हीटवेव कंडीशन जो तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान और तटीय आंध्र प्रदेश में 3 दिनों के बाद में हीटवेव कंडीशन देखने को मिल सकती है।
2: किस तरीके से जैसे मानसून जो तारीख का ऐलान किया गया है कि 26 मई को जो है मानसून केरल पे दस्तक देगा, उसका कहीं ना कहीं जो है देखते हुए मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी से वहां पर बारिश जो है वो देखी जा रही है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जो है वहां पे जारी किया गया है।
0: दक्षिण के राज्यों में प्री मानसून बारिश ने भले ही लोगों को राहत पहुंचाई है, लेकिन उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। हालात ये हैं कि इस झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। हालांकि जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गमछे, स्कार्फ और छाते का इस्तेमाल कर खुद को चिलचिलाती धूप से बचाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक की है, जहाँ इन दिनों प्रचंड गर्मी के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है।
3: हम इस वक्त हैं चंडीगढ़ के आइकॉनिक सुखना लेक में और आपको बता दें यहाँ पे पारा बढ़ चुका है। जो टूरिस्ट हैं वो अब कम आ रहे हैं और जितने हैं वो आपको थोड़े छांव में ही नजर आएंगे। 40 के पार जा चुका है पारा और खास तौर पे येलो अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए इशू कर दिया गया है। ये IMD द्वारा किया जा रहा है, यानी लू तो नहीं चली लेकिन अब उस कगार पे जरूर आ चुका है जहां पे पारा बढ़ गया है।
4: देखिए आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहां पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति यह है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजॉइनिंग जिले रहेंगे।
0: दिल्ली NCR के शहरों के मौसम की बात करें तो यहाँ भी पारा 40 डिग्री के पार होते ही दिन और रात तपने लगते हैं। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। गन्ने का जूस, आम पना, कोल्ड ड्रिंक और लस्सी जैसे ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ता तक गर्मी का ऐसा ही असर जारी रह सकता है।
1: गर्मी तो है अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझे तो आप देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीटवेव कंडीशन भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो हीटवेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हीटवेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट साथ में। मध्य प्रदेश और विदर्भा में हीटवेव तो सीवियर हीटवेव कंडीशन चल रही है, लगातार हीटवेव कंडीशन चल रही है विदर्भा में, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहां पर और पश्चिम भाग दोनों में हमारा अनुमान है सप्ताह में आगे चल करके 2-3 दिनों के बाद में सीवियर हीटवेव कंडीशन भी देखने को मिल सकती है।
0: इस 45 डिग्री वाली गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल है। देश के कई शहरों के चिड़ियाघरों में इन दिनों गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। कहीं वाटर स्प्रिंकलर लगाया गया है, कहीं पिंजरा में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी के चलते जानवरों के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वडोदरा और बठिंडा के जू से आई तस्वीरों में ऐसे ही इंतजामों को देखा जा सकता है।
5: मेन बंदर, भालू, तेंदुआ, बाघ, इन सबको बर्फ के टुकड़े मुहैया कराए जाते हैं। बर्फ के साथ पूरा दिन दोपहर तक खेलकर उसे चाटकर उसके साथ ये करके उनको ठंडक मिलती है। पशु पक्षियों के पीने के पानी में जैसे हमारे मनुष्य में ORS और ग्लूकॉन डी जैसे जो सप्लीमेंट्स आते हैं, वैसे ऐसे जो वेटनरी सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट्स को पानी में मिला के इनको दिया जाता है ताकि वो पानी पीकर भी जो है उनको हाइड्रेशन रहे, डिहाइड्रेट ना हो। खास करके इस गर्मी के दौरान पशु पक्षियों के खाने में जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, शकरकंदी, इन सब का प्रमाण बढ़ा दिया जाता है। हिरन वगैरह के बाड़ों के अंदर स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं और पूरा टाइम पानी छिड़काव चालू रहता है। हमारी एवियरी के अंदर फॉगर सिस्टम लगाया हुआ है, फॉगर सिस्टम सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम को 6 बजे तक फॉगर सिस्टम चलता है। उसके अलावा पिंजरों के ऊपर जो है वो अपना नारियल और ताड़ के पेड़ के सूखे पत्ते लगाए जाते हैं और उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पूरा दिन ठंडक बनी रहे।
0: कुल मिलाकर बढ़ती गर्मी के चलते इन दिनों जो हालात बने हैं उनमें बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और समय समय पर शरीर को हाइड्रेट रखें ताकि गर्मी के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके। दिल्ली से मनीष अलड्डा और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात आस्था परंपरा और राष्ट्रभक्ति के अनोखे संगम की जो दिल्ली के एक मंदिर में दिख रहा है। दरअसल मंदिर प्रबंधन की कोशिश है कि श्रद्धा और देशभक्ति का पाठ श्रद्धालु साथ साथ सीखें और यही वजह है कि इस्कॉन मंदिर की तरफ से कृष्ण भक्तों से अनोखी अपील की गई है जिसके तहत नई चांदी खरीदने के बजाय भक्त अपने घरों में मौजूद चांदी के बर्तन और सेवा सामग्री भगवान को समर्पित करें ताकि सोने चांदी की खरीद कम करने के लिए लोगों में आर्थिक अनुशासन पैदा हो ताकि अर्थव्यवस्था के सुधरने की उम्मीद मजबूत।

0: कृष्ण की भक्ति, राधा की शक्ति अनगिनत श्रद्धालुओं को इस्कॉन मंदिर ले जाती है, जहां श्री कृष्ण प्रेम, भक्ति और आनंद के प्रतीक हैं, वहीं राधा रानी आंतरिक और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार में जुटे इस्कॉन मंदिर में सोना और चांदी के चढ़ावे की परंपरा पुरानी है, जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनसे प्राप्त हुई समृद्धि को अपने आराध्य से साझा करना है। धार्मिक आस्था और समाज कल्याण से जुड़ी पहल करने वाले इस्कॉन द्वारका ने राष्ट्रहित से जुड़ी एक अपील की है।
1: प्रधानमंत्री ने

0: द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने, और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आए और प्रभु को उसे अर्पण करें।
1: मंदिर की इस अनोखी अपील का असर साफ दिख रहा है। श्याम और राधा रानी के भक्त बढ़ चढ़कर चांदी के बर्तन और सेवा सामग्री दान कर रहे हैं।
0: इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है। तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु, इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं। ये अपने घर से लेकर आए हैं चांदी का एक।
1: इनमें वो भी शामिल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह दिखाई की रस्म में मिले चांदी के अनमोल सिक्कों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं।
0: आप क्या लेकर आए हैं?
2: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीजें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
0: आप इसे कोई आभूषण मत समझिए, आप इसकी कीमत मत आंकिए, आप ऐसे समझिए कि ये वो चीज़ है जो अभिषेक की वाइफ को मुंह दिखाई में उनकी दादी ने दिया था। कितनी अहमियत इनके लिए होगी ये आप समझ सकते हो। देखिए कितना पुराना सिक्का है, लग भी रहा है। अब देखिए उसमें जो चांदी में अमूमन रखे रखे जो थोड़ा कालापन दिखाई पड़ता है वो उसमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब लोग जो घर का गड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं सोना और चांदी है, वो लेकर आ रहे हैं। मना तो नहीं किया वाइफ ने कि आप नहीं, इतनी कीमती चीज लेकर?
2: नहीं नहीं, उन्होंने तो खुशी खुशी बोला कि नहीं, आप बेशक इसको ले जाइए, ये प्रभु के सेवा में काम आए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हम तो सब चीज प्रभु का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं।
1: कुछ गिरधर भक्त राधा रानी के श्रृंगार से जुड़े चांदी के आभूषण भी चढ़ावे के तौर पर भेंट कर रहे हैं, जिनमें मांग टीका, गले का हार, कड़े, पायल, अंगूठी जैसे आभूषण शामिल हैं।
0: क्या लेकर आई आप?
3: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
1: इस्कॉन मंदिर की शानदार पहल को श्रद्धालुओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। कई परिवार वर्षों से संभाल कर रखी चांदी खुले हृदय से मंदिर में अर्पित कर रहे हैं ताकि उसका धार्मिक इस्तेमाल हो सके।
4: मोदी जी ने बोला है कि नया सोना चांदी ना खरीदे, तो मुझे ऐसा लगता है कि संकट से बचने के लिए हमारे घर पे जो सोना चांदी रखा है हम उसी का यूज करें मंदिरों में दान करने के लिए।
5: सही है, क्योंकि अभी हमारी जो कंट्री है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। जैसे मोदी जी ने बोला है कि 10 साल पीछे भी हमारी इकॉनमी जा सकती है, तो इसमें अगर किसी को सेवा देनी है तो इट्स बेटर कि जो ऑलरेडी उनके पास है वो वही दान करे रादर देन कुछ नया खरीदने के।
6: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा है कि बाहर से सोना ना खरीदे, क्योंकि अगर सोना खरीदे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो वापस पीछे चली जाएगी 10 साल पीछे जैसे गई है। तो अगर हम घर में जो हमारा सोना चांदी है, तो एक तो हमने इन्वेस्ट किया उसको, अगर हम देना ही चाहते हैं तो उन्हीं को हम भगवान जी को दे सकते हैं आके।
7: ये अपील बिल्कुल सही है, क्योंकि हम औरतों के पास और खासकर जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे परिवार खुश होकर हमारे को चांदी के बर्तन देते हैं कि आप बच्चे का अन्नप्राशन कीजिएगा तो चांदी से खिलाएगा। तो ये हमारा भाव है कि हम अगर हमारे पास जो है घर में, अब रोजमर्रा के लिए तो प्रभु के लिए एक चांदी की कटोरी आवश्यक है जो वो हमारे घर में है, उसके अलावा जो हमारे पास स्पेयर है, अब मेरे पास 6 चांदी के ग्लास है, अगर मैं प्रभु को वो दान करूंगी तो वो मेरी सौभाग्य है कि मेरे पास जो चांदी है वो प्रभु के कार्य में काम आएगा, तो इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता।
1: इस्कॉन मंदिर का प्रशासन अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को आर्थिक अनुशासन में बदलना चाहता है।
8: क्योंकि प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों का मिश्र

0: हो, तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि और चांदी का कोई भी पात्र हो, वो भगवान को भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें।
1: दान किए गए बहुमूल्य रत्नों और धातुओं का इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। आने वाले वक्त में मंदिर में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव होंगे, उनमें भी सोने चांदी की नई खरीदारी ना करके लोगों से दान की अपील की जाएगी, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके।
0: रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए, जो कृष्ण वहाँ खड़े हैं, उनके हाथ में जो बांसुरी है, कल ही किसी भक्त ने आकर दान दी थी और भगवान के सेवा में उसको अर्पित किया था।
2: की हुई वो भी
0: भगवान के सेवा में बिल्कुल, और बरसों से संजो कर रखी हुई जो रत्न है, चांदी है, वो भगवान को आकर अर्पित कर रहे हैं और सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि भगवान के सेवा में अर्पित हो रही है।
2: कब तक इस अपील की कोई डेडलाइन है, कब से एक तो शुरू हुई है और कब तक इसको आप जारी रखने वाले हैं?
0: बिल्कुल, जैसे हमारे मंदिर में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी होती है, साथ ही साथ जो भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य का हमने अभी उत्सव मनाया था, तो उसमें इन रत्नों की आवश्यकता होती है, भगवान का अभिषेक करते हैं उसमें इनकी आवश्यकता होती है, तो जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे श्रद्धालु आगे बढ़कर सेवा करते हैं, तो ये सेवा तो कितने बरसों से चल रही है।
1: कम से कम एक वर्ष तक गैर जरूरी सोने चांदी की खरीदारी और विदेशी यात्राओं के टलने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बनेगा, यही उम्मीद की जा रही है।
2: भक्तों की ये सेवा है, आप समझिए कि हर कोई कहता है कि लोगों के पास से, खासकर स्त्रियों के पास से जो गड़ा हुआ सोना और चांदी है उसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कृष्ण की भक्ति है, ये राधा की शक्ति है कि लोग अपने पूर्वजों तक का सोना चांदी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं, अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है ना सिर्फ उसे निभा रहे हैं बल्कि अपनी भक्ति को और ताकतवर तरीके से पेश कर रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जल के महत्व के बारे में। ये जानेंगे कि जल का ज्योतिष में क्या महत्व है और जल के प्रयोग से किस तरह के लाभ जीवन में हो सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल

है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन पांचों तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व, और जल मूर्त वस्तुओं में जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है, साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेकर क्या कहते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरं शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है
और

0: बीमारी देता भी है, शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा। तो जल का प्रयोग सोच समझकर नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, सामान्यतः गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है, और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, न तो ठंडा, ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है। आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है बिना आवश्यकता के, जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में, ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, ज्योतिष में जो पांच तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है, या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं, शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को सरोवरों को दूषित मत करिए। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का संबंध भी जल से होता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों समय स्नान करिए। दोनों समय नहीं नहा पाते तो कम से कम रोज सुबह स्नान करना जरूरी है। रोज सुबह स्नान जरूर करिए और सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में आजकल सुगंध मिलाने की व्यवस्था आ गई है, सुगंधित जल से नहाएं या जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें, जैसे चंद्रमा के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, वैसे ही शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप कांच के गिलास से पानी पिए रेगुलरली तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कमजोर है ऐसा नहीं कहता मैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिएगा, वरना आपके जीवन से आनंद और खुशियां चली जाएंगी। जिन लोगों को आलस्य बहुत ज्यादा रहता हो, हर समय आलस्य सवार रहता हो, ऐसे लोगों को तांबे के पात्र का जल पीना चाहिए। रात में गिलास में या जग में आप तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका आलस्य दूर होगा। कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता हो, घर में रहने पे कलेश होता हो, चिंताएं होती हो, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके रोज पूजा करिए। सुबह के समय पूजा स्थान पर बैठिए, अपने सामने जल से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा कटोरी या गिलास रख लें, उसमें पानी भरा हो। इसके बाद बोल बोल कर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उसके 10 मिनट बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। लगातार ऐसा एक महीने तक करिए, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करवाया सुंदर कांड का पाठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम बोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन कोमड़े भक्त। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें। ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करे इस्तेमाल। विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनर्जी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ। जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की भी है, मंदिर के कपाट खुलने से भी।
12: चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुल गए। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली रविवार को उत्तराखंड के गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से अपने मूल धाम रुद्रनाथ के लिए भव्य शोभा यात्रा के रूप में जब रवाना हुई, तो उस वक्त वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल दमाओं की गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के स्वर और भारतीय सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति से सराबोर था। डोली के मूल धाम पहुंचने के बाद सोमवार को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। रुद्रनाथ एकमात्र ऐसा धाम है जहां भगवान शिव के आनंद वदन यानी मुख की स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उत्तराखंड में स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उस पावन अवसर को लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट यात्रा मार्ग के सभी गुरुद्वारों और मुख्य गोविंद घाट गुरुद्वारे की भव्य सजावट की जा रही है। लंगर की तैयारियों के साथ ही पूरे परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। सेवादारों की निगरानी में दिन रात काम चल रहा है। इन सबके बीच हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना ने पूरा रास्ता बनाकर यात्रा की तैयारी पूरी कर दी। 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे, जिसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। श्रद्धालु हर दिन हजारों की संख्या में चारों धाम पहुंच रहे हैं और वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। महीने भर से भी कम समय में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए धाम में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई। साथ ही बीमार हो रहे यात्रियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिल रही है। वहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। वीकेंड में यहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु देखे गए। अब हर दिन 19,000 से 25,000 तक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। रविवार तक यहां 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उधर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक दोनों धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। विशेषकर वीकेंड में रामनगरी में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। यहां दर्शन पूजन को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। रामलला के दर्शन के साथ ही यहां दशरथ महल में बिखरी छटा ने श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित किया। यहां महल को रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही भव्य रूप से सजाया सवारा गया, जिसे देखकर श्रद्धालु बेहद खुश दिखे। भव्य सजावट के बीच भजन कीर्तन के साथ विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग से सराबोर कर दिया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के चिरमिरी की है, जहां रामकथा के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। 5 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ ही हनुमान जी के रूप विराजमान दिखे। तो एक रंग की साड़ियों में सिर पर कलश लेकर चल रही महिलाएं देव छटा पेश करती नजर आई। 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन को लेकर इस कलश यात्रा में श्रद्धालुओं में गजब का जोश दिखा। चिरमिरी के गोदरी पारा स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज का रामकथा का आयोजन किया गया, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
10: और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में आज से हर सोमवार को होगा मेट्रो डे। ईंधन संकट के बीच सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए डीएमआरसी ने मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। इनकी मदद से मेट्रो सोमवार को 24 ज्यादा चक्कर लगाएगी, और अगर आने वाले दिनों में यात्रियों की मांग और बढ़ती है तो हफ्ते के बाकी दिनों में भी मेट्रो की ऐसी ही अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं।
13: राजधानी दिल्ली में मंडे मेट्रो डे की आज से शुरुआत हो गई है, और ऐसे में आम जनता के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसदों ने भी मेट्रो से सफर करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से ईंधन बचत की अपील की थी, जिसका असर राजनेताओं के बीच भी दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो से सफर किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर आईटीओ मेट्रो स्टेशन पहुंची। उनके साथ दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह भी थे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने भी इलेक्ट्रिक ऑटो में सफर किया और बाद में मेट्रो का इस्तेमाल करके कनॉट प्लेस पहुँचे।
14: किस तरीके तरीके से मंडे मेट्रो डे की शुरुआत हुई है। तो हम इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद आपको मनोज तिवारी भी आगे नजर आ जाएंगे, कुलजीत सिंह चहल भी नजर आ जाएंगे, किस तरीके से आज वो दोनों एक साथ मेट्रो से सफर करते हुए जो है राजीव चौक स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। और ये अलग ही आज एक रौनक जो है वो नजर आ रही है, किस तरीके से जो मेट्रो के अतिरिक्त फेरे भी जो है आज से उनकी शुरुआत हुई है। और आप देख सकते हैं कि कुलजीत से सबसे पहले बात करते हैं। कुलजीत जी, आज आपने मेट्रो से सफर किया, कैसा लगा? पहले तो ये बताइए कि मंडे मेट्रो की आज शुरुआत हुई है।
15: मंडे मेट्रो की जो आज शुरुआत है वो भी एक अच्छा है, और माने प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल करी थी कि सेफ फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, तो वो भी हमने एक शुरुआत करी है। हमने ऑटो पूल भी किया है, मैं मनोज जी के घर से हमने ऑटो पूल करके निकले हैं। मैं दिल्ली की जनता से भी अपील करता हूं कि देश की अच्छी सच्ची सेवा और सच्ची देशभक्ति वही है कि पेट्रोल डीजल हम कितना बचाएं। और जब इस समय वो है कि माने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह युद्ध के टाइम पर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो हम जितना फॉरन रिजर्व बचाएंगे वो देश की सच्ची सेवा और सच्ची देशभक्ति है।
16: जो मेट्रो यूज कर रहे हैं हम उनको 21 तोपों की सलामी देना चाहते हैं। और अभी अभी हमने भी कुलजीत चहल जी के साथ ऑटो पूल किया, हम घर से इलेक्ट्रिक ऑटो से निकले हैं और बाद में मेट्रो स्टेशन आके वहां से हम सीपी आए हैं, लोगों से बातचीत किया हम लोगों ने। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि हे मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना किए हैं वो कोई लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पालन करेंगे आपको आनंद हो।
13: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी ने बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए मेट्रो के 24 अतिरिक्त फेरे शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी दिनों में भी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। बता दें कि सरकार के इस फैसले का मतलब है कि दिल्ली में आज सोमवार को सरकारी कर्मचारी कार से दफ्तर नहीं आएंगे।
14: आज से मंडे मेट्रो डे की शुरुआत हो गई है, और दिल्ली सरकार और देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन की जो है बचत हो सके। और ऐसे में आज है मंडे मेट्रो डे, यानी मेट्रो से ट्रैवल करने का दिन। सभी सरकारी दफ्तर के लोग हो या फिर आम दफ्तर में जाने वाले लोग जो है वो इस तरीके से मेट्रो में ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के लिए डीएमआरसी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। सर, अभी आपने मेट्रो से ट्रैवल किया?
17: मैडम लेट हो थोड़ा।
14: अच्छा सर, आपने मेट्रो से ट्रैवल किया, पीएम मोदी की अपील के बाद ट्रैवल है या फिर रोजाना?
18: नहीं, पीएम मोदी की वैसे ही है। वैसे मैं रिटायर्ड हूँ, मैं गाड़ी से आता जाता था, पर अभी मैं मेट्रो से कर रहा हूँ।
14: मेट्रो से आप ट्रैवल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद है, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है आपको यहाँ पे लगातार इसी तरीके से आते हुए नजर आ जाएंगे। और मंडे मेट्रो का जो दिन है वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए डीएमआरसी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लोगों की भीड़ ना हो, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए टिकट काउंटर्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाए गए। रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर है?
19: ये नरेंद्र मोदी की अपील का असर है।
14: अपील का असर है, तो रोजाना आप इसी तरीके से मेट्रो से ट्रैवल करने वाले हैं?
19: हाँ जी, यस।
14: रोजाना ट्रैवल या अपील का असर?
17: नहीं, रोजाना ही।
14: रोजाना ट्रैवल, तो ये रोजाना ट्रैवल करने वाले लोगों की हम आपको राय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील करी है कि ईंधन बचत में मदद होगी, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो ये कुछ लोग उसी का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना ही मेट्रो से सफर करते हैं।
13: मेट्रो प्रशासन का कहना है कि सोमवार को कामकाजी लोगों की भारी भीड़ होती है, इसलिए शुरुआत इस दिन से की जा रही है। मेट्रो के फेरे बढ़ने से स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में भी भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इस बढ़ते दबाव को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम किए हैं। अगर आने वाले दिनों में यात्रियों की मांग और बढ़ती है, तो हफ्ते के बाकी दिनों में भी मेट्रो की ऐसी ही अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा यात्रियों को लंबी लाइनों से बचाने के लिए नए टिकट काउंटर खोले गए हैं। सामान की जांच के लिए अतिरिक्त बैगेज स्कैनर और यात्रियों की चेकिंग के लिए जांच सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं।
14: अभी आप सफर कर आए, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आप लोगों ने सफर किया है या रोजाना ही आप सफर करते हैं?
20: मैम रोजाना ही यहीं से सफर करते हैं, मेट्रो से ही।
14: अच्छा, रोजाना है, आप बताइए।
20: रेगुलर मैम।
14: रेगुलर हो, ऐसा कुछ नहीं कि अपील के कारण?
20: नो मैम, गर्मी में तो मैं मेट्रो से ही करते हैं।
14: अच्छा, गर्मी से मेट्रो से। सर आप बताइए, रोजाना या फिर अपील के बाद?
20: रोजाना जाते हैं।
14: अच्छा, रोजाना ही होते हैं, मतलब ये है कि ईंधन की बचत हो तो रोज हो, या फिर कि टाइम बचाता है ये इसलिए?
0: टाइम भी बचाता है, ईंधन भी बचाता है, इसीलिए रोजाना।
14: तो ये तो रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर आपने मेट्रो से ट्रैवल कर आए हैं आप अभी?
21: जी मैं मेट्रो से ट्रैवल करके आया हूँ।
14: तो रोजाना करते हैं या फिर पीएम मोदी की अपील के
21: बाद? नहीं, वैसे मैं बाइक से ही आता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने बोला है तो अब उनका अपील उन्होंने की है तो मानना ही पड़ेगा। देश के इस हित के लिए बात है तो।
14: आप बताइए सर, मेट्रो से ट्रैवल कर आए अभी आप?
21: नहीं जी, बस से करके आए।
14: बस से ट्रैवल, इलेक्ट्रिक बस से ट्रैवल कराइए, बताइए।
21: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
14: अच्छा सर, तब भी आप लोगों ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपनी बाइक या कार?
21: जी बिल्कुल बिल्कुल।
14: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद या फिर वैसी आप?
21: अपील के बाद है, स्पेशली अपील के बाद
14: है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। आप मेट्रो से ट्रैवल कर आए अभी?
21: यस यस यस, मेट्रो।
14: अपील का असर है या फिर रोजाना ट्रैवल करते हैं?
21: नहीं नहीं, अपील का असर है, क्योंकि कंपनी ने तो गाड़ी प्रोवाइड कराया, लेकिन सर ने बोला स्कूटी से ना जाके तुम मेट्रो से ही यूज करो।
14: अच्छा अच्छा अच्छा,
21: तो बेटर है। मेरा काम वही बिजनेस डेवलपमेंट का ही, कंपनी के लिए तो वही वर्क कर।
14: तो रोजाना ऐसे ही ट्रैवल करना है?
21: हाँ हाँ, अब तो ऐसे ही करना है।
14: तो रोजाना ट्रैवल करने वाले लोग हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप मेट्रो से ट्रैवल कर आए हैं सर, ये बताइए। मेट्रो से ट्रैवल करा है, अपील का असर है या फिर रोजाना?
22: देश में पूरे में असर है इसका। अच्छा। ज्यादा नहीं कि पेट्रोल डीजल से ज्यादा बच सके, और अभी ज्यादा लोग बस में इलेक्ट्रिकल गाड़ी से ही सफर कर रहे हैं। थैंक यू।
14: तो ये अपील का असर भी मानते हैं और रोजाना भी बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइम भी बचता है, गर्मी का समय है, तो एसी भी जो है लोग जो है ठंडे में जो है ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। तो आज से मंडे मेट्रो की शुरुआत होगी। लेकिन अगर मैं मेट्रो के अंदर की बात करूँ तो रोजाना के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि मेट्रो जो है वो एक्स्ट्रा ट्रिप्स आज मार रही है, और साथ ही साथ मंडे मेट्रो को देखते हुए 6 एक्स्ट्रा मेट्रो की शुरुआत की गई।
23: दिल्ली सरकार ईंधन बचाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत अधिकारियों के लिए मेट्रो सोमवार की शुरुआत की गई है, और ईंधन की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन मुख्य उपायों में कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की सुविधा, सरकारी कामों के लिए मिलने वाले ईंधन के कोटे में 20% की कटौती, और मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर देना भी शामिल है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखा अनोखा करिश्मा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
24: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक मां अन्नपूर्णा मंदिर अन्य क्षेत्र में अब 24 घंटे पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। यहां रोजाना हजारों आस्थावान भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक वक्त तो नौबत ये हो गई थी कि एलपीजी संकट से अन्य क्षेत्र की दोनों यूनिट को बंद करना पड़ा था। इसी समस्या के समाधान के लिए रविवार को गेल इंडिया की तरफ से अन्नपूर्णा मंदिर में 24 घंटे पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी गई। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 20 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग अन्य क्षेत्र में होता था, लेकिन अब पीएनजी सर्विस शुरू हो जाने से सहूलियत मिलेगी। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बेहद दुर्लभ और उत्साहित करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक जंगली हथिनी अपने जुड़वा बच्चों के साथ दिखाई दी है, जिसे वन्यजीव विशेषज्ञ प्रकृति का अनोखा करिश्मा मान रहे हैं। वन कर्मियों ने सबसे पहले 9 मई को बिजरानी जोन के जड़पहाड़ क्षेत्र में हथनी को 2 नवजात बच्चों के साथ देखा था। इसके बाद 12 और 13 मई को गर्जिया टूरिज्म जोन में पर्यटकों और वन विभाग की टीम ने इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद किया। वायरल वीडियो में दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ खेलते और दूध पीते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हाथियों में जुड़वा बच्चों का जन्म बेहद कम होता है, क्योंकि हथनी करीब 22 महीने के गर्भकाल के बाद आमतौर पर एक ही बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में दोनों शावकों का स्वस्थ होना वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में 20 मई को बाबा श्याम का मंदिर बंद रहेगा। 19 तारीख की रात 10 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और 20 मई की शाम 5 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इस दौरान मंदिर में प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। गर्मियों की छुट्टी शुरू होने के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हर महीने की 11 को यहां मेला भरता है। मंदिर समिति ने पूजा अर्चना के लिए कुछ घंटे तक मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया है।
10: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
1: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जारी रहती है और तापमान भी काफ़ी सामान्य से अधिक हो जाते हैं और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती हैं इस सीजन में।
10: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
2: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है, येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त। लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
3: गर्मी ना बहुत हुई पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा,
2: वापस जाने का मन कर रहा है।
3: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणे से हैं जी, सोनीपत ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
10: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति यह है कि आने वाले 4-5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब, जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजोइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है, क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है, जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
23: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है, जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
4: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
5: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में।
4: तो कैसा लगा?
5: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
4: पहली बार?
5: हाँ, फर्स्ट टाइम।
4: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
6: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था, और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते, और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
4: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने, वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
7: बहुत ही अच्छा लगा।
4: क्या क्या देखा आपने?
7: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
23: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
11: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सोमवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 77 अंकों की बढ़त के साथ 75,315 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 6 अंकों की बढ़त के बाद 23,649 पर बंद हुआ। सोमवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का 1,62,800 रुपए ही रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,000 रुपए की बढ़त के साथ 2,76,000 रुपए पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत सोमवार को 96 रुपए से भी नीचे चली गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 58 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 96.39 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ।
10: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
10: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुंदरकांड का पाठ करवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। बम होली के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन कोमड़े भर। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें। ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल। विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। चले न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
15: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच में कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए हुए दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देख पाता है। वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छू कर उसे महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार की सनरूफ से बाहर निकलकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं। फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटर गू से परेशान ना हो, लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो AI से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, AI उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन का सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते ही पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है, जिससे वो फौरन फुर्र हो जाता है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे गले लगा लेती है, मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इस वायरल वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आ रहा है। ये नजारा देख कई यूजर्स का माथा घूम जाता है। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। बस फिर क्या था, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर भी कर रहे हैं।
10: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय

0: प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
1: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
2: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
3: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
0: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
4: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
5: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
6: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब दे भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
7: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
8: नया नहीं खरीदना चाहिए?
7: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
9: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
10: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
11: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
10: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाए तो ये बेटर है हमारे लिए।
4: फिल्म वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे

0: लिए चले फिल्मी मोड पर।
1: फिल्म वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और साथ में कॉमेडी भी। जंगल का इलाका है और अक्षय कुमार अपनी टोली के साथ वहां मौजूद हैं, जहां एक से बढ़कर एक चैलेंज सामने आते हैं, जिसमें पूरी टोली सरवाइव करती है। साथ में मस्ती भी खूब होती है। टाइटल ट्रैक से पता चलता है कि फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में हैं। अक्षय के अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे एक्टर भी हैं। अहमद खान निर्देशित फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रजनी की बारात का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत एक पंडित के डायलॉग से होती है, जहां वो कहते हैं है जनपत्री में बारात घर पर आने के योग नहीं है। इस पर जरीना वहाब नाराज होते हुए जनपत्री ठीक से देखने के लिए कहती है। रजनी की मां का किरदार निभा रही सुनीता राजवार की भावुकता भी इसमें झलकती है, जो ये कहती नजर आ रही है कि उनकी रजनी लाखों में एक है, उसके लिए बेस्ट लड़का देखेंगे। इसके बाद ट्रेलर रोमांटिक मोड लेता है, फिर कहानी बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में अचानक बंदूक से फायरिंग होती है और इसके साथ ही ट्रेलर खत्म हो जाता है। फिल्म में उल्का गुप्ता, कनिष्क, इशिता सिंह, सुनीता राजवार, जरीना वहाब और अश्वथ भट्ट अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म रजनी की बारात 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से मशहूर भारतीय चेहरों ने स्टाइल के साथ परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को दुनिया के सामने शानदार अंदाज में पेश किया। अभिनेत्री हुमा कुरैशी बनारसी साड़ी में पारंपरिक भारतीय लुक में नजर आई। अदिति राव हैदरी ने भी मंच पर भारतीय पहनावे के साथ सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने रेड कार्पेट पर करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। गुजरात से पहुंची भूमिका साजवानी ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। सोशल मीडिया की दुनिया में खास पहचान बनाने वाली रिदा थाराना ने भी इस ग्लोबल मंच पर अपने अंदाज से हर किसी का ध्यान खींचा और भारतीय डिजिटल क्रिएटर्स की बढ़ती वैश्विक पहचान को मजबूती से दुनिया के सामने पेश किया।
0: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: भादिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: आज इस्कॉन में भगवान की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महोत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Want a cybersecurity degree that leads to real results? At WGU, you'll gain AI-integrated skills, certifications, and career momentum.
3: Without the degree from WGU, I wouldn't have got the job.
2: Learn more at WGU.edu.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
7: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
11: गुड गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
10: जी जवानों से महेंद्र सिंह धोनी की मजेदार बात, इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
13: इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब के दौरे में एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। वहां उन्होंने जवानों के साथ समय बिताने के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस करते नजर आए। धोनी ने कमांडोज से एक मजेदार सवाल भी पूछा। उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए कमांडोज से पूछा कि फिट लग रहा हूं ना। ये सुनकर वहां मौजूद जवान हंस पड़े। सोशल मीडिया पर उनका ये मोमेंट तेजी से वायरल हो गया। धोनी ने एनएसजी जवानों के साथ फिटनेस ट्रेनिंग और शूटिंग तकनीकों पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने हथियारों के साथ शूटिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया और कमांडो अधिकारियों के साथ काफी समय बिताया। आईपीएल 2026 का 63वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टॉस जीतकर सीएसके ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा। इस मैच से पहले एसआरएच ने 12 मैच में 7 में जीत दर्ज की, वहीं सीएसके ने 12 मैचों में से 6 में जीत हासिल की। एसआरएच अभी पॉइंट्स टेबल में तीसरे और सीएसके छठे नंबर पर है। प्लेऑफ की रेस के लिहाज से दोनों टीमों के बीच ये बेहद अहम मुकाबला है। आईपीएल का ये सीजन अब अपने रोमांचक दौर की ओर बढ़ चला है। पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि बाकी तीन स्थान के लिए 7 टीमों के बीच रेस जारी है और हर मैच के साथ समीकरण तेजी से बदल भी रहे हैं। आरसीबी 13 मैचों में 18 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है। वो लीग स्टेज में टॉप 2 से बाहर नहीं हो सकती, इसलिए उसका क्वालिफायर 1 खेलना भी तय हो चुका है।
10: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
14: Thank God I get to wake.
4: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Sage University, transforming your passion into profession.
13: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद. प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना. उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट. बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान. विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु. केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें. ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल. विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती. नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित. पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान. भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन. आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ. जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात. बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट. नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर. दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार.
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, जहां श्रद्धालुओं की तादाद एक नया इतिहास बना रही है। करीब एक महीने की यात्रा में ही आंकड़ा 15 लाख के पार जा चुका है। ना सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लोगों का तांता लगा हुआ है। आज आपको चारधाम यात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी पंच केदार की, क्योंकि आज से रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं और हजारों की तादाद में शिव भक्त मंदिर के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। पंच केदार का महत्व और इससे जुड़ी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे और आखिर में चलेंगे हेमकुंड साहिब, जहां जल्दी ही यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा के लिए क्या तैयारियां हैं आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा से। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है और अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार जा चुकी है। हालांकि इस महीने के दौरान बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं की खूब परीक्षा भी ली है, लेकिन हर दिन देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर दर्शन के लिए लोगों में कैसा जोश है, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: दुर्गम रास्ता, मुश्किल चढ़ाई, अनगिनत चुनौतियाँ, फिर भी बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए चलते जा रहे हैं कपाट खुलने के दिन से अभी तक। ना ये भीड़ कम हुई है और ना ही उत्साह। कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, तो कोई हेली सेवा के जरिए। जमीन से हिमालय की ऊंचाइयों तक, यूं कहें कि सोनमर्ग से केदारपुरी तक के रास्ते गुलजार हैं। जब से चारधाम की यात्रा शुरू हुई है, मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली है। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हर उम्र के शिव भक्त जयकारा लगाते हुए बाबा केदार के दर्शन के लिए चलते जा रहे हैं। चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और आंकड़ा अभी तक 6.5 लाख तक पहुंच चुका है। हर दिन औसतन 25,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक मौजूद सभी दुकानें और टेंट हाउस हर वक्त फुल हैं।
1: केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है। अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यात्रियों को सुगमता से और शीघ्र ही बाबा केदार के दर्शन हो सकें और यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम पहुंचने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधा जारी की है। इस नई सुविधा के तहत बुजुर्ग एवं दिव्यांग तीर्थयात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें धाम पहुंचने पर शीघ्र ही दर्शन हो पाएंगे।
0: जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, केदारनाथ धाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रियों की तादाद देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। बड़ी तादाद में जवान तैनात किए गए हैं, वहीं बीमार यात्रियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है। अब तक करीब 30 यात्रियों को एयर एम्बुलेंस से राहत पहुंचाई जा चुकी है। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक यात्रा पूरी तरह से सुचारू और सुरक्षित तरीके से चल रही है।
2: केदारनाथ धाम में हमारे द्वारा दर्शन हेतु और सुरक्षा की दृष्टि का समुचित पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ हमारी पीएसी सीएपीएफ की फोर्स भी वहां पर तैनात है। सुरक्षा की दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार वहां पर चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है और साथ ही साथ वहां जो हमारी स्पेशल यूनिट्स हैं जैसे बीडीएस, उनके द्वारा भी चेकिंग की जा रही है और एटीएस के द्वारा भी लगातार वहां पर चेकिंग की जा रही है ताकि सभी के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके।
0: चारधाम तीर्थ यात्रा की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। अब चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो या फिर आने जाने और ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ दुरुस्त कर दी गई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को अब एक महीना पूरा होने वाला है और इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में आंकड़ा 4,07,000 के पार है। गंगोत्री में 2,58,000 और यमुनोत्री में 2,62,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
3: सबसे ज्यादा यात्री जहां पहुंचते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, वहां पर अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इसके बाद बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो 4,07,000 लोग बाबा बद्री विशाल के भी दर्शन कर चुके हैं और इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री के धामों में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बढ़ती भीड़ के साथ साथ जो आंकड़ा देखा जा सकता है, उस वजह से अव्यवस्था और जो सुचारू ट्रैफिक है उसको लेकर एक चैलेंजिंग सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, जिसकी वजह से अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है चारों धामों में। और चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: बेशक श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में है, लेकिन इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले भक्तों की तादाद भी अच्छी खासी है। रास्ते में यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग ढोल मंजीरा बजाते, झूमते, भजन गाते दर्शन के लिए जा रहे हैं।
4: स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है कि स्वास्थ्य के साथ भी कोई खिलवाड़ न हो। यदि कोई तीर्थयात्री अगर उसका स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है तो उसका यहाँ पर आकर के उसकी जांच की जाती है। और ये स्वास्थ्य जांच केंद्र है जहाँ पर जो है जो चिकित्सा विभाग है उसकी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आकर के तीर्थयात्री अपनी जाँच करवाता है। उसके बाद ही यदि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम अगर चाहेंगी कि वो स्वस्थ है तो उसको आगे भेजा जाता है। अदरवाइज की स्थिति में उनसे शपथ पत्र दाखिल करवा करके एडवाइजरी, अगर कोई स्वास्थ्य किसी तीर्थयात्री का खराब होता है ज्यादा तो उसको एडवाइजरी देने के बाद उसे बॉन्ड फॉर्म भरवाने के बाद एहतियातन उसको आगे जो एहतियात है वो बरतने के साथ ही उसको आगे भेजा जाता है।
0: बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं का सैलाब है, खासकर वीकेंड पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर, मुख्य मार्ग और आसपास के इलाकों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ भी हर दिन 19,000 से 25,000 तक श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, इसीलिए श्रद्धालु की तादाद भी बढ़ती जा रही है।
5: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22 से 25 हजार श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, यात्रियों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है, माना यही जा रहा है कि इस साल ये यात्रा नए कीर्तिमान बनाने वाली है। स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अब बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख करेंगे। जाहिर है कि चारधाम यात्रा की रौनक और ज्यादा बढ़ेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शिव भक्तों के लिए केदारनाथ का बहुत महत्व है। केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंचकेदार में शामिल है। मान्यता है कि 5 जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए और रुद्रनाथ में मुख के, इसीलिए रुद्रनाथ का दर्शन भी शिव भक्तों के लिए अहम होता है। आज जब रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा रास्ता हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। देखिए रिपोर्ट।

हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, जहां बादलों के बीच महादेव का साक्षात आभास होता है। जहां हर पत्थर हर हर महादेव का जाप करता महसूस होता है, वो है पंच केदार का चतुर्थ केदार धाम यानी रुद्रनाथ मंदिर, जो एक बार फिर श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठा है। रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है।

0: भगवान महादेव के रुद्र रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके मंदिर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ जैसे पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब गया हो।
1: बाबा रुद्रनाथ की डोली और जो श्रद्धालुओं का जत्था था वो बाबा रुद्रनाथ के धाम पहुंचा और 12:30 बजे जो परंपरागत विधि विधान के साथ हैं यहाँ के कपाट खोले गए, डोली को अंदर किया गया और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के दर्शन यहाँ पे शुरू हो गए। बताते चले 22 किलोमीटर लगभग पैदल जो ट्रैकिंग रूट होता है उसके बाद बाबा रुद्रनाथ के धाम में पहुँचा जाता है। खासकर जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो यहाँ पे हमेशा पहुँचते हैं। ऐसे में भारी भीड़ इस बार श्रद्धालुओं की देखने को मिली। जब कपाट खोले तो जय बम बम भोले के जयकारों से पूरा रुद्रनाथ धाम जो कि मध्य हिमालय में स्थित है वो गूंज उठा। बाबा रुद्रनाथ की यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। ऐसे में आप भोले के भक्त जो हैं वो रुद्रनाथ धाम भी जा सकते हैं।
2: आप सभी साधन प्रेमी को आज ये बताना चाहता हूँ, आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। आप लोग आप आराम से आकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो ये भीड़ देख रहे हैं ये अभी भगवान जी का जो निर्माण दर्शन है, निर्माण दर्शन करके आप लोग प्रसाद पाके फिर आराम से जाएंगे।
0: ये पावन पवित्र मंदिर भगवान शिव के रौद्र और करुणामय स्वरूप का अद्भुत संगम है। एक ऐसी तपस्थली जहां भगवान भोलेनाथ का दर्शन जीवन का दुर्लभ सौभाग्य माना जाता है। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव के मुखारविंद की पूजा होती है। मान्यता है कि रुद्रनाथ में महादेव का मुख प्रकट हुआ, इसलिए इसे शिव के रौद्र सत्य और करुणा के संगम का स्थान माना जाता है। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर घने देवदार के जंगलों और हिमालय की विराट चोटियों के बीच स्थित है। मंदिर के चारों ओर नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी और हाथी पर्वत की चोटियां इसकी दिव्यता को बढ़ाती है। कहा जाता है कि यहां के दर्शन के बिना पंच केदार की यात्रा अधूरी है।
3: रुद्रनाथ मंदिर, रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। ये पंच केदारों में सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप में गहन धाम माना जाता है। रुद्र भगवान शिव के उस स्वरूप को दर्शाता है जो संघार, सत्य और गहरी चेतना से जुड़ा है। घने जंगलों और हिमालय की शांत वादियों के बीच स्थित ये धाम भक्त के भीतर ही नीरवता और आत्मचिंतन का अनुभव कराता है। मान्यता ये है कि रुद्रनाथ केवल बाहरी यात्रा नहीं बल्कि स्वयं के सत्य का सामना करने की यात्रा भी है, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर छिपे भय, अहंकार और भ्रम को पहचानने लगता है।
0: शिव भक्तों के लिए रुद्रनाथ समेत पंच केदार में पूजा और दर्शन का विशेष महत्व है। पंच केदारों में प्रथम है केदारनाथ, जहां भगवान शिव की पीठ के हिस्से की पूजा होती है। दूसरा है मदमहेश्वर, जहां शिवजी के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तीसरा केदार है तुंगनाथ, जहां शिवजी की भुजा की पूजा होती है। और चौथे केदार रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है। जबकि पांचवा केदार है कल्पेश्वर, जहां शिवजी की जटाओं की पूजा की जाती है। इन पांच कड़ियों से जुड़कर बनती है शिव की वो माला जिसे पहनकर हिमालय धन्य हो जाता है। मान्यता है कि इनके दर्शन से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। पंच केदार का शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यहाँ दर्शन करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है।
4: भगवान शिव के पांच पवित्र मंदिर हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इनका मुख्य महत्व महाभारत के पांडवों से जुड़ा है, जहां पे शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने पापों से मुक्त हुए थे। ये यात्रा आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मा अनुशासन और कर्म के फल को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है।
0: महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या करने के चलते गोत्र हत्या का पाप लग गया था। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी के दर्शन करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव इस युद्ध के कारण पांडवों से नाराज थे। और दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में शिव जी अंतर ध्यान हो गए और बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उस बैल की पीठ पकड़ ली। तब भगवान शिव के शरीर के पांच हिस्से पांच अलग अलग दिशाओं में प्रकट हुए। केदारनाथ में शिव की पीठ का भाग उभरा तो मदमहेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुईं। इन्हीं पांच स्थानों की पंच केदार के रूप में पूजा होती है।
3: पंच केदार के पांच धाम केवल मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान शिव के पांच दिव्य स्वरूप और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक माने जाते हैं। बात करें केदारनाथ मंदिर की तो केदारनाथ में भगवान शिव की कुबड़ यानी पीठ की पूजा होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता यह है कि दर्शन करने से व्यक्ति को भारी कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और केदारनाथ शिव के वैराग्य, तप और रौद्र रूप के प्रतीक माने जाते हैं।
0: रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जिसकी यात्रा के दौरान श्रद्धालु पन्नार और ल्यूटी जैसे मखमली बुग्यालों और घने जंगलों से होकर करीब 20 से 22 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हैं। यहां से नंदा देवी और त्रिशूल जैसी विशाल चोटियों के भव्य दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ की यात्रा को पितृतर्पण के लिए भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि रुद्रनाथ में वैतरणी नदी के तट पर श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। महादेव के इस धाम में आकर भक्त अपने भीतर के भय, पीड़ा, मोह और भ्रम को छोड़ देते हैं। कहते हैं केदारनाथ आशीर्वाद देते हैं, तुंगनाथ शक्ति देते हैं, मदमहेश्वर संतुलन देते हैं, कल्पेश्वर ज्ञान देते हैं, लेकिन रुद्रनाथ आत्मा को शुद्ध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा परेशानी ना हो। हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने हो गए हैं।
1: इस मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयार यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक, गुरुद्वारों में सजावट, रंग रोगन, तमाम कार्य कर दिए गए हैं।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: इस साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Good news today, bud.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कराया सुंदरकांड का पाठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने PM मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डे शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर की बात।

ऐसे भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। शिव भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु, भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। भक्तिमय रहा वातावरण। चारधाम यात्रा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी, 15.5 लाख के पार पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। बाबा केदारधाम की यात्रा ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड, 1 महीने से कम समय में पहुंचे 6 लाख से अधिक यात्री। हर रोज धाम में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर कर रहे बाबा के दर्शन, यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा जवान किए गए तैनात। केदारधाम यात्रा में आ रहे भक्तों के स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा ध्यान, अलर्ट मोड पर मेडिकल टीम। बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद, अब तक 30 यात्रियों को दी गई सुविधा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, आज 21,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। इस साल बद्रीनाथ यात्रा बना रही है नए रिकॉर्ड, अब तक 4,28,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं धाम। मंदिर समिति, पुलिस और SDRF लगातार यात्रियों की मदद में जुटी, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार श्रद्धालुओं को दी जा रही विशेष सहायता। जून में बद्रीनाथ यात्रा का शुरू होने वाला है पीक सीजन, हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद भीड़ और बढ़ने की उम्मीद। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की, बोले देवभूमि को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी। झांसी के इस्कॉन मंदिर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन, मोर नौका में विराजे श्री राधा और गोविंद। नौका विहार के साक्षी बने हजारों भक्त, हरे कृष्ण के महामंत्र से भक्तिमय हो उठा माहौल। दीपों से किया गया मंदिर का श्रृंगार, श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का किया गया वितरण। ब्रज थीम पर बनी राधा कृष्ण की रंगोली भी श्रद्धालुओं के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, भजन और प्रेरणादायक प्रवचनों ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। नौका विहार समारोह को भक्तों ने बताया वृंदावन की दिव्य अनुभूति, रोजाना रात 9:30 से 10 बजे तक होगा आयोजन। उज्जैन व महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। धार भोजशाला में बागदेवी की पूजा पाठ का दौर जारी, स्कूली बच्चों के ग्रुप ने भी किया सरस्वती वंदना का पाठ। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री वंगलपुड़ी अनिता, किया दर्शन पूजन। मथुरा में दास नारायण कृष्ण भक्ति कविताओं को लेकर समारोह का आयोजन, सांसद हेमा मालिनी ने किया शुभारंभ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत कम करने को लेकर नया मेमोरेंडम किया जारी, अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL के बीच चेन्नई में NSG के रीजनल हब पहुंचे, जवानों के साथ बिताया समय। धोनी ने छोटी मशीन गन पर आजमाया हाथ, साथ ही पिस्तौल से भी लगाया निशाना। NSG कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, जवानों के साथ फिटनेस पे की बात। भारतीय नौसेना की जल्द बढ़ेगी ताकत, शामिल होंगे 3 स्वदेशी पोत, द्रोणागिरी, अग्रय और संशोधक। प्रोजेक्ट 17A के तहत किया जा रहा है इनका निर्माण, चीन की गतिविधियों पर रखेंगे कड़ी निगरानी। दिल्ली में आज से हुई मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत, पीएम मोदी की अपील के बाद BMRC की बड़ी पहल। BMRC की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो, 24 फेरे लगाएंगी ट्रेन। सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किया जा रहा प्रोत्साहित, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो यात्रा की दी हिदायत। सुरक्षा और सुविधा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात। BJP सांसद मनोज तिवारी ने भी की लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील, NDMC वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में रहे मौजूद। कुतुब मीनार घूमने आ रहे पर्यटक, गर्मी से बचने के लिए ले रहे पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक और नींबू पानी का सहारा, पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट। भीषण गर्मी की वजह से टिकट काउंटर से भीड़ दिखी कम, विदेशी सैलानियों की घटी आमद। अकोला में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, यहां का पारा 46.3 डिग्री के पार पहुंचा।
रात में भी 35 डिग्री तक तापमान रहने से लोगों

0: को राहत नहीं मिल रही, आईएमडी ने 21 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया। विदर्भ में पड़ रही है भीषण गर्मी, वर्धा में 6.5 डिग्री और अमरावती में 6.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल। दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कारपूलिंग को बनाया मिशन, रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त लिफ्ट। राजधानी बस स्टैंड पर मिले दो यात्रियों को राजेश ने दिया सहारा, मुफ्त सेवा देकर सफर बनाया आसान। ऊर्जा संकट के बीच राजेश चौरंगी की अनोखी पहल, चर्चा में कारपूलिंग से ईंधन बचाने और लोगों को मदद का दे रहे संदेश। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान बढ़ने और तेज धूप की चेतावनी दी। ओखला औद्योगिक क्षेत्र और नेहरू प्लेस में दोपहर के वक्त चुचलाती धूप ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, लोगों से दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील। यूपी के बांदा में पड़ रही भीषण गर्मी, रविवार को तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी। इस समय बांदा बना हुआ है हीट चैम्बर, तेज लू और झुलसाने वाली गर्मी से जंजीर बुरी तरह प्रभावित। बांदा में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से ना निकलने की अपील की। प्रशासन ने शहर के चौराहों पर कूलिंग सेंटर और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की। उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों की तरह वाराणसी का भी पारा ही, वाराणसी का तापमान इस गर्मी दूसरी बार 44 डिग्री सेल्सियस के पार। धौलपुर में बढ़ रही है भीषण गर्मी, सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। गर्म हवाओं और बिजली कटौती के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर, धूप और लू से आम जनजीवन प्रभावित। लोग तेज गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव, ठंडे पेय और आइसक्रीम का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने बाहर ना निकलने की अपील की। दार्जिलिंग हिल्स के सबसे पुराने स्कूलों में शामिल स्कॉट्स मिशन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज पहली बार असेंबली के दौरान वंदे मातरम गूंजा, राज्य सरकार के निर्देश का हुआ पालन। दार्जिलिंग हिल्स के स्कूलों में आज से मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम की हुई शुरुआत, छात्र छात्राओं और शिक्षकों में दिखा उत्साह। नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी, 43 वर्षों के बाद पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने किया पीएम मोदी का स्वागत, प्रवासी भारतीयों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारतीय तिरंगा और स्वागत संदेशों के साथ लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत, पीएम ने भी लोगों से की मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने पीएम मोदी की यात्रा को बताया ऐतिहासिक, कहा दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। कल ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, कई सारी योजनाओं का किया शुभारंभ। रायपुर में 400 डायल, 112 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियों और 33 मोबाइल फॉरेंसिक लैब को गृहमंत्री शाह ने दिखाई हरी झंडी, राज्य को मिलेगी विकास की रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अमित शाह ने जनसुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, केंद्रों के जरिए कई गतिविधियां की जाएंगी शुरू। बस्तर के 196 सुरक्षा कैंप में से 70 कैंप बनेंगे जनसुविधा केंद्र, नेतानार में गृहमंत्री शाह ने जनसभा को किया संबोधित। जगदलपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को गृहमंत्री शाह ने दी श्रद्धांजलि, नक्सल विरोधी कार्रवाई में गंवाए थे प्राण। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपने काफिले को छोड़ा, साइकिल चलाकर पहुंचे सेक्रेटरिएट। चरखी दादरी के नवदंपति ने शादी को बनाया सामाजिक जागरूकता का अभियान, बाबा साहेब की तस्वीर के सामने लिया जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तेहरान में 1000 जोड़ों का होगा सामूहिक निकाह समारोह, कार्निवल इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक निकाला जाएगा जुलूस। बागपत नन्ही कली पहल की शुरुआत, डीएम ने किया शुभारंभ, डॉक्टर बोले बच्चियों के इलाज में 70% तक की छूट। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवजात बच्चियों को मिलेगा लाभ। नवजात बेटियों को नन्ही कली गुड़िया गिफ्ट करके दिया जाएगा सकारात्मक संदेश। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ और शावक की गतिविधियां हो गई हैं तेज। वन विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की। बाघेन ST-19 अपने चार शावकों के साथ कई क्षेत्रों में सक्रिय। 12 लेवारी और फायरिंग रेंज जैसे इलाके संवेदनशील बताए गए। सरिस्का टाइगर 2302 बाघेन दो शावकों के संग बाला किला क्षेत्र में आ रही है, घूम रही है। किशन कुंड नाला और आसपास मूवमेंट लगातार जारी है। वन विभाग ने जंगल में पैदल घूमने और ट्रैकिंग पर सख्त चेतावनी दी। शावकों के साथ बाघिन को बताया है अत्यंत आक्रामक। प्रशासन ने बिना अनुमति वन क्षेत्र में प्रवेश न करने की अपील। बाघ दिखने पर तुरंत सूचना देने और दूरी बनाए रखने की सलाह। वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट गाने में दिखी सितारों की भीड़। फिल्म 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। पोस्ट ड्रामा पेडी का ट्रेलर रिलीज। क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक में रामचंद्र बने महारथी। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी किया कमाल।
1: यहाँ के लोगों के लिए पैदी मंदिर का भगवान नहीं।
0: कॉमेडी और मेलोड्रामा से भरपूर रजनी की बारात का ट्रेलर जारी। उल्का गुप्ता की नए अंदाज में वापसी। 29 मई को फिल्म होगी रिलीज।
2: यहाँ तो दूधों को जोड़ा है।
0: कन्नड़ एक्शन ड्रामा बेल के टीजर आउट। शिवराज कुमार का दमदार लुक भी जारी। स्वैग और स्टाइल जीत रहा फैंस का दिल। सिंगर हनी सिंह के नए सॉन्ग जवानी राखी का फर्स्ट लुकआउट। पूरा गाना 6 जून को हनी सिंह के यूट्यूब चैनल पर होगा अपलोड। मेक्सिको सिटी में वर्ल्ड कप 2026 से पहले फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। 15,000 से ज्यादा फुटबॉल से जुड़ी चीजों की लगी प्रदर्शनी। फुटबॉल लेजेंड पेले का ताज और डिएगो मैराडोना लियोनल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सियां प्रदर्शन की खास पहचान बनी। यहां फिर से जी रहे पुराने मैचों की यादें। यह फुटबॉल प्रदर्शनी अगस्त 2026 तक मुफ्त में खुली रहेगी। यहां इंटरेक्टिव गेम्स और स्टेडियम जैसा माहौल भी बनाया गया। जुमेक्स में फुटबॉल और कला को जोड़ती खास प्रदर्शन लगाई गई। फुटबॉल की संस्कृति को दिखा रही है 60 से ज्यादा कलाकारों की 100 कलाकृतियां। मेक्सिको सिटी वर्ल्ड कप 2026 के दौरान 50 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की कर रहा है उम्मीद। शहर के 20 से ज्यादा सांस्कृतिक केंद्र फुटबॉल थीम पर कार्यक्रम आयोजित। मॉस्को में यूरोप का सबसे बड़ा वुशु स्कूल चीन रूस दोस्ती की बन रहा है नई पहचान। स्कूल बच्चों को सिखाई जा रही है मार्शल आर्ट्स। मॉस्को का वुशु सेंटर दोनों देशों के युवाओं को जोड़ने का बड़ा माध्यम बना। चीन रूस एजुकेशन ईयर के तहत सांस्कृतिक रिश्ते और हो रहे मजबूत। जैकी चैन और जेट ली से प्रेरित है रूसी खिलाड़ी। बच्चों को छोटी उम्र से ही वुशु के साथ अनुशासन और चीनी दर्शन की दी जा रही शिक्षा। रूस के युवा खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप प्रतियोगिताओं के लिए चीन जा रहे हैं। खिलाड़ियों को चीन जाकर उन्हें वुशु की असली परंपरा समझने का मिलता है मौका। खेल और शिक्षा दोनों देशों के रिश्ते की बन रही मजबूत नींव। चीनी भाषा और वहां की संस्कृति भी सीख रहे हैं बच्चे। चाइना म्यूजियम फॉर फ्यूजन ताइवान किनशिप की स्थापना के 20 साल पूरे। इस मौके पर फ्यूजन प्रांत के क्वांझोउ शहर में खास कार्यक्रम का आयोजन। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 की थीम म्यूजियम ब्रिज कनेक्टिंग द वर्ल्ड रखी गई। पिछले 2 दशकों में यहां 1,77,00,000 से ज्यादा लोग संग्रहालय कर चुके हैं विजिट। इनमें चीन के ताइवान क्षेत्र से आए 10,38,000 से अधिक आगंतुक। म्यूजियम ने पारिवारिक इतिहास और वंशावली शोध के जरिए अब तक 360 से अधिक चीन ताइवान परिवारों को उनके पैतृक संबंधों से दोबारा जोड़ने में सफलता हासिल की। लोगों का मानना है संग्रहालय केवल ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र नहीं बल्कि चीन और ताइवान के बीच सांस्कृतिक संवाद का केंद्र।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wait.
7: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: अधिक मास्क के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने कराया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को उमड़े भक्त। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, कहते हैं जल ही जीवन है, यानी जल के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जल का क्या महत्व है, इसे कितना पवित्र माना जाता है और कैसे जल के जादुई प्रयोग से हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को और अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: जिन लोगों को आलस्य बहुत ज्यादा रहता हो, हर समय आलस्य सवार रहता हो, ऐसे लोगों को तांबे के पात्र का जल पीना चाहिए। रात में गिलास में या जग में आप तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका आलस्य दूर होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 19 मई 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं जल के महत्व के बारे में। तो किस तरह से ये हमारे ऊपर असर डालता है, इसे काफी पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र इसे कैसे देखता है, कितना महत्वपूर्ण है?
1: जी देखिए, हमारे जीवन में जल से ज्यादा मूल्यवान विजिबल कोई चीज नहीं है। ज्योतिष में, धर्म में, हर जगह जल का अपना एक महत्व है। ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है जल के बारे में? देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 की आवश्यकता होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये 5 कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन 5 में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व, और जल मूर्त वस्तुओं में जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है, साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेकर क्या कहते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरं शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो जल के बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, तो अब जानते हैं जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए।
1: देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है और पानी बीमारी देता भी है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा, तो जल का प्रयोग सोच समझ कर नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, सामान्यतः गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है। और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ना तो ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है। आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है, बिना आवश्यकता के जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में, ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा।
0: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें।
1: जी, आज का पहला प्रश्न सत्यदेव जी ने हमें लिखा है और सत्यदेव जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1992, रात में 11:25, जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। सत्यदेव जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी, उसने प्रेम विवाह अपनी इच्छा से किया था लेकिन अब शादी चल नहीं पा रही है। बेटी पिछले 6 महीने से घर पर ही है, मायके में ही है, तो क्या ये शादी चल पाएगी या सेपरेशन होगा और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा। सत्यदेव जी, जो बालक की कुंडली आपने भेजी है अपनी बेटी के साथ, उसमें शादी चल पाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि बातचीत करके इसमें डिवोर्स होना चाहिए। इस साल के अंत तक या अगले साल के आरंभ तक आपकी बेटी का डिवोर्स होना चाहिए ऐसा लगता है। शादी चलने की संभावना बहुत ही कमजोर है। आपकी बेटी का दूसरा विवाह भी आगे होगा साल 2028 में, मध्य में किसी समय इनके विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन अब की बार जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि इनका भविष्य बेहतर हो। जल्दी से इस केस से छुटकारा मिले, जल्दी से जीवन में आगे बढ़ सकें, इस मामले से बाहर निकल सकें, बेटी को कहिए कि मंगलवार का व्रत रखेंगी और मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करेंगी और हर मंगलवार को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करके हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करेंगी, उनको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सवाल ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर ये कार्यक्रम आपका फेवरेट है, आप रोज देखते हैं, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। आप लोगों के जो भी तकलीफ है, परेशानी है, सवाल है, इस पर लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रही है।
1: जी, अगला प्रश्न राम्या ने हमें लिखा है और राम्या हमें मेल लिखती है मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 2000, जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:32, जन्म स्थान है मुंबई मुलुंड। राम्या कह रही हैं कि मैं फैशन के क्षेत्र में काम करती हूं, कॉस्मेटिक्स का भी काम करती हूं, तो मेरे लिए क्या बढ़िया होगा कि मैं कपड़ों में और फैशन में जाऊं या कॉस्मेटिक्स में जाऊं, कौन सा क्षेत्र मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, मेकअप में, इस क्षेत्र में जाइए, इसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है आपके लिए। कपड़े वाला काम या सामान खरीदने बेचने वाला काम उतना अच्छा नहीं है, स्किल का जो काम है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो आप कॉस्मेटिक्स पर, ब्यूटी पर, मेकअप पर फोकस करिए तो मुझे लगता है आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
0: तो जल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है और किस ग्रह से इसका संबंध है, इसके बारे में जान लेते हैं।
1: देखिए, ज्योतिष में जो 5 तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है, या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं, शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को सरोवरों को दूषित मत करिए।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो देखिए, चंद्रमा को किस तरीके से आपकी कुंडली में मजबूत किया जा सकता है और मानसिक शांति के लिए किस प्रकार जल का प्रयोग करें, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, जल का पहला और ज्यादातर संबंध होता है चंद्रमा के साथ। तो जल का कैसे प्रयोग करें कि चंद्रमा बेहतर हो, मानसिक शांति जीवन में मिले, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अगर जमीन है तो जमीन में लगाएं, वरना गमले में लगाएं। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाना अच्छा होगा। नियमित रूप से उनमें जल डालें, उनकी देखभाल करें, उनको ग्रो करने दें, उन्नति करने दें। जब भी बारिश हो, बरसात का पानी किसी बर्तन में पहले इकट्ठा कर लें और एक कांच के बोतल में भर करके बारिश के पानी को अपने बेडरूम में रखिएगा। बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी है और उसके अंदर चंद्रमा के तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक कांच के बोतल में बारिश का पानी भरकर अपने बेडरूम में रखिए। चांदी का गिलास अगर खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो चांदी के गिलास से पानी पीने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। या जैसे मान लिया बाल्टी में पानी स्टोर करके रखते हैं या बोतल में भर भर के पानी पीते हैं, तो बोतल में या बाल्टी में चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल करके रख दें और वो पानी भी निरंतर अगर पीते रहेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक तो बैठ करके नहाइए और दूसरे पहले अपने नाभि पर पानी डालकर तब नहाना शुरू करें, ताकि फायर एलिमेंट थोड़ा बैलेंस हो, जल तत्व थोड़ा बढ़े, आपका शरीर ज्यादा पानी का फायदा उठा सके।
0: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना

0: में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब आज का तीसरा सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न अरुण कांत जी ने हमें लिखा है और अरुण कांत जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1999। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है भोपाल। अरुण जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है? अरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, MPSC की तैयारी करें, SSC CGL की तैयारी करें तो इसमें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। 2027 का अंतिम समय और 2028 इस मामले में आपके लिए सफलता दिखा रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल लेने का समय यहाँ पर हो चला है, लेकिन आप सभी को मैं याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल लिख करके इसी ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल यानी चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न रेवती जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। रेवती की जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1984। जन्म का समय सुबह के 8:25। जन्म स्थान है बरेली। रेवती कह रही हैं कि मेरा हाल में ही डिवोर्स हुआ है और अब मैं आगे दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी एक बेटी भी है, तो क्या मैं आगे अच्छा करियर बना के अपना और अपनी बेटी का जीवन चला सकूंगी? रेवती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वैसे भी आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां भी सफलता की संभावनाएं नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपका करियर अभी भी अच्छा है और आगे और भी अच्छा होगा। पैसे को लेके, करियर को लेके कुंडली में दिक्कतें नहीं हैं और आपका संतान पक्ष अच्छा है तो अपना और अपनी बेटी का बढ़िया जीवन आप चला सकेंगी। मानसिक तनाव कम हो, आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। छह से आठ रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 19 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब कार्यक्रम में समय हो गया है ये जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है, आज का सवाल क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज का प्रश्न है कि क्या चांदी के बर्तन से पानी पीने से या सोने के बर्तन से पानी पीने से पानी का गुण बदल जाता है। देखिए, आप चांदी के गिलास से पिएं, सोने के गिलास से पिएं, तांबे के गिलास से पिएं, आप ये जान लें कि जल किसी भी तत्व के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। जिस धातु के पात्र में पानी होता है उसके गुण उस जल में आ जाते हैं। ग्रहों से लाभ लेने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग धातुओं के बर्तन से जल पिया जाता है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 19 मई 2026 यानी कि दिन मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 मई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। आज की गुडलक राशि है मकर। इस समय अपने डाइजेशन यानी अपने पेट का और अपने खान पान का ध्यान रखिए। वाहन सावधानी से चलाना आपके लिए इस समय जरूरी है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता हो, घर में रहने पे कलेश होता हो, चिंताएं होती हो, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके रोज पूजा करिए, सुबह के समय पूजा स्थान पर बैठिए, अपने सामने जल से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा कटोरी या गिलास रख लें, उसमें पानी भरा हो। इसके बाद बोल बोल कर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उसके 10 मिनट बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। लगातार ऐसा एक महीना

0: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: get The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज
2: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
3: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
4: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है और तापमान भी काफी सामान्य से अधिक हो जाते हैं और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती है इस सीजन में।
3: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
5: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देखें इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है, येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त। लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
6: गर्मी ना बहुत ही पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा।
5: वापस जाने का मन कर रहा है?
6: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
7: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणा से हैं जी, सोनीपत ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
3: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
8: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब, जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्सर और एडजोइनिंग जलजीले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
3: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
9: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के भूटापथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
10: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में।
9: तो कैसा लगा?
10: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
9: पहली बार?
10: हाँ, फर्स्ट टाइम।
9: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
11: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था, और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते, और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
12: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
12: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
3: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने, और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि, और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है और तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहें हैं कि सोना ना खरीदा जाए तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
22: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा
0: अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
1: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
2: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है, ठीक है, हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
2: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाएं, तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: इस्कॉन में भगवत की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महाउत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब एक महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस एक महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा सुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदगढ़, 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है और यूजर्स वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
9: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शुभेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक

0: दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया, हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और ये सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई ये सही है। इसलिए हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock

0: gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला.
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.
3: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है.
4: हमारा नानी घर तो

0: करो, हम आपके साथ हैं।
1: कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार जब पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ। बीपी भाई तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शांत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान न हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर एआई की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो एआई से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, एआई उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर लें। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलॉटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्ना एक्सोलॉटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलॉटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वह चेहरा टिकाता वहीं ओ बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलॉटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। यह नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
5: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है और तापमान भी काफ़ी सामान्य से अधिक हो जाते हैं और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती हैं इस सीजन में।
4: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
6: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देखें इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है। येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त, लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
7: गर्मी ना बहुत हुई पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है वेदर, गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा,
6: वापस जाने का मन कर रहा है।
7: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणा से आए जी, सोनीपत ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
4: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति यह है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजोइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
4: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
10: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहां पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
11: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में।
10: तो कैसा लगा?
11: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
10: पहली बार?
11: हाँ, फर्स्ट टाइम।
10: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
12: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था, और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते, और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
10: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
10: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
4: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि, और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब दे भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
0: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
2: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
22: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है। ठीक है, हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
22: खरीद नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाए तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: इस्कॉन में भगवत की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महोत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब एक महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस एक महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा असुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदगढ़, 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह पांच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते और यहीं शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: यहाँ पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है और यूजर्स वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
9: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शुभेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया।
11: हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक गुड।

0: मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और यह सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता, रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई सही है। इसलिए हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
1: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।

0: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है।
1: हमारा नानी घर तो फोरेन ट्रिप जैसा यार।

0: दो, हम आपके साथ हैं।
1: कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को जब पहली बार साफ साफ देखा, तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ। बीपी भाई तो हमारा बीपी हाई करते, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शांत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान ना हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर एआई की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो एआई से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, एआई उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है, जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्ना एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वह चेहरा टिकाता वहीं ओ बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। यह नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn. The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: गुड न्यूज फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कान्स में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने ये साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का ये 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
5: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं। और खासकर आफ्टरनून जो होता है, उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए, तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं, तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जारी रहती है और तापमान भी काफी सामान्य से अधिक हो जाते हैं, और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती है इस सीजन में।
4: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
6: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है, येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त। लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं, और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
7: गर्मी ना बहुत हुई पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा, और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा।
6: वापस जाने का मन कर रहा
7: है? हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणे से हैं जी, सोनीपत है, ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
4: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजॉइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत, अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
4: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
10: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटापथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
11: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में
10: तो कैसा लगा?
11: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
10: पहली बार?
11: हाँ, फर्स्ट टाइम।
10: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
12: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था, और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते, और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
10: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
10: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
4: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब दे भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए, तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
0: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
2: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
22: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
22: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाएं, तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: भगवत की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महाउत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब 1 महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस 1 महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को 1 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा सुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदघाट, 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों का अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल एंसेलॉडी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal and finalize everything from home.
8: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
7: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
11: मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है और यूजर्स वीडियो के जरिए यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
10: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शुभेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
10: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया। हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में
12: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
12: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

0: भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और ये सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई ये सही है। इसलिए हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है।
5: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा यार, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी आप टेंशन मत लो,

नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को जब पहली बार साफ साफ देखा, तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की ये छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ
4: क्या?
3: बीपी भाई, तो हमारा बीपी हाई करती है, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यार और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शान नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान ना हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर एआई की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो एआई से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, एआई उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्ना एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वह चेहरा टिकाता वहीं ओ बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। यह नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल। विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
5: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं, और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है, और यदि नमी ना हो सिर्फ हीटिंग हो तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जारी रहती है और तापमान भी काफी सामान्य से अधिक हो जाते हैं और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती है इस सीजन में।
4: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
6: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देखें इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है, येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त। लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं, और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
7: गर्मी ना बहुत हुई पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा, और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा।
6: वापस जाने का मन कर रहा है?
7: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणे से हैं जी, सोनीपत है, ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
4: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजोइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत, अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
4: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
10: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटापत्री इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
11: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में
10: तो कैसा लगा?
11: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
10: पहली बार?
11: हाँ, फर्स्ट टाइम।
10: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
12: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
10: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
10: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
4: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं जहां आज बात होगी दिल्ली के स्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं स्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में स्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है। तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु, इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं। ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएं। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि, और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब दे भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
0: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
1: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
22: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
22: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाएं तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: इस्कॉन में भगवत की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महाउत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब 1 महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस 1 महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को 1 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा सुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदघाट 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह 5 पैरों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture, hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है। क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है और यूजर्स वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
10: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शिवेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
10: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया, हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक

0: उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और यह सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई ये सही है। इसलिए हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
0: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डी फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: Good news today is really good. It's in this case, there's a lot of news and chilla.
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
5: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, आप टेंशन मत लो, हम आपके

0: हम आपके साथ हैं।
1: कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए

वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार जब पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ बीपी। भाई तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शांत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान ना हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर AI की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो AI से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, AI उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्ना एक्सोलोटल भी एक्शन मूड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वह चेहरा टिकाता वहीं ओ बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। यह नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कान्स में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
5: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है और तापमान भी काफी सामान्य से अधिक हो जाते हैं और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती है इस सीजन में।
4: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
6: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है। येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त, लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
7: गर्मी ना बहुत हुई पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा,
6: वापस जाने का मन कर रहा है।
7: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणे से हैं जी, सोनीपत ओड़ा आए थे जी, आप हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
4: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति यह है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, मुक्तसर और एडजोइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
4: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
10: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
11: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में।
10: तो कैसा लगा?
11: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
10: पहली बार?
11: हाँ, फर्स्ट टाइम।
10: हाँ, आप अपने बताइए क्या है, कैसा?
12: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था, और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते, और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
10: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
10: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
4: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे, तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें, तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि, और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से,
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से, हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
0: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत
2: है। मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
22: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है। ठीक है, हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
22: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाए तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: इस्कॉन में भगवत की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महाउत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब एक महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस एक महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा सुरक्षित होती हो। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंद घाट, 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह पांच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थी केदार धाम में दर्शन कुंभले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है और यूजर्स वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
9: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शिवेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया। हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
9: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम

0: पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और ये सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके कि वाकई सही है। इसलिए हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
1: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: मैं यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है क्या? जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती है क्या? जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं क्या? हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
6: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है।
7: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा ही

कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ।

है। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा शैलेश जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की यह छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ
4: क्या?
3: बीपी भाई, तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शांत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान ना हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर एआई की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो एआई से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, एआई उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलॉटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्ना एक्सोलॉटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलॉटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वह चेहरा टिकाता वहीं ओ बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलॉटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। यह नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कान्स में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद, प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान, विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित, पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसे प्री मानसून बारिश भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून वक्त से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है। यानी गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएगी।
5: देखिए, दिल्ली का मौसम, खासकर यदि हम बात करें जो हॉट वेदर सीजन है और प्री मानसून सीजन और मई का महीना है, तो ऐसे सीजन में बदलाव अक्सर तेजी से होते हैं, और खासकर आफ्टरनून जो होता है उसमें यदि हीटिंग ज्यादा हो जाए और खासकर उसी समय कहीं से नमी भी आ जाए तो आपके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। और यदि नमी ना हो, सिर्फ हीटिंग हो, तो उसके कारण भी जो कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं तो उसके चलते डस्ट स्टॉर्म्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है, और तापमान भी काफी सामान्य से अधिक हो जाते हैं, और हीट वेव्स भी कभी कभी देखने को मिलती है इस सीजन में।
4: मौसम वैज्ञानिक प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। हालांकि केवल बाहर से आने वाली गर्म हवाएं ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी में कमी और स्थानीय भूभाग की स्थिति भी उत्तर भारत के तापमान को तेजी से बढ़ा रही है। वैसे राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलती थी, अब उनकी जगह मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं। पूर्वी हवाएं इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं, साथ ही इनमें नमी भी मौजूद होती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा पर पड़ने वाला है। वहीं पर्यटकों की पसंदीदा जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक दोपहर के समय पूरी तरह सूनी नजर आ रही है।
6: सुखना लेक पे, जो कि आइकॉनिक लेक है चंडीगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ, क्योंकि भरी धूप है, 40 के पार पहुंच चुका है पारा, यानी गर्मी बढ़ रही है, येलो अलर्ट है पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में इस वक्त। लेकिन कुछ लोग जरूर हिम्मत लगाकर यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं, और कहीं छुट्टी पे आने जाने का, क्योंकि अब तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि फॉरेन वेकेशन नहीं करें, तो क्या आप लोगों ने मन विचार बनाया है?
7: गर्मी ना बहुत ही पड़ी है, इस करके हम हिमाचल घूमने गए। उधर ठंड है, वेदर गर्मी कम है, इसलिए हम आते देखा, और इधर तो वेदर बहुत ज्यादा हाई है, इस करके इधर तो आने का लग नहीं रहा,
6: वापस जाने का मन कर रहा है।
7: हाँ, हिमाचल वापस जाने का मन कर रहा है घूमने का।
8: गर्मी तो घनी हो रही जी, आप तो हरियाणा से हैं जी, सोनीपत है, ओड़ा आए थे जी आप, हाईकोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी, घनी गर्मी हो रही है।
4: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
9: के आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा की अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति यह है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में, और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब जिसमें आपका बठिंडा फिरोजपुर फजिलका मुक्तसर और एडजॉइनिंग जिले रहेंगे। रूटीन से काम करें, दिन के समय थोड़ा एक्सपोज कम होना है क्योंकि जो फार्मिंग एरियाज है वहां पे काफी खुले खेत होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अदरवाइज एज सच कोई बड़ा सीवियरिटी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी।
4: गुजरात में अहमदाबाद के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर, एसी और पंखे लगाए गए हैं। कुछ केज में खास स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं और लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यहाँ 100 प्रजातियों के करीब 1500 जानवरों और पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। गर्मी से बचाने के लिए हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों के लिए एक खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अमरावती में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तीनों शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अकोला और वर्धा में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया, लिहाजा विदर्भ में तापमान का ये खतरनाक स्तर आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर मौसम में जल्द राहत नहीं मिली तो जनजीवन पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। वहीं देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी है, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में अलग ही माहौल है। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां इन दिनों देश भर के सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी इन दिनों कश्मीर का रुख कर रहे हैं।
10: इस वक्त मौजूद है हम गुलमर्ग के बूटापत्री इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इस वक्त गर्मी की लहर छाई हुई है। उसके बावजूद यहाँ पे इस वक्त भी कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ मौजूद है और इस वक्त अभी हल्की सी बर्फबारी फिर शुरू हुई है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ में, ताकि जो गर्मी है इस वक्त पूरे मुल्क में और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज ये टूरिस्ट राहत की सांस ले रहे हैं।
11: और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, मतलब इस अभी तक में
10: तो कैसा लगा?
11: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमें।
10: पहली बार?
11: हाँ, फर्स्ट टाइम।
10: हाँ, आप अपने बताइए क्या है कैसा?
12: स्नो देख के तो वैसे ही मेरा मन अच्छा हो गया था और जहाँ मैं रहता हूँ इस टाइम टेम्परेचर तो बहुत ही हाई था, मतलब आप दिन में बिना एसी के तो आप रह ही नहीं सकते और यहाँ ऐसा वेदर है और मस्त स्नो हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
10: गुजरात में हमारा 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है और यहाँ पे आके हम लोग -5 -6 तक रहे, काफ़ी एंजॉय किया। गुलमर्ग गोंडोला टू जो किया हमने वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था,
13: बहुत ही अच्छा लगा।
10: क्या क्या देखा आपने?
13: बर्फ भी देखा, अच्छा मौसम है, इधर रहना भी चाहिए।
4: आमतौर पर केरल में मॉनसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है और इसी के साथ देश में 4 महीने लंबे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इस बार केरल में मॉनसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। 16 मई को ही मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला, दिल्ली से हर्षित मिश्रा और अकोला से धनंजय साबले के साथ चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ओर से भक्तों से की गई एक विशेष पहल की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश हित में लोगों से सोना चांदी अभी खरीदने से मना किया है, वहीं इस्कॉन मंदिर ने ऐसे भक्तों से अपील की है कि जो सोना चांदी मंदिरों में दान करते हैं। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर की ओर से कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा में सोना चांदी अर्पित करना चाहते हैं, वो नई खरीदारी करने के बजाय अपने घर में मौजूद सोना चांदी दान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मंदिर की पहल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने चांदी की खरीद ना करें। देश के मंदिर भी अब प्रधानमंत्री की इस अपील को एक मुहिम की तरह ले रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन द्वारका ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की अपील को माने और अगर आप मंदिर में चांदी या सोना दान करना चाहते हैं, प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप नया सोना या चांदी खरीदें, आप आपके घर में जो पहले से चांदी या सोना रखा हुआ है उसको लेकर आएं और प्रभु को उसे अर्पण करें। इसका बहुत बड़ा असर भी हो रहा है, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु इनके हाथों में आप तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं। ये अपने घर से लेकर आए हैं, चांदी का एक सिक्का है और ये प्रभु को आज गिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पहले से ही इस अपील के बाद से जुड़े हैं और इस तरह की चीज़ें आप देखिए वो लगातार मंदिर को दे रहे हैं।
16: मैं दो चांदी के सिक्के लेके आया हूँ, जो मेरी दादी ने मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में दिए थे। तो मेरे अंदर से ये भाव आया कि मुझे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप अनावश्यक कोई चीज़ें खरीदें, चांदी सोना खरीद के ना खरीदें, तो पहले से हमने एक सेवा भाव था कि हम भगवान के को कुछ अर्पण करें। तो ये चांदी के दो अमूल सिक्के थे जो मैंने भगवान के लिए बिना परचेज किए, जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो मेरी दादी ने दिए थे, उसको मैं यहाँ आज मंदिर में डोनेट करने आया हूँ।
17: मैं तो ये प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए श्रृंगार लाई हूँ। ये उनके ब्रेसलेट है, ये उनकी नथनी है, इनका मांग टीका है, ये पायल है, उनके हार है, ये उनके जल पीने के लिए।
18: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपील है पूरे देशवासियों को, तो हमने सोचा कि इस्कॉन द्वारका की भी एक जिम्मेदारी है, धार्मिक संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और एक अच्छा जिम्मेदार संस्था की तरह उभर कर बाहर आएँ। तो हमने एक समाधान निकाला जिसमें भक्ति और जिम्मेदारी दोनों दोनों दोनों का मिश्रण हो। तो हमने हमारे जो अपने भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि घर में जो भी चांदी की बर्तन हो और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले वस्तुएं जैसे कि चम्मच, बांसुरी, थाल इत्यादि और चांदी के कोई भी पात्र हो, वो भगवान को, भगवान के सेवा हेतु अर्पित कर सकें। और क्योंकि ये भगवान के सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सालों की परंपरा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा होनी है रेगुलरली, मंदिर की परंपरा है, तो इसको भी नियमित रूप से
15: किसी भी हालात में ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए।
14: सोना और चांदी की खरीदारी से बचने की अपील के बाद दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की पहल को लेकर हमने शिरडी और मथुरा के मंदिरों में दान करने वाले श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
19: मंदिर आज गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, हमारा साईं बाबा संस्थान तो केंद्र सरकार के अंडर जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे मंदिर नहीं है उनके पास जो सोना जमा है, उन्होंने अगर देश के अच्छे काम के लिए अगर वो डोनेट किया तो उसमें देश की ही भलाई है।
20: हमारे पास भी घर में सोना रखा है तो हम उसको गलवा दे, उसकी नई ज्वेलरी बना सकते हैं और वो पापा को हम अर्पण कर सकते हैं, तो वो भी नया ही हो जाएगा। और मतलब भक्त है हम तो साईं बाबा के, और हमको लगता है कि हमको करना ही है, हमने मान मन्नत करी है तो बिल्कुल हम करेंगे। मतलब मोदी जी की बात से भी सहमत है हम, क्योंकि उससे भी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश की, तो हमको बिल्कुल हमारा समर्थन मोदी जी को भी दिखाना है, पर हमारी भक्ति अगर बाबा के प्रति है तो उसमें भी हम हमारी दिलो जान से हमारे पास में जो भी घर का है तो वो हम बना के और बाबा को बिल्कुल समर्पण करेंगे।
21: चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी बातों को समस्त भारतवासियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की उनकी योजना होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। और अगर ये कहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए, तो अब चूंकि हम लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवान दिए हैं तो जो पुराने हैं उसको प्रभु को अर्पित किया जाए। अब इसमें बहुत राजनीति तो नहीं है, अब वो जाने इस चीज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे प्रभु के लिए ही समर्पित है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है।
0: नया नहीं खरीदना चाहिए?
21: नहीं सर, अब घर में शादी वगैरह होगी तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि उस तरह जैसे अपने इच्छाओं को रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वैसा नहीं करने की जरूरत।
2: मान लीजिए अगर हमारे पास पुराना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उस कीमत का अगर जो हमारे अगर भगवान ने दिए हैं तो उसको पैसा ही चढ़ा सकते हैं।
22: देखिए ये तो कट सत्य है कि हमारा देश इस समय आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने हमें सुझाव दिया है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है परिस्थिति आगे चल के सुधर जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर हमें खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
23: मंदिर वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास पुराना सोना है तो उसे ही चढ़ाएं, नया सोना ना चढ़ाएं।
22: नहीं, अगर हमारे पास है तो चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीद के ना चढ़ाएं, तो ये बेटर है हमारे लिए।
14: अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसके चलते आधा जून तक शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिक मास की शुरुआत पर महाराष्ट्र के अमरावती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यूपी के झांसी में तो अधिक मास शुरू होने पर भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अधिक मास से जुड़ी ये रिपोर्ट।

0: अधिक मास की शुरुआत पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भक्तिमय रंग देखने को मिले। कहीं मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें दिखी तो कहीं भव्य नौका विहार महोत्सव की छटा बिखरी। अधिक मास, इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक के इस अधिक मास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार जैसे कार्य नहीं होते, लेकिन इस माह को दान पुण्य, धर्म, पूजा पाठ सबके लिए उत्तम माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते अधिक मास के पहले दिन महाराष्ट्र के अमरावती के अंबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते दिखे।
1: अमरावती की जो अंबा माता है, जो विदर्भ की जिसे कुलस्वामिनी कहा जाता है, उस अंबा माता मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भक्तों की अधिक मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके चलते जो है भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में लीन होना, उनकी आराधना साधना करना, यही भक्तों का सबसे बड़ा काम होता है। पूरे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो है भक्तों की जो कतार है वो अब अगले कुछ दिनों में बढ़ती रहेगी।
0: हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष में 12 की जगह 13 महीने पड़ते हैं तो अतिरिक्त माह होने के चलते ही इसे अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अधिक मास के प्रारंभ होने के अवसर पर यूपी के झांसी स्थित इस्कॉन मंदिर में दिव्य छटा बिखरी। यहां भव्य नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। इस उत्सव के लिए विशेष रूप से एक कृत्रिम सरोवर का निर्माण कराया गया, जिसे रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से वृंदावन की तरह झलक देते हुए दिव्य रूप दिया गया। सरोवर के बीच बनाई गई भव्य मोर नौका इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विराजमान होकर श्री राधा गोविंद जी ने भक्तों को दर्शन दिए। मोर नौका में जैसे ही श्री राधा गोविंद जी विराजमान हुए, पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण और जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में हरिनाम संकीर्तन, दीपों की अलौकिक सज्जा, पुष्पों की सुगंध और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज श्रद्धालुओं को वृंदावन की दिव्यता का आभास करा रहे थे।
2: आज इस्कॉन में भगवान की असीम कृपा के बाद जो एक नौका विहार उत्सव महोत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये अपना पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ।
0: संध्या आरती के बाद हरिनाम संकीर्तन के साथ नौका विहार उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आमंत्रित कीर्तनकारों ने अपने मधुर भजन और प्रवचन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव के दौरान श्री राधा गोविंद जी को विशेष 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां और फल शामिल थे। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटे गए। इस विशेष अवसर पर भक्तों की बनाई गई आकर्षक ब्रज थीम आधारित राधा कृष्ण रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही। अमरावती से धनंजय साबले और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका एक महीना पूरे होने को है। 19 अप्रैल से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से इस पवित्र यात्रा में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब तक 15.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा तब है जब एक महीने के अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी ने श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली, उन्हें परेशान किया, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक आस्थावान श्रद्धालु चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिजाओं में हर तरफ घंटे घड़ियां और जयकारों की गूंज है। कोई पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े और खच्चर से, और कोई हेली सेवा के जरिए चारधाम दर्शन करने पहुंच रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को अब एक महीना पूरा होने को है और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
1: चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: इस एक महीने के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं की हर तरह से परीक्षा ली। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी और कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक चार धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
3: बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, चाहे बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर साकेत चौराहे, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे वैसे बद्री विशाल के दर्शनों को जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। तो वहीं अब 22,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहे हैं।
0: चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में आए इतने बड़े उछाल के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए साल दर साल यात्री सुविधाओं को बेहतर किया गया है। चाहे दर्शन के लिए टोकन सिस्टम हो, सुरक्षा की बात हो, आने जाने और ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना हो, सरकार और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुलभ हो।
4: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन हैं वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ITBP है, ITBP के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे कि यात्रा असुरक्षित होती हो, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विद वेपन्स यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। ये पंजीकरण केंद्र है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच भी तीर्थयात्रियों की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को लेकर के ध्यान रखा गया है।
0: चारधाम यात्रा के बाद अब बारी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की है जो 23 मई से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ते को सुगम बनाया है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी ना हो।
5: 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा जिसमें महान शख्सियतें उस दिन पांच प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंदघाट 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंदधाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। सभी गुरुद्वारों में भव्य तरीके से रंग रोगन का काम, सजावट का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचने शुरू हो गए हैं। इन लोगों को अब इंतजार 23 मई का है, जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल एंसेलॉडी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wake.
7: And everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
9: जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: अधिक मास के विशेष अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम विजय पाठक ने किया सुंदरकांड का पाठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रदेश में